होई जहां जल थल महियल रविया सोई गुरमुख उबरे मनमुख पत खोई जिस राखे आप राम दयारा किस नहीं दूजा को पहुँचन हारा रहा सब में वर्ते एक अनंता ताकू सुख सो होए अचिंता ओह सब किछ जाने जो वर्तनता मन मुख मोए जिन दूजी प्यासा बहु जोनी पवे तुर किरत लिखियासा जैसा बीजे तैसा खासा देख दर्श मन।

छाप कर उपाया, लख 84 जोन परमाया, साध संग पयो जन्म परापत, पर सेवा पद हर हर गुरमत, त्याग मान झूठ अभिमान, जीवत मरहे दर्द।

कहो नानक हर हर गुण गाए, गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा। करम पूम में बोहो नाम, पूरन होए तुम्हारा काम। हल पावे मिटे जम त्रास, नित गावे हर हर गुण जास। हर हर नाम अंतर उर्धार।

गुर के बचन कटे परम पेद, गुर का बचन कतो न जाए, गुर के बचन हर के गुण गाए, गुर का बचन जी के साथ, गुर का बचन अनाथ को नाथ, गुर के बचन नरक ना पवे, गुर के बचन रसना अमृत रवे, गुर का बचन प्रगट संसार, गुर के बचन न आवे हार, जिस जन हुए आप कृपाल, नानक सतगुर सदा दयाल, गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, जिन कीता माटी ते रतन, गर्भ में राखिया जिन कर जतन, जिन दीनी शोभा वडियाई, किस प्रभ को आस पहरते आई, रमैया रेन

जिस प्रसाद माया सुलक खाती, गुरु प्रसाद अमृत बिख खाती, तो नानक इस्ते किछ नाही, राखन हारे कौशाला ही, गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, तिसकी शरण नाही पौ सोग, उसके बाहर कछु

वाक गुरु का शब्द अमृत रस चाख अवर जतन कहो कौन काज कर कृपा राखे आप लाज।

गुर उपदेश मने में ले हो, जाको राम नाम लिव लागी, कहो नानक सो तन वड पागी। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, सुन हर कथा उतारी मैल, महा पुनीत पय सुख सैल, वद्दे पाग पाया साध संग, पार ब्रह्म सो लागो रंग, हर हर नाम।

पास एको मन एको सब ठाए पूरन पूर रहो सब जाए गुर पूरे सब परम चुकाया हर सिमरत नानक सुख पाया गौरी ग्वारे री महला पंजवा अगले मोए से पाछे परे जो उभरे से बंद लख थरे।

सिर ऊपर ठाडो तब गाए, मीठी कर कर बिखिया खाए। हौ बंदो हौ साधो बैर, हमरी पूम कौन काले पैर। हौ पंडित हौ चतुर सियाणा, करने हार न बुझे बिगाना। अपनी गत मित आपे जाने, क्या को कहे क्या आख वखाने। जित जित लावे तित तित लगना, अपना पला सब काहू मंगना।

पंजवा अनिक जतन नहीं होत छुटारा, बहुत सियाणत आगल पारा, हर की सेवा निर्मल हेत, प्रभ की दरगे शोभा सेत। मन मेरे गहो हर नाम का ओला, तुझे ना लागे ताता चोला, रहाओ जो गोहित पै सागर माहे, अंधकार दीपक दीपाहे, अगन शीत काल।

कर कृपा जिस आप दीवाने, हर हर नाम जाके हृदय वसे, दुख दर्द ते नानक नसे, गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, बहुत दर्ब कर मन ना अघाना, अनक रूप देख नहीं पता।

तन त्रिग तन माया संग राते राव ज्यो बिगारी कै सिर दीजे दाम ओए खसमे कै गृह उन दुख सहाम ज्यो सुपने होए बैस

पुत्र कलत्र ग्रस्त का फासा, होन न पाये राम के दासा। कवन सो विद जित राम गुण गाए, कवन सो मत जित तरे ए माए राव। जो पलाई सो बुरा जाने, साच कहे सो विखे समाने। जाने नाही जीत अर हार, इहो वलेवा साकत संसार। जो हला हल सो पीवे बौरा, अमृत नाम जाने कर कौरा। साध संग के नाही नेर, लख चौरासी परमता फेर। एक जाल पहाए पंखी, रस रस को

प्यारी ए रस राती होए तृप्तारी रहाओ हे जेवे तू राम गुण गाओ निमख निमख हर हर हर त्याओ आन न सुनिए कतहु जाइए साध संगत वड पागी पाइए आठ पैर जेवे आराध पार ब्रह्म ठाकुर आगाद इहा उहा सदा सुहेली हर गुण गावत रसन अमोली बनस्पत मौली फल फूल पेगे ए रस राती बोर न छोड़े आन न रस कस लवे न लाई कहो नानक गुर पे है सहाय गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा मन मंदर।

कवन बापारी जाका उहा विसाहो, नाम रतन को व्यवहारी, अमृत भोजन करे आहारी रहाओ, मन तन अर्पी सेव करी जय, कवन सो जुगत जित कर पी जय, पाए लगो तज मेरा तेरे, कवन सो जन जो सो

संगा ठाकुर नाम कियो उनवर्तन त्रिपत अगावन हर कै दर्शन हर संग राते मन तन हरे गुरपुरे की सरनी परे रहाओ चरण कमल आत्म आधार एक निहारे आज्ञाकार एको बनज एको व्योहारी अवर न जाने बिन निरंकारी हर सोग दो हूते मुक्ते सदा अलिपत जोग हर जुगते दीसे सब में सबते रहते पार ब्रह्म का ओए ध्यान करते संतन की महिमा कवन वखानो अगाध बोध किछ मित नहीं जानो पार ब्रह्म मोहि कृपा।

ते आया, मरण तुम्हारा गुरते पाया, सतगुर ते दृढ़िया एक एक है, नानक दास हर हर हर ते कै। गौड़ी ग्वारेड़ी महला पंजवां, व्यापत हरख सोग विस्थार, व्यापत सुर्ग नरक अवतार, व्यापत तन निरतन पेख शोभा, मूल व्यादि व्यापस लोभा, माया व्यापत बहु प्रकारी, संत जीवे प्रभ ओठ तुम्हारी, रहाओ व्यापत अंग बुद्ध का माता, व्यापत पुत्र कलत्र संग्राता, व्यापत हस्त कोड़े अरबस्ता, व्यापत रूप जोबन मदमस्ता, व्यापत

व्यापत अंधियार, व्यापत कर्म करे हो फासा, व्यापत ग्रस्त व्यापत उदासा, आचार व्यवहार व्यापत ही जात, सब कुछ व्यापत बिन हर रंग रात, संतन के बंधन काटे हर राय, ताको कहां व्यापे माए, तहु नानक जे तू

जागत रहे साबत वक्त ओह अपनी लहे रहाओ सगल सहेली अपने रस्मा की जह अपने की खबर न जाती मुसनहार पंच बटवारे सुने नगर परे ठगहारे उनते राखे बाप न माई उनते राखे मीत न पाई दर्ब स्यानप ना ओए रहते साध संग ओए दुष्ट वस होते कर कृपा मोय सारंग पान संतन तूर सर्व निधान साबत पूंजी।

सगल भगत जाका नाम आधार, सर्व व्यापत पूरन तनी जाकी शोभा कट कट बनी। जिस सिमरत दुख डेरा कहे, जिस सिमरत जम किछु ना कहे, जिस सिमरत होठ सूखे हरे, जिस सिमरत डूबत पाहन तरे। संत सभा तो सदा जयकार, हर हर नाम जन

संत प्रसाद हर कीर्तन गाओ, संत प्रसाद सगल दुख मिटे, संत प्रसाद बंधन ते छुटे, संत कृपा ते मिटे मोह परम, साध रेण मज्जन सब धर्म, साध कृपाल दयाल गोविंद, साधा मैं ए हमरी जिंद, कृपा निध कृपाल ते आवो, साध संग ता बैठन पावो, मोहे निर्गुण को प्रभु कीनी दया, साध संग नानक।

पैर अब मत दिन सी दुष्ट बिगानी जब के सुनिया हर जस्तानी रहाओ सहज सुख आनंद निधान राख।

सुखदाता जे नाम जपावे कर कृपा तिस संग मिलावे रहाओ जिस होए दयाल तिस आप मिलावे सर्व निधान गुरु ते पावे आप त्याग मिटे आमन जाना साध के संग पार।

पार ब्रह्म परमेश्वर क्या गुर पूरे ते मत पाए रहाओ करण करावन हार दयाल जी जम सगले प्रतपाल अगम अगोचर

गुर पूरे रथ दे हाथ नानक पार ब्रह्म सम्राट गौड़ी द्वारे री महला पंजवां गुर प्रसाद नाम मन लागा जन्म जन्म का सोया जागा अमृत गुण उचरे प्रभ बाणी पूरे गुर की सुमत प्राणी प्रभ सिमरत कुशल सब पाए कर बाहर सुख सह सबाए रहाओ सोई पछाता जिन्हें उपाया कर कृपा प्रभ आप मिलाया बाँ पकड़ लीनो कर अपना हर हर कथा सदा जप जपना मंत्र तंत्र औखद पुने चार हर हर नाम जी प्राण आधार साचा तन पायो हर रंग दुतर करे साध के संग सुख बैसो संत सज्जन परवार हर तन खटियो जाका नहीं सुमार जिसे प्राप्त किस गुर दे नानक बिरथा कोई नहे गौड़ी द्वारे री महला पंजवा हस्त पुनीत हो।

माया मगन ना कछुए मोह उदरे आप करे संसार राम नाम जप के कंकार आप कमाओ अमरा उपदेश राम नाम हृदय प्रवेश जाके माथे एहो निदान सोई पुरख जते भगवान आप तैर हर हर गुण गाओ कहो नानक हो।

बिचर आ गया तिचर पोगे पोग जले न पाये राम स्नेह तिरत संयोग सती उठ होई रहाओ। देखा देखी मन हठ जल जाये प्रिय संग न पावे बहु जोन को आये शील संजम प्रिय आज्ञा माने किस नारी को दुख न जमाने कौ नानक जिन प्रयो परमेश्वर कर जानिया तन सती दरगे परवानिया गौरी ग्वारे री महला पंजवा हम तनवंत।

आ मेरे मन पया निदाना, रतन लाल जाता कछु न मोल, परे पंडार अकूट अतोल, खावे खर्चे रल मिल।

भरपूर सतगुरु अपने कौ बलिहार है, छोड़ न जाई सर पर तार है। रहाओ दुख रोग सोग बिसरे जब नाम, सदा आनंद जा हर गुण गाम। बुरा पला कोई ना कही जाए, छोड़ मान हर।

जा को रस हर रस है आयो सो अन रस नाही लपटायो जा का तहया दर्दे चले सो किसको नजर ले आवे तले जा का सब की

सहज आनंद हर साधु माहे, आज्ञाकारी हर हर राय, रहाओ जाके अचिंत वसे मन आए, ताको चिंता कतहु नाहे, जाके दिन सो मन से फरमा, ताके कछु नाही डर जमा, जाके हृदय दियो गुरु नामा, कहो नानक ताके सगल निधाना, गौड़ी महला पंजवा, अगम रूप का मन में थाना, गुरु प्रसाद किने विरले जाना, सहज कथा के अमृत कुंटा, जिसे प्राप्त

आपन तन नहीं जाके दरबा, राज मिलख नहीं आपन दरबा, आपन नहीं काको लपटायो, आपन नाम सतगुर के पायो रहाओ, सुत बनता आपन नहीं पाई, इष्ट मीत आप बाप ना माई, सोयना रूपा सुन नहीं दाम, हैवर गैवर आपन नहीं काम, कहो नानक जो गुरु बख्श मिलाया, किसका सब किस जिसका।

कहो नानक मैं सो गुर पाया, पार ब्रह्म पूरन देखाया। गौड़ी महला पंजवा दुलभ दे पाई वड पागी।

कहो नानक गुरु मंत्र दृढ़ आया, केवल नाम रिद माए समाया। गौड़ी महला पंजवा, साकी माई काको बाप, नाम तारीख झूठे सब साथ, काहे को मूर्ख पकलाया।

पूर्व से अगकोट संत प्रसाद जन्म मरण के छोट संत का दर्श पूरन स्नान संत कृपा ते जपिए नाम रहाओ संत के संग मिटिया अंकार दृश्य आवे सब एक अंकार संत सो प्रसन्न आए वक्त पंचा अमृत नाम हृदय ले संचा कहो नानक जाता पूरा कर्म किस केते साधु के चरण गौड़ी महला पंजवा हर गुण जपत कमल प्रगाते हर सिमरत त्रास सब नाते सामत पूरी जित हर गुण गावे वडे पाव साधु संग पावे रहाओ साध संग पाये निज नामा साध संग पूरन सब कामा हर की भगत जन्म परवान गुर कृपा ते नाम बखान कहो नानक सो जन परवान जाके हृदय वसे भगवान गौड़ी महला पंजवा एक सो जाका मन राता विसरी तिसे पराई पाता बिन गोविंद ना दिसे कोई करण करावन करता सोई रहाओ मने कमावे मुख हर हर बोले सो जन इत उत्कत है न डोले जाके हर तन सो सच्चाओ गुरपूरे कर दीनो विसाओ जीवन पुरख मिलिया हर राया कहो नानक परम पद पाया गौड़ी महला पंजवा नाम भगत के प्राण आधार नामो तन नामो व्योहार नाम वडाई जन शोभा पाए कर कृपा जिस आप दिवाए रहाओ नाम भगत के सुख स्थान नाम रत सो भगत परवान हर का नाम जन को तारे सास सास जन नाम समारे कहो नानक जिस पूरा पाग नाम संग ताका मन लाग गौड़ी महला पंजवा संत प्रसाद हर नाम से आया तब के तावत मन तृप्ताया सुख विश्राम पाया गुण गाए श्रम मिटिया मेरी हति बलाए रहाओ चरण कमल आराध भगवंता हर सिमरन ते मिटी मेरी चिंता सब तज अनाथ एक शरण आयो ऊंच स्थान तब सहजे पायो दुख दर्द परम पौ नसिया करण हार नानक मन बस

चरण ठाकुर के मार्ग तावो पलो समो सिमरन की बरिया सिमरत नाम तय पार उतरिया रहाओ नेत्र संतन।

आओ हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे तिस जन दुख निकट नहीं आवे हर की टहल कर जन सोहे ताको माया अगर न पोहे मन तन मुख हर नाम दयाल नानक तजियले अवर जंजाल गौड़ी महला पंजवा छाड सियानप बहु चतुराई गुरपुरे की तेज सिकाई दुख बिन से सुख हर गुण गाए गुरपुरा पेटिया लिव लाए रहाओ हर का नाम दियो गुर मंत्र मिटे सूरे उतरी चिंत अनद पए गुर मिलत कृपाल कर कृपा का तेज जाल कहो नानक गुरपुरा पाया ताके बहुर न व्यापे माया गौड़ी महला पंजवा रास लिया गुरपुरे आप मन मुख को लागो संताप।

और मृतक देह साध संग बिहुना आवत जात जोनी दुख छीना रहाओ। अनेक वस्त्र सुंदर पहराया जो डरना खेत माहे डराया सगल शरीर आवत सब काम नेफल मानुक जपे नहीं नाम कहो नानक जा को कहे दयाला साध संग मिल पजे गोपाला। गौड़ी महला पंजवा कल कलेश गुर शब्द निवारे आवन जान रहे सुख सारे तय दिन से निरपो हर के आया साध संग हर के गुण गाया रहाओ। चरण कवल रिद अंतर तारे अग्न सागर गुर पार उतारे बूढ़त जात पूरे गुर कांडे जन्म जन्म के टूटे गांडे कहो नानक किस गुर बलिहारी जिस पेटत गत पई हमारी। गौड़ी महला पंजवा साध संग ताकी सरनी परो मंथन अपना आगे तरो अमृत नाम पीवो मेरे पाई सिमर सिमर सब तपक बुझाई रहाओ। तज अभिमान जन्म मरण निवारो हर के दास के चरण नमस्कारो सास सास प्रभ मने संभाले सो तन संचो जो चाले नाले तिसे प्राप्त जिस

पुनी मन आशा करी दया सतगुरु गुण ताशा दुख नाठे सुख आए समाए चील न परी जा गुर फरमाए इस पुनी पूरे गुर मिले नानक के जन।

सिमरत सिमरत प्रभु का नाम, सगल रोग का बिरसिया खाओ। सहज सुभाए बोले हर बाणी, आज पहर प्रभु सुनरो प्राणी। दुख दर्द जम नेड़ न आवे, कहो नानक जो हर गुण गावे। गौड़ी महला पंजवा, पले दिन पले संजोग, जित पेटे पार ब्रह्म निर्जोग। ओ बेला को हों बल जाओ, जित मेरा मन जपे हर नाओ। रहाओ सफल मूरत सफल ओ परी, जित रसना उचरे हर हरी। सफल ओ माथा संत नमस्कार, चरण पुनीत चले हर मार्ग। कहो नानक भला मेरा कर्म, जित पेटे साधु के चरण। गौड़ी महला पंजवा, गुरु का शब्द रास मन माहे। नाम सिमर चिंता सब जाहे, दिन भगवंत नाही अनकोए। मारे राखे को सोए, रहाओ गुरु के चरण हृदय उद्धार। अगन सागर जब उतरे पार, गुरु मूरख सो लाए ध्यान। ईहा ऊहा पावे मान, सगल त्याग गुर शरणी आया। मिटे अंधे से नानक सुख पाया। गौड़ी महला पंजवा, जिस सिमरत दुख सब जाए। नाम रतन वसे मन आए, जप मन मेरे गोविंद की बाणी। साधु जन राम रसन वखाणी। रहाओ इक्कस बिन नाही दूजा कोए, जाकी दृष्ट सदा सुख होए। साजन मीत सखा कर एक, हर हर अक्षर मन में लेख। रव रया सर्वत स्वामी, गुण गावे नानक अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा, तै में रचियो सब संसारा। तिस पौ नाही जिस नाम अधारा, पौ ना व्यापे तेरी सरना। जो तुझ पावे सोई करना। रहाओ सोग हरख में आवन जाना, तिन सुख पाया जो प्रभु पाना। अगन सागर मह व्यापे माया, से शीतल जिन सतगुरु पाया। राख ले

तुम मन वसे तो दुख न लागे, तुमरी कृपा से परम पौ पागे, पार ब्रह्म अपरम पर स्वामी, सगल कथा के अंतर जामी, करो अरदास अपने सतगुर पास, नानक नाम मिले सतरास, गौड़ी महला पंजवा, कण बिना जैसे सोथर तुखा, नाम विहून सुने से मुखा, हर हर नाम जपो नित प्राणी, नाम विहून त्रिग जे बिगानी, रहाओ नाम बिना ना

जो कुछ वर्त है सब तेरा पाना, हुक्म बूझे सो सच समाना, कर कृपा दीजे प्रभु दान, नानक सिमरै नाम निधान। गौड़ी मैला पंजवा ताका दर्श पाये वड़ पागी, जाकी राम नाम लिव लागी, जाके हर वसिया मन माही, ताको दुख सुपने भी नाही। राव सर्व निधान राखे जन माहे, ताके संग किलविक दुख जाहे, जन की महिमा कति न जाए, पार ब्रह्म जन रहा समाये, कर कृपा प्रभु जिनो सुनी जय, दास की सूर नानक को दी जय। गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत तेरी जाए बलाए, सर्व कल्याण वसे मन आए।

का निर्मल मंता शोध उपाव एक टेक राख महापदार्थ अमृत रस चाक बिखम सागर तेई जन तरे नानक जाको नगर करे गौरी महला पंजवा हृदय चरण कमल प्रभ तारे पूरे सतगुर मिल निस्तारे गोविंद गुण गावो मेरे पाई मिल साधु हर नाम से आई रहाओ दुलभ दे होई परवान सतगुर ते पाया नाम निशान हर सिमरत पूरन पद पाया साध संग तय परम मिटाया जत तत देखो तत रह।

चरण कमल हृदय उतारी, मन तन तन गुर प्राण आधारी, सफल जन्म होवे प्रवान, गुर पार ब्रह्म निकट कर जान, संत तूर पाये वड पागी, नानक गुर पेटत हर सो लिव लागी। गौड़ी महला पंजवा। करे दो कर्म दिखावे होर, राम की दरगह बांदा चोर, राम रमे सोई रामाना, जल तल मैयल एक समाना, रहाओ अंतर बिख मुख अमृत सुनावे, जमपुर बादा चोटा खावे, अनित पर्दे में कमावे विकार, खिन में प्रगट हो है संसार, अंतर साच नाम रस राता, नानक किस

आनंद निवासे राम जना को राम परोसा नाम जपत सब मिट्यो अंदेसा रहाओ साध संग कछ पौ ना पराती गुण गोपाल गाये दिन राती कर कृपा प्रबंधन छोटे चरण कमल की दीनी ओटे कहो नानक मन पई प्रतीत निर्मल जस की रे जननीत गौड़ी महला पंजवा हर चरणी जा का मन लागा दुख दर्द प्रमता।

सगल मनोरथ मुक्त पद दीत, ऐसा मीत करो सब कोए, जाके बिरथा कोए न होए। रहाओ अपने स्वाए हृदय ले तारिया, दुख दर्द रोग सगल बिदारिया। रखना गीदी बोलत राम, पूर्ण होए सगले काम। अनेक बार नानक बलिहारा, सफल दर्शन गोविंद हमारा। गौड़ी महला पंजवा, कोट बिगन हिरे खिन माहे, हर हर कथा साध संग सुनाहे। पीवत राम रस अमृत गुण जास, जप हर चरण।

औषध मंत्र तंत्र सब सार करने हार हृदय में तार सज सब परम पजियो पार ब्रह्म कौ नानक अटल ए धर्म गौड़ी महला पंजवा कर कृपा पेटे गुर सोई तित बल रोग ना व्यापे कोई राम रमन करण तै सागर करण सूर फारे जम कागर रहाओ सतगुर मंत्र दियो हर नाम ए आसर पूरन पै काम जप तप संयम पूरी वडियाई गुर कृपाल हर पै साई मान मोह खोए गुर परम देख नानक पसरे पार ब्रह्म गौड़ी महला पंजवा दिखे राज के अंदुला पारी दुख लागे राम नाम सितारी तेरे दास को तुही वड्याई माया मगन नरक ले जाई रहाओ रोग ग्रस्त सितारे नाओ दिख माते का ठौर ना ठाओ चरण

कर कृपा प्रभ लय निवारे, ऐसा हर रस रमो सब कोए, सर्व कला पूरन प्रभ सोए। रहाओ महातप सागर संसार, प्रभ खिन में पार उतारन हार, अनित बंधन तोरे नहीं जाहे, सिमरत नाम मुक्त फल पाए, उकत स्यान किसके कछ नाहे, कर कृपा नानक गुण गाहे। गौड़ी महला पंजवा, थाती पाई हर को नाम, विचर संसार पूरन सब काम, वड पागी हर कीर्तन गाये, पार ब्रह्म तू देहता पाये। रहाओ हर के चरण हृदय उर्धार, पाव सागर चढ़ उतरे पार, साधु संग करो सब कोए, सदा कल्याण फिर दुख ना होए, प्रेम भगत पज गुणी निधान, नानक दरगे पाये मान। गौड़ी महला पंजवा, जल तल मैयल पूरन हर मीत, ब्रह्म बिन से गाए गुण गीत, उठत सोवत हर संग पहरुआ, जा के सिमरन जम नहीं डरुआ। रहाओ चरण कमल प्रभु हृदय निवास, सगल दुख का होया नास, आशा मान तान तन एक, साचे साकी मन में टेक, महागरीब जन साध अनाथ, नानक प्रभु राखे देहात। गौरी महला।

शीतल चरण हर गाते, कह पंजन प्रभ मन ना बसाही, दर्पत दर्पत जन्म बहुत जाही, रहाओ जा कै हृदय बस्यो हर नाम, सगल मनोरथ ताके पूरन काम, जन्म जरा मृत जिस वास, सो समरथ सिमर सास गिरास, मीत साजन सखा प्रभ एक, नाम स्वामी का नानक टेक, गौड़ी मैला पंजवा। बार राखो हृदय समाल, कर आए गोविंद ले नाल, हर हर नाम संतन कै संग, मंतन राता राम कै रंग, रहाओ गुरु प्रसादी सागर तरिया, जन्म जन्म के चिन्ह विच सब हिरिया, शोभा सुरत नाम भगवंत, पूरे गुर का निर्मल मंत, चरण कमल हृदय में जाप, नानक पेख जीवे प्रताप, गौड़ी महला पंजवा। तन एहो थान गोविंद गुण गाए, कुशल खेम प्रभ आप बसाए, रहाओ विपत तहां जहां हर सिमरन नाही, कोट आनंद जह हर गुण गाही, हर विसरिय दुख रोग कनेरे, प्रभ सेवा जम लगे न नेरे, सोवड पागी निचल खान, जह जपिय प्रभ केवल नाम, जह जाय तह नाल मेरा स्वामी, नानक को मिलिया अंतर जामी, गौड़ी महला पंजवा। जो प्राणी गोविंद त्यावे, पढ़िया अनपढ़िया परम

रूपवंत सो चतुर सियाणा, जिन जन मान्या प्रभ का पाणा, जग में आया सो परवान, कट कट अपना।

साज तूर कर सुड मंजाई, अनक जला जे तो वै दे मैल न उतरे सुध ना ते। सतगुर पेट्यो सदा कृपाल, हर सिमर सिमर कात्या पौकाल, मुकत पुगत जुगत हर नाम।

आत्म प्रगास हर का सिमरन सुन मन कानी सुख पावे हर द्वार प्राणी रहाओ आज पैर से आई है गोपाल नानक दर्शन देख निहाल गौड़ी महला पंजवा सांस पाई गुर गोविंद पाई पाप पाप दिन से मेरे पाई रहाओ राम नाम नित रसन बखान दिन से रोग पय कल्याण पार ब्रह्म गुण अगम विचार

आगे आप क्यों थान वस जाते हैं, आप कह रहे मन हर को जाते हैं, पप प्रवान सच निशान जाको आप करे फुरमान, आपके दाता आप प्रतपाल, नित नित नानक राम नाम समाल, गौड़ी महला पंजवा सतगुर पूरा पया कृपाल, हृदय वसिया सदा गोपाल, राम रवत सद ही सुख पाया, माया करी पूरन हर राया, रहाओ कहो नानक जाके।

दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की कैद रखी करतारे, बादशाह सा सब वस्त्र दीने, अमृत नाम मार

न जले, हर संग राते माया नहीं चले, हर संग राते नहीं डूबे जला, हर संग राते सुफल फला, सब कह मिटे तुम्हारे नाए, एकक संग हर हर गुण गाए रहाओ, हर संग राते मिटे सब चिंता, हर सों सो रचे जिस साध का मनता, हर संग राते जम की नहीं त्रास, हर संग राते पूरन आस, हर संग राते दुख न लागे, हर संग राता अंदिन जागे, हर संग राता सहज कर वसे, हर संग राते प्रम पौ नसे, हर संग राते मत उत्तम होए, हर संग राते निर्मल सोए, कहो नानक तिनको बल जाए, जिनको प्रभ मेरा बिसरत नाही, गौरी मैला पन्नवा, उद्यम कर शीतल मन भये, मार्ग चलत सगल दुख गए, नाम जपत मन पये आनंद, रस गाए गुण परमानंद, खेम पया कुशल कार्य आए, एकत साध संग

अस्थिर पै बसे सुख आसन, गुर प्रसाद नानक सुख बासन, गौरी महला पंजवा, कोट मज्जन तीनो स्नान, लाख अरब खरब दीनो दान, जा मन वस्यो हर को नाम, सगल पवित्र गुण गाए गोपाल, पाप मिटे साधु शरण दयाल, रहाओ बहुत उर्द तप साधन सादे, अनेक लाभ मनोरथ लादे।

नाम जपते प्रभु सो मन माने, अगाध बोध हर अगम अपारे, नाम जपत नाम हृदय विचारे, नानक को प्रभु कृपा धारे। गौड़ी महला पंजवा, सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल गुरु हृदय बसाया, गुरु गोविंद पार ब्रह्म पूरा, किसे अराध मेरा मन पीरा रहा, अंदिन जपो गुरु गुरु नाम ताके।

अपने सेवक को आप सहाय नित प्रत पारे बाप जैसे माई प्रभु की शरण उभरे सब कोए करण कराव पूर्ण सच सोए रहाओ अब मन बसिया करने हारा कै दिन से आत्म सुख सारा कर कृपा अपने जन राखे जन्म जन्म के

राम को बल पूरन पाई, ताके बिरथा ना व्यापे काई, रहाओ जो जो चितवे दास हरमाई, सो सो करता आप कराई, निंदक की प्रभ पत गवाई।

को संत मिले वडपाजी रहाओ मन अर्पो तन राखो आगे मन की मत मोय सगल त्यागी जो प्रभु की हर कथा सुनावे आन दिन फिरो तिस पिछे विरागी पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे पेटियो पुरख रसिक बैरागी मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी गौरी महला पंजवा निकसरे पंखी सिमर हर पांख मिल साधु शरण गहो पू

मैं कोई संत मिला वे नेरा रहाओ सेवा करो दास दासन की अनक पांच किस करो निहोरा तुला तार तोले सुख सगले बिन हर दर्श सबो ही थोरा संत प्रसाद दाए गुण सागर जन्म जन्म को जाप बहोरा अनद सुख पेत।

कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मोहे मार्ग दे बताई रहाओ। अंतर अलख न जाई लखिया विच पर्दा हूँ मैं पाई माया मोह सबो जग सोया क्यों परम कहो क्यों जाई। एका संगत इकत गृह बसते मिल बात न करते पाई एक बस्ते।

नानक दास तेरी सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे गौरी महला पन्नवा। रास पिता प्रभ मेरे मोरे निर्गुण सब गुण तेरे रहाओ पंच विखाजी एक गरीबा राखो राख नारे। खेद करें हर बहुत संताप।

गुर का शब्द कमाया जीत ले ओए महा दुखादी सहज सुहेली बाणी कहो नानक मन पाया परगासा पाया पद निर्वाणी गौड़ी महला पंजवा।

रोजाने जैसा पेट करावे बाजीगर ओ तैसो ही साज आने अनक कोठरी बहुत पाप करिया आप हुआ रखवारा जैसे महल राखे तैसे रहना क्या हो करे बिचारा जिन कुछ किया सोई जाने जिन ए सब विद साजी कहो नानक।

कदम सुहेले, सर्व सुखा में तुझते पाए मेरे ठाकुर अगे अतोले। बरन नासा को तुमरे रंगा गुण निधान सुख दाते, अगम अगोचर प्रभ अविनाशी पूरे गुरते जाते। प्रम्पो काट किए ने केवल जब के हूँ मैं मारी, जन मरण को

जन पार ब्रह्म रंग राते सूख सहज आनंद तिना संग उन संसार अवर न दाते। जगत उदाहरण से ही आए जो जन दर्श प्यासा उनकी शरण परे सो तरया संत संग पूर्ण आशा।

जोवन अवध जो दिस है सब किछ जुग में तातिया नाम निधान सब नवतन निर्मल एहो नानक हर तन खातिया। गौड़ी महला पंजवा जोग जुगत सुन आयो गुर के मोको सतगुर शब्द बुझायो।

एकत्रा एक वस्तीये दस बैरागन आज्ञाकारी तब निर्मल जोगी थी। परम जराए चराई विपूता पंच एक कर

ऐसा जोगी वद पागी पे तै माया के बंधन काटे। सेवा पूज करो किस मूरत की नानक किस पग चाटे। गौड़ी महला पंजवा। अनूप पदार्थ नाम सुनो सगल त्याय ले मीता। हर औषध जाको गुर दिया ताके निर्मल चीता। रहाओ अंधकार मिट्यो किन तंते गुर शब्द दीपक पर दासा।

संगार पूरन हुई मन की आशा गुर के त्योहर रंगा नाम खजाना पगती पाया मन तन तृप्त।

तुम प्रवरासे पोत पोत भगतन संग जोरी प्रयो प्रयो नाम तेरा दर्शन चाहे जैसे दृष्ट ओ चंद चकोरी राम संत में भेद किछ नाही एक जन कई मह लाख करोरी जा कहि है प्रगट प्रभु हुआ हम दिन कीर्तन रसन रमोरी तुम समरथ अपार अत ऊंचे सुखदाते प्रभु प्राण अधोरी नानक को प्रभु की जय कृपा उन संतन के संग संगोरी।

हर नाम मेरा मन जाके संत प्रसाद नानक हर पेटे मन तन शीतल कराके गौड़ी महला पंजवा सह समायो देव मोको सतगुरु।

हयो प्रगास सर्व उजियारा गुर जान मने प्रगटायो अमृत नाम पियो मन सत्या अनके ठहरायो मान आ गया सर्व सुख पाए दुखे ठाउ गवायो जो सो प्रसन्न पे

जिन तार ब्रह्मंड खंड हर ताको नाम जपी जय रे रहाओ मन की मत त्यागो हर जन हुकम बूझ सुख पाए रे जो प्रभ करे सोई फल मानो सुख दुख ओही त्याए रे कोट पतित उधारे खिन में करते बार न लागे रे दीन दर्द दुख पंजन स्वामी जिस पावे तिसे निवाजे रे।

इहा उहा सर्व सुख दाता सगल कथा प्रतिपारे रहाओ महा कष्ट काते खिन पीतर रसना नाम चितारे शीतल शांत सुख हर सरणी जलती अग्र निवारे गर्भ कुंड नरक के राख पव जल पार उतारे चरण कमल आराधत मन में जम की त्रास बिदारे पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगम अपारे गुण गावत त्याव

जीरे ओला नाम का अवर जे कर्म करावनो तिन में पव है जाम का रहाओ अवर जतन नहीं पाये वदे पाग हर क्या है।

जन्म मरे बल बुद्ध स्नानक होमे रही हर साध शरण नानक गही। गौड़ी महला पंजवा मन राम नाम गुण गाये नीत नीत हर सेविये सास सास हर त्याये रहाओ संत संग हर मन वसे दुख दर्द अनेरा प्रम नसे संत प्रसाद हर जापिये सो जन दुख ना व्यापिये जाको गुर हर मंत्र दे सो उबरिया माया अगन के नानक को प्रभु।

तू गुरु प्रसाद कर राज योग हर रस जिन जन चाखिया ताकि कृष्णा लाखिया हर विश्राम निध पाया सो

को पान प्रभ का खाना रहाओ ऐसे है रे खसम हमारा खिन में साज सवार महारा काम करी जे ठाकुर पावा गीत चरित प्रभ के गुण गावा।

सुख भय अकाल पुरख अगाध बोध सुनत जसो कोट अगथय कृपा निज प्रभ मया तार नानक हर हर नाम लय गौड़ी पूर्वी महला पंजवा मेरे मन शरण प्रभु सुख पाए जा दिन बिसरे प्राण सुख दाता सो दिन जात अजाए रहाओ एक रैन के पावन तुम आए बहु जुग आस बदाए।

रतन जन्म सफल गुर किया दर्शन को बलहरिया रहाओ जेते सास ग्रास मन लेता तेते ही गुण गाइए जो हो दयाल सतगुर अपना ताके मत बुद पाइए मेरे मन नाम ले जम बनते छूटे सर्व सुखा सुख पाइए शेर स्वामी सतगुर दाता मन बंचक फल आइए नाम इष्ट नीत सुत करता मन संग तुहार।

भिखारी बुरा पला नहीं सुझिए, बुरा पला नहीं सुझिए। अनुक बंधन माया परमत परमाया गुण नहीं गाया, मन बिखे ही मैं लुझिए। जा को रे कृपा करे जीवत सोई मरे, साध संग माया।

आवे दुखन पंथ पहान रहाओ सेवक सेवक सदा सेव तेरे संग बस है काल कर सेवा तू साध की हो काती है जम जाल होम जग तीरथ किए दुख हो में बदे विकार नरक सुरग दोए पुंचना।

0: मैं कैसो कह पुकार नाम कह सुन रे मना कर कीर्तन होए उधार
1: राग दौड़ी माल।

नानक की बेनंती हर पै अपना नाम जपावो। रागोड़ी माज महला पंजवा ओंकार सतगुरु प्रसाद। दीन दयाल दमोदर राया जियो, कोट जना कर सेव लगाया जियो, भगत वचल तेरा बिर

एहो जियो वताई बल बल जाई जियो तिस निव निव लागो पाई जियो तिस निव निव लागो पाई जियो। पोथी पंडित वेद खोजंता।

पतित पवित लग गुर के पैरे जियो, प्रम को काट किए निर्वैरे जियो, गुर मन की आस पुराई जियो, जिन नाउ पाया सो तनवंता जियो, जिन प्रभ त्याया सो सोभावंता जियो, जिस साधु संगत तिस सब सो करनी जियो, जन नानक सह समाई जियो, गौड़ी महला पंजवा माज, आओ हमारे राम प्यारे जियो, रैन दिनस साथ साथ चितारे जियो, संत देव संदेशा पै चरणारे जियो, खुद दिन कित बिद करिए जियो, संग तुम्हारे मैं करे आनंदा जियो, वन तिन त्रिभवन सुख परमानंदा जियो, सेज सुहावी इहो मन बिद संदा जियो, पेट दर्शन इहो सुख लइए जियो, चरण पखार करी नित सेवा जियो, पूजा अर्चा बंदन देवा जियो, दासन दास नाम जप लेवा जियो, बिनो ठाकुर पह कहिए जियो, इच पुन्नी मेरी मन तन हरिया जियो, दर्शन पेखत सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप तरिया जियो, इहो अजर नानक सुख सही है जियो, गौड़ी माज महला पंजवा, सुन सुन साजन मन विच प्यारे जियो, मन तन तेरा इहो जियो पेवारे जियो, विसरना ही प्रभ प्राण आधारे जियो, सदा तेरी शरण आई जियो, जिस मिले मन जीवे पाई जियो, गुरु प्रसादी सो हर हर पाई जियो, सब किछ प्रभ का प्रभ किया जाए जियो, प्रभ को सद बल जाए जियो, इहो निधान जपैवट पागी जियो, नाम निरंजन एक निवलागी जियो, गुर पूरा पाया सब दुख मिटाया जियो, आठ पैर गुण गाया जियो, रतन पदार्थ हर नाम तुम्हारा जियो, तू सच्चा साहु भगत मन जारा जियो, हर तन रास सच

निशान, जोर तुम्हारे सुख बसान, सत शब्द निशान राव। सबे गल्ला जातिया सुन के चुकिया, कद ही सुरत न लदिया माया मोहड़िया। दे बुजार सारता से अखी जिठड़िया, कोई जे मूर्ख लोभिया मूल ना सुनी कहा। इकस दो चौ क्या गणी, सब इकत साध मुठी, एक अद नाए रसियड़ा का विरली जाए उठी। भगत सच्चे दर्श होंदे आनंद करे दिन रात, रंग रते परमेश्वर है जन नानक तिन बल जात।

आओ जित कट वसे पार ब्रह्म सोई सुहावा थाओ जम कंकर नेड़ न आवई रसना हर गुण गाओ सेवा सुरत न जानिया ना जापे आराध ओठ तेरी जग जीवना मेरे ठाकुर अगम आगाज पाए किरपाल गुसाइया नखे सोग संताप।

है पवजल पहिए पार मेरे साधु संग उधार होए मुख उजल दरबार जीवन रूप गोपाल जस संत जना की रात नानक उबरे नाम जप दर सच्चे का वास गौड़ी माज महला पंजवा मीठे हर गुण गाओ जिंदू तू मीठे हर गुण गाओ सच्चे सेती रतिया।

सर जो करे फिट सो जीवन सोए अंचल गह के साध का तरना इव संसार पार ब्रह्म आराधी है उदरे सब परवार साजन बंग सो मित्र सो हर नाम हृदय दे अवगुण सब मिटाए के पर उपकार करे माल खजाना थ्यो कर हर के चरण निदान नानक जाच।

साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते ऐनस पागो रहाओ। सुख दुख दोनों समकर जाने और मान अपमाना, हर शोक ते रह अतीता तिन जग तत पछाना। उस तत निंदा दो त्यागे खोजे।

चरणाई गौड़ी महला नावा। प्राणी को हर जस मन नहीं आवे, एनिस मगन रहे माया में, कहो कैसे गुण गावे रहाओ, पूत मीत माया ममता स्यों, ए विद आप बंधावे, मिर्ग तृष्णा ज्यो चूठो इहु जग, देखता उठतावे, फुगत मुकत का

ओ माया पुन भजन राम चित लावो, नानक कहत मुकत पंथ एहो, गुरुमुख होए तुम पावो। गौड़ी मैला नामा को माई पूलियो मन समझावे, वेद पुराण साध मग सुन कर निमक न हर गुण गावे। रहाओ दुर्लभ दे पाए मानस की बिरसा जन्म सिरावे, माया मोह महा संकट बन ता स्यों रुच उपजावे। अंतर बाहर सदा संग प्रभ ता स्यों

सो मूरत है देवा, सुर्ग नरक अमृत बिक ए सब, क्यों कंचन अर कैसा, उस्तत निंदा ए समझा कै, लोभ मोह फुन तैसा, दुख सुख ए बांधे जे नाहिन, ते तुम जानो ज्ञानी, नानक मुक्त ताहे तुम मानो, ए बिद को जो प्राणी, गौड़ी मैला नावा, मन रे कहाँ पयो तैं बौरा, एनक औद कटे नहीं जाने, पयो लोग संघौरा, रहाओ, जो तन ते अपनो कर मान्यो, अर सुंदर गृह नारी, इनमें कटते रोरे नाहिन, देखो सोच बिचारी, रतन जन्म अपनो ते हार्यो, गोविंद दत्त नहीं जानी, निमख ना लीन पयो चरणन त्यों, बिरसा औद सिरानी, कहो नानक सोई नर सुखिया, राम नाम गुण गावे, और सगल जग माया मोहया, निरपय पद नहीं पावे, गौड़ी मैला नावा, नर अचेत पाप से डर रे, दीन दयाल सगल पै पंजन, शरण ताहे तुम पर रे, रहाओ, वेद पुराण जात गुण गावत, ताको नाम ही है मो तर रे, पावन नाम जगत में हर को, सिमर सिमर कसमल सब हर रे, मानस दे बौर ने पावे, कछु उपाओ मुक्त का कर रे, नानक कहत गाय।

साधो राम शरण विश्रामा, वेद पुराण पढ़े को ए गुण सिमरे हर को नामा। रहाओ लोभ मोह माया ममता सुन, औ बिकियन की सेवा हर्ष शोक।

निज सिद्ध निर्मल नाम विचार, पूरन पूर रहया बिखमार, त्रिपुटी छूटी विमल मजार, गुर की मत जिए आई कार। इन विद राम रमत मन मानिया, ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया, रहाओ इक सुख मानिया सहज मिलाया, निर्मल बाणी परम सुकाया, लाल पहे सूहा रंग माया, नगर पई दिख ठाक रहाया, उल्ट पई जीवत मर जा गया, शब्द रवे मन हर क्यों ला गया, रस संग्रह दिख पर हर त्या गया, पाए बसे जम का पौ पा गया, साध रहे बादंग अंकारा, चित हर क्यों राता हुक्म अपारा, जात रहे पत के आचारा, दृष्ट पई सुख आत्म तारा, तुझ बिन कोई ना देखो मीत, किस सेवो किस देवो चीत, किस पूछो किस लागो पाए, किस उपदेश रहा लिवलाए, गुर सेवी गुर लागो पाए, भगत करी रात्यो हर नाए, सिखिया दीखिया भोजन पाओ, हुक्म संजोगी निज कर जाओ, गर्भ गतं सुख आत्म त्याना, जोत पई ज्योति माए समाना, लिखत मिटे नहीं शब्द निशाना, करता करना करता जाना, न पंडित न चतर सियाना, न फूलो न परम फुलाना, कथो न कथनी हुक्म पछाना, नानक गुरमत सह समाना, गौड़ी ग्वारे री महला पहला, मन कुंचर काया उद्याने, गुर अंकस सच शब्द निशाने, राज द्वारे शोभ सुमाने, चतुराई ने चीनिया जाए, बिन मारे क्यों कीमत पाए, रहाओ कर में अमृत तस कर ले, नन्ना कार ना कोई करे, राखे आप वड्याई दे, नील अनिल अगन इक थाई, जल निवरी गुर बूझ बुझाई, मन दे लिया रहत गुण गाई, जैसा कर बाहर सो तैसा, वैस गुफा में आँखों कैसा, सागर डूगर निरपो ऐसा, मुए को कहो मारे कौन, निडरे को कैसा डर कवन, शब्द पछाने कीने पौन, जिन कहया तिन कहन वखानिया, जिन बूझिया तिन सहज पछानिया, देख विचार मेरा मन मानिया, कीरत सूरत मुक्त इक नाई, तही निरंजन रहा समाई, निज कर व्याप रहा।

ठाए उत्तत करे केते मुन प्रीत। तन मन सूचे सार सुचीत नानक हर पज नीता नीत। गौरी ग्वारे री महला पहला ना मन मरे ना कारज होए। मन वस दूता दुर्मत दोए मन माने गुरते इक होए। निर्गुण राम गुणे वस होए आत निवार विचारे सोए रहाओ। मन पूलो बहुत चिते विकार मन पूलो सिर आवे पार। मन माने हर एक अंकार मन पूलो माया कर जाए। काम विरुदो रह न खाए हर पद प्राणी रसन रसाए। जैवर हैवर कंचन सुतनारी बहुत चिंता पिड़ चाले हारी। जुए खेलन काची सारी संपो संची पय विकार। हर शोक उबे दरबार सुख सहजे जप हृदय मुरार। नजर करे ता मेल मिलाए गुण संग्रह अवगुण शब्द जलाए। गुरमुख नाम पदार्थ पाए बिन नावे सब दुख निवास। मनमुख मूर माया चितवास गुरमुख ज्ञान तुर कर्म लिखियास। मन चंचल कावत फुन पावे साचे सूचे मैल न पावे। नानक गुरमुख

करण गगन ने देखो दोए, नारी पुरुष सबाई लोए, रव सस देखो दीपक उजियाला, सर्व निरंतर प्रीतम बाला, कर कृपा मेरा चित लाया, सतगुरु मोको एक बुझाया, एक निरंजन गुरुमुख जाता, दूजा मार शब्द पछाता, एको हुक्म वर्ते सब लोई, एक से सब ओपत होई, राह दोवें खसम एको जान, गुर के शब्द हुक्म पछाण, सगल रूप वर्ण मन माही, कहो नानक एको सालाही, गौड़ी महला पहला, अध्यात्म कर्म करे सा साचा, मुक्त पेद क्या जाने काचा, ऐसा जोगी जुगत विचार है, पंच मार साच पुरधार है, रहाओ जिसके अंतर साच वसावे, जोग जुगत की कीमत पावे, राम सत एको गृह उद्यान है, करनी कीरत कर्म समान है, एक शब्द एक पिछला मांगे, ज्ञान ध्यान जुगत फट जागे, पैर अच रहे ना बाहर जाए, कीमत कौन रहे लिवलाए, आपे मेले परम चुकाए, गुर प्रसाद परम पद पाए, गुर की सेवा शब्द विचार, हों में मारे करनी सार, जब तब संजम पाठ पुराण, कहो नानक अपरम परमान, गौड़ी महला पहला, सीमा गही व्रत शील संतोखं, रोग ना व्यापे ना जम दोखं, मुक्त पाए प्रभ रूप ना देखं, जोगी को कैसा डर होए, रूख बिरख गृह बार सोए, रहाओ निरपौ जोगी निरंजन त्यावे, अंदिन जागे सच विवलावे, सो जोगी मेरे मन पावे, सो जोगी मेरे मन पावे, काल जाल ब्रह्म अग्नि जारे, जरा मरण गत गर्व निवारे, आप तरह पितरी निस्तारे, सतगुर सेवे सो जोगी होए, पैरच रहे सो निरपो होए, जैसा सेवे तैसो होए, नर नहीं केवल निरपो नाओ, अनाथे नाथ करे बल चाओ, पुनरप जन्म नाही गुण गाओ, अंतर बार एको जाने, गुर के शब्दे आप पछाने, साचे शब्द दर निशाने, शब्द मरे तिस निज कर वासा, आवे ना जावे चूके आसा, गुर के शब्द कमल पर गासा, जो दिसे तो आस निराशा, काम क्रोध बिक भूख पे आसा, नानक बिरले मिले उदासा, गौड़ी महला पहला, ऐसो दास मिले सुख होई, दुख विसरे पावे सत सोई, दर्शन देख पई मत पूरी, अखट मज्जन चरने तूरी, रहाओ नेत्र संतोखे एक लिव तारा, जेवा सूची हर रसारा, सत करनी अब अंतर सेवा, मंत्र तास्या अलख अकेवा, जय जय देखो तै तै साचा, दिन बूझे जगरत जग काचा, गुर समझावे सोजी होई, गुरमुख बिरला बूझे कोई, कर कृपा राखो रखवाले, बिन बूझे पशु कहे बेताले, गुर कहया अवर नहीं दूजा, किस कहो देख करो अन पूजा, संत हेत प्रभ त्रिपवन तारे, आत्म चीने सो तप विचारे, साच हृदय सच प्रेम निवास, प्रणवत नानक हमता के दास, गौड़ी मेला पहला, ब्रह्म गर्भ किया नहीं जानिया, वेद की विपत पड़ी पछतानिया, जह प्रभ सिमरे तही मन मानिया, ऐसा गर्भ बुरा संसार है, जिस गुर मिले तिस गर्भ निवार है, रहाओ बल राजा माया अंकारी, जगन करे बहु पार अपारी, बिन गुर पूछे जाए प्यारी, हरी चंद दान करे जस लेवे, बिन गुर अंक ना पाए अपेवे, आप पुलाए आपे मत देवे, दुर्मत हरणाख दुराचारी, प्रभ नारायण गर्भ परहारी, प्रहलाद उधारे कृपा तारी, पूलो रावण मुग्ध अचेत, लूटी लंका शीश समेत, गर्भ गया बिन सतगुर हेत, सहस बाहो मद कीट में खासा, हरणाखस ले नखो विदासा, दैत संगारे बिन भगत अभ्यासा, जरा संद काल जमुन संगारे,
रसत बीज काल नेम बिदारे दैत संगार संत निस्तारे आपे सतगुर शब्द विचारे दूजे पाए दैत संगारे।

जन को दुख पचे दुख होई। जन में जय गुर शब्द ना जानिया, क्यों सुख पावे परम पुलानिया। इस तिल फूले बौर पछतानिया, कंस के चांडूर ना कोई। राम ना छीनिया अपनी पथ कोई, बिन जगदीश ना राखे कोई। बिन गुर गर्व ना मेटिया जाए, गुरमत धर्म तीरज हर नाए। नानक नाम मिले गुण गाए, गौड़ी महला पहला। चोआ चंदन अंक चढ़ावो, पाठ पटंबर पैर हटावो। बिन हर नाम कहाँ सुख पावो, क्या पहरों क्या ओढ़ दिखावो। बिन जगदीश कहाँ सुख पावो, रहाओ कानी कुंडल गल मोतियन की माला। लाल निहाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहाँ सुख पाला। नैन सलोनी सुंदर नारी, खोर सिगार करे अति प्यारी। बिन जगदीश पजे नित खुआरी, दर कर महला सेज खाली। एनक फूल बिछावे माली, बिन हर नाम सो देह दुखाली। हैवर गैवर नेजे वाजे, लक्कर नेब खवासी पाजे। बिन जगदीश चूठे दिवाजे, सिद्ध कहावो रिद्ध सिद्ध बुलावो। ताज पुल है सिर खतर बनावो, बिन जगदीश कहाँ सच पावो। खान मलूक कहावो राजा, अबे तबे कूड़े है पाजा। बिन गुर शब्द ना सवरस काजा, हो में ममता गुर शब्द विसारी। गुरमत जानिया हृदय मुरारी, प्रणवत नानक शरण तुम्हारी। गौड़ी महला पहला, सेवा एक ना जानत अवरे। पर पंच ब्याज त्यागे कवरे, पाय मिले सच साचे सचरे। ऐसा राम भगत जन होई, हर गुण गाय मिले मल सोई। रहाओ ऊंदो कवल सगल संसार है, दुर्मत अग्न जगत पर जाए।

कामन हितकारी, क्रोध विनाश है सगल विकारी, पत मत खोवे नाम विसारी। पर कर कीत मन मुख डोलाए, गल जेवरी तंदे लपटाए, गुरमुख छूटस हर गुण गाए, जो तन विधवा पर को देई, काम दाम चित पर वसे, बिन फिर त्रिपत ना कभू होई, पर पर पोथी सिमरत पाठा, देख पुराण पढ़े सुन साटा, बिन रस राते मन बौ नाटा, जो चात्रिक जल प्रेम प्यासा, जो मीना जल माहे उलासा, नानक हर रस की तृप्ताता, गौरी मैला पहला, हट कर मरे ना देखे पावे, वेद करे बहु पसन लगावे, नाम विसार बहुर पछतावे, तू मन हर जियो तू मन सुख, नाम विसार सह जम दुख, रहाओ चोआ चंदन अगर कपूर, माया मगन परम पद दूर, नाम विसारे सब कूड़ो कूर, नेजे वाजे तक सलाम, अद की तृष्णा व्यापे काम, बिन हर जाचे भगत ना नाम, वाद अहंकार नाही प्रभ मेला, मन दे पावे नाम सुहेला, दूजे पाए अज्ञान दुहेला, बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोहित सागर नहीं वाट, बिन गुर सेवे काटे काट, किसको वाह वाह जे वाट दिखावे, किसको वाह वाह जे शब्द सुनावे, किसको वाह वाह जे मेल मिलावे, वाह वाह किसको जिसका इहो जियो, गुर सब जी मत अमृत पियो, नाम वडाई तुद पाने दियो, नाम बिना क्यों जीवा माए, अनदिन जपत रहो तेरी सरनाए, नानक नाम रते पत पाए, कौड़ी मैला पहला, हों मैं करत देखी नहीं जानिया, गुरमुख भगत बिरले मन मानिया, हों करत नहीं सच पाई है, हों मैं जाए परम पद पाई है, रहाओ हों मैं कर राजे बहुत आवे, हों मैं खपे जन्म मर आवे, हों मैं निवरे गुर शब्द विचार है, चंचल मत त्याग पंच संगार है, अंतर साच सहज कर आवे, राजन जान परम गत पावे, सच करनी गुर परम चुकावे, निरपो के करतारी लावे, हों कर मरना क्या पावे, पूरा गुर पेटे सोच अगर चुकावे, जेसी है तेसी क्यों नाही, गुरमुख ज्ञान पेट गुण गाही, हों में बंधन बंद पवावे, नानक राम भगत सुख पावे, गौरी मैला पहला, प्रश्न ब्रह्मा काले कर आया, ब्रह्म कमल पयाल न पाया, आज्ञा नहीं लीनी परम पुलाया, जो उपजे सो काल संगारिया, हम हर राखे गुर शब्द विचारिया, रहाओ माया मोहे देवी सब देवा, काल न छोड़े बिन गुर की सेवा, ओ अविनाशी अलख पेवा, सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना, नामो पूले जम का दुख सहना, मैं पर नाम ज्यो राखो रहना, चौधरी राजे नहीं किसे मुकाम, सा मरे संचे माया दाम, मैं तन जी जय हर अमृत नाम, रैयत मेहर मुकद

इस पद जो असाए ले सो गुरु हमारा, नानक कीने आपको सो अपर अपारा, सब आपे आप वर्तदा आपे परमाया, गुर कृपा ते बूझिए सब जम समाया।

मन का सूतक दूजा भाओ, परमे पूले आवो जाओ, मन मुख सूतक कवे न जाए, जिचर शब्द न पीजे हर कहनाए राव, सबो सूतक जेता मोह आकार, मर मर जमे वारो वार, सूतक अग्न पौने पानी माहे, सूतक भोजन जेता किसाहे, सूतक कर्म न पूजा होए, नाम रते मन निर्मल होए, सतगुर सेवे सूतक जाए, मरे न जन्मे काल न खाए, सातक सिमरत शोध देखो कोए, बिन नावे को मुक्त न होए, जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, कल में गुरमुख उतरत पार, साचा मरे न आवे जाए, नानक गुरमुख रह समाए, गौड़ी मैला कीजा, गुरमुख सेवा प्राण अधारा, हर जियो राखो हृदय उर्धारा, गुरमुख सोबा साथ द्वारा, पंडित हर पर तजो विकारा, गुरमुख पौजल उतरो पारा, रहाओ गुरमुख विच्चो हो मैं जाए, गुरमुख मैल न लागे आए, गुरमुख नाम वसे मन आए, गुरमुख कर्म कर्म सच होई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रते सुख होई, अपना मन प्रबोधो बूझो सोई, लोक समझावो सुने न कोई, गुरमुख समझो सदा सुख होई, मनमुख डंफ बहुत चतुराई, जो किछ कमावे सो थाए न पाई, आवे जावे खौर न काई, मनमुख कर्म करे बहुत अभिमाना, बग ज्यों लाए बहन सियाना, जम पकड़िया तभी पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई, गुर प्रसादी मिले हर सोई, गुरदाता जुग चारे होई, गुरमुख जात पत नामे।

राम पढ़ो मन करो विचार, गुर प्रसादी मैल उतार रहाओ। वाद विरोध ना पाया जाए, मन तन फीका दूजे पाए, गुर के शब्द सच लिवलाए। हों मैं मैला यो संसारा, नित तीर्थ नावे ना जाए अहंकारा, बिन गुर पेटे जम करे खुआरा। सो जन साचा जे हों मैं मारे, गुर के शब्द पंच संगारे, आप तरह सगले कुल तारे, माया मोह नट बाजी पाई, मनमुख अंध रहे लपटाई, गुरमुख अलिपत रहे लिवलाई। बहुते

एक करे पेख तारी, अंतर तिसना फिरे अंकारी, आप ना चीने बाजी हारी, कापड़ पहर करे चतुराई, माया मोह अत परम पुलाई, बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई, नाम रते सदा बैरागी, ग्रही अंतर साच लिव लागी, नानक सतगुर सेवे सेवड़ पागी, गौड़ी महला तीजा। ब्रह्मा मूल वेद अव्यासा, तिस्ते उपजे देव मोह प्यासा, त्रैगुण परमे नाही निज करवासा, हम हर राखे सतगुरु मिलाया, अंदिन भगत हर नाम दृढ़ाया, रहाओ त्रैगुण बाणी ब्रह्म जंजाला, पड़ वाद वखाणे सिर मारे जमकाला, तत नाचीने बन्ने पंड पराला, मनमुख अज्ञान को मार्ग पाए, हर नाम विसारिया बहु कर्म दृढ़ाए, पवजल डूबे दूजे पाए। माया का मोहताज पंडित कहावे, बिखिया राता बहुत दुख पावे, जम का गल जेवड़ा नित काल संतावे, गुरुमुख जम काल

मेरा प्रभ पाया गुरु के शब्द सीधे, सतगुर मेले प्रभ आप मिलाए, मेरे प्रभ साचे कै मन पाए, हर गुण गावे सह सुवाए, बिन गुर साचे परम पुनाए, मन मुख अंधे सदा बिख खाए, जम डंड सह सदा दुख पाए, जमुआ ना जो है हर की शरणाई, हों मैं मार सच लिवलाई, सदा रहे हर नाम लिवलाई, सतगुर सेवे से जन निर्मल पवित्ता, मन स्यों मन मिलाए सब जग जीता, इन विद कुशल तेरे मेरे नीता, सतगुरु सेवे सो फल पाए, हृदय नाम विच्चों आप गवाए, अनहद बाणी

बंधन ना टूटे मुक्त ना पाए, मुक्त दाता सतगुरु जुगमाए, गुरुमुख प्राणी परम गवाए, सहज तुन उपजे हर लिव लाए, रहाओ त्रै गुण काले की सिरकारा, नाम न चेते उपावन हारा, मर जमे फिर वारो वारा, अंधे गुरु ते परम न जाई, मूल छोड़ लागे दूजे पाई, बिका माता बिख माए समाई, माया तर मूल जंत्र परमाए, हर जियो विसरिया दूजे पाए, जिस नजर करे सो परम गत पाए, अंतर साच बार साच वरताए, साच न छपे जे को रखे छपाए, ज्ञानी बूझे सह सुबाए, गुरुमुख साथ रहा लिव लाए, हों मैं माया शब्द जलाए, मेरा प्रभ साचा मेल मिलाए, सतगुरु दाता शब्द सुनाए, तावत राखे ठाक रहाए, पूरे गुरते सो जी पाए, आपे करता सृष्ट सिरज जिन गोई, तिस बिन दूजा अवर न कोई, नानक गुरमुख बूजे कोई, गौड़ी महला तीजा, नाम अमोलक गुरमुख पावे, नामो सेवे नाम सह समावे, अमृत नाम रसना नित गावे, जिसनो कृपा करे सो हर रस पावे, अंधिन हृदय जपो जगदीसा, गुरमुख पावो परम पद सुखा, रहाओ हृदय सुख पया प्रगास, गुरमुख गावे सच गुण दास, दासन दास नित होवे दास, गृह कुटुंब मैं सदा उदास, जीवन मुक्त गुरमुख को होई, परम पदार्थ पावे सोई, त्रै गुण मेटे निर्मल होई, सहजे साच मिले प्रभ सोई, मोह कुटुंब स्यों प्रीत न होए, जा हृदय वसिया सच सोए, गुरमुख मन वेदिया अस्थिर होए, हुकम पचाने बूझे सच सोए, तू करता मैं अवर न कोए, तुझ सेवी तुझ ते पत होए, कृपा करें गावा प्रभ सोए, नाम रतन सब जग में लोए, गुरमुख बाणी मीठी लागी, अंतर बिकसे अंधिन लिव लागी, सहजे सच मिलिया प्रसादी, सतगुर पाया पूरे वड पागी, हो मैं ममता दुर्मत दुख नास, जब हृदय राम नाम गुणतास, गुरमुख बुद्ध प्रगति प्रभ जास, जब हृदय

आए। शब्द मन रंगिया लिव लाए, निज कर वस्या प्रभ की रजाए। सतगुरु सेवे जाए अभिमान, गोविंद पाई गुणी निधान। रहाओ मन बैरागी जा शब्द पौ खाए, मेरा प्रभ निर्मला सब तै रहा समाए। गुर कृपा ते मिले मिलाए, हर दासन को दास सुख पाए। मेरा हर प्रभ इन विद पाया जाए, हर कृपा ते राम गुण गाए। त्रिग पौ जीवन जित हर नाम न लगे प्यार, त्रिग से सुखाली कामन मोगवार। तिन सफल जन्म जिन नाम आधार, त्रिग त्रिग गृह कुटुंब जित हर प्रीत न होए। सोई हमारा मीत जो हर गुण गावे सोए, हर नाम बिना मैं अवर न कोए। सतगुर ते हम गत पत पाई, हर नाम ते आया दुख सगल मिटाई। सदा आनंद हर नाम ले विलाई, गुर मिलिए हमको शरीर सुध भई। हऊ मैं तृष्णा सब अगन बुझई, बिन से क्रोध खिमा गह लई। हर आपे कृपा करे नाम देवे, गुरुमुख रतन को विरला लेवे। नानक गुण गावे।

सतगुर ते जो मोह फेरे ते वे मुख बुरे दिसन अंजन बदे मारियन फिर वेला ना लहन हर हर राखो कृपा तार सत संगत में लाए प्रभ हर हृदय हर गुणसार रहाओ से भगत हर पाव दे जो गुरमुख पाए चलन आप छोड़ सेवा करन जीवत मोए रहन जिसदा पिंड प्राण है तिसकी सिरकार ओहो क्यों मनो विसारी है हर रखिए हृदय तार नाम मिले पत पाए नाम मनिए सुख होए सतगुर ते नाम पाए कर्म मिले प्रभ सोए सतगुर ते जो मोह फेरे ओए प्रम दे ना टिकन तर्क असमान ना चलई विच विस्ता पहे पचन तिहो जग परम पुलाया मोठ गौली पाए जिना सतगुर पेटिया तिन नेड़ ना पिटे माए सतगुर सेवन सो सोहणे हों मैं मैल गवाए शब्द रते से निर्मले चलने सतगुर पाए हर प्रभ दाता एक तू आपे

हर माए गुर भाव पूरे पाया गल मिलिया प्याराए मन करहला सतगुरु पुरख त्याए रहाओ मन करहला विचारिया हर राम नाम त्याए जिथे लेखा मंगिए हर आपे ले छड़ाए मन करहला अप निर्मला मन लागी हो मैं आए प्रतख पिर कर नाल प्यारा विछड़ चोटा खाए मन करहला मेरे प्रीतमा हर हृदय पाल पालाए उपाय किते ना लबई गुर हृदय हर देखाए मन करहला मेरे प्रीतमा दिन रैन हर लिवलाए कर जाए पावे रंग महली गुर मेले हर मेलाए मन करहला तू मीत मेरा पखंड लोभ तजाए पखंड लोभी मारिए जम डंड दे सजाए मन करहला मेरे प्राण तू मैल पखंड परम गवाए हर अमृत सर गुर पूरिया मिल संगति मल लह जाए मन करहला मेरे प्यारिया एक गुर की सिख सुनाए ए मोह माया पसरिया अंत साथ ना कोई जाए मन करहला मेरे साजना हर खर्च लिया पत पाए हर दरगे पहनाया हर आप लिया गल लाए मन करहला गुर मन्या गुरमुखकार कमाए गुर आगे कर जोदड़ी जन नानक हर मेलाए गौड़ी महला चौथा

मन करहला गुरु गोविंद समाल रहाओ, मन करहला विचारिया मन मुख फाथिया महाजाल, गुरुमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम समाल, मन करहला मेरे प्यारिया सत्संगत सतगुर पाल, सत्संगत लग हर त्याये हर हर चले तेरे नाल, मन करहला वड पादिया हर एक नजर निहाल, आप छाए छुट्टिये सतगुर चरण समाल, मन करहला मेरे प्यारिया विच देही जोत समाल, गुरु नौ निज नाम विखा लिया हर दास करी दयाल, मन करहला तू चंचला चतराई छड विकराल, हर हर नाम समाल तू हर मुक्त करे अंतकाल, मन करहला बड पागिया तू ज्ञान रतन समाल, गुर ज्ञान खड़ग हत तारिया जम मारे अड़ा जमकाल, अंतर निधान मन करहले प्रम पवै बार पाल, गुर पुरख पूरा पेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल, रंग रतड़े मन करहले हर रंग सदा समाल, हर रंग कदे ना उतरे गुर सेवा शब्द समाल, हम पंखी मन करहले हर तरवर पुरख अकाल, वड पागी गुर

जब यो मन में करत गुमाना तब यो बावर फिरत बिगाना जब यो हुआ सगल की रीना ताते रमैया कट कट चीना सहज सुहेला फल मस्कीनी सतगुर अपने मोहे दान दीनी रहाओ जब किसको यो जान समंदा तब सगले इस मेले फंदा मेर तेर जब इन्हें चुकाए कांते इस संग नहीं बहराए जब इन अपनी अपनी तारी तब इसको है मुश्किल पारी जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किस ताता जब इन अपनो बांध्यो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा जब इसते सब बिन से परमा पेद नाही है पार ब्रह्मा जब इन किछ कर माने पेदा तब ते दुख दंड अरखेदा जब इन एको एक ही बूझिया तब ते इसनो सब किछ सूझिया।

हर कृपा जो सतगुर मिलियो, मन मंदिर में दीपक जलियो, जीत हार की सोजी करी, तो इस कर की कीमत परी। करन करावन सब किछ एक है, आपसे बुद्ध विचार विवेक है, दूर ना

तावत मनुआ आवे ठाए, जास जपत फिर दुख ना लागे, जास जपत ए हो मैं पागे, जास जपत वस आवे पंचा, जास जपत हृदय अमृत संचा, जास जपत ए तृष्णा बुझे, जास जपत हर दरगे सिजे, जास जपत कोट मिटे अपराध, जास जपत हर होवे साध, जास जपत मन शीतल होवे, जास जपत मल सगली खोवे, जास जपत रतन हर मिले, बहुर न छोड़े हर संग हिले, जास जपत कई बैकुंठ वास, जास जपत सुख सह निवास, जास जपत ए अग्न न पोहत, जास जपत एहो काल न जोहत, जास जपत तेरा निर्मल माथा, जास जपत सगला दुख लाता, जास जपत मुश्किल कछु न बने, जास जपत सुन अनहा

जिसके हृदय मंत्र दे हरि अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा। कहो नानक जिस सतगुरु पूरा गौड़ी महला पंजवा। गुर का शब्द निरिद अंतर तारे पंच जना स्यों संग निवारे है। दस इंद्री कर राखे वास ताके आत्मे होए प्रगास। ऐसी दृढ़ता ताके होए जा को दया मया प्रभ सोए। रहाओ साजन दुष्ट जाके एक समान है। जेता बोलन तेता ज्ञान है। जेता सुनना तेता नाम। जेता पेखन तेता ध्यान। सहजे जागन सहजे सोए सहजे होता जाए।

जा के सहज मन पया आनंद ताको पेटिया परमानंद सहजे अमृत पियो नाम सहजे कीनो जी को दान सहज कथा में आत्म रसिया ताके संग अविनाशी वसिया सहजे आसन अस्थिर पाया सहजे अनहत शब्द बजाया सहजे ऋण चुनकार सुहाया ताके कर पार ब्रह्म समाया सहजे जाको पर्यो कर्मा सहजे गुर पेट्यो सच कर्मा जाके सहज पया सो जाने नानक दास ताके कुर्बाने गौड़ी मैला पंजवा प्रथमे गर्भ वास्ते तरिया पुत्र कलत्र कुटंब संग जुरिया पोजन अनेक प्रकार बहु कपरे सर पर गमन करेंगे बपुरे कवन स्थान जो कबहु न तरे कवन शब्द जित दुर्मत हरे रहाओ इंद्रपुरी में सर पर मरना ब्रह्मपुरी नेचल नहीं रहना शिवपुरी का होएगा काला त्रैगुण माया बिनस बिताला गिर तर तरण गगन अर्तारे रवसस पवन पावक नीरारे दिनस रैन बर्त अर्पेदा सासत सिमरत बिन सेंगे बेदा तीरथ देव देहोरा पोथी माला तिलक सोच पाक होती तोती दंडौत प्रसादन पोगा गमन करे गो सगलो लोगा जात वर्ण तुर्क अर हिंदू पस पंखी अनेक जोन जिंदू सगल पसार दिसे पासारा बिनस जाए गो सगल आकारा सहज सिफत भगत तत ज्ञाना सदा आनंद नेचल सचताना तहां संगत साध गुण रसे अनपौ नगर तहां सदवसे तह पौ परमा सोग ना चिंता आवन जावन मृत ना होता तह सदा आनंद

कहो नानक जिस कृपा करे नेचर थान साध संगत रे गौड़ी महला पंजवा जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिसे वड्याई जो इस मारे तिसका दुख जाई ऐसा कोई जो दुबदा मार दवावे इसे मार राज जोग कमावे रहाओ जो इस मारे तिसको पौना है जो इस मारे सो नाम समाहे जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझे जो इस मारे सो दरगे सिजे जो इस मारे सो तनवंता जो इस मारे सो पतवंता जो इस मारे

जो इस मारे सो नहीं चलता नहीं, जो इस मारे सो वड पागा, जो इस मारे सो अंधिन जागा, जो इस मारे सो जीवन मुक्ता।

इस मारी बिन थाय न परे, कोट कर्म जाप तप करे, इस मारी बिन जन्म न मिटे, इस मारी बिन जमते नहीं छूटे, इस मारी बिन ज्ञान न होई, इस मारी बिन झूठ न तोई, इस मारी बिन सब किछ मैला, इस मारी बिन सब किछ जौला, जाको पै किरपाल कृपा निज, इस पै खलासी होई।

एक हैं आप अनेक हैं पांच, जाकी दृष्ट होए सदा निहाल, मन मेरे कर्ता की काल, ना को चतुर ना ही को मूढ़ा, ना को हीन ना ही को सूरा, जित को लाया

बोले कूर साकत मुखकारा बिन सिमरन गर्दव की न्याई साकत थान परिष्ट फिराई बिन सिमरन कूकर हर काया साकत लोभी बंध न पाया बिन सिमरन है आत्म काती साकत नीचे तिस कुल नहीं जाती जिस पया कृपाल।

कीनो राज जोग, गुर के संग तरिया सब लोग, गुर के बचन मेरे कार्य सिद्ध, गुर के बचन पाया नाव निद, जिन जिन कीनी मेरे गुर की आशा, तिसकी कटिए जम की फासा, गुर के बचन जागया मेरा कर्म, नानक गुर पेटिया पार ब्रह्म, गौड़ी मैला पंजवा, किस गुरु को सिमरो सास सास, गुरु मेरे प्राण सतगुरु मेरे

अपना दासरा आपे मुल लियो, आपे लायो अपना प्यार। सदा सदा तिस गुरु को करी नमस्कार। कल कलेश पै परम दुख लाथा, कहो नानक मेरा गुर समराथा। गौड़ी मैला पंजवा, मिल मेरे गोविंद अपना नाम देहो। नाम बिना त्रिग त्रिग असनेहो रहाओ, नाम बिना जो पहरे खाए, जो कूकर जूठन में पाए। नाम बिना जेता व्यवहार, जो मृतक मिथ्या सिगार। नाम विसार करे रस भोग, सुख सुपने नहीं तन में रोग। नाम त्याग करे अनकाज, बिनस जाए झूठे सब पाज। नाम संग मन प्रीत न लावे, कोट कर्म कर तो नरक जावे। हर का नाम जिन मन ना आराधा, चोर की न्याई जम पुरबादा। लाख अडंबर बहुत विस्तारा, नाम बिना झूठे पासारा। हर का नाम सोई जन ले, कर कृपा नानक जिस दे। गौड़ी मैला पंजवा, आद मध जो अंत निवा है, सो साजन मेरा मन चाहे। हर की प्रीत सदा संग चाले, दयाल पुरख पूरन प्रतपाले। रहाओ विनसत नाही छोड़ न जाए, जह पेखा तह रया समाए। सुंदर सुगड़ चतुर जी दाता, पाई पूत पिता प्रभ माता। जीवन प्राण आधार मेरी रास, प्रीत लाई कर हृदय निवास। माया सिरक काटी गोपाल, कर अपना लीनो नदर निहाल। सिमर सिमर काटे सब रोग, चरण ध्यान सर्व सुख भोग। पूरन पुरख नवतन नित बाला, हर अंतर बार संग रखवाला।

खोजत फिरे असंख अंत ना पारिया, सेई होए भगत जिना कृपारिया, हों वारिया हर वारिया। रहाओ सुन सुन पंथ डराओ बहुत पहारिया, मैं तक्की ओर संता लेहो उबारिया। मोहन लाल अनूप सर्व साधारिया, गुर निव निव लागो पाए देहो दिखारिया। मैं किए मित्र अनेक इक्कस बलिहारिया, सब गुण किसी नाहे हर पूर पंडारिया। चौं दिस जपिए नाउ सूख सवारिया, मैं आही और तुहार नानक बलिहारिया। गुर काढ़ियो पूजा पसार मोह कुपारिया, मैं जीत्यो जन्म अपार बहुर नहारिया। मैं पायो सर्व निदान अकत कतारिया, हर दरगे शोभावंत बाल उडारिया। जन नानक लगा रतन अम

हर रंग रंगो, जप जेवा हर एक मंगो, राव तज हो मैं गुरु ज्ञान पजो, मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दी सैसो संग न गयो, साकत मूड लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रव रहे हो, कोट मदे

सिगार मिठरस कोग भोजन सब झूठ किते ना लेखे। मैं मत जोबन गर्भ गाली दुद्धा थनी ना आवे। नानक सातन मिले मिलाई बिन फिर नींद ना आवे। मुंद निमानड़िया जियो बिन तनी प्यारे। क्यों सुख पावेगी बिन उरधारे। ना बिन करवास ना ही पुछो सखी सहेलिया। बिन नाम प्रीत प्यार ना ही वसे साथ सुहेलिया। सच मन सज्जन संतोख मेला गुरमति सो जानिया। नानक नाम ना छोड़े सातन नाम सहज समानिया। मिल सकी सहेलड़ियो हम फिर रावे हा। गुर पुछ लिखोगी जियो शब्द स्नेहा। शब्द साचा गुर दिखाया मन मुखी पछतानिया। निकस जातो रह अस्थिर जाम सच पछाणिया। साच की मत सदा नौतन

हम कर साजने आया। मिलवर नारी मंगल गाया, गुण गाए मंगल प्रेम रहसी, मुंद मन उमा हो साजन रहन से दुष्ट व्यापे, साच जप सच लाहो कर जोड़ सातन करे बिनती, रैन दिन रस पिनिया नानक पिर तन करे।

ना प्रभु जियो एक लड़ी बनमाहे, क्यों ती रहगी ना बिना प्रभु वे परवाहे। तन ना बाजो रह न साके बिखम रहन कनेरिया, नह नींद आवे प्रेम पावे सुन बेनंती मेरिया। बाजो प्यारे कोई न सारे एक लड़ी कुर लाए, नानक सातन मिले।

हर प्रीत प्यारे शब्द विचारे तिसी का सो होवे पुन दान अनेक नावन क्यों अंतर मल तोवे नाम बिना गत कोई न पावे हाथ निग्रह बेबाने नानक सच कर।

तेरा मैल सच्चा जियो, नाम सच्चा वापारो, नाम का वापार मीठा, भगत लाहा अंदिनो, तिस बाज वखर कोई न सूजे, नाम लेवो खिन खिनो, परख लेखा नदर साची, कर्म पूरे पाया, नानक नाम।

सारे खिन पल रह न सके जियो बिन हर प्यारे, बिन हर प्यारे रह न सके गुर बिन महल न पाई है। जो गुर कहे सोई पर की जय तिसना अग्न बुझाई है। हर साचा सोई तिस बिन अवर न कोई बिन सेवे सुख न पाए। नानक सा तन मिले मिलाई जिसनो आप मिलाए। तन रैन सुहेलड़िए जियो हर स्यो चित लाए। सतगुरु सेवे पाओ करे जियो विच्चों आप गवाए। विच्चों आप गवाए हर गुण गाए अन दिन लागा पाओ। सुन सखी सहेली जी की मेली गुर के शब्द समाओ। हर गुण सारी ताकंत प्यारी नामे तरी प्यारो। नानक कामन ना प्यारी राम नाम गलहारो। तन एक लड़ी जियो बिन ना प्यारे दूजे पाए मुठी जियो बिन गुर शब्द करारे। बिन शब्द प्यारे कौन

नानक कामन सदा रंग राती हर जियो आप मिलाए ता मिलिए हर मेले जियो हर बिन कौन मिलाए बिन गुर प्रीतम अपने जियो कौन परम चुकाए गुर परम चुकाए यूं मिलिए माए पासा तन सुख पाए गुर सेवा बिन कोर अंधार बिन गुर मग न पाए कामन रंग राती सहजे माती गुर कै शब्द विचारे नानक कामन हर वर पाया।

सदा सुहागन जा सतगुर सेवे, गुर कै अंक समाये, गुर शब्द मेला ता फिर रावी, लाहा नाम संसारे, नानक कामन ना प्यारी, जा हर के गुण सारे, सा तन रंग माने जियो अपने नाल प्यारे, एनस रंग राती जियो गुर शब्द विचारे, गुर शब्द विचारे हों मैं मारे, इन बिद मिलो प्यारे, सा तन सुहागन सदा रंग राती, साचे नाम प्यारे, अपने गुर मिल रही है अमृत गई है, दुबदा मार निवारे, नानक कामन हर भर।

अन्न न पानी, पानी अन्न न पावे, मरिए हावे, बिन फिर क्यों सुख पाये। गुर आगे करो बिनंती, जे गुर पावे, ज्यो मिले तिवे मिलाये, आपे मेल ले सुखदाता, आप मिलिया कर आए, नानक कामन सदा सुहागन, ना फिर मरे न जाए। गौड़ी महला तीजा, कामन हर रस बेदी जियो, हर के सह सुवाए, मन मोहन मोह लिया जियो, दुबदा सह समाए, दुबदा सह समाए, कामन वर पाए, गुरुमती रंग लाए, एहो शरीर पूर कुसत परिया, गल काए पाप कमाए, गुरुमुख भगत जित सहज तुन उपजे, बिन भगती मैल न जाए, नानक कामन पिरे।

अनदिन दुख निवारे, अंतर महल फिर रावे कामन, गुरमति विचारे, अमृत नाम पिया दिन राती, दुबदा मार निवारे, नानक सच मिली सुहागन, गुर कै हेत अपारे, आवो दया करे जियो प्रीतम अत प्यारे, कामन बिनो करे जियो सच शब्द सिगारे, सच शब्द सिगारे हों मैं मारे, गुरमुख कार सवारे, जुग जुग एको सच्चा सोई, बूझे गुर विचारे, मनमुख काम व्यापी मोह संतापी, किस आगे जाए पुकारे, नानक मनमुख थाउ न पाए, बिन गुर अत प्यारे, मुंद एयानी पोली निगुणिया जियो, फिर अगम अपारा, आपे मेल मिलिए जियो, आपे बख्शनहारा, अवगुण बख्शनहारा, कामन कंत प्यारा, कट कट रहा समाई, प्रेम प्रीत पाए भगति पाए, सतगुर बूझ बुझाए, सदा आनंद रहे दिन राती, अंग दिन रहे लिवलाई, नानक सहजे हर वर पाया, सातन नौनिद पाई, गौड़ी महला तीजा, माया सर सबल वरते जियो, क्यों कर दुत्तर तरिया जाए, राम नाम कर बोहे था जियो, शब्द खेवट विच पाए, शब्द खेवट विच पाए, हर आप लंगाए, इन विद दुत्तर तरिए, गुरुमुख भगत प्राप्त होवे, जीव त्या यों मरिए, किन में दाम नाम किल विख काटे, पै पवित्र शरीरा, नानक राम नाम निस्तारा, कंचन पै मनूरा, स्त्री पुरुष काम व्यापे जियो, राम नाम की विद नहीं जानी, मात पिता सुत पाई खरे प्यारे जियो, डूब मोए बिन पानी, डूब मोए बिन पानी गत नहीं जानी, हो मैं ताप संसारे, जो आया सो सबको जासी, उबरे गुर विचारे, गुरमुख होवे राम नाम वखाणे, आप तरह कुल तारे, नानक नाम वसै कट अंतर, गुरमत मिले प्यारे, राम नाम बिन को थिर नाही जियो, बाजी है संसारा, दृढ़ भगत सच्ची जियो, राम नाम वा पारा, राम नाम वा पारा अगमा पारा, गुरमती तन पाईए, सेवा सुरत भगत के साची, विच्चों आप गवाईए, हम मत हीन मूरख मुगद अंधे, सतगुरु मार्ग पाए, नानक गुरमुख शब्द सुहावे, अंदिन हर गुण गाए, आप कराए करे आप जियो, आपे शब्द सवारे, आपे सतगुरु आप शब्द जियो, जुग जुग भगत प्यारे, जुग जुग भगत प्यारे, हर आप सवारे, आपे भक्ति लाए, आपे दाना आपे बीना, आपे सेव कराए, आपे गुण दाता अवगुण काटे, हृदय नाम वसाए, नानक सद बलिहारे।

प्रसाद गवाए, सदा हर रस पाए, जहाँ हर पाए, रसना सबक सुहाए, नाम प्याए सदा सुख पाए, नाम रहे लीलाए, नामे उपजे नामे दिन से नामे सच समाए, नानक नाम गुरमति पाए आपे ले लवाए, ए विदानी चाकरी पिया जियो तन छोड़ परदेश सिधाए, दूजे किने सुख न पायो पिया जियो बिख्या लोभ लुवाए, बिख्या लोभ लुभाए परम पुलाए, ओ क्यों कर सुख पाए, चाकरी विदानी खरी दुखाली आप वेच कर्म गवाए, माया बंधन टिके नाही छिन छिन दुख संताए, नानक माया का दुख तदे चूके जा गुर सबदी चितलाए, मन मुख मुकुट गवार पिरा जियो शब्द मन ना वसाए, माया का परम अंग पिरा जियो हर मार्ग क्यों पाए, क्यों मार्ग पाए बिन सतगुरु पाए, मन मुख आप गणाए हर के चाकर सदा सुहेले, गुर चरणी चित लाए जिसनो हर जियो कृपा करे, सदा हर के गुण गाए, नानक नाम।

मन आस दर्श निमानिया सास सास ना करी विसरे पल मूरत दिन राते नानक सारंग ज्यों प्यासे क्यों मिलिए प्रभु दाते। एक दिनों करो जियो सुन कंत प्यारे मेरा मन तन मोह लिया जियो देख चलत तुम्हारे चलता तुम्हारे देख मोही उदास तन क्यों तीरे गुणवंत ना दयाल बाला सर्व गुण पर पूरे फिर दोष ना ही सुखें दाते हो विछड़ी बुरे आरे बिनवंत नानक दया तारो कर आवो ना प्यारे। हो मन अर्पी सब तन अर्पी अर्पी सब देसा हो सिर

छिन माहे सगला दुख मिटिया, मनो चिंदिया पाया, दिन रैन रलिया करे कामन, मिटे सगल अंदेशा, बिनवंत नानक कंत मिलिया, लोड़ते हम जैसा। मेरे मन अनंद भया जियो वजीवा दाई, कर लाल आया प्यारा सब तिखा बुझाई, मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर सखी मंगल गाया, सब मीत बंदप हरख उपजिया, दूध थाओ गवाया। अनहतवा जे वजह कर में तिर संग सेज विछाई, बिनवंत नानक सहज रहे, हर मिलिया कंत सुखदाई।

वह जह साध संत इकत्र हो गए हैं तहां तुझे त्यावे कर दया मया दयाल स्वामी हो दीन कृपारा बिन वंत नानक दर्श प्यासे मिल दर्शन सुख सारा। मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली मोहन तू माने एक जी अवर सब राली माने ता एक अलेख ठाकुर जिने सब कल तारिया तुद बचन गुर के वस किया आद पुरख बनवारिया। तू आप चलिया आप रहया आप सब कल तारिया बिन वंत नानक पैज राखो सब सेवक शरण तुम्हारिया। मोहन तुद सत्संगत त्यावे दर्श त्याना मोहन जम नेड़ ना आवे तुझ जपे निदाना जम काल तिन को लगे नाही जो इक मन त्यावे मन बचन कर्म जे तुद आराधे से सबे फल पावे मल मूत मूड जे मुग्ध होते से देख दर्शो ज्ञाना बिन वंत नानक राज नहीं चले पूरन पुरख भगवाना। मोहन तू सुफल फले

छंत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हर माधो त्याए मना मुरार मुकंदे कटिये काल दुख सातो दुख हरण दीन शरण श्री तार चरण कमल आराध्य जम पंख बिखरा अगन सागर निमक सिमरत साधिय कल मले दहता शुद्ध करता दिन सिरैन आरादो बिनवंत नानक करो कृपा गोपाल गोविंद माधो सिमर मना दामोदर दुख हर पै पंजन हर राया श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वचल बिरदाया भगत वचल पुरख पूरन मने चिंदिया पाये तम अंग कूप ते उधार नाम मन वसाये सुर सिद्ध दन गंधर्व मुन जन

बिनवंत नानक करो कृपा, समरथ सब कल धारे। गुण गाओ मना अचुत अविनाशी, सबके ऊंच दयाला। दिसंबर देवन को एक सर्व करे प्रतपाला, प्रतपाल महादयाल दाना। दया तारे सब किसे, काल कंटक लोभ मोह नासे। जी जा के प्रभु बसे, सो प्रसन्न देवा, सफल सेवा, पई पूरन काला। बिनवंत नानक।

शिव गोविंद गाये कल कलेश मिटे प्रम नासे मन चिंदिया फल पाये पार ब्रह्म पूरन परमेश्वर नानक नाम ते आये। सखी इच्छ करी नित सुख मनाई प्रभु मेरी आस पुजाए चरण प्यासी दर्श बैरागन पेखो थान सवाए खोज लहो हर संत जना संग समरथ पुरख मिलाए नानक तिन मिलिया सुरजन सुखदाता सेवद पागी माए। सखी नाल वसा अपने ना प्यारे मेरा मन तन हर संग हिलिया सुन सखिए मेरी नींद भली मैं आप नड़ा फिर मिलिया प्रम कोयो सांत सह स्वामी परगास तया कौल खिलिया वर पाया प्रभु।

परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान पंजन गुरुदेव बंधक सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है गुरुदेव मंत्र निरोधरा गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मजन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित्र करा गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूढ़ पापी जित लग तरा गुरुदेव सत गुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्करा श्लोक आपे किया कराया आपे करने जोग नानक एक और अवरया दूसर हुआ न होग पौड़ी ओं साध सतगुरु नमस्कार आद मद अंत निरंकार आपे सुन आपे सुख आसन आपे सुनत आप ही जासन आपन आप आपे उपायो आपे बाप आप ही मायो आपे सुखम आपे

आकार आकार आप निर्गुण सरगुण एक एक एक बखानो नानक एक अनेक पौड़ी। ओम गुरुमुख कियो अकारा एक सूत परोवन हारा तिन तिन त्रै गुण विस्तारं निर्गुण ते सरगुण दिष्टारं सगल पाप कर करे उपायो जन्म मरण मन मोह बढ़ायो दोहू पाप ते आप निरारा नानक अंत न पारा वारा। श्लोक से सहा भगवंत से सच संपै हर रास नानक सच सुच पाई है ते संतन के पास। पवड़ी सत्सा सत सत सत सौ सत पुरख ते पिन न को सौ शरण पर जे पायं सिमर सिमर गुण गाय सुनायं संशय परम नहीं कछ व्यापत प्रगट प्रताप पाहु को जापत सो साधु ए पहुंचन हारा नानक ता कह सद बलिहारा। श्लोक तन तन कहां पुकारते माया मोह सब कूर

गीत साध रज राचे तंदे कहां ब्यापे ताहू जो एक छाद अनकते न जाहू जा कह ही है दियो प्रभ नाम नानक साध पूरन भगवान। श्लोक अनक पे

आज्ञा दृढ़ जाके उसन सीत समसर सब ताके ज्ञानी तत् गुरुमुख बिचारी नानक जाको कृपा धारी। श्लोक आमन आए सृष्ट में बिन बूझे पस्तोरे नानक गुरुमुख सो बुझे जाके पाग मथोर। पौड़ी या युग में एक को आया जन्मत मोयो मोनी माया गर्भ कुंट में उर्ग तप करते सास सास सिमरत प्रब रहते उर्ज परे जो छोड़ छदाना देवन हार मने बिसराना तारो कृपा जिसे गुसाई इत उत नानक तिस बिसरो नाही। श्लोक आव

ए साजन कछ कहो उपाया, जाते तरो विषम ए माया, कर कृपा सत्संग मिलाए, नानक ताके निकट न माए। श्लोक। किरत कमावन शुभ अशुभ कीने तिन प्रभ आप, पस आपन हो।

जोड़ा ते रंग एक कै नानक गूड़ा रंग पौड़ी रारा रंगो या मन अपना हर हर नाम जपो जप

मदमाते या माया में जन्मे मरना, जो जो हुक्म तिवे त्यों करना, को ऊन ना को पूरा, को सुगर ना को मूरा, जित जित लावो।

गम्य जास रसन हर हर जस पन्य आए बसे साधु के संगे आम दिन नाम त्यावे रंगे आवत सो जल नामे राता जाको दया मया विदाता एक आवन फिर जोन ना आया नानक हर के दर्श समाया श्लोक यास जपत मन होए आनंद बिनसे दूजा पाओ दुख दर्द किसना बुझे नानक नाम समाओ। पौड़ी यैया जारो दुर्मत दो किसे त्याग सुख सहजे सो यैया जाए परो संत सरना जे आसर एया पव जल करना यैया जन्म न आवे सो एक नाम ले मने परो यैया जन्म न हारिये गुरपुरे की टेक नानक ते सुख पाया जाके ही रह एक। श्लोक अंतर मन तन बस रहे पीत ऊत के बीत गुरपुरे उपदेशया नानक जपिये नीत। पौड़ी अंदिन सिमरो ताश को जो

पूरक कुंभक रेचक कर माता ज्ञान ध्यान तीरथ स्नानी सोम पाक अपरस उद्यानी राम नाम संग मन नहीं एता जो कछ कीनो सो अनेता हो आते उत्तम गनो चंडाला नानक जे मन बसे गोपाला। श्लोक कुंट चार दह दुष्प्रमे कर्म किरत की रेख सुख दुख मुक्त जोन नानक लिखियो लेख। पौड़ी तक्का कारण करता सो लिखियो लेख न मेटत को।

उद्यान परमत पछतापे, आपन खेल आप ही कीनो, जो जो दीनो सो नानक लीनो। श्लोक खात खर्चत बिलछत रहे, टूट न जाए पंडार, हर हर जपत अनेक जन, नानक नाहीं सुमार। पौड़ी।

खर्च खजाना नाम तंग या भगतन की रास खिमा गरीबी आनंद सहज जपत रहे गुणतास खेलें बिकसे अनदस्यों जाको होत कृपाल सदीव गनीव सुहावने राम नाम गृहमाल खेद न दुख न दानते जाको नदर करी नानक जो प्रभ पानिया पूरी तिना परी। श्लोक गन मिन देखो मने माहे सर पर चलनो लोग आस अनित गुरुमुख मिटा नानक नाम अरोग। पौड़ी गद्दा गोविंद गुण रमो सास सास जपनीत कहां बिसासा देका बिलम न करहो मीत ने बारक ने जोगने ने बिरदी कछ बंद ओ बेरा ने बूझिए जो आए परे जम फंग।

गुर प्रसाद सिमरत रहे जाहू मस्तक पाग नानक आए सफल के जाको प्रिय सुहाग। श्लोक कोखे शास्त्र देव सब आम न कत्तो कोए आप जुगा दी हुन होवत नानक कै सोए पौड़ी कद्दा तालो मने ए बिन हर दूसर नाहे ने होवा ने होवना जत कत ओही समाहे पूले को मन जो आवे सरना नाम तत्कल मह पुने चरना काल काल अनिक पछतावे बिन हर भगत कहां थित पावे कोल महारस अमृत ते पिया नानक हर गुर जाको दिया। श्लोक गाने काले सब दिवस सास

काल के जो साकत प्रवकीन अनेक जोन जन्मे मरे आत्म राम न चीन ज्ञान ध्यान ताहु को आए कर कृपा जी आप दिवाए गणती गणी नहीं को छूटे काची गागर सर पर फूटे सो जीवत जे जीवत जपया प्रगट पे नानक ने छपया श्लोक चित चित वो चरणार बिंद ऊद कवर बिग सांत

चार कुंट दह दुष्कम आयो पई कृपा तब दर्शन पायो। चार विचार बिन सो सब दुआ साध संग मन निर्मल हुआ।

अपनी कृपा करो भगवंता। छाड़ सियानप बहु चतुराई, संतन की मन टेक टिकाई, छार की पुत्री परमगत पाई, नानक जाको संत सहाई। श्लोक

जो जाने हो भगत ज्ञानी आगे ठाकुर तिल नहीं मानी। जो जाने मैं कथनी करता व्यापारी बसबा जो फिरता।

मिटै तुम्हारो, राम नाम स्यो कर व्योहारो, चूरत चूरत साकत मुआ, जा कह हृदय होत पाओ बिया। चरह कसम मल पाप तेरे मनुआ, अमृत कथा संत संग सुनुआ, चरह काम क्रोध दुष्टाई, नानक जा को कृपा गुसाई। श्लोक। यतन करो तुम अनक विद, रहन न पाओ मीत, जीवत रहो हर हर पजो, नानक नाम प्रीत। पौड़ी। जन्या जानो दृढ़ सही,

ज्ञानत सोई संत सोए प्रमते कीचत पिन अंधकूप ते कढ़ो जे होवो सो प्रसन्न ज्ञा के

पवन बिन नामे सुख नाहे, तले जाम के दूत ते जो साधु संग समाहे। बार बार जाऊं संत सद के, नानक पाप बिना से कद के। श्लोक ठाक ना होती तिन्हों दर, जे हो वो सो प्रसन्न। जो जन प्रभ अपने करे, नानक ते तन तन।

या डेरा को श्रम कर काले जाका तसू नहीं संग चाले। ओ आडेरा की सो मित जाने जाको दृष्ट पूरन भगवान है डेरा ने चल सच।

सदा सुख नानक लिखिया पाए श्लोक। तन मन तन अर्पो तिसे प्रभु मिलावे मोहे नानक परम पो काटी है चूके जमकी जो पौड़ी। तत्ता तास्यो प्रीत कर गुण निध गोविंद राय फल पावे मन बाँचते तपत तुहारी जाए। त्रास मिटे जम पंथ की जास बसे मन नाओ गत पावे मत हुए परगास मैली पावे ठाओ। ताहू संग न तन चले ग्रे जो बन ने राज संत संग सिमरत रहो यह तुहारे काज। ताता कछु न होई है जो तात निवारे आप प्रतपाले नानक हमें आपे माई बाप। श्लोक। था के बहु विध काल ते तृप्त ना तृष्णा लाथ संच संच साकत हुए नानक माया ना साथ। पौड़ी। थथा थिर को नहीं काय पसारो पाव अनिक बंच बल छल करो माया एक यो पाव। थैली संचो श्रम करो थाक परो गावार मन के काम न आवई अंते अवसर बार। हित पावो गोविंद पजो

पार न पाया, पतित पावन अगम हर राया, होत पुनीत कोट अपराधु, अमृत नाम जपह मिल साधु, परपच त्रोह मोह मिटनाई, जाको राखो आप गुसाई, पात साओ छ

पौड़ी। बब्बा परम मिटावो अपना, या संसार सगल है सुखना। परमेश्वर नर देवी देवा, परमे सिद्ध साधिक ब्रह्मेवा। परम परम मानुख डहकाए, दुत्तर महा बिखम ए माए, गुरुमुख ब्रह्म।

मन मूर्ख कह करे पुकार। जो मांगे तो मांगे दिया, जाते कुशल न काहू थिया। मांगन मांगता एक मांग, नानक जाते।

तेगत साध संग पतियाना, दुख सुख उआ के समत बिचारा, नरक सुरग रहत अवतारा, ताहू संग ताहू निर्लेपा, पूरन कट कट पुरख बिसेखा, उआ रस में उआहू सुख पाया, नानक लिपत नहीं ते माया। श्लोक।

जियो पिंड जिन सुख दिए ताहे न जानत तत्। लाहा माया कारने दैद स्टूडन जाए, देवन हार दा पार प्रभ निमख न मने बसाए। लालच झूठ विकार मोह या संपे मन माहे, लंपट चोर निंदक महा तिन्हु संग बिहाए। खुद पावे ता बख्श ले खोटे संग खरे, नानक पावे।

पाव जल ते काडू प्रभु नानक तेरी टेक पौड़ी। खेलत खेलत आयो अनक जोन दुख पाए, खेद मिटे साधु मिलत सतगुरु बचन समाए। खिमा गई सच संचयो।

खरा दिलासा गुर दिया, आए मिले भगवंत। आपन किया करें आप, आगे पाछे आप, नानक सो सराही है जे कट कट रहा ब्याप। श्लोक। आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल, एक अक्षर हर मन बस्त नानक होत निहाल। पौड़ी। अक्षर में त्रिभवन प्रभ धारे, अक्षर कर कर वेद विचारे, अक्षर शास्त्र सिमरत पुराना, अक्षर नाद कथन वख्याना, अक्षर मुक्त जुगत पै परमा, अक्षर कर्म कीर्त सुच परमा, दृष्टमान अक्षर है जेता, नानक पार ब्रह्म निर्लेपा। श्लोक। हाथ कलम अगम मस्तक लिखावती, उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती, पुस्तक कह न जाए।

एक गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे है भी होवन हार, हे संत के सदा संग निधारा आधार। हे ठाकुर हूँ दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोए, नानक दी जय नाम दान राखो ही है परोए। श्लोक गुरुदेव माता

गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है, गुरुदेव मंत्र निरोधरा, गुरुदेव सांत सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित्र करा, गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा।

नमः अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख गावो पल पले स्तन माय मिटाओ सिमरो जास विसंगर एक है नाम जप

प्रभु के सिमरन दूख जंग से, प्रभु के सिमरन काल पर हरे, प्रभु के सिमरन दुश्मन तरे, प्रभु सिमरत कछ बिघन ना लागे, प्रभु के सिमरन अन दिन जागे, प्रभु के सिमरन पौ ना व्यापे, प्रभु के सिमरन दुख ना संतापे, प्रभु के सिमरन साध के संग सर्व निधान नानक हर रंग, प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद, प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तक बुद्ध, प्रभु के सिमरन जप तप पूजा, प्रभु के सिमरन बिनसै दूजा, प्रभु के सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभु के सिमरन दरगे मानी, प्रभु के सिमरन होय सो भला, प्रभु के सिमरन सो फल फला, से सिमरन जिन आप सिमराए, नानक का कहला गुरु पाए, प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा, प्रभु के सिमरन उदरे मूचा, प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभु के सिमरन सब किछ सुझे, प्रभु के सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु के सिमरन पूर्ण आशा, प्रभु के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय माहि सनाए, प्रभु जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभु को सिमरै से तनवंते, प्रभु को सिमरै से पतवंते, प्रभु को सिमरै से जन प्रवान, प्रभु को सिमरै से पुरुष प्रधान, प्रभु को सिमरै से बेमोहताजे, प्रभु को सिमरै से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरै से सुखवासी, प्रभु को सिमरै सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगैर वाला, प्रभु को सिमरै से परोपकारी, प्रभु को सिमरै तिन सद बलिहारी, प्रभु को सिमरै से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरै तिन सुख बिहावे, प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरै तिन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरै तिन अनंत घनेरे, प्रभु को सिमरै बसे हर नेरे, संत कृपा ते अनदिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभु के सिमरन कारज पूरे, प्रभु के सिमरन कबहु न झूरे, प्रभु के सिमरन हर गुण बानी, प्रभु के सिमरन सह समानी, प्रभु के सिमरन निश्चल आसन, प्रभु के सिमरन कमल विगासन, प्रभु के सिमरन अनहद जुनकार, सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार, सिमरे से जन जिन को प्रभु मया, नानक तिन जन सरनी पया, हर सिमरन कर पगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेत उपाए, हर सिमरन तय सुध जति दाते, हर सिमरन नीच चौ कुंट जाते, हर सिमरन तारी सर करना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन की ओ सगल अकारा, हर सिमरन में आप निरंकारा, कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरुमुख हर सिमरन तिन पारा श्लोक, दीन दर दुख पंजना, कट कट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभु साथ, अष्टपदी, जय मात पिता सुत नीत न भाई, मन उहा नाम तेरे संग सहाय, जय मां प्यान दूत दम दले, ते केवल नाम संग तेरे चले, जय मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माए उदारी, अनित पुने चरण कर्क नहीं तरे, हर को नाम कोट पाप पर हरे, गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, नाम पावो सुख घनेरे, सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हो सुखिया, लाख करोरी बंदना करे, हर का नाम जपत निस्तर, अनेक माया रंग सिखना बुझावे, हर का नाम जपत आभावे, जे मार हो जाति के लाते, हर नाम संगोत सोएला, ऐसा नाम मन सदा ते आई है, नानक गुरुमुख परम गत पाई है, छूटत नहीं कोट लखबाही, नाम जपत ने पार कराही, अनेक बिघन जह आए संगारे, हर का नाम तत्काल उधार है, अनेक जोन जन्म मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम, हो मैला मल कभु न धोवे, हर का नाम कोट पाप खोवे, ऐसा नाम जपो मन रंग, नाम पाये साध के संग, जे मार्ग के गने जाए न कोसा, हर का नाम उहां संग तोसा, जे पैंदे महा अंग गुबारा, हर का नाम संग जियारा, जहां पंथ तेरा को न सियानू, हर का नाम तह नाल पहचानू,
जय महा प्याम सतत बहु काम तै हर के नाम की तुम ऊपर शाम जहाँ त्रिखा मन तुझ आकर्ष है तै नानक हर हर अमृत बरख है भगत जना की बरकर नाम संत जना के मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर के नाम उदरे जन कोट हर दस पर संत दिन रात हर हर औसत साध कमात हर जन के हर नाम निधान पार ब्रह्म जन की नो दान मन तन रंग रते रंग एक है नानक जन के बिरत विवेक है हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर के नाम जन को तृप्त भूत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत तब करे न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर के नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत तस्माए वियोग जन वाता हर नाम की सेवा नानक पूजे हर हर देवा हर हर जन के माल खजीना हर तन जन को आप सब दीना हर हर जन के ओट सतानी हर प्रताप जन अगर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आप पैर जन हर हर जपे हर का पगत प्रकट नहीं छपे हर की पगत मुक्त बहु करे नानक जन संकेते करे पार जात ए हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सबसे उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा नाम की महिमा संत हृदय वसे संत प्रताप दीर्घ सब नसे संत का संगवड भागी पाये संत की सेवा नाम ध्याये नाम तुल कछ अगर न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए श्लोक बहु शास्त्र बहु स्मृति पेखे सर्व तंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ज्ञान खत शास्त्र सिमृत वख्यान जो अभ्यास कर्म कर्म क्रिया सगल त्याग बन मदे फिरिया अनेक प्रकार की ये बहु जतना पुन दान हो में बहु रतना शरीर कटाए हो मैं कर राती वर्त नेम करे बहु पासी नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिया एक बार नौ खंड पृथ्वी फिर चिरजीव महा उदास कपि सरथीव अगन माए होमत प्राण कनक अश्व है वर भूम दान न्योली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संजम अच्छादन निमक निमक कर शरीर कटावे तो भी हो मैं मेल न जावे हर के नाम संसर कछ नाहे नानक गुरमुख नाम जपत जप पाहे मन कामना तीरथ दे छुटे गर्भ गुमान न मन ते हुटे सोच करे दिन और रात मन की मैल न तनते जात इस देही को बहु साधना करे मन से कभू न भिख्या करे जल को वह बहु दे अनीत शुद्ध कहाँ होए काची वीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतित बहुमूच बहुत श्यांत जम का पौ व्यापे अनेक जतन कर प्रसन्ना ध्यापे पेट अनेक अगर नहीं बुझे कोट उपाव दर गहने सिजय छूटत नाही ऊप बयाल मोह व्यापे माया जाल अवर करतूत सगली जमदाने गोविंद पदन बिन तिल नहीं माने हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोले सह सुभाए चार पदार्थ जे को मांगे सब जना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सद गावे जे को अपनी शोभा लोरे साध

है सांप जना कीसरनी पर है। जिस जन को प्रभु दर्श पे आसा नानक तो कह बल बल जासा। सगल पुरुख में पुरुख प्रदान सांप संग जाका मिटे अभिमान। आपस को जो जाने नीचा सो गनिये सबसे ऊंचा। जाका मन होए सगल की रीना हर हर नाम तिन कट कट चीना। मन अपने ते बुरा मिटाना देखे सगल सृष्ट साजना। सुख दुख जन सम दृष्टेता नानक पाप पुन नहीं लेता। निर्तन को तन ते

अंतर जामे अपनी गत मिट जानो आपे आपन संग आप प्रवराते तुमरी युस्तक तुमते होए नानक अवर न जानस कोए सर्व कर्म में श्रेष्ठ कर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया।

कुमार है, बाल व्यवस्था तुझे प्यार है दूध, पर जोवन पोजन सुख सूद, बिरग पया ऊपर साख सैन, मुख प्याओ बैठ को देन, यो निर्गुण गुण कछु न बूझे, बख्श लियो तो नानक सीजे, जे प्रसाद तर ऊपर सुख बसे, सुत प्रात मीत बनता संग हसे, जे प्रसाद पीवे शीतल जला, सुखदाई पवन पावक अमूला, जे प्रसाद पोगे सब रसा, सगल समग्री संग साथ बसा, जीने हस्त पाव कर नेत्र रसना, तिसे त्याग अवर संग रचना, ऐसे दोख मूड अंग व्यापे, नानक काज लेहो प्रव्यापे, आद अंत जो राखनहार, तिस्यों प्रीत न करे गवार, जा की सेवा नव निद पावे, तास्यों मूड़ा मन नहीं लावे, जो ठाकुर सब सदा हजूरे, ताको अंदाजान दूरे।

मचे। जो छदना सो अस्थिर कर माने, जो होवन सो दूर कराने। छोड़ जाए तिसका श्रम करे, संग समाई तिसका हरे। चंदन लेप उतारे धोए, दर्द प्रीत पसंद संग होए। अंधकूप में पतित विकराल, नानक काट लियो प्रभु दयाल। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। बाहर पेट अंतर मल माया, छप सुनाए कछ करे छिपाया। बाहर ज्ञान त्याग स्नान, अंतर व्यापे लोभ सुवान। अंतर अगन बाहर तन सुहा, गल पाथर कैसे करे अथाह। जाके अंतर बसे प्रभ आप, नानक तेजन सहज समात। सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गए लिहो और निभावे। कहां बुझारत बूझे डोरा, निष्कैय तो समझे पोरा। कहां विषण पद गावे गुंग, जतन करे तो भी सुरभंग। कह पिंगल पर्वत पर भवन, नहीं होत उहा उस गवन। करतार करुणा में दीन बेनती करे, नानक तुमरी कृपा करे। संग सहाई सो आवे ना चीत, जो बैराई तासो प्रीत। बलुआ के गृह पीतर बसे, अनंत केल माया रंग रसे। देर कर माने मने प्रतीत, काल न आवे मूढ़े चीत। बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महालोभ त्रोह। त्याहु जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख लो आपन कर करम। तू ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सर तेरी रास। तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा में सुख गनेरे। कोई ना जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भवंत।

सारा जाके मन लागा प्रभु मीठा सर्व सुख काहू मन बूठा जिस जन अपना हुकुम मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगनत साओ अपनी देरास खात पीत बरते अनत उलास अपनी अमान कछ बहुर साहले अज्ञानी मनी रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवे बहुर उसका विश्वास ना होवे जिसकी बस किस आज्ञा राखे प्रभु की आज्ञा माने माथे उसते चौगन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल।

भगवान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने मिथ्या हस्त पर दर्प को हिरे मिथ्या नेत्र पेखत पर

आए। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो किरपन के निरारख दाम। तन तन के जन जे कट बस्यो हर नाओ, नानक ता कह बल बल जाओ। रहत अवर कछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंध लावत। जानन हार प्रभु प्रवीन, बाहर पेख न काहू पीन। और उपदेश आप न करे, आवत जावत जन्मे मरे। जिसके अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख करे संसार। जो तुम पाने तिन प्रभ जाता, नानक पुंजन चरण पर आता। करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आपे माने। आपे आप तर्क निबेरा, किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा। उपाव स्यान सगल ते रहते, सब कछ जाने आत्म की रहते।

अष्टपदी। जे प्रसाद शक्ति अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माहे, जे प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे, जे प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याए सदा मन अंदर, जे प्रसाद दे संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना, जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है त्यावन जोग, जे प्रसाद पाठ पतंबर हंडावे तिसे त्याग कत अवर लुभावे, जे प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पैर ताका जस का वी जय।

सब ताके जे प्रसाद तुझको ना पहुंचे मन साथ साथ सिमरो प्रभु ऊचे जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे जे प्रसाद अपूखन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद अस्वहस्त अस्वारी मन किस प्रभु को कभू ना बिसारी।

जे प्रसाद सुख सहजे बसना, जे प्रसाद हस्त कर चले, जे प्रसाद संपूर्ण फले, जे प्रसाद परम गत पावे, जे प्रसाद सुख सह समावे, ऐसा प्रभ त्याग।

मेरा साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माए समानी। साध के संग अगोचर मिले, साध के संग सदा प्रफुल्ले। साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस गुंचा। साध संग होए सबकी रेन, साध के संग मनोहर बैन। साध के संग न कथू धावे, साध संग अस्थित मन पावे। साध के संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न।

आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बने आई। साध के संग न कभू धावे, साध के संग सदा सुख पावे। साध संग बस्त अगोचर लहे, साधु के संग अजर सहे। साध के संग बस है थान ऊंचे, साधु के संग महल पहुंचे। साध के संग दृढ़ सब धर्म, साध के संग केवल पारब्रह्म। साध के संग पाए नाम।

समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी

नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सब जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। श्लोक उर्दारे जो अंतर नाम, सर्व में पेख है भगवान, निमख निमख ठाकुर नमस्कार है, नानक ओ अपरस सगल निस्तार है।

सवारी, कई कोट पय तीर्थवासी, कई कोट बंत्र में उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान तारे, कई कोट कब काब विचारे, कई कोट नरसन नाम ध्यावे, नानक करते का अंत न पावे, कई कोट पय अभिमानी, कई कोट अंत अज्ञानी, कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अभिज आत्म निकोर, कई कोट पर दर्द को हिरे, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर बिरख मिट जाए।

छत्र सगल समग्री अपने सूत धारे, नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारे। कई कोट राजस्ताम सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत हर शास्त्र।

नानक सब किस प्रभ के हाथ। कई कोट पै बैरागी राम नाम संग तिन लिव लागी। कई कोट प्रभ को खोजनते आत्म में पार ब्रह्म लहंते। कई कोट दर्शन प्रभ प्यास तिनको मिलियो प्रभ अविनाश। कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग। जिनको हुए आप सो प्रसन्न नानक के जन सदा तन तन। कई कोट खानी अर खंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड। कई कोट हुए अवतार कई जुगत कीनो विस्तार।

गुरु प्रसाद नानक सच कहे। कबू होए पंडित करे बखान, कबू मोन तारी लावे ध्यान, कबू तट तीरथ स्नान, कबू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनेक जोन परमे परमिया, नाना रूप जो स्वादी दिखावे, जो प्रभ पावे तिवे न चावे, जो

गर्भ गले अष्टपदी, जिसके अंतरराग अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान, जो जाने में जो बनवंत सो होवत विस्ता का जंत।

सारे अनित तपस्या करे अंकार, नरक सुरग फिर फिर अवतार। अनित जतन कर आत्म नहीं द्रवे, हर दरगे को कैसे गवे।

ए सब इसको सुखना ही कोई। जब ए जाने में किस करता तब लग गर्भ जोन में फिरता। जब तारे को बैरी नीत तब लग ने चलना ही चीत। जब लग मो मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए। प्रभ कृपा से बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक हों छूटे। सहस खटे लख उठतावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे। अनेक भोग दुखिया के करे न तृप्त आवे खप खप मरे। बिना संतोष नहीं को राजे सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे। नाम रंग सर्व सुख होए बड़ पागी किसे प्राप्त होए। करण करा

मरे न बिन से आवे न जाए, नानक सधी रिया समाए। आप उपदेश है समझे आपे रचिया सब के साथ, आप कीनो आपन विस्तार, सब कछ उसका ओ करने हार। उसते तिन कहो किस होए, थान सनंतर एक कैसोए, अपने चलित आप करने हार, कौतुक करे रंग अपार। मन में आप मन अपने माहे, नानक कीमत कह न जाए। सत सत सत प्रभु स्वामी, गुरु प्रसाद किने वख्यानी, सच सच सच सब कीना, कोट मदे किने बिरले चीना। पला पला

अष्टपदी संत के दुखन आरजा कटे हैं, संत के दुखन जमते नहीं छुटे, संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन सो बाते हीन, संत के हते को रखे न कोए, संत के दुखन थान प्रस्त होए, संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक भी तरे, संत के दुखन ते मुख पवे, संत के दुखन काग जो लवे, संत के दुखन सर्प जोन पाए, संत के दुखन जगत जोन किरमाए, संत के दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन सब को छले, संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच निचाए, संत दुखी का थाओ को नाहे, नानक संत पावे तो ओए भी जत पाहे, संत का निंदक महाअपताई, संत का निंदक खिंच करना पाई, संत का निंदक महात्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राजते हीन, संत का निंदक दुखिया अर्दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत की निंदा दोख में दोख, नानक संत पावे का उसका भी होय मोख, संत का दोखी सदा अपवित, संत का दोखी किसे का नहीं मित, संत के दोखी को दान लागे, संत के दोखी को सब त्याग, संत

हरबिंद कह हर करम श्रवण हर कथा हर दरगह नानक उजल मथा बड़ता गीते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करें विचार से तनवंत गनी संसार।

निरंजन जानिया गुरु प्रसाद आपन आप सुजय किसकी जानो तृष्णा बुझय साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओ हर जन रहत अंदन कीर्तन केवल ख्यान ग्रस्त में सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आशा किसकी कटिए जन की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक किसे न लागे दुख जिसको हर प्रभु मन चित आवे सो संत सुहेला नहीं बुलावे जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवक कहो किसते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुरु प्रसाद तक सब बुझिया जब देखो तब सब किस मूल नानक सो सुखम सोई अस्थूल न किस जन्मे न किस मरे आपन चलित आप ही करे आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल में आप अनेक जुगत रखाप उथाप अविनाशी नाही किस खंड तारण तार रहे हो ब्रह्मंड अलख अभेद पुरुष प्रताप आप जपाए तनानक जाप जिन प्रभु जाता सो शोभावंत सगल संसार उदरे तिनमंत प्रभु के सेवक सगल उदारन प्रभु के सेवक दुख विसारन आपे मेल ले कृपाल गुरु का शब्द जप पे निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनो कृपा करे बढ़पा गए नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरुष को उत्तम करमान जो किछ करे सो प्रभु के रंग सदा सदा बसे हर संग सहे सुबाए होवे सो होए करने हार पछाने सोए प्रभु का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिते उपजे तिस माहि समाए ओए सुख निदान उन्हों बने आए आप उसको आप दीनो मान नानक प्रभु जन एक को जान श्लोक

अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिस्ते बिरथा कोई ना है। रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप आपन किया कछु न होए जे सो प्राणी लोचे कोए तिस दिन ना ही तेरे कुछ काम गत नानक जप एक हर नाम। रूपवंत होए नाही मोह है प्रभ की जोत सगल कट सो है तनमंता होए क्या को गर्व है जा सब किस किसका दिया दर्व है। आप सूराजे को कहावे प्रभ की कला बिना कह धावे जे को होए बहदा तार किस देन हार जाने गावार जिस गुर पर साल तू तह हो रोग नानक सोजन सदा अरोग। ज्यो मंदर को था मैं थमन त्यों गुर का शब्द मने अस्थमन ज्यो पाखान नाल चढ़ता रहे प्राणी गुरुचरण लगत निस्तर है। ज्यो अंधकार दीपक करगास गुर दर्शन देख मन होए विगास ज्यो महा उद्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे इन संतन की बाँचो तूर नानक की हर लोचा पूर। मन मूरख काहे बिललाई है पूर्व लिखे का लिखिया पाई है दुख सुख कर देवन हार अवर त्याग तू किसे चितार जो कछ करे सोई सुखमान पूला काहे फिरे अजान कौन बख्त आई तेरे संग लपट रहे हो रस लोभी पतंग राम नाम जप हृदय माहे नानक पथ सेती कर।

सुजाना। पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शंद। साफ तेरे की चरनी पाओ नानक कै मन एवं राव। मनसा पूरन सन्ना जोग जो कर पाया सोई होग। हरन परन जाका नेत्र फोर किसका मंत्र न जाने होर। अनद रूप मंगल सज्जा कै सब थोक सुनिए कर पाके। राज में राज जोग में जोगी तप में तपी सरगस्त में भोगी। चाहे चाहे पगते सुख पाया नानक किस पुरुष का किने अंत न पाया। जाकी लीला की मितना है सगल देव हारे अवगाहे। पिता के जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत। सुमत ज्ञान त्यान जिन दे जन दास नाम त्यावे से। त्यो गुण में जाको भरमाए जन्म मरे फिर आवे जाए। ऊंच नीच तिसके स्थान जैसा जन आवे तैसा नानक जान। नाना रूप नाना जाके रंग नाना तेह करे एक रंग। नाना विद की नो विस्तार प्रभ अविनाशी एकंकार। नाना चलत करे खिन माहे पूरे ओ पूरन सब ठाए। नाना विद कर दंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई। सब कब किसके सब किसके ठाओ जब जब जीवे नान खरनाओ। नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मंड। नाम के तारे स्मृत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान। नाम के तारे आगाश पताल नाम के तारे सगल आकार। नाम के तारे पुरिया सब भवन नाम के संग उदरे सुन श्रवण। कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जनगत पाए। रूप सत जा का सत स्थान पुरुष सत केवल प्रधान। करतूत सत सत जा की बाणी सत पुरुष सब माए समानी। सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत्त। सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब पली। सत नाम प्रभता सुखदाई विश्वास सत नाम गुरते पाई। सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जा कह रहे प्रवेश। सत निरत बूझे जे कोए नाम जपत्ता की गत होए। आप सत की आसव सत आपे जाने अपनी मित गत। जिसकी सृष्टि हो करने हार और न बूझ करत विचार। करते की मित न जाने किया नानक जो तिस पावे सो वर्तिया। बिस्मन बिस्म पे बिस्माद जिन बूझिया तिस आया स्वाद। प्रभ के रंग रात जन रहे गुर के बचन पदार्थ ले। कोई दाते दुख का तनहार जाके संग करे संसार। जन का सेवक सो वड़पागी जन के संग एक लिव लागी। गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे। श्लोक आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। अष्टपदी चरण सत सत प्रसन्हार पूजा सत सत सेवदार। दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत त्यावनहार। आप सत सत सबधारी आपे गुणकारी। शब्द सत सत प्रभ भक्ता सुरत सत सत जस सुनता। बुझनहार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए। सत स्वरूप हृदय जिन मानिया करण करावन तिन मूल पछानिया। जहाँ कह हृदय विश्वास प्रग आया सत ज्ञान तिस मन प्रगटाया। कहते निर्भो होए बसाना जिसते उपजा तिस माए समाना। बस्त माए ले बस्त गदाई ताको पिनना कहना जाई। बुझे बुझन हार विवेक नारायण मिले नानक एक। ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी। ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत। ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभ का सेवक नाम के रंग। सेवक को प्रभ पालन हारा सेवक की राखे निरंकारा। सो सेवक जिस दया प्रभ धारे नानक सो सेवक साथ साथ समारे। अपने जन का प्रदाता कह अपने सेवक की सर पर राखे।
अपने दास को दे वडाई, अपने सेवक को नाम जपाई। अपने सेवक की आप पतराथे ताकि गतमित कोई न लाथे। प्रभु के सेवक को ना पहुँचे, प्रभु के सेवक पूछते ऊँचे। जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दैन प्रगटाया। नीकी कीरी महफल राखे, पसंद करे लश्कर कोट लाखे। जिसका साफ ना काटत आप, ताको राष्ट्र दे कर हाथ। मानस जतन करत बो पाक, किसके कर्तव्य गिरते जात। मारे न राखे और न कोए, सर्व जिया का राखा सोए। काहे सोच करे रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख विडाणी। बारंबार बार प्रभ जपिए, पी अमृत इहु मन तन तृपिए। नाम रतन जिन गुरमुख पाया, किस किच अवर नाही दृष्टाया। नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुखर नाम का संग। नाम रस जो जन तृष्टाने, मन तन नामे नाम समाने। उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सब काम। बोलो जस जे बै दिन रात, प्रभ अपने जन की नीदात। करें भगत आत्म कह चाहे, प्रभ अपने सो रहे समाए। जो हुआ हो वत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण कह एक न जानो। आठ पैर प्रभ बसे हजूरे, कहो नानक से जन पूरे। मन मेरे तिनकी ओट ले, मन तन अपना तिन जन दे। जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता। तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर सब पाप मिटावे। अवर से आनप सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग। आवन जान न होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सब तेरा। श्लोक

अष्टपदे सतगुर सिख की तरह प्रतपाल सेवक कौ गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरे गुर बचनी हर नाम उचरे सतगुर सिख के बंधन काटे गुर का सिख विकार ते हाटे सतगुर सिख को नाम तन दे गुर का सिख लड़पागी है सतगुर सिख का हल्क पलक सवार नानक सतगुर सिख को जी नाल समार गुर के गृह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन में सह आपस को कर कछ न जनावे हर हर नाम हृदय सत्यावे मन बेचे सतगुर के पास तिस सेवक के कार्य रास सेवा करत होए ने कामी किसको हो प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नाम सो सेवक गुर की मतले बीस विश्वे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनेक बार गुर को बल जाओ सर्व निदान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म जन राता ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म एक आप नहीं कछ ब्रह्म सह श्यान लया न जाइये नानक ऐसा गुर बड़ पागी पाइये सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत पेखत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगे गवे सुनकर वचन करन आघाने मन सुन तो खातम पतियाने पूरा गुर अख्यो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेखे हो संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तुस लय मिलाए जीवा एक पुस्तक अनेक सतपुरुष पूर्ण विवेक काहू बोल न पहुँच प्राणी अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई अनेक भगत बंधन मुक्त करे चरण कमल हृदय सिमरे सब बलिहारी सतगुर अपने नानक जिस पर साथ ऐसा प्रभ जपने क्यों हर रस पावे जन कोए अमृत पीवे अमर सोए उस पुरख का नाही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुण पास आठ पैर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक को दे मोह माया के संग न लेप मन में रखे हर एक अंधकार दीपक प्रगासे नानक परम मोह दुख सहते नासे तपत माए ठाट वरताई अंग भया दुख नाठे भाई जन्म मरण के मिटे अंदेशे साधु के पूर्ण उपदेशे पौ चूका निरपौ हो बसे सगल व्याद मनते खैन से जिसका साथ तिन कृपा भारी साध संग जप नाम मुरारी थित पाई चूके क्रम गवन सुन नानक हर हर दस श्रवन निर्गुण आप सरगुण भी ओही कलाकार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिंदु जाना ही कोए सर्व निरंतर एक को सोए ओत पोत रव्या रूप रंग कहे प्रभा फाद कह संग रच रचना अपनी कल तारी अनेक बार नानक बलिहारी श्लोक साथ न चाले बिन भजन बिखिया सगली चार हर हर नाम कमावना नानक इहो धमसार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार हवर उपास सब मीत विसारो चरण कमल उदमय उर्धारो करण कारण सो प्रभ संगरथ दृढ़ कर गहो नाम हर वत्स यह तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आसरा को मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंठ उठ भावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुख को नित बाचे मीत सो सुख साधु संग परीत जिस शोभा को करें पली करनी सा शोभा पज हर की सरनी अनेक उपावी रोग न जाए रोग मिटे हर औखद लाए सर्व निदान में हर नाम निदान जप नानक दरगे परवान मंत्र बोधो हर कह नाए दैव स्थावत आवे ठाए ताको बिघन ना लागे कोए जा कह हृदय बसे हर सोए कल पाती ठांडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पौ बिन से पूरन होए आस भगत पाए आत्म प्रगास चित कर जाए बसे अविनाशी कहो नानक काटी जम फांसी
तत विचार कहे जन साचा जन्म मरे सो काचो काचा। आवागमन मिटे प्रभु सेव आप त्याग सरन गुरुदेव। त्यों रतन जन्म का होए उधार हर हर सिमर प्राण आधार। अनेक उपाव न छूटन हारे सिमरत सासत वेद विचारे। हर की पवित करो मन लाए मन बंशत नानक फल पाए। संग ना चाल तेरे धना तू क्या लपतावे मूर्ख मना। सुत मीत कुटम अर्गनता इनसे कहो तुम कर्म सनाता। राज रंग माया विस्तार इनसे कहो कर्म छुटकार। अहस्ती रथ असवारी चूठा दंत चूट पासारी। जिन दिए तिस बुझे ना बेगाना नाम विसार नानक पछताना। गुर की मत तू ले आने पगत बिना धो डूबे स्याने। हर की पगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारे चीत। चरण कमल वाको मन माहे जन्म जन्म के किल बिठ जाए। आप जपो अगरा नाम जपाओ सुनत कहत रहत गत पाओ। सार भूत सत हर को नाओ सह सुबह नानक गुन गाओ। गुन गाव तेरी उतरस मैल बिनस जाए हो मैं विकफैल। हो है अचिंत बसै सुखनाल साफ ग्रह सर नाम समाल। छाड़ स्यान सगली मना साफ संग पावे सत घना। हर पूंजी संच करो व्यवहार इहां सुख दरगे जयकार। सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्तक लेख। एको जप एको सलाए एको सिमर एको मनाहे। एक के गुण गाव अनंत मंथन जाप एक भगवंत। एको एक एक हर आप पूरन पूर रहो प्रव्याप। अनेक विस्तार एक ते भये एक अराज पराशक गए। मंथन अंतर एक प्रवराता गुरु प्रसाद नानक एक जाता। श्लोक फिरत फिरत प्रभु आया परया को शरणाए। नानक की प्रभु बेनती अपनी भक्ति लाए। अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रदान कर कृपा देवो हर नाम। साजना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी सरदा पूर। सदा सदा प्रभु के गुण गावो साथ साथ प्रभु में ध्यावो। चरण कमल सो लागे प्रीत भगत करो प्रभु की नित नीत। एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रसार। प्रभु की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए। जिन चाख्या से जन तृप्ताने पूरन पुरख नहीं डोलाने। सुवर भरे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साध के संग। परे शरण आम सब त्याग अंतर प्रगास आम दिन लिवलाग। बल पागी जपिया प्रभु सोए नानक नाम रते सुख होए। सेवक की मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल मत लई। जन को प्रभु होयो दयाल सेवक की नो सदा निहाल। बंधन काट मुक्त जन भया जन्म मरण दुख क्रम गया। इच पुन्नी सरदा सब पूरी रव रया सब संग हजूरी। जिस पासा तिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए। सो क्यों बिसरे जे काल न पाने सो क्यों बिसरे जे की आ जाने। सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरे जे अगन में राखे गुरु प्रसाद को बिरला लाखे। सो क्यों बिसरे जे बिखते काडे जन्म जन्म का टूटा गांडे। गुर पूरे सत्य है बुझाया प्रभु अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो यो काम आम त्याग जपो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरह नाम जपावो। भगत पाए तर यह संसार बिन भगती तन हो सी चार। सर्व कल्याण सुख निज नाम बूढ़त जाप पाए विश्राम। सगल दुख का होत नाश नानक नाम जपो गुणकास। उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मंथन अंतर एही सुआव। नेत्रों पेख दर्श सुख होए मन विकसे साध चरण तोए। भगत जना के मंथन रंग बिरला को पावे संग। एक बस दीजे कर माया गुर प्रसाद नाम जप लया। ताकि उपमा कहीं न जाए नानक रहया सर्व समाए। प्रभु संग दीन दयाल भगत वचल सदा कृपाल।
अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा सर्थ प्रतपाल आद पुरुष कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपे सो हो पुनीत भगत पाए लावे मनहित हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरुष भगवान सर्व वैकुंठ मुक्त मोक्ष पाए एक निमख हर के गुण गाए अनेक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन भाई बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत फली सो करनी सो बातनवंत हृदय बसे पूरन गुरमंत साध संग प्रभु देव निवास सर्व सुख नानक प्रगास।

फिर जाप अष्टपदी जब अकार एवं कचना दृष्टि ताप पाप पुन तब कहते होता जब तारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध के संकमात जब इसका वरण चेन ना जापत तब हर्ष शोक कोक्षे व्यापत जब आपन आप आप पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत भरम आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार न दूजा जब होवत सब केवल तनी तब बंद मुकुट को किसको गनी जब एक है हर अगम अपार तब नरक स्वरूप को कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुवाए तब शिव सकट को कित ठाए जब आपे आप अपनी जोत धरे तब कौन निडर कौन कत डरे आपन चलित आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण को कहा विनाशन जब पूरन करता प्रभ होए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे आपन आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही ऊपर जा जय निर्मल पुरुष पुरुष पत होता तह बिन मैल कहो क्या चोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तह छल छिद्र लगत कहो कीस जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे तह किसे पूख कवन तृप्तावे करण करावन करने हार नानक करते का नाहि कुमार जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कौन माए बाप मित्र सुत भाई जय सर्व कला आपे परवीन तय वेद कते पा को

कहिए चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप जै अचल अछेद अभेद समाया उहां किसे व्यापत माया आप उसको आपे आदेश।

सारा बहु बेअंत ऊंचते ऊंचा नानक आपस को आते पहुंचा। जय आप रचियो प्रपंच आकार त्यो गुण में कीनो विस्तार। पाप पुन तह पई कहावत कौ नरक कौ स्वर्ग बंछावत। आल जाल माया जंजाल होमे मोह परम तय पार। दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की योग ज्ञान। आपन खेल आप कर देख है खेल संकोच है तो नानक एक है। जय अवगत भगत है आप जय पसरे पासा संत प्रताप। दो पास का आपे धनी उनकी शोभा उन्हों बनी। आपे कौतक करे अनंत सोज आपे रस को गन निर्जोग। जिस पावे तिस आपन ना इलावे जिस पावे तिस खेल खिलावे। बेसुमार अथा अगणित अतोल जो बुलावो त्यों नानक दास बोले। श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार। नानक एको पसरिया दूजा कह विस्तार। अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार आपे एक आप विस्तार। जात पावे ता श्रेष्ठ उपाय अपने भाणे ले समाए। कुमते पिन नहीं किछ होए आपन सूत सब जगत परोए। जाको प्रभु जियो आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए। सो समदर्शी तप का देता नानक सगल श्रेष्ठ का जेता। जी जंत्र सबका कह हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ। जिस राख है तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मनो विसार है। तिस तज अवर कहाँ को जाए सब सिर एक निरंजन राय। जी की जुगत जा कह सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ। गुण निदान बेअंत अपार नानक दास सदा बलिहार। पूरन पूर रहे दयाल सब ऊपर होत कृपाल। अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो व्याप। प्रतपाल है जी अनुभव पात जो जो रचियो सो तिसे त्यात। जिस पावे तिस लय मिलाए भगत करे हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मान्या करन हार नानक इक जान्या। जन लागा हर एक कहनाए तिसकी आसना बिथी जाए। सेवक को सेवा बने आए हुकम बूझ परम पद पाए। किसते ऊपर नहीं विचार जाके मन बस्या निरंकार। बंधन तोर पे निर्वैर अन दिन पूजे गुर के पैर। ए लोक सुखी पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले। साध संग मिल करो आनंद गुण गावो प्रभ परमानंद। राम नाम तक करो विचार दुर्लभ देह का करो उदार। अमृत वचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का यह सुहाओ। आठ पैर प्रत्येक खोनेरा मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा। सुन उपदेश हृदय बसाओ मन इच्छे नानक फल पाओ। हलत पलत दोए लिहो सवार राम नाम अंतर उधार। पूरे गुर की पूरी दीखिया जिस मन बसे तिस साज परीखिया। मन तन नाम जपो लिवलाए दुख दर्द मंगते पहुँचाए। सच व्यापार करो व्यापारी दरगह निभे खेप तुम्हारी। एक का टेक रखो मन माहे नानक दौर न आवे जाए। तिस्ते दूर कहाँ को जाए उबरे राखन हार ध्याए। निरपौ जपे सकल पौ मिटे प्रभ कृपा से प्राणी छुटे। जिस प्रभ राख है तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख। चिंता जाए मिटे अंकार तिस जन को कोई न पहुँचन हार। सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा नानक ताके कारज पूरा। मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन देखत कुदरत श्रेष्ट। चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप। तन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुरख प्रदान। जिस मन बसे सुहोत निहाल ताके निकट नावत काल। अमर पै अमरा पद पाया साथ संग नानक हर ध्याया। श्लोक ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास। अपदी संत संग अंतर प्रगटीठा नाम प्रभु का लागा मीठा। सगल समग्री एक स्पट माहे अनक रंग नाना दृष्टा है।
नवनिध अमृत प्रभ का नाम, देही मैं इसका विश्राम। सुन समाद अनहत नाद, कह न जाई अचरज विस्माद। तिन देखिया जिस आप दिखाए, नानक तिस जन सो जी पाए। सो अंतर सो बाहर अनंत, कट कट व्याप रहा भगवंत। करण माए आकाश दयाल, सर्व लोक पूरन प्रताल। बंस इन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा करम। पौन पानी बह संतर माहे, चार कुंट बह दिसे समाहे। तिस्ते पिन नहीं को ठाओ, गुरु प्रसाद नाम सुख पाओ। वेद पुराण सिमृत में देख, ससियर सूर नक्षत्र में एक। बाणी प्रभ की सबको बोले, आप अडोल न कभू डोले। सर्व कला कर खेले खेल, मोल न पाइये गुणे अमोल। सर्व ज्योत में जाकी ज्योत, तार रहे हो स्वामी ओत पोत। गुरु प्रसाद धर्म का नाश, नानक तिन में यो विश्वास। संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना के हृदय सब धर्म। संत जना सुने शुभ वचन, सर्व व्यापी राम संग्रचन। जिन जाता तिसकी यह रहत, सत बचन साधु सब कहत। जो जो होए सोई सुख माने, करण करावन हार सब जाने। अंतर बसे बार भी ओही, नानक दर्शन देख सब मोही। आप सत किया सर सत, तिस तब ते सगली उत्पत। तिस पावे ता करे विस्तार, तिस पावे ता एकंकार। अनेक कला लखी न जाए, जिस पावे तिस नहीं मिलाए। कौन निकट कौन कहिए दूर, आपे आप भरपूर। अंतर्गत जिस आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए। सर्व भूत आप वर्तारा, सर्व नैन आप देखनहारा। सगल समग्री जा का तना, आपन जस आप ही सुना। आवन जात एक खेल बनाया, आज्ञाकारी की नी माया। सब कह मद अलिप्त तो रहे, जो किछ कहना सो आपे कहे। आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे तां ले समाए। इसते होए सो नाही बुरा, ओरे कहो किने कछ करा। आप भला करतूत अतने की, आपे जाने अपने जी की। आप साच तारी सब साच, ओत पोत आपन संगराच। ताकि गत मित कहीं न जाए, दूसर होए तासो जी पाए। तिस ताकि या सब परवान, गुरु प्रसाद नानक हो जान। जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लय प्रसोए। ओ तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। तन तन तन जन आया, जिस पर साथ सब जगत तराया। जन आवन का यह सुहाओ, जन के संचित आवे नाओ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक किस जन को सदा नमस्कार। श्लोक पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जा का नाम। नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ अष्टपदी। पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर देख।

संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर करो हर तन के पर ले हो पंडार नानक गुर पूरे नमस्कार केम कुशल सहज आनंद साध संग पज परमानंद।

अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अनुलीक लाल ए रतन सुनत कमावत।

जय शब्द अनाहद वाजे, सुन सुन अनद करे प्रभु गाजे, प्रगटे गोपाल मात के माथे, नानक उदरे तिन के साथे

हम साध संग लैन सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण होई सेवक की सेव आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभधारी नानक निभी खेप हमारी प्रभु की।

होए, प्रधान पुरुष प्रगट सब लोए, सबते ऊंच पाए अस्थान, बहुर न होवे आवन जान, हर तन काट चले जन सोए, नानक जिसे प्राप्त होए, खेम शांत रिद्ध नव निद, बुद्ध ज्ञान सर्व तें सिद्ध,

पास सुंदर चतुर तत्व का बेता सुंदर सी एक दृष्टेता ए फल तिस जन के मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निधान जपे मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतात केवल हर नाम गोविंद भगत के मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटे संत कृपा से जमते छुटे जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसे सुने लाए प्रीत तिस दन आवे हर प्रभ चीत जन्म मरण ता

मानी। दुख रोग बिन से पे परम साध नाम निर्मलता के कर्म। सबते ऊंचता की शोभा बनी नानक ए गुण नाम सुखमणि। सबते ऊंचता की शोभा बनी नानक ए गुण नाम सुखमणि।

रह हर दर गए पतवंत, राम नाम तन संच वह साच सहा भगवंत। उठत बैठत हर पजो साधु संग परीत, नानक दुर

हरख सोग सहसा संसार हौ हौ करत बिहाए जिनकी ये तिसे न जाननी चित में अनक उपाय। आद ब्याद उपाद रस कभो न टूटे ताप पार ब्रह्म पूरन तनी नह बूझे परताप। मोह परम बूढ़त कणो महानरक में वास कर कृपा प्रभु।

बेदियो अज्ञान रचियो संसार, जन्म मरण बहु जोन प्रमण कीने कर्म अनेक, रचनहार ने सिमरियो मन ना विचार विवेक। पाओ भगत भगवान संग माया लिप्त न रंच, नानक बिरले पाये जो ना रचे परपंच। श्लोक खट शास्त्र ऊंचो कहे अंत न पारावार, भगत सो है गुण गावते नानक प्रभ के द्वार। पौड़ी खस्ता।

नारद मुन जन सुख व्यास जस गावत गोविंद रसगी दे हर्षो बीदे भगत रचे भगवंत। मोह मान प्रम दिन सियो पाई शरण दयाल चरण कमल मन तन बसे दर्शन देख निहाल। लाभ मिले तो ताहिरे साध संग निवलाए खाट खजाना गुण निध हरे नानक नाम त्याए। श्लोक संत मंडल हर

पौड़ी सप्तम संचो नाम तन टूट न जाए भंडार संत संगत में पाई है अंत न पारावार आप तजो गोविंद पजो शरण परो हर राए दुख हरे पव जल तरे मन चिंदिया फल पाए आठ पैर मन हर जपे सफल जन्म पर।

प्रीत हर नाम न जपै करत विपरीत पर त्रै रमै बकै साध निंद करन न सुनही हर जस बिंद हिरे पर दर्ब उदर कहताई अगन न निवरै तृष्णा न बुझाई हर सेवा बिन ए फल लागे नानक प्रभु बिसरत मर जमै अपागे। श्लोक दस दिस खोजत मैं फिरियो जत देखूं तत सोए मन बस आवे।

मन में चित में पूरन भगवंत, हस्त चरण संत टहल कमाई है, नानक इहो संजम प्रभ कृपा पाई है। श्लोक एको एक बखानी है।

एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम, मन संतोख सर्व जी दया, इन विद वर्त संपूर्ण भया, तावत मन राखे इकठाए, मन तन शुद्ध जपत हर नाए, सब में पूर रहे पार ब्रह्म, नानक हर कीर्तन कर अटल इउ धर्म। श्लोक दुर्मत हरि सेवा करी, तेते साध किरपाल, नानक प्रभु से मिल रहे बिनसे सगल जंजाल। पौड़ी द्वादशी दान नाम स्नान, हर की भगत करो तजमान, हर अमृत पान करो साध संग, मन तृप्ता से कीर्तन प्रभ रंग, कोमल बाणी सबको संतोख है, पंचपू आत्मा हर नाम रस कोख है, गुर पूरे ते ए नेचो पाई है, नानक राम रमत फिर जोन न आई है। श्लोक तीन गुणा में व्याप्या, पूरन होत न काम, अतित उदारण मन बसे, नानक छूटे नाम। पौड़ी त्रौदशी तीन ताप संसार, आवत जात नरक अवतार, हर हर भजन नाम मन में आयो, सुख सागर प्रभ निमख न गायो, हरक सोग का देह कर बांधियो, दीर्घ रोग माया आसादियो, दिने विकार करत श्रम पायो, नैनी नींद सुपन बरड़ायो, हर विसरत होवत ए हाल, शरण नानक प्रभ पुरख दे।

कुंट प्रभ आप सगल पवन पूरन प्रताप दशे दिशा रविया प्रभ एक करण आकाश सब में प्रभ एक जल थल वन पर्वत पाताल परमेश्वर तें बसें दयाल सूक्ष्म स्थूल सगल भगवान।

नाम दुर्मत मिटी हो मैं छुटी सिमरत हर को नाम। शरण गई पार ब्रह्म की मिटिया आवागमन आप तरे आप कुटुंब स्यो गुण गोविंद प्रभ रवन। हर की टहल कमावनी जपिए प्रभ का नाम गुर पूरे ते पाया नानक सुख विश्राम। श्लोक पूरन कब होना।

को उपदेश है को दृढ़ है तिसका होए उदार, किलबिख काटे होई निर्मला जन्म जन्म मल जाए हलत पलत मुख पूज।

सतगुर पुरख दयाल है जिसनो समत सब कोए, एक दृष्ट कर देखदा मन पावनी ते सिद्ध होए। सतगुर विच अमृत है हर उत्तम हर पद सोए, नानक कृपा ते हर त्याय है गुरमुख पावे कोए। महला चौथा, हौ मैं माया सब बिख है नित जग तोटा संसार, लाहा हर तन खटिया गुरमुख शब्द विचार। हौ मैं मैल बिख उतरे हर अमृत हर उद्धार।

रंग स्यों गुरुमुख हर गुण तास जन नानक हर शरणागति हर मेले गुर साबास। पौड़ी तू करता पुरख अगम है किस नाल तू वड़ी है तुद जेवड होए सो आखी है तुद जेहा तू है पड़ी है तू कट कट एक वर्तदा गुरुमुख पर गड़ी है तू सच्चा सब सदा खत्म है सब दू तू चढ़ी है तू करें सो सच्चे हो।

जिसनो सतगुरु मेले सो गुण रवे, गुण आख वखाणी नानक सच्चा सच है बुझ सच समाणी। श्लोक महला चौथा। हर सत निरंजन अमर है, निरपौ निर्वैर निरंकार, जिन जपया एक मन एक चित तिन लत्ता हो मैं पार, जिन गुरुमुख हर आराध्या तिन संत जना जयकार, कोई निंदा करे पूरे सतगुरु की तिसनो फिट फिट कहे सब संसार, सतगुरु विच आप वर्तदा हर आपे रखन हार, तन तन गुरु गुण गावदा तिसनो सदा सदा नमस्कार, जन नानक तिन को वारिया जिन जपिया सिरजनहार। महला चौथा। आपे तरती साजियन आपे आकाश, विच आपे जंत उपायन मुख आपे दे गिरास, सब आपे आप वर्तदा आपे ही गुणतास, जन नानक नाम त्याए तू सब किलविक कटे तास। पौड़ी। तू सच्चा साहिब सच है सच सच्चे पावे, जो तुद सच सलाह दे तिन जम कंकर नेड़ ना आवे, तिनके मुख दर उजले जिन हर हृदय सच्चा पावे, कूड़ यार पिछा हां सटियन कूड़ हृदय कपट महा दुख पावे, मोह काले कूड़ यारिया कूड़ यार कूड़ो होए जावे। श्लोक महला चौथा। सतगुर तरती तरम है तिस विच जेहा को बीजे तेहा फल पाए, गुर सिखी अमृत बीजिया तिन अमृत फल हर पाए, ओना हलत पलत मुख उजले ओए हर दरगे सच्ची पहनाए, इकना अंदर खोट नित खोट कमावे ओह जेहा बीजे तेहा फल खाए, जां सतगुर सराफ नदर कर देखे स्वावगीर सब उगर आए, ओए जेहा चितवें नित तेहा पाएन ओए तेहो जेहे दैव जाए, नानक दोही सि

रे कनेरिया जे कारवत होवे साई खाए बिन सतगुर सोजी ना पवे अंकार न विचों जाए अंकारिया नो दुख भुख है हाथ तड्डे कर कर मंगाए कूड़ ठगी गुज्जी ना रहे मुलम्मा पाज ले जाए जिस होवे पूरब लिखिया तिस सतगुर मिले प्रभ आए ज्यो लोहा पारस पेटी है मिर संगत सुवरन होए जाए जन नानक के प्रभ तू तनी ज्यो पावे तिवे चलाए पौड़ी जिन हर हृदय सेव्या तिन हर आप मिलाए गुण की साध तिन स्यो करी सब अवगुण शब्द जलाए अवगुण विकण पलरी जिस देह सो सच्चे पाए बलिहारी गुरे आपने जिन अवगुण मेट गुण प्रगति आए वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख आलाए श्लोक महला चौथा सतगुर विच वड्डी वड्याई जो अंदिन हर हर नाम से आवे हर हर नाम रमत सुत संजम हर नाम ही तृप्तावे हर नाम तान हर नाम दीबाण हर नामो रख करावे जो चित लाए पूजे गुरमूरत सो मन इच्छे फल पावे जो निंदा करे सतगुर पूरे की तिस करता मार दिवावे फिर ओ वेला ओ हथ ना आवे ओ अपना बीजिया आपे खावे नरक कोर मुह काले खड़िया ज्यो तस्कर पाए गलावे फिर सतगुर की सरणी पवे ता उबरे जा हर हर नाम से आवे हर बाता आख सुनाए नानक हर करते एवे पावे महला चौथा पूरे गुर का हुक्म ना मन्ने ओ मनमुख अज्ञान मुठा बिकमाया उस अंदर कूड़ कूड़ो कर बुझे अनहोंदे झगड़े दे उस दे गल पाया ओ गल परोसी करे बहु तेरी उस दा बोलिया किसे न पाया ओ कर कर हंडे जो रन दुहागन उस नाल मोह जोड़े उस भी लक्षण ला।

सब पाप जगते का तिन सिर लया, उस अगे पिछे कोई नाही, जिस अंदर निंदा मोह अंब पया, जे सोयने नो ओ हाथ पाए ता खेहू सेती रल गया, जे गुर की सरणी फिर ओह आवे ता पिछले औगण बख्श लिया, जन नानक अंदिन नाम से आया, हर सिमरत किलविक पाप गया। पौड़ी तू है सच्चा सच तू, सब दू ऊपर तू दीवान, जो तुद सच त्याय दे सच सेवन सच्चे तेरा मान, ओना अंदर सच मुख उजरे सच बोलन सच्चे तेरा तान, से भगत जिन्नी गुरमुख सा लाया।

पूरे सतगुरु से हुन सतगुरु मारे जे मेलन नो बहुते आलोचिए ना दे मिलन करतारे सत संगत तोई ना लहन विच संगत बुर विचारे कोई जाए मिले हुन ऊना नो तिस मारे जम जंदारे गुर बाबे फिटके से फिटे गुर अंगद की ते

कोई पुत्र सिख सेवा करे सतगुरु की, तिस कार्य सब सवारे, जो इच्छे सो फल पाए सी, पुत तन लक्ष्मी खर मेले हर निस्तारे, सब निधान सतगुरु विच जिस अंदर हर उर्धारे, सो पाए पूरा सतगुरु जिस लिखिया लिखत लिलारे, जन नानक मांगे तूर तिन जो गुरसिख मित प्यारे। महला चौथा, जिनको आप दे वड्याई, जगत दी आपे आन तिनको पैरी पाए, डरिये ता जे किछ आप दू कीचै, सब करता अपनी कला वधाए, देखो पाई इहो अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का, जिन अपने जोर सब आने वाए, अपने भगता की रख करे, हर स्वामी निंदका दुष्टा के मोह काले कराए, सतगुर की वड्याई नित चढ़े सवाई, हर कीरत भगत नित आप कराए, अन दिन नाम जपो गुर सिखो, हर करता

सिखा के मोह उजले करे हर प्यारा, गुर का जयकार संसार शब्द कराए, जन नानक हर का दास है, हर दासन की हर पैज रखाए पौड़ी। तू सच्चा साहिब आप है सच हमारे, सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रवण जारे थारे, सच सेवे सच वणंज ले गुण कथे निरारे, सेवक पाए से जन मिले गुर शब्द सवारे, तू सच्चा साहिब अलख है गुर शब्द लिखारे। श्लोक महला चौथा, जिस अंदर ताप पराई होवे किसदा कदे न होवी पला, उस दे आख्या कोई न लगे नित ओजारी पुकारे खला, जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या उसदा सब गया, नित चुगली करे अनहोंदी पराई मोह कड न सके उसदा काला भया, कर्म करती शरीर कल युग विच जेहा को बीजे तेहा को खाए, गला ऊपर तपावस न होई विच खादी तत्काल मर जाए, पाई वेखो न्याओ सच करते का जेहा कोई करे तेहा कोई पाए, जन नानक को सब सोजी पाई हर दर किया बाता आप सुनाए। महला चौथा, होंदे प्रतख गुरु जो विछड़े तिनको दर टोई नाही, कोई जाए मिले तिन निंदका मोह फिके थुक थुक मोह पाही, जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके, नित पंबल पूसे खाई जिन गुरु गोपिया अपना से लेंदे तहा फिराई, तिनकी पुख कदे ना उतरे नित पुखा पुख कुकाही, ओना दा आखिया को ना सुने नित हौले हौल मराही, सच गुर की वड्याई वेख न सकनी ओना अगे पिछे थाओ नाही, जो सतगुरु मारे तिन जाय मिले रेंदी खोंदी सब पत गवाई, ओए अगे कुश्ती गुर के फिटके जे उस मिले तिस कुष्ट उठाही, हर तिन का दर्शन ना करो जो दूजे पाए चित लाही, कुर करते आप लिख पाया तिस नाल क्यों चारा नाही, जन नानक नाम अराध तू तिस अपड़ को ना सकाही, नामे की वड्या

तिसको जगत निव्या सब पैरी पया जस वर्त्या लोई, तिसको खंड ब्रह्मंड नमस्कार करें, जिसके मस्तक हाथ करया गुर पूरे सो पूरा होई, गुर की वड्याई नित चढ़े सवाई अपर को नास कोई, जन नानक हर करते आप बैठ क्या आपे पैज रखे प्रभ सोई। पौड़ी काया कोट अपार है अंदर हट नाले, गुरमुख सौदा जो करे हर वक्त संभाले, नाम निदान हर वणजी है हीरे परवाले, विन काया जे होर से तन खोज दे से मूड बेताले, से उजड़ परम पवाई है ज्यो चार मिर्ग पाले। श्लोक महला चौथा, जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा जग में होया, नरक कोर दुख खू है ओथे पकड़ ओ तोया, कूक पुकार को ना सुने ओ औखा होय होय रोया, ओन हलत पलत सब गवाया लाहा मूल सब खोया, ओ तेली संदा बलद कर नित पलके उठ प्रभ जोया, हर वेखे सुने नित सब किछ तिद्दू किछ गुज्जा ना होया।

चरण तोया गुर सतगुर पिछे तर गया जो लोहा काट संगोया जन नानक नाम से आए तू जप हर हर नाम सुख होया। महला चौथा वड पागिया सोहागनी जिना गुरमुख मिलिया हर राय अंतर जोत पर गासिया नानक नाम समाए पौड़ी एवं शरीर सब धर्म है जिस अंदर सच्चे की विच जोत गुहज रतन विच लुक रहे कोई गुरमुख सेवक कड्डे कोत सब आत्म राम पछाणिया ता इक रविया इको ओत पोत इक देखिया इक मन्या इको सुनिया श्रवण स्रोत जन नानक नाम सलाहे तू सच सच्चे सेवा तेरी होत। श्लोक महला चौथा सब रस तिन कह रिदे है जिन हर वस्या मन माहे हर दरगे ते मुख उजले तिनको सब देखन जाहे जिन निरपो नाम से आया तिनको पो कोई नाहे हर उत्तम तिनी सरेविया जिनको तुर लिखिया आहे ते हर दरगे पे नाई है जिन हर उठा मन माहे कोय आप करे सब कुटम स्यो तिन पिछे सब जगत छदाहे जन नानक को हर मेल जन तिन वेख वेख हम

से जंत भय हरि आवले, जिनी मेरा सतगुरु देखिया जाए। तन तन पिता तन तन कुल, तन तन सो जननी जिन गुरु जनिया माए। तन तन गुरु जिन नाम आराध्या, आप तरिया जिनी दिठा तिना ले छाए। हर सतगुरु मेलो दया कर, जन नानक तो वै पाए। पौड़ी सच सच्चा सतगुरु अमर है, जिस अंदर हर उधारिया। सच सच्चा सतगुरु पुरख है, जिन काम क्रोध बिख मारिया। जान डिठा पूरा सतगुरु, ता अंदरों मन साधारिया। बलिहारी गुर आपने सदा सदा कुंवारिया। गुरमुख जिता मनमुख हारिया, गुरमुख जिता मनमुख हारिया। श्लोक महला चौथा, कर कृपा सतगुर मेले उन, मुख गुरमुख नाम ते आए सी। सो करे जी सतगुर तावसी, गुर पूरा करी वसाए सी। जिन अंदर नाम निदान है, तिनका पौ सब गवाए सी। जिन रखन को हर आप होए, होर केती चक चक जाए सी। जन नानक नाम ते आए तू, हर हालत पलत छोड़ाए सी। महला चौथा, गुर सिखा के मन पाव दी।

0: गुर सतगुरु की वडियाई, हर राखो पैज सतगुरु की नित चढ़े सवाई। गुर सतगुरु के मन पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म छिड़ाई। गुर सतगुर तान दीवान हर तिन सब आन निवाई, जिन्नी दिखा मेरा सतगुर पाव कर तिन के सब पाप गवाई। हर दरगे ते मुख उजले बहु शोभा पाई, जन नानक मंगे तूर तिन जो गुर के सिख मेरे पाई। पौड़ी हौ आप सलाही सिर्फ सच, सच सच्चे की वडियाई, सलाही सच सलाह सच, सच कीमत किने न पाई। सच सच्चा रस जिन्नी चखिया से तृप्त रहे आघाई, एहो हर रस से ही जान दे जो गूंगे मिठाई खाई। गुर पूरे हर प्रभ सेविया मन वजी वधाई।
1: श्लोक महला चौथा। जिना अंदर उमर थल से ही जानन सूलिया, हर जाने से ही बिरहो हौ तिन विट्टों सद कुम कोलिया। हर मेलो

सच्चा शब्द पतार है सदा सदा रावे। ज्यो उबली मजीठ है रंग गहगा त्यों सच्चे नो जियो दे। रंग चलू ले अतरती।

था। सत संगत में हर उस्तत है, संग साधु मिले प्यारिया। ओए पुरख प्राणी तन जन है, उपदेश करें पर उपकारिया। हर नाम दृढ़ावे हर नाम सुनावे, हर नामे जग निस्तारिया। गुर वेखण को सब कोई लोचे, नव खंड जगत नमस्कारिया। तुद आपे आप रखिया सतगुर विच, गुर आपे तुद सवारिया। तू आपे पूजे पूज करावे।

सतगुरु नो मिले सही जन उबरे जिन हृदय नाम समारिया जन नानक के गुरसिख पुतो हर जप्यो हर निस्तारिया। महला तीजा हौ मैं जगत पुलाया दुर्मत बिखिया बिकार सतगुर मिले ता नदर होए मनमुख अंध अंधियार। नानक आपे मेल ले जिसनो शब्द लाए प्यार। पौड़ी सच सच्चे की सिफत सलाह है सो करे जिस अंदर पिजे जिन्नी एक मन एक अरादिया तिनका कंध ना कबहू छिजे। तन तन पुरख सवास है जिन सच रसना अमृत पिजे सच सच्चा जिन मन पामदा से मन सच्ची दरगे।

लिजै। तन तन जन्म सचियारिया मुख उज्जल सच करिजै। श्लोक महला चौथा। साकत जाए निवे गुर आ गए मन खोटे कूड़ कूड़ यारे। जा गुर कहे उठो मेरे पाई बह जाहे कुसर बगुलारे। गुर सिखा अंदर सतगुर वरते चुन कड्डे लद्दो वारे। ओए अगे पिछे बह मोछ पाए नारलनी खोटे आरे। ओना दा पख सो उथे नाही जाए कूड़ लैन पेडारे। जे साकत न रखावाये लोचिए बिख कड्डे मुख उगलारे। हर साकत सेती संग न करियो ओए मारे सिरजन हारे। जिसका यो खेल सोई कर वेखे जन नानक नाम समारे। महला चौथा। सतगुर पुरख अगम है जिस अंदर हर उर्धारिया। सतगुरु नो अपड़ कोई ना सके जिस वल सिरजन हारिया। सतगुरु का खड़क संजो हर भगत है जित काल कंटक मार विडारिया। सतगुरु का रखन हारा हर आप है सतगुरु के पिछे हर सब उबारिया।

पौड़ी सच सुत्या जिनी आराध्या जा उठे ता सच चवे से विरले जुग में जानिए जो गुरमुख सच रवे हौ बलिहारी तिन कौ जे अंदिन सच लवे जिन मंतन सच्चा पामदा से सच्ची दरगे गवे जन नानक बोले सच नाम सच सच्चा सदा नवे। श्लोक महला चौथा। क्या सवना क्या जागना गुरमुख ते परवान जिना सास गिरास ना विसरे से पूरे पुरख प्रदान करमी सतगुर पाई है।

नित उठ समालेन। महला चौथा, सतगुर सेविए अपना पाये नाम अपार, पौजल डुबदिया कढ ले हर दात करे दातार। तन तन से सहा है जे नाम करें व्यापार, वन जा

जन भगत है सच सच्चा जिनी अराध्या, जिन गुरमुख खोज टंडोलिया तिन अंदरों ही सच ला दिया। सच साहिब सच जिनी सेविया, काल कंटक मार तिनी साध्या। सच सच्चा सब दू वड़ा है, सच सेवन से सच रला दिया। सच सच्चे नू

मन तृप्त है हर रस खाए पौड़ी। सच सच्चा कुदरत जानी है दिन राती जिन बनाया, सो सच सलाही सदा सदा सच सच्चे किया वड्याईया। सलाही सच सलाह सच सच कीमत किने न पाया, जा मिलिया पूरा सतगुरु ता हाजिर नदरी आईया। सच गुरमुख जिनी सलाहया तिना भुखा सब गवाईया। श्लोक महला चौथा। मैं मन तन खोज खोजेंदिया सो प्रभ लद्दा लोड़, विष्ट

शब्द ना सुनई बहु रोल कचोला, गुरमुख जापे शब्द लिव लाए, हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए, ज्योतिष पावे सो करे कराया, नानक वजदा जंत वजाया। पौड़ी, तू करता सब किछ जानदा, जो जी अंदर वरते, तू करता आप अगणत है, सब जग विच गणते, सब कीता तेरा वरतदा, सब तेरी बनते, तू कट कट इक वरतदा, सच साहिब चलते, सतगुरु नो मिले सो हर मिले, ना ही किसे परते। श्लोक महला चौथा। एहो मनुआ दृढ़ कर रखी है, गुरमुख लाई है चित, क्यों सास गिरास विसारी है, बहंदियां उठदियां नित, मरण जीवन की चिंता गई, इहो जीड़ा हर प्रभु वस, ज्यों पावे।

पुरख विहाए सतगुर पुरख निर्वैर है आपे लय जिस लाए नानक दर्शन जिना विखा लियोन तिना दरगे ले छड़ाए। महला तीजा मनमुख अज्ञान दुर्मत अंकारी अंतर क्रोध जुए मत हारी कूड़ कुसत उह

0: नानक पूरब लिखिया कमाए पौड़ी।
1: जिनके चित्त कठोर है से बह ना सतगुर पास, ओथे सच वर्तदा कूड़ियारा चित उदास। ओए वल छल कर चत कट दे फिर जाए बह कूड़ियारा पास, विच सच्चे कूड़ न गड्डे मन वेखो को निर्जास। कूड़ियार कूड़ियारी जाय रले सच्चार सिख बैठे सतगुर पास। श्लोक महला पंजवा, रहंदे खोंदे निंदक मारियन कर आपे आहर, संत सहाई नानका।

आपो आपनी आपे पछतानी अजराइल फिरस्ता तिन पीड़े कानी। श्लोक महला पंजवा। सेवक सच्चे साह के सेई परवान दूजा सेवन नानका से पच पच मोए।

संसार है की उस्तति विच होवे एत दोख है तपा दे मारिया। महापुरखा की निंदा का वेख जे तपे नो फल लगा, सब गया तपे का कालिया। बाहर बह पंचा विच तपा सदाए, अंदर बह तपा पाप कमाए।

था। मन मुख मूलों पुल्लिया विच लभ लोभ अहंकार, झगड़ा कर दिया अन दिन गुदरे शब्द ना करें विचार, शुद्ध मत करते सब हिरलई बोलन सब विकार, जिते किते ना संतोखिये अंतर तिसना बहु अज्ञान अंध्यार, नानक मन मुखा।

सुख ना पाएन मुगध नर संत नाल खांदे ओए लोचन ओना गुणा नो ओए अहंकार सड़न दे ओए वेचारे क्या करें जा पाग तुर मंदे जो मारे तिन पार ब्रह्म से किसे न संदे वैर करन निर्वैर नाल तर्म न्याय पचंदे जो जो संत सरापिया से फिरे पवंदे पेड़ मुंडा हूं कटिया तिस डाल सुकंदे। श्लोक महला पंजवा। गुरु नानक हर नाम दृढ़ाया पन्नन करण समरथ प्रभ सदा समाले मित्र तू दुख सबाया लथ। महला पंजवा। खुद आवंत ना जाने लाज कुलाज कुबो

गुरमुख ज्ञान विवेक बुद्ध होए, हर गुण गावे हृदय हार परोए, पवित्र पावन परम विचारी, जे उस मिले तिस पार उतारी, अंतर हर नाम वासना समाणी, हर दर शोभा महा उत्तम बाणी, जे पुरुष सुने सो हो।

के पूरे सतगुरु पावे, गुर सिखा अंदर सतगुरु वरते, जो सिखा नो लोचे सो गुर खुशी आवे, सतगुर आखे सो कार कमावन, सो जप कमावे, गुर सिखा की काल सच्चा थाए पावे, बिन सतगुर के हुक्मे जे गुर सिखा पासों कम कराया लोड़े, तिस गुर सिख फिर नेड़ ना आवे, गुर सतगुर अगे

नानक आख सुनावे जे बिन सतगुर के मन मने कम कराए सो जंत महा दुख पावे पौड़ी। तू सच्चा साहिब अत वड्डा तुह जेवर तू वड वड्डे जिस तू मेले सो तुद मिले तू आपे बख्श लह लेखा छड़े जिसनो तू आप मिलाएंदा सो सतगुर सेवे मन गड़ गड़े तू सच्चा साहिब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे ज्यों पावे त्यों रख।

हर हर नाम जो जन जपे सो आया परवान, तिस जन के बलिहारणे जिन पजिया प्रभ निर्वाण, जन्म मरण दुख कटिया हर पेटिया पुरुष।

मन तन नित पावो, नाम सुने नाम संग्रह नामे लिव लावो, गृह तन सब पवित्र होए, हर के गुण गावो, हर नाम

तू सब में एक वर्तदा सब माहे समाना खान थनंतर रव रहा जी अंदर जाना साध संग मिल पाये मन सच्चे पाना नानक प्रभ शरणागति सद सद कुर्बाना श्लोक में।

काम क्रोध लोभ मोह संग सादा पखे कर कृपा प्रभ आपनी हर आप परखे नानक चलत ना जापनी को सके न लखे। श्लोक महला पंजवा। नानक सोई दिन सुहावड़ा जित प्रभ आवे चित जित दिन विसरे पार ब्रह्म फिट पलेरी रुत। महला पंजवा। नानक मित्राई तिस स्यों सब किछ जिसके हाथ।

जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई, कर सेवा पार ब्रह्म गुर पुख रह न काई, सगल मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई, तुद जेवड़ तू है पार ब्रह्म नानक शरणाई। श्लोक महला पंजवा। डिठड़ो हब ठाए ऊण न काई जाए, नानक लद्दा तिन स्वाओ जिना सतगुर पेटिया।

मर गए मर भी न सके मूल, वेमुख होए राम ते ज्यो तस्कर ऊपर सूल। पौड़ी सुख निधान प्रभ एक है अविनाशी सुनिया, जल थल मैयल पूरिया कट कट हर पणिया, ऊंच नीच सब इक समान कीट हस्ती बनिया, मीत सखा सुत बंद पो सब तिस दे जनिया, तुस नानक देव।

नित चितारिया निखुट ना जाई मूल अतुल पंडारिया नानक शब्द अपार तिन सब किछ सारिया महला पंजवा सिखो शब्द प्यारे हो जन्म मरण की टेक मुख उजल सदा सुखी नानक सिमरत एक पौड़ी ओथे अमृत वंडी है सुखिया हर करने जम के पंख न पाये फिर ना ही मरने जिसनो आया प्रेम रस से ही जरने बाणी उचरे साध जन अम्यो चले चरने पेख दर्शन नानक जीव्या मन अंदर तरने श्लोक महला पंजवा सतगुर पूरे सेवे दुखा का होए नास नानक नाम आराध्य कारज आवे रास महला पंजवा जिस सिमरत संकट छुटे अनद मंगल विश्राम नानक जपिए सदा।

बिखै कौड़तन सगल माहे जगत रही लपताए नानक जन विचारिया मीठा हर का नाम पौड़ी। ए निशानी साधकी जिस पेटत तरिए जम कंकर नेड़ ना आवई फिर बहुड़ ना मरिए पव सागर संसार बिख सो पार उतरिए हर गुण गुम्फो मन माल हर सब मल पर हरिए।

जिन हर उठा चित गाली अल पला लिया कम न आवे मित। महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ दृष्टि आया पूरन अगम विस्माद नानक राम नाम तन कीता पूरे गुर प्रसाद। पौड़ी तो वो ना चली खसम नाल लब मोहे विगुते करतब करन पलेरिया मद माया सुते फिर जून पवायन।

लालच अटिया नित फिरे स्वार्थ करे न कोए जिस गुर पेटे नानका तिस मन वसिया सोए पौड़ी सबे वस्तु कौड़िया सच्चे नाव मिठा साध आया तिन हर जना चख सादी डिठा पार ब्रह्म जिस लिखिया मन तिसे उठा एक निरंजन रव रहा पाव दोया कुठा हर नानक मंगे जोड़ कर प्रभ देवे तुठा। श्लोक महला पंजवां।

जन रंग रूप रस बाद के करें प्राणिया जिस पुलाए आप तिस कल नहीं जानिया रंग रते निर्वाण सच्चा गावही नानक शरण द्वार जे तुद पावही पौड़ी जम्मन मरण ना तिन को जो हर लड़ लागे जीवत से परवान।

दह दिशा जल पर्वत बन राए, जिथे डिठा मृत को इल बैठी आए। पौड़ी जिस सर्व सुखा फल लोड़िए, सो सच कमावो, नेड़े देखो पार ब्रह्म इक नाम ते आवो। ओए सगल की रेण का हर संग समावो, दुख न दे किसे जी पत स्यों कर जावो। पतित पुनीत करता पुरख नानक सुनावो। श्लोक दोहा महला पंजवा, एक जे साजन मैं किया सर्व कला समरथ, जियो हमारा खनिए हर मंतन संदड़ी वत। महला पंजवा, जे कर गए प्यारड़े तुद ना छोड़ा मूल, हर छोड़न से दुर्जना पढ़े दोजक कैसूल। पौड़ी सब निधान कर जिस दे, हर करे सो होवे, जप जप जीवे संत जन पापा मल तोवे। चरण कमल हृदय वसे संकट सब खोवे, गुरपुरा जिस पेटिए मर जन्म ना रोवे। प्रभ दर्श प्यास नानक घणी कृपा कर देवे। श्लोक दखना महला पंजवा, पूरी परम वंजाए प्री मोहब्बत हिक तू, जिथों वंजे जाए तिथाऊ मौजूद सोए। महला पंजवा, चढ़ के कोड़े कुंदे पकड़े खूंडी दी खेडारी, हंसा से ती चित उलासे कुकड़ दी ओडारी। पौड़ी रसना उचरे हर श्रवणी सुने, सो उदरे मिता हर जस लिखे लाए पावनी से हस्त पविता। अठ सठ तीर्थ मजना सब पुन तिन किता, संसार सागर ते उदरे बिखिया गढ़ जिता। नानक लड़ लाए।

पौड़ी प्रभ बे अंत किछ अंत नाहे सब तिसै करना अगम अगोचर साहेबो जिया का परना हस्त दे प्रतपालदा परण पोखण करना मेहरवान बख्शिंद आप जप सच्चे तरना जो तुद पावे सो फला नानक दास सरण।

14 अब मोहे जलत राम जल पाया, राम उदक तन जलत बुझाया, रहाओ मन मारन कारण बन जाये, सो जल बिन भगवंत न पाये, जे पावक

नगन फिरत जो पाए जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग। क्या नांगे क्या बांधे चाम, जब नहीं चीनस आत्म राम। रहाओ मूड मुंडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति पेड़ न गैया काई। बिंद राख जो तरिय पाई, खुश रह क्यों ना परमगत पाई। कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बिन किन गत पाई। गौरी कबीर जी संध्या प्रात स्नान कर

देव कहो कबीर भगत कर पाया, पोले पाए मिले रघुराया। गौड़ी कबीर जी गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती। कहो रे पंडित बामन कब के होए, बामन कह कह जन्म मत खोए। रहाओ जो तू ब्राह्मण ब्रह्मणी जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण

तित लागे कंचुआ फल मोती, कवन सो कार जो निरपो कही है, पौ पज जाए अभय होए रही है। रहाओ तट तीरथ नहीं मन पतिया।

लाज न मरो कहो कर मेरा, अंक की बार नहीं कच तेरा रहाओ। अनक जतन कर काया पाली, मरती बार अगन संग जाली, चोआ चंदन।

कहां सुख बिसरे परमानंदा, कूटा एक पंच पनिहारी, टूटी लाज परे मतहारी, कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओ कूटा ना पनिहारी। गौड़ी कबीर जी। अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनेक जन्म किए बहुरंगा, ऐसे कर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए। रहाओ जोगी जति तपि ब्रह्मचारी, कबहू राजा छत्रपत कबहू पेखारी, साकत मरे संत सब जीवे, राम रसायन रसना पीवे। कहो कबीर प्रभु कृपा की जय, हार परे अब पूरा दी जय। गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए लिखिया महला पंजवा। ऐसो अचरज देखो कबीर, दद के पोले बिरोले नीर, रहाओ हरी अंगूरी गधा चरे, नित उठ हाथे ही गय मरे, माता पैसा अमुहा जाए, कुद कुद चरे रसा चल पाए। कहो कबीर प्रगट पई खेड, ले ले को चूगे नित पेड, राम रमत मत प्रगति आई, कहो कबीर गुरसो जी पाई। गौड़ी कबीर जी पंच पदे। ज्यो जल छोड़ बाहर पयो मीना, पूरब जन्म हो तप का ही ना, अब कहो राम कवन गत मोरी, सजीले बनारस मत पई थोरी। रहाओ सगल जन्म शिवपुरी गवाया, मरती बार मगहर उठ आया, बहुत बरस तप किया काशी, मरन पया मगहर की बासी, काशी मगहर संबिचारी, ओछी पगत कैसे उतरस पारी, कहो गुर गज शिव सब को जाने, मुआ कबीर रमत श्री राम। गौड़ी कबीर जी। चोआ चंदन मर्दन अंगा, सो तन जले काठ के संगा, इस तन तन की कवन बढ़ाई, तरन परे उर्वार न जाई। रहाओ रात जे सोवे दिन करे काम, एक खिन ले ना हर को नाम, हाथ ता डोर मुख खायो तंबोर, मरती बार कस बांध्यो चोर, गुरमत रस रस हर गुण गावे, रामे राम रमत सुख पावे, कृपा करके नाम दृढ़ाई, हर हर बात सुगंध बसाई, कहत कबीर चेतरे अंदा, सत राम झूठा सब तंदा। गौड़ी कबीर जी तिप दे चार तुके, जमते उलट पए है राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम, बैरी उलट पए है मीता, साकत उलट सुजन पए चीता, अब मोहे सर्व कुशल कर माने।

जिन राम जानिया तिने पछानिया, ज्यो गूंगे साकर मन मानिया, ऐसा ज्ञान कथे बनवारी, मन रे पवन दृढ़ सुखमन नारी, रहाओ सो गुर करो जे बहुर न करना, सो पद रवो जे बहुर न रवना, सो ध्यान करो जे बहुर न तरना, ऐसे मरो जे बहुर न मरना, उल्टी गंगा जमुन मिलावो, बिन जल संगम मन में नावो, लोचा समसर इहो व्यवहारा, तत विचार क्या और विचारा, अब तेज बाय

है मोल। अब मोहे राम अपना कर जानिया, सह सुभाए मेरा मन मानिया। रहाओ ब्रह्म कथ कथ अंत न पाया, राम भगत बैठे कर आया। कहो कबीर चंचल मत त्यागी, केवल राम भगत निज पागी। गौड़ी कबीर जी जिह मरने सब जगत तरासिया, सो मरना गुर शब्द प्रगासिया। अब कैसे मरो मरन।

सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो पाई मेरे मन भावे। रहाओ जे कट राम रहा परपूर, तिनकी पग पंकज हम तूर।

व्यापी मन है मार कवन सिद्ध थापी, कवन सो मुन जो मन मार है, मन को मार कहो किस तारे रहाओ, मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन पगत न होई, कहो कबीर जो जाने पेओ, मन मधुसूदन त्रिभुवन देओ। गौरी कबीर जी, ओए जो दिसे अंबर तारे, किन ओए चीते चीतन हारे, कहो रे पंडित अंबर कास्यों लागा, बूजे बूजन हार सवागा रहाओ, सूरज चंद करें उजियारा, सब में पसरिया।

कहो कबीर हर चरण दिखावो, पाछे ते जम क्यों ना पठावो। गौड़ी कबीर जी आपे पावक आपे पवना, जा रहे खसम तां राखे कवना। राम जपत

सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमो न मांगिया पावे। विख्या अजो सुरत सुख आसा, कैसे हुई है राजा राम निवासा। रहाओ इस सुख ते शिव ब्रह्म डराना, सो सुख हमो साच कर जाना। सनकादिक नारद मुन सेखा, तिन भी तन में मन नहीं पेखा। इस मन को कोई खोजो पाई, तन छूटे मन कहाँ समाई। गुर प्रसादी जय दियो नामा, भगत के प्रेम इन्हीं है जाना। इस मन को नहीं आवन जाना, जिसका परम गया तिन साच पछाना। इस मन को रूप ना रेखिया काई, हुक्मे जोया हुक्म बूझ समाई। इस मन का कोई जाने पे हो, ए मन लीन पे।

सो समरथ निज पत है दाता, कह कबीर पूरन जग सोई, जाके हृदय अवरना कोई। कौन को पूत पिता को काको, कौन मरे को दे संतापो, हर ठग जग

कह कबीर ठग स्यों मन मानिया, गई ठगोरी ठग पहचानिया। अब मोको पै राजा राम सहाय, जन्म मरण कट परम गत पाई। रहाओ साधु संगत दियो रलाए, पंच दूत ते लियो छड़ाए। अमृत नाम जपो जप रसना, अमोल दास कर लीनो अपना। सतगुर कीनो पर उपकार, काड लीन सागर संसार। चरण कमल

जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी, जत पेखो तत अंतर जामी, अपनी भगत आप ही दृढ़ाई, पूरब लिखत मिलिया मेरे पाई, जिस कृपा करे तिस पूरन साज, कबीर को स्वामी गरीब निवाज। जल है सूतक थल है सूतक, सूतक ओपत होई, जन्मे सूतक मुए फुन सूतक, सूतक परज बिगोई, कहो रे पंडिया कौन पवीता, ऐसा ज्ञान जपो मेरे मीता, रहाओ नैनो सूतक बैनो सूतक, सूतक श्रम नहीं होई, उठत बैठत सूतक लागे, सूतक परै रसोई।

कोई कुशल कुशल करते जग बिन से कुशल भी कैसे होई रहाओ। माटी के कर देवी देवा तिस आ गए जियो देही ऐसे पितर तुम्हारे।

गौरी जीवत मरे मरे फुन जीवे ऐसे सुन समाया अंजन माह निरंजन रही है बौड़ न पवजल पाया मेरे राम ऐसा खीर बिलोई है गुरमत मनुआ अस्थिर राखो इन विद अमृत पियोई है रहाओ गुर के बाण बजर कल छेदी प्रगटिया पद परगासा सकत अंधेर जेवड़ी प्रम चूका नेचल शिव कर बासा तिन बिन बाणे तनुख चढ़ाई है इहो जग बेदिया पाई दह दिस बूढ़ी पवन चुलावे डोर रही लिवलाई उन मन मनुआ सुन समाना दुबदा दुर्मत पागी कहो कबीर अनुपव इक देखिया राम नाम लिवलागे गौड़ी बैरागन तिप दे उल्टत पवन चक्र खट पे दे सुरत सुन अनरागी आवे न जाए मरे न जीवे तास खोज बैरागी मेरे मन मन ही उल्ट समाना गुर प्रसाद अकल पई अवरे नातर था बेगाना रहाओ निवरे दूर दूर फुन निवरे जिन जैसा कर मानिया

रात दिन सते नाही, जल नहीं पवन पावक फुन नाही, सतगुर तहां समाही। अगम अगोचर रहे निरंतर, गुर कृपा ते लहिए, कहो कबीर बल जाओ गुर अपने, सत्संगत मिल रही है। गौड़ी पाप पुन दोए बैल बिसाहे, पवन पूजी प्रगास्यो, तृष्णा गुण परी कट पीतर, इन विद टांड बिसाहो। ऐसा नायक राम हमारा, सगल संसार कियो।

पंडित गुणी सूर हम दाते ए कहें बड़ हम ही। जिसे बुझाए सोई बूझे बिन बूझे क्यों रही है। सतगुर मिले अंधेरा चूके इन विद मानक लही है। तज बावे दहने विकारा हर पद दृढ़ कर।

बटुआ सब जग पसमा तारी तारी लागी त्रिपल पलटी है छूटे होए पसारी मन पवन दोए तुम्बा करी है जुग जुग सारद साजी।

गज नव गज दस गज इक्कीस पुरिया एक तनाई साठ सूत नव खंड बेहतर पाठ लगो अधिकाई गई बुनावन माहो कर छोड़े जाए जुलाहो रहाओ गजी न मिनिये तोल न तुलिये पाचन शेर अढ़ाई जो कर पाचन बेग न पावे चगर करे करहाई दिन की बैठ खसम की बरकस ए बेला कत आई।

महोए। जित कट नाम ना उपजै फूट मरे जन सोए। सावल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तोहे। रहाओ साध मिले सिद्ध पाये के एहो जोग के भोग दो मिले।

कर्म कर्म करते बहु संजम अहं बुद्ध मन जा रहे रे सास ग्रास को दातो ठाकुर सो क्यों मनो विसारे रे हीरा लाल अम

उनमत मान हिरियो मन माही गुर का शब्द न तारियो रे स्वाद लुबत इंद्री रस प्रेरियो मदरस लैत बिकारियो रे कर्म पाग संतन संगाने कासट लोह उधारियो रे तावत जोन जन्म प्रम थाके अब दुख कर हम हारियो रे कह कबीर गुर मिलत महारस प्रेम भगत निस्तारियो रे गौड़ी काल भूत की हस्तनी मन बौरारे चलत रचियो जगदी।

दिखे बाच हर राज समझ मन बौरारे, निरपय होए न हर पजे मन बौरारे, गयो न राम जहाज राहो, मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरारे, लीनी हाथ पसारे, छूटन को सहसा परे।

राम नाम तन कर संचौने सो तन कथि न जावे। हमरा तन मादो गोविंद तरनी तर यह सार तन कही है। जो सुख प्रभ गो

मन मुकंद जेहबा नारायण परे न जमकी फासी निज तन ज्ञान भगत गुरदीनी तास सुमत मन लागा जलत अम्ब थम्ब।

भगत बिन बिरथे जन्म गयो, साध संगत भगवान भजन बिन कहीं ना सच रहो रहाओ। ज्यों उद्यान कुसुम प्रफुल्लत किन्ह ना कराओ लयो, तैसे प्रमत अनेक जून में फिर काल हयो। क्या तन जोबन अर सुतदारा पेखन को जो दयो, तिन ही माए अटक जो उर्जे इंद्री प्रेर लयो। औद अनल तन तिन को मंदर चौ दिस ठाट ठयो, कह कबीर पै सागर तरन को मैं सतगुर ओट लयो।

तन तन सब रस गोविंद तोरा रहाओ। इस माटी में पवन समाया, झूठा परपंच जोर चलाया।

जग में आयो लागत पवन खसम बिसरायो जीरा हर के गुना गाओ रहाओ गर्भ जोन में उर्द तप करता तो जठर अगर मैं रहता लख 84 जोन प्रम आयो अब के छुटके।

रमैया गुण गाय जाते पाये परम निधान रहाओ। क्या जप क्या तप संजमो क्या व्रत क्या स्नान जब लग जुगत न जानिए पाओ भगत भगवान। संपै देख ना हरखिए विपत देख ना रोए जो संपै त्यों विपत है बिदने रचिया सो होए। कह कबीर अब जानिया।

कहां पया नर देवा तोखे क्या जल बोरियो गया था जीरे जाहेगा मैं जाना अवगत समझ आना जत जत देखो।

वैकुंठ जाये, नाम पदार्थ मने बसाये, हृदय सुध जो निंदा हुए, हमरे कपरे निंदक तोए, निंदा करे सो हमरा मीत, निंदक माए हमारा ची

थे तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही। अब हम तुम एक भये हैं, एक कह देखत मन पति आही। जब बुद्ध होती तब बल कैसा, अब बुद्ध बल न

बांधी बस्त अनूप बीच पाई। कुंजी कुलफ प्राण कर राखे करते बार न लाई। अब मन जागत रहो रे पाई गाफल होए कै जन्म गवायो। चोर मुसे कर जाई रहाओ पंच पहरुआ दर में रहते तिनका नहीं पतियारा। चेत सुचेत चित होए रहो तौले परगास उजारा। नौ कर देख जो कामन पूली बस अनूप न पाई। कैत कबीर नवे कर मूसे दसवें सत समाई। गौड़ी माई मोहे अवर

दिखे रोग पै बंधन पागे मन निज कर सुख जाना ना। एक सुमत रत जान मान प्रभ दूसर मने ना अनाना। चंदन बास पे मन बासन त्याग कट्यो अभिमाना ना। जो जन गाए त्याए जस ठाकुर तास प्रभु है थाना ना। ते बड़ पाग बस

अक्षर लोक त्रय सब कछ इन्हीं माहे, ए अक्षर खिर जाएंगे ओए अक्षर इनमें नाहे। जहाँ बोलते अक्षर आवा, जह अबोलते मन ना रहावा, बोल अबोल मद है सोई, जस ओ है तस लख है न कोई। अल्लह लहो तो क्या कहूं, कहूं ता को उपकार, बटक बीज में रव रहे हो जाको तीन लोक विस्तार। अल्लह लहंता पेद छे कछ कछ पायो पेद, उलट पेद मन भेदियो पायो अपंग अछे।

लिख अर मेटे ताहे न माना, ओंकार लखे जो कोई सोई लख मेटना ना होई, पक्का किरण कमल में पावा।

टट्टा बिकट काट कट माही, खोल कपाट महल के न जाही, देख अटल टल कतह न जावा, रह लपट कट पर चो पावा। ठट्ठा एह दूर ठग नीरा, नीठ नीठ मन किया तीरा, जिन ठग ठगिया सगल जग खावा, सो ठग ठगिया ठौर मन आवा। डड्डा डर उपजे डर जाई, ता डर में डर रहा समाई, जो डर डरे तब

जोत्रे भवन तन माहे समावा, तो तत्ते तत मिलिया सच पावा। थथा अथा था नहीं पावा, ओ अथा एहो थिर न रहावा। थोड़े थल थानक आरंभे, बिन ही थांबे मंदर थंबे। दद्दा देख जो बिन सनहारा, जस अदेख तस राख बिचारा। दसवें द्वार कुंची जब दीजे, तो दयाल को दर्शन की जय। तद्दा अर्दें उर्द निवेरा, अर्दें उर्दें मंज बसेरा। अर्दें छाड़ उर्द जो आवा, तो अर्दें उर्द मिलिया सुख पावा। नन्ना निस दिन निरखत जाई, निरखत नैन रहे रतवाई। निरखत निरखत

निवारे, अल्प सुख छाड़ परम सुख पावा, तब ए त्रिये ओकंत कहावा। हा हा होत होए नहीं जाना, जब ही होए तब है मन माना, है तो सही लखे जो कोई, तब ओही ओह एहो ना होए। ल्यो ल्यो करत फिरे सब लोग, ता कारण व्यापे बहु सोग, लक्ष्मी बरस्यो जो ल्यो लावे, सोग मिटे सब ही सुख पावे। खखा खिरत खपत गए केते, खिरत खपत अजहू ने।

बावन अखर जोरे आन, सकिया ना अखर एक पछान, सत का शब्द कबीरा कह, पंडित होए सो अनपैर है। पंडित लोगे को व्यवहार, ज्ञानवंत को तत विचार, जा कह जी जै

ना ओ बढ़े ना कटता जाए, अकुल निरंजन एक है पाए। तृतीया तीने सम कर ल्यावे, अनद मूल परम पद पावे। साध संगत उपजे विश्वास, बाहर पीतर सदा प्रगास। चौथे चंचल मन को गहो, काम क्रोध संग कभो ना बहो।

देख्या त्यों लोक का पियो, अचरज पया जीव ते सियो। तेरस तेरे अगम बखान, अर्द उर्द बिच सम पहचान, नीच ऊच नहीं मान अमान, व्यापक राम सगल सामान। चौदस चौदह लोक मजार, रोम रोम में बसे मुरार।

मेरा कर्म कुटल सा जन्म को भांति राम गुसैया जी के जीवना मोहे न बिसारो मैं जन तेरा रहाओ। मेरी हरो विपत जन करो सुभाई चरण ना छाड़ो शरीर कल जाए। कहो रविदास परो तेरी सांबा बेग मिलो जन करना बिलांबा।

आदि सब सिद्ध होए। कर्म अकर्म विचारिय शंका सुन वेद पुराण, संसार सद हृदय बसै कौन हिरै अभिमान। बाहर उदक पखारिय कट पीतर विविध विकार, शुद्ध कमन पर होए वो सुच कुंज।

गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर, गावन तुदनो साध विचारे, गावन तुदनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे, गावन तुदनो पंडित पड़े रखी सर जुग जुग वेदा नाले, गावन तुदनो मोणी।

सोख पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावे तुझ जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संतो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू कट कट अंतर सर्व

सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई, कह न जाई तेरी तिलवड़ियाई, सब सत सब तप सब चंगियाईया।

इत रंग नाचो रख रख पाओ। सिख सभा दीख्या का पाओ, गुरमुख सुनना साचा नाओ। नानक आखन वेरा वेर, इत रंग नाचो रख रख पैर। आसा मैला पैला पौन उपाय तरी सब तरती, जल अग्नि का बंद किया। अंधुले दे दिस मूंड कटाया, रावण मार क्या वड़ा भया। क्या उपमा तेरी आखी जाए, तू सर्वे पूर रहा लिवलाए। रहाओ जी उपाय जुगत हथ कीनी, काली नाथ क्या वड़ा भया। किस तू पुरख जोरू कौन कही है, सर्व निरंतर रव रया। नाल कुटम साथ वरदाता, ब्रह्मा पालन सृष्ट गया। आगे अंत न पायो ताका, कंस छेद क्या वड़ा भया। रत्न उपाय तरे खीर मथया, और पखलाए जे असी किया।

पूजै कोई पनत नानक सबना का फिर एको सोए जिसनो नदर करे सा सुहागण होए आसा मैला पहला गृह बन समतर तय सुबाए दुर्मत गत पई कीरत ठाए सच पौड़ी साचो मुख नाओ सतगुर सेव पाए निज खाओ मन चूरे खट दर्शन जान सर्व ज्योत पूरन भगवान रहाओ अधिक त्यास पेक बहु करे दुख बिखिया सुख तन पर हरे काम क्रोध अंतर तन हिरे दुबदा छोड़ ना।

तन मन हर पै आगे जिंद झूठ विकार महा दुख देहे देख वरन दिसे सबके जो उपजे सो आवे जाए नानक अस्थिर नाम रजाए आसा मेला पहला एको सर्वर कमल अनूप सदा बिगा

जो हर राते से जन परवान तिनकी संगत परम निधान हर वार जिन पाया तन नारी हर स्यों राती शब्द विचारी आप तरह संगत कुल तारे सतगुरु सेव तत विचारे हमरी जात पथ सच नाओ कर्म तर्म संजम सत भाओ नानक बखे पूछ न होए दूजा मेटे को सोए हासा महला पहला एक आवे एक जावे आई एक हर राते रह समाई एक तरन गगन में ठौर न पावे से कर्महीन हर नाम न प्यावे गुर पूरे ते गत मित पाई इहो संसार बिखवत अत पौजल।

ज्यो जल अम्ब ऊपर कमल निरारे, बुरा पला को किसनो कही है, दिसे ब्रह्म गुरुमुख सच लही है, अकथ कथो गुरुमत विचार, मिल गुर संगत पावो पार, शास्त्र वेद सिमरत बहु भेद, अठ अठ मज्जन हर रस रे।

गुर प्रसाद रतन हर लाभे, मिटे अज्ञान होए उजियारा रहाओ। रमनी रवे बंधन नहीं टूटे, विच हो मैं परम न जाई। सतगुर मिले ताहू मैं टूटे, ताको लेखे पाई। हर हर नाम भगत प्रिय प्रीतम, सुख सागर उर्धारे। भगत वचन जग जीवन दाता, मत गुरमत हर निस्तारे। मन स्यो जूझ मरे प्रभ पाए, मनसा मने समाए। नानक कृपा।

0: भूख रहे।
1: ऐसा गुरमत रमत शरीरा हर पज मेरे मन गहर गंभीरा रहाओ। अनत तरंग भगत हर रंगा अंदिन सूचे हर गुण संगा। मिथ्या जन्म साकत संसारा राम भगत जन रहे मिरारा। पूती काया हर गुण गाया आत्म चीन रहे लिवलाया। आद अपार अपरंपर हीरा लाल रता मेरा मन धीरा। कथनी कहे कहे से मुए सो प्रभ दूर नाही प्रभ तू है। सब जग देख्या माया छाया नानक गुरमत नाम ते।

ऐनक अंधले दीपक दे, पौजल डूबत चिंत करे, कहे सुने जो माने ना हो, हों बलिहार है ताके जाओ, नानक एक।

अंध जीव रख नाही, तन्नी पवन न वाजे, चरनी चले पजूता आगे, बिन सेवा फल लागे, अखर बिरख बाग पोए।

मन्ने हुकुम सो प्रगट जाए, सत निशाने ठाक न पाए। पंडित पढ़े वखाने वेद, अंतर वस्त न जाने तेद, गुरबिन सो जी।

सब जप तप जिस हर हृदय अलख व्यवहार नानक राम नाम मन राता गुरमत पाए सहज सेवा आसा महला पहला पंच पदे।

चौपदे। विद्या विचारी ता पर उपकारी, जन पंच राशी ता तीर्थ वासी। कुंगरू वाजे जी मन लागे, तो जम कहा करे मोसो आगे। रहाओ आस निरासी तो सन्यासी, जा जत जोगी ता काया पोगी। दया दिगंबर दी बिचारी, आप मरे अवरा ने मारी।

कौन निष्पर्श हो वहाँ रहा हो। आस प्यासी से जय आवा आगे से पावा के ना पावा, क्या जाना क्या होएगा री माई, हर दर्शन बिन रह ना जाए राव, प्रेम ना चाखिया मेरी तिस ना बुझानी, दया सो जोबन तन पछतानी।

कोई नदर करे मेलावा होई राव सरोरड़े तन साथ पछाणिया सह सुधाए अपना फिर जानिया गुर प्रसादी ऐसी मत आवे ता कामण कंते मन भावे कहत नानक पै पाव का करे सीधा।

कै कोई जातिस आवे बख्शे सोई वो प्रसादी दुर्मत खोई जय देखा तह को सोई कहत नानक ऐसी मत आवे ताको सच्चे सच समावे आसा मैला पहला दुख दे तित सर्वरण भई ले निवासा पानी पावक तिन्ह किया पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबी अले मन एक न चेतस मूर मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा ना हूं जति सती नहीं पड़िया मूरख मुगदा जन्म तया प्रणवत नानक तिनकी सरणा जिंतु नाही विसरिया आसा मैला पहला छे घर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वेश अनेक जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोए राव विश्वे चस्या करिया पैरा सिती वारी माओ भया सूरजे को रुत अनेक नानक करते के केते वेश इको अंकार सतगुरु प्रसाद आशा करती जा मैला पैरा लख लख कर लख वाजे ने जे लख उठ करे सलाम लखा उपर फुरमाइश तेरी लख उठ रखे मान जा पत लेखे ना पवे ता सब निराफल का

लख खटिए लख संजिए खाजे लख आवे लख जाए जा पत लेखे ना पवे ताजी किथे फिर पाए लख सासत समझावनी लख पंडित पढ़े पुराण जा पत लेखे ना पवे ता सबे कुपरवान सच नाम पत उपजे कर्म नाम करतार एनस हृदय जे वसे नानक नदरी पार आसा मेला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल उन चानन ओ सोखिया चूका जमस्यो मेल लोका मत को फकड़ पाए लख मरिया कर एक टे एक रसीले पाए रहाओ पिंड पत्तल मेरी के सो क्रिया सच नाम करतार एथे उथे आगे पाछे इहो मेरा आधार गंग बनार

कर कर पगवे पेख पए, तौ कारण साहिबा रंग रते, तेरे नाम अनेका रूप अनंता, कहन न जाही तेरे गुण के ते रहाओ। दर कर महला हस्ती कोड़े, छोड़ विलायत देश बहे, पीर पैगंबर सालिक साधक छोड़ी दुनिया खाए पए, साध सहज सुख रस कष्ट जियले, कापड़ छोड़े।

सूत तोती कीनी तू साहिब हो सांगी तेरा प्रणवे नानक जात कैसी आसा खर पंजवा महला पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद पीतर पंच गुप्त मनवासे फिर न रहे जैसे पवे उदासे मन मेरा दयाल सेती फिर न रहे लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगे रहाओ फूल माला गल पहरोगी हारो मिलेगा प्रीतम तब करोगी सिगारो पंच सखी हम एक पतारो पेड़ लगी है जीड़ा चालन हारो पंच सखी मिल उदन करेहा साहो पजूता कणवत नानक लेखा देहा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद।

सीमा सिगार कामन तन पहरे रावे लाल प्यारी। लाल बहु गुण कामन मोही तेरे गुण हो है नावरी राव। हर हर हार कंठले पहरे दामोदर दंतले कर कर करता कंगन पहरे किन विद चित तेरे। मधुसूदन कर मुंद्री पहरे परमेश्वर पटले तीरज कड़ी बंधावे कामन श्री रंग सुरमा दे। मन मंदर जे दीपक जाले काया सेज करे ज्ञान राव जब सेजे आवे ता नानक भोग करे। आसा मैला पहला कीता होवे करे कराया तिस क्या कही है भाई। जो किछ करना सो कर रहया कीते क्या चतुराई। तेरा हुकम पला तुद पावे नानक ताको मिले वडाई। साचे नाम समावे रहाओ किरत पया परवाना लिखिया दौड़ हुकम न होई। जैसा लिखिया तैसा पढ़िया मेट न सके कोई। जे क्यों दरगे बहुता बोले नौ पवे बजारी शतरंज बाजी पक्के नहीं कच्ची आवे सारी। ना को पढ़िया पंडित बिना ना को मूर्ख मंदा बंदी अंदर।

फिर स्वास्थ्य माँ हडाव जो कुछ करे पला कर मानो सहज जोग निध पाव। बाबा जुगता जियो जुग।

शिव नगरी में आसन बैसो कल्प त्यागी बादन सिंगी शब्द सदा तुम सो है एनस्पूर नादन पत विचार ज्ञान मत डंडा वर्तमान विपूतं हर कीरत रह रास हमारी गुरुमुख पंथ अतीतं सगली जोत हमारी सम्या नाना वर्ण अनेकं कहो नानक सुन परथर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं पासा मेला पहला गुर कर ज्ञान ध्यान कर पावे कर करनी कस पाई है

रंग रच रहा एनस बने प्रेम लिव लागी शब्द अनाहद गया रहाओ पूरा साच प्याला सहजे तिसे पियाए जा को नदर करे अमृत का व्यापारी हो वह क्या मद छूछे पाव तरे गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान भया दर दर्शन का प्रीतम होवे मुक्त वैकुंठ करे क्या सिफ्ती रत्ता सद बैरागी जुए जन्म न हारे कहो नानक सुन कर पर जोगी खीवा अमृत धारे आशा महला पहला खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया आपे दोष न दे करता जमकर मुगल चढ़ाया एती मार पई कर लाने की दर्द न आया करता तू सदना का सोई जे सकता सत्य को मारे काम रोष न होई रहा सत्ता शिव मारे पै वगै खसने सा पुरसाई।

जेको नौ कराए वड्डा साध करे मनभाणे खसमे नदरी कीड़ा आवे जेते चुगे दाने मर मर जीवे ताक पाए नानक नाम वखाणे।

हर दर्शन पावे वड भाग, गुर के शब्द सच्चे बैराग। हर दर्शन वरते वरतारा, गुर का दर्शन अगम अपारा। गुर के दर्शन मुक्त गत होए, साचा आप वसे मन सोए रहाओ। गुर दर्शन उदरे संसारा, जे को लाए पाओ प्यारा। पाओ प्यारा लाए विरला कोए, गुर के दर्शन सदा सुख होए। गुर के दर्शन मोख द्वार, सतगुर सेवे परवार साधार। निगुरे को गत पाई नाही, अवगुण मुठे चोपा खाई। गुर के शब्द सुख शांत शरीर, गुरमुख का तो लगे नकीर। जम काल किस नीड़ ना आवे, नानक गुरमुख साथ।

आए सेवड पागी जिन नाम ते आया सदा गुण दाता मन वसाया जो गुण संग्रह है तिन बलिहार है जाओ दर साचे साचे गुण गाओ आपे देवे सह सुभाए नानक कीमत कह न जाए ऐसा मैला तीजा सतगुर विच वड्डी वड्याई चिरी विच ने मेल मिलाई आपे मेले मेल मिलाए अपनी कीमत आपे पाए हर की कीमत किन विद होए हर अपरंपर अदम अग

जो मन राते हर रंग लाए, तिनका जन्म मरण दुख लाथा, ते हर दरगे मिले सुगाए रहाओ, शब्द चाखे साचा साध पाए, हर का नाम मन वसाए, हर प्रभु सदा रहा परपूर, आपे नेड़े आपे दूर, आखण आखे बके सब कोए, आपे बक्स मिलाए सोए, कहने कथन न पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, गुरमुख विच्चों आप गवाए, हर रंग राते मोह चुकाए, अत निर्मल गुर शब्द विचार, नानक नाम सवारण हार, आसा मैला तीजा, दूजे पाए लगे दुख पाया, बिन शब्द बिरथा

अंध सजाए मन मुख अंधा ठौर न पाए बिष्टा का कीड़ा बिष्टा माए पचाए गुर की सेवा खुदा सुख पाए संत संगत मिल हर गुण गाए नौमे नाम करे विचार आप तरह कुल उदनहार गुर की बाणी नाम बजाए नानक महल शब्द कर पाए गुरमत सत सर हर जल नाया दुरमत महल सब दुरत गवाया आसा महला तीजा मन मुख मरे मर मरण विगाड़े दूजे पाए आत्म संगारे मेरा मेरा कर कर विभूता आत्म न चीने पर मैं विसूता मर मोया सब दे मर जाए उस तक निंदा गुर समझन आई इस जुग में लहा हर जप ले जाए रहाओ नाम विहून गर्भ गल जाए बिरथा जन्म दूजे लोभाए नाम विहूनी दुख जले सबाई सतगुरु पूरे बूझ बुझाए मन चंचल बहु चोटा खाए एक छू छुड़किया ठौर न पाए गर्भ जोन विष्टा का वास तित कर मनमुख करे निवास अपने सतगुरु को सदा बल जाए गुरमुख ज्योति ज्योत मिलाई निर्मल वाणी निज कर वासा।

तन मन अर्पे सतगुर शरणाई, हिरदय नाम वड्डी वड्याई, सदा प्रीतम प्रभ होए सखाई। सो लाला जीवत मरे, सोग हरक दोई संकर जाने, गुर प्रसादी शब्द उदरे रहाओ। करणी कार तुरो फुरमाई, बिन शब्द को थाए न पाई, करणी कीरत नाम वसाई, आपे देवे टिल न पाई। मन मुख परम पुले संसार, बिन राशि कूड़ा करे वसा।

दोहागणी का मन देख सिंगार, पुत्र कलत तन माया चित लाए, चूत मोह पाखंड विकार। राव सदा

अंतर निर्मल अमृत शरण आए, सदा सूचे साथ समाए। हर प्रभ वेखे सदा हजूर, गुर प्रसाद रहा भरपूर। जहां जाओ तह वेखा सोए, गुर बिन दाता अवरना कोए। गुर सागर पूरा पंडार, उत्तम रतन जवाहर अपार। गुर प्रसादी देवन हार, नानक बख्शे बख्शन हार। आसा मैला तीजा, गुर सायर सतगुर सच सोए। पूरे पाग गुर सेवा होए, सो बुझे जिस आप बुझाए। गुर प्रसादी सेव कराए, ज्ञान रतन सब सोजी होए। गुर प्रसाद अज्ञान विनाशे, अंधन जागे वेखे सच सोए। रहाओ मोह गुमान गुर सब जलाए, पूरे गुर पे सोजी पाए। अंतर महल गुर शब्द पछाने, आवन जान रहे फिर नाम समाने। जमन मरना है संसार, मन मुख अचेत माया मोह गुबार। पर निंदा दो कूर कमावे, विष्टा का कीड़ा विष्टा माए समावे। सत संगत मिल सब सोजी पाए, गुर का शब्द हर पल दृढ़ाए। पौना मन्ने सदा सुख होए, नानक सच समावे सोए। आसा मैला तीजा, पंच पदे शब्द मरे तिस सदा आनंद। सतगुर पेटे गुरु गोविंद, ना फिर मरे ना आवे जाए। पूरे गुर ते साच समाए, जिनको नाम लिखिया तुरलेख। ते अंदिन नाम सदा त्यावे, गुर पूरे ते भगत विशेख। रहाओ जिनको हर प्रभ ले मिलाए, तिनकी गहन गत कहीं न जाए। पूरे सतगुरु दित्ती वड्याई, उत्तम पदवी हर नाम समाए। जो किच करे सो आपे आप, एक कड़ी में थाप थाप। कह कह कहना आप सुनाए, जे सो काले थाए न पाए। जिनके पोते पुन तिना गुरु मिलाए, सच बाणी गुर शब्द सुनाए। जहां शब्द वसे तहां दुख जाए, ज्ञान रतन साचे सहज समाए। नावे जेवड होर तर नाही कोए, जिसनो बख्शे साचा सोए। पूरे शब्द मन वसाए, नानक नाम रते सुख पाए। आसा मैला तीजा, नृत्य करे बहु वाजे बजाए। यो मन अंधा बोला है किस आँख सुनाए। अंतर लोभ परम अनलवाओ, दीवा बले ना सोजी पाए। गुरमुख भगत कट चानन होए, आप पछाण मिले प्रभ सोए। रहाओ गुरमुख नृत हर लागे पाओ, पूरे ताल विच्चों आप गवाए। मेरा प्रभ साचा आपे जान, गुर के शब्द अंतर ब्रह्म पछाण। गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार, गुर का शब्द सहज विचार। गुरमुख भगत जुगत सच सोए, पाखंड भगत नृत दुख होए। एहा भगत जन जीवत मरे, गुर प्रसादी पव जल तरे। गुर के वचन भगत खाए पाए, हर जियो आप वसे मन आए। हर कृपा करे सतगुरु मिलाए, नेचल भगत हर स्यों चित लाए। भगत रते तिन सच्ची सोए, नानक नाम रते सुख होए।

सोई गुर प्रसादी मन वसे हर बूझे सोई मैं समुदाता एक है और ना ही कोई गुर कृपा ते मन वसे ता सदा सुख होई रहाओ इस युग में निरपो हर नाम है पाये गुर विचार बिन नामे जम के बस है मन मुख अंध गवार हर के पाने जन सेवा करे बूझे सच सोई हर के पाने सालाही है पाने मने सुख होई हर के पाने जन्म पदार्थ पाया मत उत्तम होई नानक नाम सलाहे तू गुरमुख गत होई आसा महला चौथा।

विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सब ही आख वखाने, जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजावर न कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरुमुख प्रगट होए।

पहला चौथा किस ही तरह किया मित्र सुत नाल भाई, किस ही तरह किया कुरुम सके नाल जवाई, किस ही तरह किया सिकदार चौधरी नाल अपने सुआई, हमारा तरह हर व्या समाई, हम हर स्यों तरह किया मेरी हर केक, मैं हर दिन पथ तरा और ना कोई, हूँ हर गुण गावा असंख अनेक रहाओ, जिन स्यों तड़े करे से जाहे, झूठ कड़े कर पछोताहे, फिर ना रहे मन खोट कमाहे, हम हर स्यों तरा किया जिसका कोई समरथ ना है, ये सब कड़े माया मोह पसारी, माया को लूजे गवारी, जन्म मरे जुए बाजी हारी, हमरे हर तरह जे हलत पलत सब सवारी, कल युग में तड़े पंच चोर चगड़ाए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान वधाए, जिसनो कृपा करे तिस सत्संग मिलाए, हमरा हर तरह जिन ए तड़े सब गवाए, मिथ्या दूजा पाओ तरे बह पावे, पराया छिद्र अटकले अपना अहंकार वधावे, जैसा बीजे तैसा खावे, जन नानक का हर तरह कर्म सब श्रेष्ठ जिने आवे। आसा मेला चौथा हृदय सुन सुन मन अमृत पाया, गुरबाणी हर अलख लखाया, गुरमुख नाम सुनो मेरी बहना, एको रव रया कठ अंतर मुख बोलो, गुर अमृत बहना रहाओ, मैं मन तन प्रेम महा बैराग, सतगुर पुरख पाया वडपाग, दूजे पाए पवे बिख माया, पाग हीन नहीं सतगुर पाया, अमृत हर रस हर आप पियाया, गुरपूरे नानक हर पाया, गुरपूरे नानक हर पाया। आसा महला चौथा।

सखाई नौनहीन गए मूड नंगा पच पच मोए दिख देख पतंगा आपे थापे थाप उठापे नानक नाम देवे हर आपे आसा मेला चौथा गुरमुख हर हर वेल वधाई फल लागे हर रस रसाई हर हर नाम जप अनंत तरंगा जप जप नाम गुरमुख सालाही मारिया काल जम कंकर पुयंगा रहाओ हर हर गुर में भगत रखाई गुर सुखा सिख देवे मेरे भाई हो मैं कर्म किस विद नहीं जाने जो कुंचर नाए खाक सिर छाने जे वड पाग हो मैं वड ऊंचे नानक नाम जपे सच सूचे आसा मेला चौथा हर हर नाम की मन भूख लगाई नाम सुने मन तृप्त है मेरे भाई नाम जपो मेरे गुरु सिख मीता नाम जपो नाम में सुख पावो नाम रखो गुरमत मन चीता रहाओ नामो नाम सुनी मन सरसा नाम लाहा ले गुरमत बिकता नाम बिना पुष्टि मोह अंधा सब ने फल कर्म किए दुख तंदा हर हर हर जस जपे वड पागे नानक गुरमत नाम लिव लागे।

गुरमत हर गुण बोलो जोगी त्यो मनुआ हर रंग पेन। जोगी हर दियो मति उपदेश जुग जुग हर हर एको वर्त है तिस आगे हम आदेश राओ। गावे राग पास बो बोले एहो मनुआ खेले खेल जो वे कूप सिंचन को बसदा उठ बैल गए चरबेल। पाया नगर में कर्म हर बोवो हर जा में हरिया खेत मनुआ सिर बैल मन जोवो हर सिंचो गुरमत जेत। जोगी जंगम सृष्ट सब तुमरी जो देहो मति तित चेल जन नानक के प्रभ अंतर जामी हर लागो मनुआ पेल। आसा मैला चौथा कब को पाले कुंगरू ताला कब को बजावे रबाब आवत जात बार खिन लागे हों कब लग समारो नाम। मेरे मन ऐसी पगत बन आई हम हर बिन खिन पल रह न सको जैसे जल बिन मीन मर जाई रहा। कब को मेले पंच सत गायन कब को राग तुन उठावे मेलत चुनत खिन पल चसा लागे कब लग मेरा मन राम गुन गावे। कब को नाचे पाव पसारे कब को हाथ पसारे हाथ पाव पसारत बिलम तिल लागे तब लग मेरा मन राम सुमारे। कब को लोगन को पति आवे लोक पति ने ना पत होए जन नानक हर हृदय सद त्यावो ता जय जय करे सब कोए। आसा मैला चौथा सत संगत मिलिए हर साधु मिल संगत हर गुण गाए ज्ञान रतन बलिया कट चानन अज्ञान अंधेरा जाए। हर जन नाचो हर हर त्याए ऐसे संत मिले मेरे पाई हम जन के तो मैं पाए रहाओ। हर हर नाम जपो मन मेरे अन दिन हर लिव लाए जो इच्छो सोई फल पाओ फिर भूख न लागे आए। आपे हर अपरंपर करता हर आपे बोल बुलाए से संत पले तुद पावे जिनकी पत पावे खाए। नानक आत्मा राजे हर गुण जो आखे त्यों सुख पाए भगत भंडार दिए हर अपने गुण गाहक वनज ले जाए।

जीवन मरण सुख होए जिना गुरु पाया, नानक सच्चे सच सच समाया। आसा मेला चौथा जन्म पदार्थ पाए नाम ते आया, गुरु प्रसाद बुझ सच समाया।

हर गुण गाइए, अंतर वस्त अनेक मनमुख नहीं पाइए, हम में गर्भ गर्भ आप खुआइए, नानक आपे आप खुआइए, गुरमत मन पर गास सच्चा पाइए।

हूँ उन दिन हर नाम कीर्तन करो। सतगुरु मोको हर नाम बताया हूँ हर दिन खिन पल रह ना सकू रहाओ। हम रह श्रवण सिमरन हर कीर्तन हूँ हर दिन रह न सकू हूँ एक खिन। जैसे हंस सरवर बिन रह न सके तैसे हर जन क्यों रहे हर सेवा बिन। किन्हु प्रीत लाई दूजा पाओ रिज तार किन्हु प्रीत लाई मोह अपमान। हर जन प्रीत लाई हर निर्वाण पद नानक सिमरत।

हर बिन खिन पल रह न सकूं, जैसे कड़हल बेल दी जाई राव। हमरा मन बैराग बिरकत कहो, हर दर्शन मीत कहताई। जैसे अल कमला बिन रह न सके, तैसे मोए हर बिन रह न जाई। राज करण जगदी सुर प्यारे, मोए सरदा पूर हर गुसाई। जन नानक कै मन अंध होत है, हर दर्शन निमक दिखाई।

सोई फिर खाया, जिन सुख बैठा ली तिस पर दोष दिखाया, पाई मीत कुटुंब देख विवादे, हम आई वसगत गुर प्रसादे, ऐसा देख भी मोहित हुए, साधिक सिद्ध सुरदेव मनुखा।

हम हर राखे लग सतगुरु पावे। तप करते तपसी फूलाए, पंडित मोहे लोग सुभाए, त्रै गुण मोहे मोहा आकाश।

त्यागी हूँ मैं प्रीत, दुखिया त्यागी लोगा रीत, त्रै गुण त्याग दुर्जन मीत समाने, तुरिया गुण मिल साध पछाने, सहज गुफा में आसन बांधया, ज्योत स्वरूप अनाद वाजया, महा आनंद गुर शब्द विचार, त्रै सो राति तन सुहागना।

जित गृह वसै सो गृह सो बावंता, गुरमुख पाई किने विरलै जनता, सो करणी कामण गुरमिल हम पाई। जज काज परथाए सुहाई रहाओ, जिचर वसी पिता के साथ, टीचर कंत बहु फिरे उदास, कर सेवा सतपुरुष मनाया, गुर आनी कर में पा सर्व सुख पाया। बत्ती सुलखणी सत संतत पूत, आज्ञाकारी सुगर स्वरूप, इच पूरे मन कंत स्वामी, सगल संतो की देर जेठानी, सब परवारे माए श्रेष्ठ, मत्ती देवी देवर ज्येष्ठ, तन सो गृहो जित प्रगति आए, जन नानक सुखे सुख विहाए।

तब तीरथ न छोड़े जोग सन्यास, पर थाके सिमरत वेद व्यास। जै बैसो तै नाले बैसे, सगल पवन में सबल प्रवेश है। होछी शरण पया रह न पाई, कौमी ताहो कह कह जाई। सुनो उपदेश सतगुर पे आया, गुर हर हर नाम मोह।

नानक दास तेरी शरण आई, प्रभ राखी पैज वजी वधाई। आसा महला पंजवा, परदेश चार सौदे को आया, वक्त अनूप सुनी लभाया, गुण रास बन कल्याणी, देख रतन यो मन लपतानी, सावा पारी द्वारे आए, वखर काडो सौदा कराए रहाओ, साय कठाया साहे पास, अमोल रतन अमोला रास, विष्ट सुभाई पाया मीत, सौदा मिलिया ने चल चीत, पौ नहीं तस्कर पौ न पानी, सहज विहाजी सहज ले जानी, हट के खटे दुख नहीं पाया, सही सलामत कर ले आया, मिलिया लाहा पै आनंद, तन सहा पूरे बख्शिंद, ये सौदा गुरमुख किने विरले पाया, सहली खेप नानक ले आया, आखा महल

कर मस्तक पार राखियो कर अपना क्या जाने यो लोक अजाना रहाओ सुहाग हमारो अब हुन सोयो कंक मिलियो मेरो सब दुख जोयो आंगन मेरे शोभा चंद निस बासुर प्रिय संग आनंद बस्तर।

आसा मैला पंजवा दुख रोग पए गत संते मन निर्मल हर हर गुण गाए।

पावत रहे एक एक बूझिया, आए बसे अब ने चल खाए, जगत उदाहरण संत तुम्हारे, दर्शन पे खत रहे अघाए, जन्म दोष परे मेरे पाछे, अब फकरे ने चल साधु पाए, सहज तुन गावे मंगल मनुआ, अब ताको फुनकाल न खाए, करण कारण समर्थ हमारे, सुखदाई मेरे हर हर राय, नाम तेरा जब जीवे नानक, पोत पोत मेरे संग सहाय, आशा में ला पंजवा, अरड़ावे बिललावे निंदक, पार ब्रह्म परमेश्वर बिस्रिया, अपना कीता पावे निंदक रहाओ, जे कोई उसका संगी होवे, नाले ले सिदावे, अनहोंदा अजगर पार उठाए, निंदक अग्नि माए जलावे, परमेश्वर के द्वारे जे होए बतीते, सो नानक आप सुनावे, भगत जना को सदा आनंद है, हर कीर्तन गाए बिकसावे, आसा मेला पंजवा, जो मैं कियो सगल सिगारा, तो भी मेरा मन ना पतियारा, अनेक सुगंधत तन

वस्त्र भी कूफन सुख बहुत विशेष है, कोई भी जानो कितना लेख है, पथ शोभा अरमान महत आज्ञाकारी सगल जगत। गृह ऐसा है सुंदर लाल, प्रभु पावा सा सदा निहाल, व्यंजन भोजन अनेक प्रकार, रंग तमाशे बहुत विस्तार, राज मिलक अर बहुत फुरमाइस, मन नहीं त्रापे तृष्णा ना जायस, बिन मिलबे यो दिन ना बिहावे, मिले प्रभु ता सब सुख पावे, खोजत खोजत सुनी ए सोए, साध संगत बिन तरयो न कोए, जिस मुक्तक पाग तिन सतगुरु पाया, पूरी आशा मन तृप्ताया, प्रभ मिलिया ता चूकी डंजा, नानक लद्दा मन तन मंजा। आशा महला पंजवा पंच पदे

किस सर पर मरना, मुआ हो वह किसने चल रहना, जीवत मोए मोए से जीवे, हर हर नाम अवसद मुख पाया, गुर सब्दी रस अमृत पीवे। रहाओ काची मटकी बिनस बिनासा, जिस छूटे तृप्ति किस निज पर वासा, ऊंचा चढ़े सो पवे प्याला, तरन पड़े किस लगे न काला, क्रमत फिरे तिन किछु न पाया, से अस्थिर जिन गुर शब्द कमाया, जियो पिंड सब हर कमाल, नानक गुर मिल पे निहाल, आशा महला पंजवा, उतरी तेरी बिद कर खाती, जान सत कर हो।

बिचता अस्त रखत परे थे चाम, इस ऊपर ले राख्यो गुमान। एक वक्त बूझे ता हो वै पाक, बिन बूझे तू सदा न पाक। कहो नानक गुर को कुर्बान, जिससे पाई है हर पुरुष सुजान। आखा महला पंजवा, एक तुके चौपदे

सब अंत न जाने पंच दूत मिल फिरो विछोड़ी क्रम क्रम रोवे हाथ पछोड़ी जन नानक को हर दर्श दिखाया आत्म चीन परम सुख पाया।

खुद जन बकरा मोको कहाँ डवाई रहाओ हर मेरी ओट में हर का तान हर मेरा सखा मन माहे दीवान हर मेरी पूंजी मेरा हर वेसा हो गुरमुख तन छट्टी हर मेरा सा हो गुर कृपा से ए मत आवे जन नानक हर कै अंक समावे आसा मैला पंजवा प्रभ होए कृपाल ताए हो मन लाई सतगुर सेव सब फल पाई मन क्यों बैराग करेगा सतगुरु मेरा पूरा मनसा का दाता सब सुख निधान अमृत सर सब ही पर पूरा रहाओ चरण कमल रिद अंतर धारे प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे पंच सखी मिल मंगल गाया अनहद बाणी नाद बजाया गुरु नानक तुठा मिलिया हर राय सुख रैन विहानी सह सुवाए आसा मेला पंजवा कर कृपा हर प्रगति आया मिल सतगुर तन पूरा पाया ऐसा हर तन संचिय भाई कहे न जाने जल नहीं डूबे संग छोड़ कर कत हो न जा ही रहा हो कोट न आवे निकुट न जाए खाए खर्च मन रहा अगाए सो सत्सा हो जिस कर हर तन संचाना इस तन से सब जग वरसाना तिन हर तन पाया जिस खूब लिखे का लेना जन नानक अंतवार नाम गहना आसा मेला पंजवा जैसे किसान बोवे किसानी काची पाकी बाढ़ परानी जो जन में सो जानो मुआ गोविंद भगत अस्थिर है।

वार करत चूठी लग जाता रहा वजो साहिब का सेब बिरानी कैसे गुणे अच्छा दियो प्राणी तिस्यो लोक जो सद ही संगी कामना आवे सो फिर मंगी कहो नानक प्रभु दीन दयाला ज्यो पावे त्यों कर कृपाला आसा मेला पंजवा जी प्राण तन हर को नाम इहा उहा उन संकाम बिन हर नाम अवर सब छोरा त्रित अधावे हर दर्शन मन मोरा रहाओ पगत पंडार।

नानक को गुरु दीक्षा दीन प्रभ अविनाशी कट कट चीन आसा महला पंजवा अनद विनोद परे पुर तारिया अपना कारज आप संवारिया।

निर्बुद्ध विवेक दास सगल का छोड़ अभिमान नानक को गुरदीनो दान आसा मेला पन्यवा बुद्ध प्रगास सही मत पूरी तमसे बिनसी गुरमत दूरी ऐसी गुरमत पाई ने बूढ़त कोर अंध कूप में निक्षो मेरे पाई रे रहाओ महा अगा अगन का सागर गुर बोहित तारे रत्नागर दुतर अंध बिखम ए माया गुर पूरे प्रगट मार्ग दिखाया जात पाप कछ उक्त न मोरी गुरु नानक शरणागत तोरी आसा मेला पंजवा तिप दे दूजा हर रस पीवत सद ही राता आन रसा खिन में लह जाता हर रस के माते मन सदा आनंद।

हर साधु हर समाए लाख करोरी मिले न के जिसे प्राप्त तिस ही दे नानक चाक पे बिस्माद नानक गुरते आया साध ईत ऊत कस छोड न जाए नानक गीदा हर रस माहे आसा मेला पंजवा काम क्रोध लोभ मोह मिटावे छुटके गुरमत अपनी

उठत सोवत जागत विसर नाही तू सास गिरा साराओ राख राख शरण प्रभ अपनी अगन सागर विकराला नानक के सुखदाते सत।

ठंडी ताती मिट्टी खाई, ओहो ना बाला बूढ़ा पाई। राव नानक दास साध सरनाई, गुर प्रसाद पाओ पार कराई। आसा महला सन्यवा सदा सदा आत्म प्रगास, साध संगत हर चरण निवास। राम नाम नित जप मन मेरे, शीतल सांप सदा सुख पावे। किल विख जाए सबे मन तेरे, रहाओ कौ नानक जाके पूरन कर्म। सतगुर पेटे पूरन पार ब्रह्म, दूजे करके चौती।

मिल संग पयो मन निर्मल गुरपुर लेखिन मैं तारे रहाओ सबकी रेन होए रह मनुआ सगले दिशे मीत प्यारे सब मदे रविया मेरा ठाकुर दान देत सब जी समारे एको एक आप एक है सगला पासारे जप जप होए सगल साध जन एक नाम त्याए बहुत उधारे गैर गंभीर बेअंत गुसाई अंत नहीं किस पार आवारे तुमरी कृपा ते गुण गावे नानक त्याए त्याए प्रभु को नमस्कारे आसा मेला पंजवा तू बेअंत अविगत अगोचर एहो सब तेरा आकार क्या हम जंत करें चतुराई जा सब किछ तुझे मझार मेरे सतगुर अपने बालक राखो लीला तार।

हम आधार अर्ध करे सास सास समारे ना को है अगनार पर तन पर दारा पर निंदा इनसो प्रीत निवार चरण कमल सेवी हृदय अंतर।

दिहाड़े कर्म कर्म जुगत बहु करता करने हार ना जाने उपदेश करे आप ना कमावे तत शब्द ना पछाने नांगा आया नांगो जासी जो अस्थि खाक छाने संत सज्जन सुनो सब नीता झूठा एवो पसारा मेरी मेरी कर कर डूबे खप खप मोए गवारा गुर मिल नानक नाम ते आया साच नाम निस्तारा राग आसा कर पंजवा महला पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद प्रम में सोई सगल जगत तंद अंध को जागे हर जन महामोहनी मगन प्रे प्रीत प्राण को त्याग विरला चरण कमल अनूप हर संत मंत को लागे साधु नानक साधु संग जागे ज्ञान रंग वड पागे कृपा इको अंकार सतगुरु प्रसाद राग आसा कर छेवा महला पंजवा जो तुद पावे सो परवाना सुख सहज मन सोई करण कारण समरथ अपारा अवर नाही रे कोई तेरे जन रसक रसक गुण गावे मसलत मता सियानक जन की जो तू करे करावे रहाओ अमृत नाम तुम्हारा प्यारे साध संग रस पाया त्रिपत अघाए से जन पूरे सुख निदान हर गाया जा को टेक तुम्हारी स्वामी का को नाही चिंता जा को दया तुम्हारी होई से सह पले भगवंता कर्म मोह त्रो सब निकसे जब का दर्शन पाया वर्तन नाम ना।

को किस पे करे पुकारा। निंदक की गत कतहू नाही खसमे एवे पाना, जो जो निंद करे संतन की त्यों संतन सुखमाना। संता टेक तुम्हारी स्वामी तू संतन का सहाई, कहू नानक संत हर राखे निंदक दिए रुड़ाई। आसा मैला पंजवा बार तोए अंतर मन मैला, दोए ठौर अपने कोए इहां काम क्रोध मोह व्याप्या, आगे मुसमुस रोए गोविंद भजन की मत है होरा। गर्मी मारी साथ न मरी नाम ना सुने डोरा रहाओ, माया की किरत छोड़ दवाई भक्ति सार न जाने, वेद शास्त्र को तर्कन लागा।

छुपाया, कूड़ कपट वंश निमुनिया दाया, बिरस गया तत्काले सत सत सत नानक कहया, अपने हृदय देख समाले आसा मैला पंजवा। उदम करत हो गय मन निर्मल नाचे आप निवारे, पंच जना ले वसगत राखे मन में एक अंकारे, तेरा जन नृत्य करे गुण गावे, रबाब पक

राम नाम जप हृदय जापे मुक्ते सगल सुनावे कर संग साधु चरण पखारे संत तूर तन लावे मन तन अर्थ करे गुर आगे सत पदार्थ पावे जो जो सुने पे खेलाए सरदा ताका जन्म मरण दुख पागे ऐसी मृत नरक निवारे नानक गुरु मुख जागे आसा महला पंजवा।

रे आज के बस गुर कीनो के हर कुकर तिने लगाई रे रहाओ बाज फूनिया छपरा थामिया निकरिया कर पाया रे बिन जड़िए ले जड़ियो जड़ावा थेवा अचरज लाया रे दादी दाद न पहुंचन हारा चूपी निर्नो पाया रे माल दुली चै बैठी ले मृतक नैन दिखालन ताया।

कहो नानक गुर अम्यो पियाया रसक रसक बिगसाना रे आसा मेला पंजवा बंधन काट बिसारे औगन अपना बिरद समारिया होए कृपाल मात कितने आई बारक ज्यों प्रतपारिया गुर सिख राखे गुर गोपाल काज लिए माँ पौजल ते अपनी नदर निहाल रहाओ जाके सिमरन जमते छुटिए हलत पलत सुख पाये सास गिरास जपो जप रसना नीत नीत गुण गाये भगत प्रेम परम पद पाया साध संग दुख नाके छिजे न जाए किछ पौ न व्यापे हर तन निर्मल गाठे अंत काल प्रभ पै सहाय इत उतराखन हारे।

मैं जियो सुनकर बचन तुम्हारे सतगुर मन तन मेरा ठार थियो रहाओ तुमरी कृपा ते पयो साध संग एहो काज तुम आप कियो दिढ़ कर चरण गहे प्रभु तुमरे सहजे बिखिया पई खियो सुख निधान नाम प्रभु तुमरा एहो अविनाशी मंत्र लियो कर कृपा मुझ सतगुर दीना ताप संताप मेरा बैर गियो तन सो मानस देही पाई जित प्रभ अपने मेल लियो तन सो कल जुग साध संकीर्तन गाये नानक नाम आधार हियो।

नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाउ ना जावे मेरा पासा मेला पंजवा। कर कृपा प्रभ अंतर जामी, साध संग हर पाये, खोल किवार दिखा ले दर्शन, पुनरप जन्म ना आये। मिलो प्रीतम स्वामी अपने, सगले दुख हरोरे, पार ब्रह्म जिन हृदय अराध्या, ताके संग तरोरे। राव महा उद्यान पावक सागर भय, हरख सोग में बसना, सतगुर पेट पया मन निर्मल, जप अमृत हर रसना। तन तन थाप कियो सब अपना, कोमल बंधन बांधिया, गुर प्रसाद पय जन मुक्ते, हर हर नाम आराध्या। राख लिए प्रभ राखनहार, जो प्रभ अपने पाने, जियो पिंड सब कुमरा दाते, नानक सब कुर्बाने। आसा महला पंजवा, मोह मलन नींद के छुट

काम क्रोध अहंकार दाखरो संयम कौन छुट्योरी सुर नर देव असुर त्रै घनिया सगलो पवन लुट्योरी दावा अग्न बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहोरी ऐसो समरथ वरण न साको ताकि उपमा जात न कहोरी काजर कोट में पई न कारी निर्मल वरण बन्योरी महामंत्र गुर हृदय।

प्रेम भगत नानक सुख पाया साधु संग समाए इको अहंकार सतगुरु प्रसाद राग आशा कर।

बहुत पिहाला, सगल चरण की इहु मन राला, नानक जन गुरु पूरा पाया, अंतर बार एक दिखाया। आशा मेला कन्या पावत रलिया जो बन बलिया, नाम बिना माटी संग रलिया, कान कुंडलिया बस्तर ओढ़लिया, सेज सुख लिया मन गर्बलिया, रहाओ तले कुंचरिया सिर कनक छतरिया, हर भगत बिना ले तरन गडलिया, रूप सुंदरिया अनेक स्त्रिया, हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया, माया चलिया बिकार बिखलिया, शरण नानक प्रभु पुरख दयालिया। आसा मेला पंजवा एक बगीचा पेड़ कन करिया, अमृत नाम कहा मैं फलिया, ऐसा करो विचार ज्ञानी, जाते पाये पद निर्वाणी, आस पास दिखुआ के कुंता, बीच अमृत है पाई रे, रहाओ सिंचन हारे एक है माली, खबर करत है पात पत डाली, सगल बनस्पत आन जड़ाई, सगली फूली निफल नाकाई, अमृत फल नाम जिन गुरते पाया, नानक दास तरी तिन माया। आसा मेला।

पूछो ता माया राते सो स्थान बतावो मीता जाके हर हर कीर्तन नीता रहाओ शास्त्र वेद पाप पुन विचार नरक स्वर्ग फिर अवतार ग्रस्त में चिंत उदास अंकार कर्म कर्त जी को जंजार प्रभु कृपा से मन वस आया।

हर हर जपत तह दुख डेरा, हुक्म गूंजे सोई परवान, साथ सब जाता निशान, गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया, पंत नानक मेरे मन सुख पाया, आसा मेला पंजवा, जहाँ पठावो तह तह जाई, जो तुम देहो सोई सुख पाई, सदा चेरे गोविंद गोसाई, तुमरी कृपा ते तृप्त अगा।

कहो नानक नित इवै त्याई गत होवै संतै लग पाई आसा मैला पंजवा उठत बैठत सोवत त्याये मार्ग चलत हरे हर गाये श्रवण सुनी जय अमृत कथा जास सुनी मन होए आनंदा दुख रोग सगले मन लखा राव कारज काम बाट काट जपी जय गुर प्रसाद हर अमृत पी जय दिन सरैन हर कीर्तन गाये सो जम जम की वाट न पाये आठ पैर जिस विसरे नाही गत होवे नानक तिस लग पाए आसा मैला पंजवा जा कै सिमरन सुख निवास पई कल्याण दुख होत नास अनद करो प्रभ के गुण गावो सतगुर अपना सब सदा मनावो रहाओ सतगुर का सच शब्द कमावो फिर कर बैठे प्रभ अपना पावो पर का बुरा न राखो चीत तुमको दुख नहीं पाई मीत हर हर तंत मंत गुरु दीना यो सुख नानक।

तुम्हारे दर्शन मांगो दे प्यारे, तुम्हारी सेवा कौन कौन ना तारे, राव जाके निकट न आवे कोई, सगल सृष्ट पुआ के चरण मल धोई, जो प्राणी काहु ना आवत काम, संत प्रसाद का को जपिए नाम, साध संग मन सोवत जागे, अब प्रभु नानक नीचे लागे, आशा मेला धन्यवाद। एको एकी नैन निहारो, सदा सदा हर नाम समारो।

के सूत्र होई कट कट अंतर रहया सोई ओ पट पर लो खिन में करता आप अलेपा निर्गुण रहता करण करावन अंतर जामी।

किलबिक बिनासे दुख दर्द दूर पै पुनीत संतन की तूर रहा। प्रभु के संत उदाहरण जोग इस पेटे जिस पुर संजोग मन आनंद मंत्र गुरु दिया कृष्ण बुझी मन ने चल किया नाम पदार्थ नौ निध सिद्ध नानक गुरते पाए।

ते पय मन निर्मल हर हर हर हर नाम सुना रहाओ बिन सो मन का मूर्ख टीठा प्रभु का पावना लागा मीठा गुरपुरे के चरण गहे कोट जन्म के पाप लहे रतन जन्म एव सफल भया कहू नानक प्रभु करी मया आसा महला पंजवा।

सतगुर अपना सद सदा समारे, गुर के चरण के संग चारे, जागरे मन जागन हारे, बिन हर अवर नाव सुकामा, झूठा मोह मिथ्या पसारे, राव गुर की बाणी से रंग लाए, गुर कृपाल होए दुख जाए, गुर बिन दूजा नाही थाओ, गुर दाता गुर देवे नाओ, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर आप, आठ पैर नानक गुर जाप, आसा मेला पंजवा, आपे पेड़ विस्थारी साख, अपनी खेती आपे राख, जत कत पे खोए कै ओही, कट कट अंतर आपे सोई, राव आपे सूर किरण विस्थार, सोई गुपत सोई आकार, सर गुण निर्गुण था पैनाओ, दो मिल एक कै कीनो ठाओ, कहो नानक गुरु परम को खोया, अनुज रूप सब नैन अलोया, आसा महला पंजवा,

रहाओ मूर्ख मुग्ध अज्ञान अविचारी नाम तेरे की आसमान धारी जप तप संयम कर्म न सादा नाम प्रभु का मने अरादा किछु न जाना मत मेरी थोरी बिनवत नानक ओट प्रभ तोरी आसा मेला पंजवा हर हर अखर दोए माला जपत जपत पै दीन।

तुत कतै न डोले कहु नानक जो राचे नाए हर माला ता कै संग जाए आसा महला पंजवा जिसका सब किछ तिसका होए तिस जन लेप न व्यापे कोए हर का सेवक सद ही मुक्ता जो किछ करे सोई पल जन कह अत निर्मल दास की जुगता रहाओ सगल त्याग हर सरणी आया तिस जन कहां व्यापे माया नाम निधान जाके मन माहे तिसको चिंता सुपने नाहे कहो नानक गुरु पूरा पाया परम मोह सगल बिन साया।

रहाओ मिट गया दुख बिसारी चिंता फल पाया जब सतगुरु मंता सोई सत सत है सोए सिमर सिमर रख कंठ करोए कहो नानक कौन।

जागत भगत सिमरत हर राते रहाओ मोह परम बहु जोन को आया अस्थिर भगत हर चरण से आया बंधन अंग कूप गृह मेरा मुक्ते संत बुझे हर नेरा कहु नानक जो प्रभु शरण आये इहा सुख आगे गत पाए आशा मेला पन्नवा तू मेरा तरंग हम मीन तुम्हारे।

तू मेरी गत पथ तू परवान, तू समरथ मैं तेरा तान, अनदिन जपो नाम गुण खास, नानक की प्रभु पै अरदास, आसा मैला पन्नवा, रोवन हारे झूठ कमाना, हस हस सोग करत बेगाना, को मुआ का कह कर गावन, को रोवे को हस हस पावन, रहाओ बाल व्यवस्था ते बिरधाना, पहुँचना मुका फिर पछताना, त्रयो गुण में वर्त संसारा, नरक सुरग फिर अवतारा, कहो नानक जो लाया नाम, सफल जन्म

ओजन पूरन रहे अधाई, कछु न थोरा हर पगतन को, खात खर्चत बिलछत देवन को, रहाओ जाका तनी अगम गुसाई।

जहाँ को दया करो मेरे स्वामी, कहो नानक नाही तिन कामी। आशा महला पंजवा, जो मैं अपना सतगुरु त्याया, तब मेरे मन महा सुख पाया, मिट गई गणित बिना सो संसार, नाम रते जन पे भगवंता रहाओ। जो मैं अपना साहिब चीत, पाओ पाओ मिटियो मेरे मीत, जो मैं ओट गई प्रभ तेरी, पा पूरन होई मनसा मेरी, देख चलत मन पे दिलासा, नानक दास तेरा परवासा। आसा महला पंजवा, अन दिन मूसा लाज टुकाई, गिरत कूप में खाए मिठाई, सोचत साचत रैन बिहानी, अनक रंग माया के चितवत, कभू न सिमरे सारंग पानी रहाओ। द्रुम की छाया नहीं चल गृह बांधिया, काल के फांस सकत सर सांधिया, बालू किनारा तरंग मुख आया, सोथान मूड नहीं चल कर पाया, साध संग जप्यो हर राय, नानक जीवे हर गुण गाए। आसा मेला पंजवा, दो तुके नावा, उनके संग तू करती केल, उनके संग हम तुम संग मेल, उनके संग तुम सब को लोरे।

उनके संग तू रखी पलोल, ओस बिना तू छुटकी रोल। उनके संग तेरा मान महत, उनके संग तुम साख जगत। उनके संग तेरी सब विथाटी, ओस बिना तू हुई है माटी। ओ बैरागी मरे न जाए, हुक्मे बादाकार कमाए। जोड़ बिछोड़े नानक थाप, अपनी कुदरत जाने आप। आसा महला पंजवा, ना ओ मरता ना

तृष्णा, जह ओ निर्मल ता हम जतना। हम किच नाही एक ओही, आगे पाछे को सोई। नानक गुरु खोए परम पंगा, हम ओए मिल होए इकरंगा। आसा महला पंजवा, अनेक पांच कर सेवा करिए, जियो प्राण तन आगे तरिए। पानी पखा करो तज अभिमान, अनेक बार जाइए कुर्बान। सरई सुहागण जो

पाद का पावो संग मिले स्वामी अपने रंग जाप ताप देवो सब ने मां कर्म कर्म अर्पो सब हो मां गर्भ मोह तज हो वो देन उनके संग देखो प्रभ नैन निमख निमख एही आ

उपत होए के राज समाया कर कर अनर्थ विहाजी माया संचत संचत फैली कीनी प्रभ उसते डार अवर को जीनी काच गगरिया अंब मजरिया।

पाई। जग मोहनी हम त्याग गवाई, निर्गुण मिलियो वजी वधाई रहाओ। ऐसी सुंदर मन को मोह है, बाट काट गृह

पुरख विधाते हैं बहुर बहुर जन्मा दे जो पयो कृपाल दीन दुख पंजन तो गुर मिल सब सुख ला दे कहो नानक।

जन्म मरण दुख लाथ रहाओ दूजा पासा मेला पंजवा। निमक काम स्वाद कारण कोट दिनस दुख पावे, कई मोत रंग माने फिर बौर बौर पछतावे। अंधे चेत हर हर राया तेरा सोदन नेड़े आया, रहाओ पलक दृष्ट देख फूलो आ

देखत साधु संग हर हर नाम चरावो रंगन आपे ही प्रभ रंग। मन में राम नामा जात कर कृपा वसो मेरे हृदय होए सहाय आप रहाओ। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रत्येकन का चाओ। दया करो किरम अपने को यह मनोरथ सुहाओ। तन तन तेरा तू प्रभु मेरा हमरे वस किछ नाहे। ज्यो ज्यो राखे त्यों त्यों रहना तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किल विख काटे मज्जन हर जन तूर। पाए भगत परम पौ नासे हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवा अगम अगोचर दर्श तेरा सो पाए जिस मस्तक पाग। आप कृपाल कृपा प्रभु तारी सतगुरु बख्शिया हर नाम। कल जुग उधारिया गुरुदेव मल मूत मूड जे मुग्द होते सब लगे तेरी सेव। रहाओ तू आप करता सब सृष्ट धरता सब मेरे आसमाए। कर्म राजा बिस्माद हुआ सब पई पैरी आए। सत युग त्रेता द्वापर कणी है कल युग उत्तमो जुगा माहे। ऐ कर करे सो ऐ कर पाए कोई न पकड़िए किसे थाए। हर जियो सोई करे जे भगत तेरे जाचे एहो तेरा बिरद कर जोड़ नानक।

सतगुरु बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ। महाबिखादी दुष्ट अपवादी ते पुनीत संगारे, जन्म पवनते नरक पड़नते तिनके कुल उधारे। कोई न जाने कोई न माने से प्रगट हर द्वारे, कौन उपमा दियो कौन वडाई नानक खिन खिन वारे। आसा महला।

चरणन सरणन संतन बंदन सुखो सुख पाहे। नानक तप्त हरि मिले प्रेम पिरी आशा मैला पंजवा। गुरे दिखायो लोए ना रहाओ ईते ऊते कट कट कट कट। तू ही मोहिना कारण करना कारण करना। एक है सोहिना संतन परसन बलिहारी दर्शन। नानक सुख सुख सोएना आशा मैला पंजवा। हर हर नाम अमोला ओह सहज सुहेला। रहाओ संग सहाई छोड़ न जाई ओह अगे अतोला। प्रीतम पाई बाप मोरो माई भगतन का ओला। अलख लखाया गुर ते पाया नानक एहो हर का चोला आसा मैला पंजवा। अपनी भगत निवाहे ठाकुर आयो आहे। रहाओ नाम पदार्थ हुए सक

गुण रस रस गावे, एक आशा दर्श प्यासा आन न पावे, दया तुहारी क्या जंत विचारी, नानक बल बल जावे। आशा महला पंजवा, एक सिमर मन माही रहाओ, नाम ते आवो हृदय बसावो, तिस बिन को नाही, प्रभ सरनी आये सर्व फल पाये, सगले दुख जाही, जीवन को दाता पुरख विदाता, नानक कट कट आही। आशा महला पंजवा, हर बिसरत सो मुआ रहाओ, नाम ते आवे सर्व फल पावे, सो जन सुखिया हुआ, राज कहावे हो कर्म कमावे, बांध्यो नलनी प्रम सुआ, कहो नानक जिस सतगुरु पेटिया, सो जन ने चलतिया। आशा महला पंजवा, कर चौथा इको अंकार, सतगुरु प्रसाद। ओहो निहो नवेला, अपने प्रीतम स्यो लाग रहे रहाओ, जो प्रभ पावे जन्म न आवे, हर प्रेम भगत हर प्रीत रचे, प्रभ संग मिली जय, इहो मन दी जय।

जाए। प्रभ तुमरे दर्श बिन सुख नाही, वर्त नेम संजम कर थाके। नानक साध शरण प्रभ संग वसै, आसा मैला पंजवा कर पंद्रवा पड़ताल एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद। विकार माया माद सोयो, सूझ बूझ ना आवे। पकर केस जम उठारियो, तद ही कर जावे। लोभ बिखिया बिखे लागे, हिरवित चित दुखाही। खिन पंगुना के

हर मुका पछतायो मन पोरा, दान सगल गैर वजह परया, दीवान लेखे ना परया, जे कारज रहे ओला सोए कामना करया। ऐसो जग मोहे गुर दिखायो, तो एक कीरत गाया, मान तान तज से।

स्यों संत सेव प्रीत नाथ रंग लालन लाए गुर ज्ञान मन दृढ़ाए रहसाए नहीं आए सहजाए मन निदान पाए सब तजी मने की काम करा चिर चिर चिर चिर पाया मन बहुत प्यास लागी हर दर सुनो दिखावो।

काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल काम रहाओ। तज मान मोह विकार मिथ्या जप राम राम राम मन संतना के चरण लाग प्रभु गोपाल दीन दयाल पतित पावन पार ब्रह्म हर चरण सिमर जाग कर भगत नानक पूरन।

मना रहाओ। टूटे अन पराना रवयो सर्व थाना लहो जम पयाना पायो पेड़ थाना तो चूकी सगल कान।

तिस निकट ना कदे दुख हा, जो हर हर जस सुने हा, सब को तिस मने हा, सफल सो आया हा, नानक प्रभ पाया मेरे मना, आसावरी मैला पंजवा। मिल हर जस गाये हा, परम पद पाये हा, उआ रस जो बिदे हा, ताऊ को सगल सिदे हा, अन दिन जा गया हा, नानक बढ़ पा गया मेरे मना रहाओ, संत पग तोये हा, दुर्मत खोये हा, दासे रेन होए हा, व्यापे दुख ना कोए हा, भगता शरण

उत्तर अवघट सर्वरनावे, बके न बोले हर गुण गावे, जल आकाशी सुन समावे, रस सत चोल महारस पावे, ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे, परपुर तार रहा सब ठौरे, रहाओ सच व्रत नेम न काल सुनतावे, सतगुरु शब्द क्रोध जलावे, गगन निवास समाध लगावे, पारस परस परम पद पावे, सच मन

सुरत विपूत चढ़ावे, दर्शन आप सहज कर आवे, निर्मल बाणी नाद बजावे, अंतर ज्ञान महारसारा, तीर्थ मज्जन गुर विचारा, अंतर पूजा थान मुरारा, ज्योति ज्योत मिलावन हारा, रस रसिया मत एक भाए, तख्त निवासी पंच समाए, कार कमाई खसम रजाए, अवगत नाथ न लख्या जाए, जल में उपजे जल से दूर, जल में ज्योत रहा परपूर, किस नेड़े किस आखा दूर।

उजर पर मैं रहे न पाई, बिन बूझे को खाए न पाई, नाम बिहूने माथे छाई, साच तनी जग आए बिना सा, छूटस प्राणी गुरमुख दासा रहाओ, जग मुहे बांधा बहुती आसा, गुरमति एक पे उदासा, अंतर नाम कमल पर गासा।

तिनको नाही जम की त्रासा। जग त्रिय जित कामन हितकारी, पुत्र कलत्र लग नाम विसारी, वृथा जन्म गवाया बाजी हारी, सतगुरु सेवे करनी सारी। बारों हो मैं कह कहाए, अंदरों मुक्त लेप कदे ना लाए।

नदर करे संजोग मिलाए, रूड़ो कहो ना कहया जाई, अकथ कथो न कीमत पाई, सब दुख तेरे सुख रजाई, सब दुख मेटे सा चैन आई, कर बिन वाजा पग बिन ताला, जे शब्द बुझे ता सच निहाला, अंतर साथ सबे सुख नाला, नदर करे राखे रखवाला, त्रिभुवन सूजे आप गवावे, बाणी बूझे सच समावे, शब्द विचारे एक लिवतारा, नानक तन सवारण हारा।

जमन मरना हुकम पछाण राव माया मोह जग बांदा जम काले बांदा छूटे नाम समाले गुर सुख दाता अवर न पाल हालत पलत निभी तुझ नाल शब्द मरे ता एक लिवलाए अचर चरे ता कर्म चुकाए जीवन मुक्त मन नाम वसाए गुरमुख होए ता सच समाए जिन तरसा जी गगन आकाश जिन सब थापी थाप उथाप सर्व निरंतर आपे आप किसे न पूछे बख्शे आप तू पुरुषागर मानक हीर तू निर्मल सच गुणी गहीर।

जग पंडित विरला विचारी, बिन सतगुर पेटे सब फिरै अंकारी। जग दुखिया सुखिया जन कोए, जग रोगी पोगी गुण रोए। जग उपजै बिन सह पत खोए, गुरमुख होवे बूझै सोए। महगो मोल पार अपार, अटल अछल।

वह जिस वेदन होए जिस बीती जाने प्रभ सोए आपे करता करे सोए जीवत मरना तारे तरना जय जगदीश परम गत सरना हों बलिहारी सतगुर चरना गुर बोहित शब्द पै तरना निरपो आप निरंतर ज्योत बिन नावे सूतक जग छोत दुर्मत बिन सह क्या कह रोत जन्म मुए बिन भगत सरोत मुए को सच रोवे मीत त्रै गुण रोवे नीता नीत दुख सुख पर हर सहज सुचीत तन मन सोपो कृष्ण प्रीत पीतर एक अनेक असंख कर्म तर्म बहु संख असंख बिन पै भगती जन्म बिरंथ हर गुण गावे मिल परमारंथ आप मरे मारे भी आप उपाय थाप उथाप श्रेष्ठ उपाय ज्योति तू जात शब्द विचार मिलन नहीं प्रात सूतक अगन पखे जग खाए सूतक जल थल सभी थाए नानक सूतक

शिव सहज कर गुर करतार, आशा मनसा सब जलाए, राम नारायण कहे कहाए, गुर ते वाट महल कर पाए।

साच अकूट पंच तीन नव चार समावे तरण गगन कल तार रहावे बाहर जातो उल्ट करावे मूर्ख हुए ना आखी सूजे जेवा रस नहीं कहया बूजे बिखका माता जग स्यों लूजे उत्तम संगत उत्तम होवे गुण को पावे अवगण तोवे।

हुक्मो वर्तै जो तिस पावै, गुरबिन पूरा कोई न पावै। बालक बिरद न सुरत प्राण, पर जो बन बूढ़ै अभिमान, बिन नावे क्या लहस निदान। जिसका अन तन सहज न जाना, परम पुलाना फिर पछताना। गल पाही बौरा बौराना, बूढ़त जग देखिया तो डर पागे। सतगुरु राखे सेवड़ पागे।

में मन झूठ अनीते, कहां चलो मन रहो करे, गुरुमुख राम नाम तृप्ता से खोजत पावो सहज हरे। रहाओ काम क्रोध मन मोह शरीरा, लग लोभ अहंकार सोपीरा, राम नाम बिन क्यों मन तीरा, अंतर नावन साच पछाने, अंतर की गत गुरुमुख जाने, साच शब्द बिन मैल ना पछाने, निरंकार में आकार समावे, अकल कला सच साच टिकावे, सो नर गर्भ जोन नहीं आवे, जहां नाम मिले तह जाओ, गुर प्रसादी कर्म कमाओ, नाम मेरा ताहर गुण गाओ, गुर सेवा से आप पछाता, अमृत नाम बसिया।

है सदा सुख आ गए। मन चंचल विद नाही जाने, मन मुख मैला शब्द ना पछाने, गुरुमुख निर्मल नाम बखाने। हर जियो आगे करी अरदास, साधु जन संगत होई निवास, किल विख दुख काटे हर नाम प्रगास, कर विचार आचार पराता, सतगुरु बचनी एको जाता, नानक राम नाम मन राता, आसा मेला पहला, मन मैगल साकत देवाना, बन खंड माया मोहे हैराना, इत उपजाहे काल के चापे, गुरमुख खोज लह कर आपे, बिन गुर शब्द मन नहीं ठौरा, सिमरो राम नाम अत निर्मल अवर त्यागो हो मैं कौरा। रहाओ यो मन मुग्ध कहो क्यों रहसी, बिन समझे जम का दुख सहसी, आपे बख्शे सतगुरु मिले, काल कंटक मारे सच पीले। इहो मन कर्मा इहो मन तर्मा, इहो मन पंच तत ते जन्मा, साकत लोभी इहो मन मूरा, गुरमुख नाम जपे मन रूड़ा, गुरमुख मन अस्थाने सोई, गुरमुख त्रिभुवन सोजी होई, इहो मन जोगी पोगी तप तापे, गुरमुख चीने हर प्रभ आपे, मन बैरागी हो मैं त्यागी, कट कट मन सा दुबदा लागी, राम रसायन गुरमुख चाखे, दर कर मैली हर।

ग्रास इकत छाए किए गुरुमुख राग स्वाद अन त्यागे गुरुमुख एव मन भगती जागे अनहद सुन मानिया शब्द विचारी आत्म चीन पय निरंकारी एव मन निर्मल दर कर सोई गुरुमुख भगत पाओ तुम होई एनस हर जस गुर प्रसाद कट कट सो प्रभु।

नानक हर जन के दासन दासा। आसा मैला पहला तन बिन से तन का को कही है, बिन गुरु राम नाम कत नहीं है। राम नाम तन संग सिखाई, एनस निर्मल हर लिवलाई। राम नाम बिन कवन हमारा, सुख दुख सम कर नाम न छोड़ो। आपे बक्स मिलावन हारा रहाओ, कनक कामनी हेत गवारा। दुबदा लागे नाम विसारा, जिस तू बक्से नाम जपाए। दूत ना लाग सके गुनगाए, हर गुरदाता राम गोपाला। जो पावे त्यों राख दयाला, गुरमुख राम मेरे मन पाया। रोग मिटे दुख ठाक राया, अवर न औखद तंत न मंता। हर हर सिमरन किल विखानता, तू आप पुलावे नाम विसार। तू आपे राखे कृपा धार, रोग परम पेद मन दूजा। गुर बिन परम जपे जप दूजा, अमद पुरख गुर दर्शना देखे। बिन गुर शब्द जन्म के लेखे, देख अचरज रहे विस्माद। कट कट सुर नर सह समाद, पर पुर तार रहे मन माही। तुम संसर अवर को नाही, जाके भगत हेत मुख नाम। संत भगत की संगत राम, बंधन तोरे सहज ध्यान। छूटे गुरमुख हर गुर ज्ञान, ना जम दूत दुख तिस लागे। जो जन राम नाम लिव जागे, भगत वछल भगता हर संग। नानक मुक्त पए हर रंग, आसा महला पहला इक तुकी। गुर सेवे सो ठाकुर जाने, दुख मिटे सच शब्द पछाने। राम जपो मेरी सखी सखैनी, सतगुर सेव देखो प्रभ नैनी। रहाओ बंधन मात पिता संसार, बंधन सुत कन्या अरनार। बंधन कर्म तर्म हो किया, बंधन पुत कलक

बंधन सा संचय तन जाए, बिन हर भगत न पवीताए। बंधन वेद बाद अंकार, बंधन बिन सह मो विकार। नानक राम नाम शरणाई, सतगुरु राखे बंद ना पाए।

जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी पाए संदूर से सिर काती मुनियन गल विच आवे तूड़ महिला अंदर होंदियां हुन बहन ना मिलन हदूर।

तन जोबन दोए वैरी होए जिन्नी रखे रंग लाए दूता नो फुरमाया ले चले पट गवाए जे तिस पावे दे।

कहां सो तेग बंद गाडे रड़, कहां सो लाल कवाई, कहां सो आरसिया मो बंके, एथे दिसे नाही, एहो जग तेरा तू गोसाई, एक कड़ी में थाप उठापे, जर वंड देवे पाई, राव, कहां सो कारदार मंडप महला, कहां सो बंक सराई, कहां सो सेज सुखाली कामण, जिस वेत नींद ना पाई, कहां सो पान तंबोली हरमा।

राह में तेग वगाई, ओनी तुपक तावन चलाई, ओनी हस्त चिड़ाई, जिनकी चीरी दरगे पाटी, तिना मरना पाई। एक हिंदवाणी अगर तुरकानी, पटियाणी छकुरानी, एक ना पेरण।

जाए रुआये हुक्मी हुक्म चलाए विगसे नानक लिखिया पाये एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा काफी मैला पहला कर अठवां अस्त।

होई पिंड पवे जियो चलसी जे जाने कोई ओही ओही क्या करो है होसी सोई तुम रोवोगे उसनो तुमको कौन रोई।

एक गिरही सेवक साधका गुरमति लागे, नाम दान स्नान दृढ़ हर भगत सो जागे, गुरते दर कर जानी है।

जय गुरमुख नाम पे आईए मन मंदिर पी जय रहाओ कूड़ा लालच छोड़िए तो साच पछाने गुर के शब्द समाये परमार्थ जाने यो मन राजा लोभिया लुभ तो लोभाई गुरमुख लोभ निवारिए हर्षो बने आई कल्लर खेती बीजिए क्यों लाहा पावे मन मुख सच ना पी जई कूड़ कूड़ गडावे लालच छोड़ो अंधे हो लालच दुख पारी साचो साहिब मन वसे हो मैं बिखमारी दुबदा छोड़ कुआटड़ी मूसोगे पाई एनस नाम सलाहिए सतगुरु शरणाई मन मुख पत्थर सैल

हुक्मे ही सिर मार बंदर वाणी है, लाहा सच में आओ मन वसाई है, लिखिया पल्ले पाए गर्व मंजाई है, मन मुखिया सिर मार वाद खपाई है, ठग मुठी कूड़ियार बन चलाई है, साहिब हृदय वसाए ना पछोता वही, गुनहा बख्शन हार शब्द कमावही, नानक मंगे सच गुरमुख काली है, मैं तुझ बिन अवरना कोई नजर निहाली है, आसा मेला पहला, क्या जंगल टूंडी जाए मैं कर बन हरियावला, सच टिके कर आए शब्द उतावला, जह देखा तह सोए अवर न जानी है, गुर की कार कमाए महल पछाणी है, रहाओ आप मिलावे सच ता मन पावे।

पाए, कृपा ते सुख पाया साके पर खाए, गुर बिन किने न पायो के ती कह कहाए, अलप दिखावे वाटड़ी सच्ची भगत दृढ़ाए, मन मुख जे समझाए पी उजड़ जाए, बिन हर नाम न छूट सी मर नरक समाए, जन्म मरे परमाई हर नाम न लेवे,

जिस आप कर आए, नानक सिर दे छूटी है दरगे पत पाए। आसा मेला पहला रूड़ो ठाकुर मारो रूड़ी गुरबाणी, वड्डे पाक सतगुर मिले पाईए पद निर्वाणी। मैं ओ लगिया।

साहिब सो मन मानिया दे साच आधार एन इस नाम संतोखिया सेवा सच्चाई ताको बिघन न लागई चाले हुकम रजाई। हुकम रजाई जो चले सो पवे खजाने खोते खबर न पायनी रले जूठाने नित नित खरा संभालिए सच सौदा पाइये खोटे नजर न आवनी ले अगन जलाइए। जिन्नी आत्म चीनिया परमात्म सोई एको अमृत बिरख है फल अमृत होई अमृत फल जिन्नी चाखिया सच रहे अगाई जिन्ना परम न भेद है हर रसन रसाई। हुकम संजोगी आया चल सदा रजाई औगुण यारे को गुण नानक है सच मिले वडाई। आसा मेला पहला मन रातो हर नाए सच वखाणिया लोकां दा क्या जाए जा तुद पाणिया जो लग जियो प्राण सच दियाई है लाहा हर गुण गाए मिले सुख।

दर सेवक दरवान दर्द तू जान ही, भगत तेरी हैरान दर्द गवावही, दर गए नाम हदूर गुरमुख जान सी, वेला सच परवान।

अष्टपदियां कर दूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सासत वेद सिमरत सर तेरा सुरसरी चरण समाणी साक्षात तीन मूल मत राम है।

ताके रूप न जाही लखने क्या कर आस विचारे। तीन गुणा तेरे जुगी अंतर चारे तेरिया खाने। कर्म होवे ता परम पद पाई है कथे अक

पुर सेवा के सब कुल उधारे, निर्मल नाम रखे उधारे, साची शोभा सात द्वारे, सेवड पागी जे गुर सेवा लाए, अंगिन पगत सच नाम दृढ़ाए, नामे उदरे कुल सभाए।

कर कृपा नाम मनवसाए, एहो सिर दी जय आप गवाए, हुक्म है बूझे सदा सुख पाए, आप करे तै आप कराए, आपे गुरमुख नाम वसाए, आप पुलावे आप मार्ग पाए, सच्चा शब्द सच समाए, सच्चा शब्द सच्ची है बाणी, गुरमुख जुग जुग आख वखाणी, मनमुख मोहे परम पुलाणी, बिन नामे सब फिरे बोराणी, तीन पवन में एक काम आया, मूरख पढ़ पर दूजा पाव दृढ़ाया, बहु कर्म कमावे दुख सवाया, सतगुर सेव सदा।

आपवाली दितियन अंतर लोग विकारा एक आपे गुरमुख कीतियन बूजन विचारा भगत भी ओना नु बसियन अंतर पन

सोई कर में पंच वर्त दे पंचे विचारी नानक बिन सतगुर वस ना आवनी नाम हो मैं मारी आसा महला तीजा करे अंदर सब वत है बाहर किस नाही गुर प्रसादी पाई है अंतर कपट खुलाही सतगुर ते हर पाई है पाई अंतर नाम निदान है पूरे सतगुर दिया दिखाई रहाओ हर का गाहक होवे सो ले पाए रतन विचारा अंदर खोले दिव दिस देखे मुक्त पंडारा अंदर महल अनेक है जियो करे वसेरा मन चिंदिया फल पाए सी फिर होए न फेरा पार किया वक्त समाल ले गुर सो जी होई नाम पदार्थ अमूल सा गुरमुख पावे कोई बाहर पाले तो क्या लहे वक्त करे अंदर भाई पर में पूला सब जग फिरे मनमुख पत गवाई कर दर छोड़े अपना पर कर चूक

अंतर ब्रह्म पछाणिया गुर की वड्याई, आपे दान करे किस आखिए आपे दे बुझाई। नानक नाम से आए तू दर सच्चे तो बापाई। आता मेला तीजा आपे आप पछाणिया साध मीठा भाई, हर रस चाखिए मुक्त भये जिना साचो भाई। हर जियो निर्मल निर्मला निर्मल मनवासा, गुरमती साला ही है बिखिया माए उदासा रहाओ। बिन शब्द आप न जापई सब अंधी भाई, गुरमती कट चानना नाम अंत सखाई। नामे ही नाम वर्त दे नामे वर्तारा, अंतर नाम मुख नाम है।

सदा सदा नामे महल पाई, नामे ही कर चानना नामे शोभा पाई, नामे ही सुख उपजे नामे शरणाई, बिन नामे कोई ना मनिए मन मुख पत गवाई, जमपुर बादे मारिए बिरथा जन्म गवाई, नामे की सब सेवा करे गुरुमुख नाम बुझाई, नामो ही नाम मनिए नामे वड्याई, जिसनो देवे तिस मिले गुरुमति नाम बुझाई, नानक सब किछ नाम है।

का बोले ना निवे दूजा पाव सुहाओ क्यों मनुआ क्यों कर वसावे गुर प्रसादी ठाकी है ज्ञान मती कर आवे रहाओ सोहागणी आप सवारियों ने लाए प्रेम प्यार सतगुर के पाने चल दिया नामे सह शिगार सदा रामे फिर अपना सच्ची सेज सुवाए फिर कै प्रेम मोहिया मिल प्रीतम सुख पाए ज्ञान अपार सिगार है शोभावंती नार सासब राई सुंदरी फिर कहे प्यार सुहागणी विच रंग रखियो न सच्चे अलख अपार सतगुर सेवन अपना सच्चे पाए प्यार सुहागणी सिगार बनाया गुण का गलहार प्रेम पिरमल तन लावना अंतर

हों कर दी सब फिरे, बिन शब्द हों न जाए, नानक नाम रते तिन हों में गई, सच्चे रहे समाए। आसा मैला तीजा, सच्चे रते से निर्मले सदा सच्ची सोए, ऐथे कर कर जाप दे आगे जुग जुग प्रगट होए। ए मन रूड़े रंगुले तू सच्चा रंग चढ़ाए, रूड़ी बाणी जे रपे ना यो रंग लह ना जाए। रहाओ हम नीच मैले अत अभिमानी, दूजे पाए विकार, गुर पारस मिले कंचन होए निर्मल ज्योत अपार। बिन गुर कोई ना रंगी है, गुर मिले रंग चढ़ाओ, गुर के पै पाए जो रते सिफती सच समाओ, पै बिन लाग ना लग गई ना मन निर्मल होए।

सच सुवाए, बिन संगति सब ऐसे रहे हैं जैसे पस्तोर, जिनकी तेत से ना जाननी बिन नावे सब चोर, एक गुण विहाजे।

नानक नामे लाए सवारियन सब दे ले मिलाए आसा मेला तीजा सब नामे नो लोच दी जिस कृपा करे सो पाए बिन नामे सब दुख है सुख तिस जिस मन

जानन अपना सुन्नी सेज दुख पाए। सच्चा साहिब एक है मत मन परम पुलाहे। गुर पूछ सेवा करें सत निर्मल मन वसाए। सुहागणी सदा पिर पाया हों मैं आप दुआए। पिर सेती अम दिन गह रही सच्ची सेज सुख पाए। मेरी मेरी कर गए पल्ले किछ ना पाए। मैल नाही दुहागणी अंत गई पछताए। सो फिर मेरा एक है एक क्यों लिवलाए। नानक जे सुख लोड़।

मन सदा हरि आवला सहजे हर गुण गाए राव मन मुख सदा दुहागणी दर खड़िया बिललाहे जिना पिरका स्वाद ना आयो जो तुर लिखिया सो कमाहे गुरमुख बीजे सच जम्मे सत नाम व पार जो इतला है लायन।

जिन्ना फिर रावया अपना तिना विटो बल जाओ सदा फिर कै संग रहे विचों आप गवाए तन मन शीतल मुख उजले फिर कै पाए प्यार फिर सुखाली फिर

गुर पेटिया सफल जन्म हमारा नाम नवै निज पाया परे अकुट पंडारा आवे इस राशि के वापारिये जिना नाम प्यारा गुरमुख हो वै सो तन पाए तिना अंतर शब्द विचारा भगती सार न जाननी मनमुख अहंकारी तुरु आखुआयन जुए बाजी हारी बिन प्यारे भगत ना हो वही ना सुख होए शरीर प्रेम पदार्थ पाई है।

भगता की जत पथ एको नाम है, आपे ले सवार सदा शरणाई तिसकी ज्यों पावे त्यों कार सार।

अन रस में पोलाया बिन ना में दुख पाए, सतगुरु पुरख ना पेटियो जे सच्ची बूझ बुझाए, ए मन मेरे बावले हर रस चट साध पाए, अन रस लागा तू फिरे बिरथा जन्म गवाए रहाओ, इस जुग में गुरुमुख निर्मले सच नाम रहे लिवलाए, विण कर्मा किछ पाये नहीं क्या कर कहे आ जाए, आप पछाणे शब्द मरे मनो तज विकार, गुर शरणाई पज पए बक्से बक्सनहार, बिन नावे सुख न पाये ना दुख विच्चों जाए, इहो जग माया मोह व्यापिया दूजे परम पुलाए, दोहागणी तिरकी सार न जानही क्या कर करें सिगार, अन दिन सदा जल

नाम स्यों सुख पुंचे सब ठाए। सब जग चल तो पेखी है निचल हर को नाओ, कर मित्राई साध चो निचल पावे ठाओ। मीत साजन सुत बंग

सस्य सोए सृष्ट जिन साजी, सबना साहिब एक भया, सेवत रहे चित जिनका लागा, आया तिनका सफल भया, मन काहे भूले मूड मना, जब लेखा देवे बीरा तो पड़या, रहाओ ईवड़ी आद पुरख है।

पढ़िया पंडित आप थिया छछै छाया वर्ती सब अंतर तेरा किया परम होआ परम उपाय पुलायन आपे तेरा कर्म होआ तिन गुरु मिलिया जज्जै जान मंगत जन जाचै

मारो अपना पाज पड़ो तुम हर सरना ठठे ठांड वर्ती तिन अंतर हर चरणी जिनका चित लागा सही जन निस्तरे तो प्रसादी सुख पाया डड्डे डंफ करो क्या प्राणी जो किछ होआ सो सब चलना तिसे सिरेवो ता सुख पावो सर्व निरंतर रव रहा।

नाने रवत रहे कट अंतर, हर गुण गावे सोई, आपे आप मिलाए करता पुनरप जन्म ना होई। तत्ते तारू पवजल हुआ, ताका अंत न पाया, ना तर ना तुल्हा हम

प्राणे अंतर बाहर रव रहा राड़े राड़ करे क्या प्राणी तिसे त्यावो जे अमर होआ तिसे त्यावो सच समावो उस विटों कुर्बान किया हा है होर ना कोई दाता।

सब बख्श लिया। हा है हर कथा बूझ तू मूड़े ता सदा सुख होई, मन मुख पढ़े ते ता दुख लागे, विन सतगुरु मुक्त।

स्वामी आप प्रभ कृपा करे सेजा सुहावी संग पिरके सात सर अमृत भरे कर दया मया दयाल साचे शब्द मिल गुण गावो नानका हर वर देख बिगसी मुंद मन उमाहो मुंद सहज सलोनड़िए एक प्रेम बिनंती राम मैं मन तन हर भावे प्रभ संगम राती राम प्रभ प्रेम राती हर बिनंती नाम हर कै सुख वस है तो गुण पछाणे ता प्रभ जाने गुणे वस अवगण नसे तुद बाज एक

ना जप तप कर कर संयम था की हठ निग्रह नहीं पाइए नानक सहज मिले जग जीवन सतगुर बूझ बुझाइए गुर सागरो रत्नागर तित रतन कणे रे राम कर्म।

सच साहिबो आद पुरख अपरम करो तारे राम अगम अगोचर अपर अपारा पार ब्रह्म प्रधानो आद जुगादि है भी होसी अवर चूठा सब मानो कर्म तर्म की सार न जाने सुरत मुक्त क्यों पाये नानक गुरमुख शब्द पछा।

नानक हर की भगत ना छोड़ो सहजे होए सो होई। मेरा मनो मेरा मन निर्मल साथ संभाले राम अवगुण मेट चले।

गुरुमुख तत् विचारो साजन मीत सो जान सखा तू सच मिले वड्याई नानक नाम रतन प्रगासिया ऐसी गुरमत पाई सच अंजनो अंजन सार निरंजन राता राम मन तन रव रहा जग जीवनो दाता राम जग जीवन दाता हर मन राता सहज मिले मिलाया साध सभा संता की संगत नदर प्रभु सुख पाया हर की भगत।

मुख विसारण हार स्वामी कीता जाका होवे, कोट कोटंतर पापा केरे एक कड़ी में खोवे, हंस से हंसा बग से बग्गा कट कट करे विचार जियो, तू सबनी थाई जिथे हो जाई साचा सृजन हार जियो, जिन एक मन त्याया।

ते कबहु ना हारे हर हर गुण सारे तिन जम नेड़ ना आवे जमन मरण तिना का चूका जो हर लागे पावे गुरमत हर रस हर फल पाया हर हर नाम उर्धार जियो जिन एक मन त्याया।

हर दरगह मान सोई जन पावे, जो नर एक पछाणे ओह नव निध पावे, गुरमत हर त्यावे नित हर गुण आख वखाणे। एनस नाम तिसे का लीजे हर ऊ

पाचा साहिब मन वसै की फासे जम जाले राम। मछली विछुन्नी नैन रुन्नी जाल बद्दिक पाया, संसार माया मोह मीठा अंत परम चुकाया।

कहो नानक गुर शब्द सवारी, सफलियो जन्म सवाया। दूजड़े कामण परम पुली, हर वर न पाए राम। कामण गुण नाही, बिरथा जन्म गवाए राम। बिरथा जन्म गवाए मन मुख आणी, अवगुणवंती चूरे। अपना सतगुर सेव सदा सुख पाया, ता फिर मिलिया हदूरे। देख फिर विगसी अंदरों सरसी, सच्चे शब्द सुभाए। नानक बिन नावे कामण परम फुलाणी, मिल प्रीतम सुख पाए। फिर संग कामण जानिया, गुर मेल मिलाई राम। अंतर शब्द मिली सहजे, तपत बुझाई राम। शब्द तपत बुझाई अंतर शांति आई, सहजे हर रस चाखिया। मिल प्रीतम अपने सदा रंग माने, सच्चे शब्द सुवाखिया। पढ़ पढ़ पंडित मोनी थाके, पेखी मुक्त न पाई। नानक बिन भगती जग बौराना, सच्चे शब्द मिलाई। सा तन मन आनंद भया, हर जियो मेल प्यारे राम। सा

गुरमुख हुकम पछाणे। जिन हुकम पछाता हरि केरा सोई सर्व सुख पावे। इव कहे नानक सो बैरागी हम दिन हर लिव लावे। जय जय मन तू तावदा तह तह हर तेरे नाले। मन से आणप छोड़िए।

क्यों कहे नानक मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। मन तू गारब अटिया गारब लद्या जाए माया मोहनी मोया फिर जूनी पवाए गारब लागा जाए मुगद मन।

नानक मन तन अर्प गुर आगे जिस प्राप्त सो पाए। रतना रतन पदार्थ बहु सागर परे आराम, बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया निर्मोलक रतन अपारा, हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत परे पंडारा।

जगत निस्तारा राम नाम वडियाई, कलयुग राम नाम बोहिसा गुरमुख पार लंघाई। हलत पलत राम नाम सुहेले गुरमुख करनी सारी, नानक दास दया कर देवे राम नाम निस्तारी। रामो राम नाम जपया दुख के लिए नाश गवाया राम, गुर पर चै

रोम में मैं गुरुमुख राम से आए राम। राम नाम से आए पवित्र हुए आए तिस रूप न रेख्या काए। रामो राम रव्या कट अंतर सब कृष्णा पूख गवाई। मन तन शीतल सिगार सब हुआ गुरमत राम पर गाता। नानक आप अनुग्रह किया हम दासन दासन दासा। जिन्नी रामो राम नाम विसारिया ते मनमुख मूड़।

अनेक कर्म करें अभिमानी, हर रामो नाम चुराया। मां बिखम जम पंस दुहेला, कालू खत्म हो अंधियारा। नानक गुरु।

समाया। जिन अंतरे राम नाम वसै तिन चिंता सब गवाया राम। सब अर्था सब धर्म मिले मन चिंदिया सो फल पाया राम। मन चिंदिया फल पाया राम नाम से आया राम नाम गुण गाए। दुर्मत कबुद्ध गई सुध होई राम नाम मन लाए। सफल जन्म शरीर सब होआ जित राम नाम पर गासे।

दुख विनाशन पतित पावन हर नाम दियो, हर सेवा पाई परम गत पाई, हर उत्तम हर हर काम दियो, हर उत्तम काम जपिए, हर नाम हर जपिए, अस्थिर होवे जन्म मरण।

तुर लिख पाए जियो, हर नाम पदार्थ कलयुग उत्तम, हर जपिए सतगुरु पाए जियो, हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो, हर प्रीत लगाई हर नाम सिखाई, त्रम चूका आमन जान जियो।

पदार्थ हर हर कृपार्थ शोभा गुरुमुख होई अंतर बाहर हर प्रभ एको दूजा अवर न कोई हर हर लिव लाई हर नाम।

में खिन खिन पग तोवे, जिन हर मीठ लगान जियो, हर मीठा लाया परम सुख पाया, मुख पागा रत्ती चारे, गुरमत हर गाया हर हार उर पाया, हर नामा कंठ तारे, सब एक दृष्ट समत कर देखे, सब आत्म राम पहचान जियो, हर हर जस गाया परम पद पाया, ते उत्तम जन प्रधान जियो, सत संगत मन भाई हर रस निरसाई, विच संगत हर रस होए जियो, हर हर आराध्या गुर शब्द विगासिया, बीजा अवर न कोई जियो, अवर न कोई हर

लाए जियो, हर दया प्रभ तारो, पाखण हम तारो, सद लेवो सब सुभाए जियो। आसा महला चौथा, मन नाम जपाना, हर हर मन पाना, हर भगत जना मन चाओ जियो, जो जन मर जीवे तिन अमृत पीवे, मन लागा गुरमत पाओ जियो, मन हर हर पाओ।

यो मन नाम जपाना हर हर मन पाना हर भगत जना मन चाओ जियो जग मरण ना पाया निक आप लुकाया मत जम पकड़े ले जाए जियो हर अंतर बाहर हर प्रभ एको इहो जियड़ा रखिया ना जाए जियो क्यों जियो रखी जय हर वस्त लोड़ी जय जिसकी वस्त सो ले जाए जियो मन मुख करण।

जियो जग मरण न पाया नित आप लुकाया मत जम पकड़े ले जाए जियो तुर मरण लिखाया गुरमुख तो आया जन उबरे हर हर ध्यान जियो हर शोभा पाई हर नाम वड्याई हर दरगे पैदे जान जियो हर दरगे पैदे हर नामे सीधे हर नामे ते सुख पाया जन्म मरण दोवे दुख में ते हर रामे नाम समाया हर जन प्रभ रल एको होए हर जन प्रभ एक समान जियो तुर मरण लिखाया।

रागा समेला तन्यमा छंत कर पहला अंधो अंध घना मैं सो प्रभु दीठा राम चाखेड़ा चाखेड़ा मैं हर वस मीठा राम हर वस मीठा मन में बूठा सतगुरु तूठा सहज भया गृहवस आया मंगल गाया पंच दुष्ट ओए पाग गया शीतल आघाने अमृत बाणे साजन संत बसीठा कहो नानक हास्यो मन मान्या सो प्रभु नैनी दीठा।

कार्य सारे नमस्कार कर लगे सेवा आपे जा जी आपे मां जी आप स्वामी आप देवा अपना कार्य आप सवारे आपे तारन तारे कहो नानक सो कर में बैठा सोहे बंक द्वारे नगनि दे नौनि दे मेरे कर में आई राम सब किछ मैं सब किछ पाया नाम से आई राम नाम से आई सदा सखाई सह सुभाई गोविंदा गणत मिटाई चूकी ताई कदे न व्याप मन चिंदा गोविंद गाजे अनहद वाजे अत्रिज शोभ बनाई कहो नानक फिर मेरे संगे ता मैं नवनिध पाई सर से अड़े मेरे भाई सब मीता राम बिखमो बिखम अखारा मैं गुरमिल जीता राम गुरमिल जीता हर हर कीता टूटी पीता परम गड़ा पाया खजाना बहुत निदाना सामर्थ मेरी आप खड़ा सोई सो ज्ञाना सो प्रदाना जो प्रभ अपना कीता कहो नानक जा वल स्वामी ता सर से पाई मीता ऐसा महला पंजवा अकथा हर अकथ कथा किस जाए न जानी राम सुर नर मुन जन सहज वखानी राम सहजे वखानी अम्यो बाणी चरण कमल रंग लाया जब एक अलख प्रभ निरंजन मन चिंदिया फल पाया तज मान मोह विकार दूजा ज्योति ज्योत समाणी बिनवंत नानक गुर प्रसादी सदा हर रंग माणी हर संत सज्जन मेरे मीत सहाई राम वड पागी सत संगत पाई राम वड पागी पाए नाम ते आए लाखे दुख संतापे गुर चरणी लागे परम पौ पागे आप मिटाया पै कर कृपा में ले प्रभ अपने बिछड़ कते न जाई बिनवंत नानक दास तेरा सदा हर शरणाई हर दर सोहन तेरे भगत प्यारे राम वारी तिन वारी जावा सद बलिहारे राम सद बलिहारे कर नमस्कारे जिन पेटत प्रभ जाता कट कट रग रहा सब थाई पूरन पुरख विदाता गुर पूरा पाया नाम ते आया जुए जन्म नहारे बिनवंत नानक शरण तेरी राख कृपा धारे बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावा राम तेरे चरणा तेरे चरण तूड़ वड पागी पावा राम हर तूड़ी नाइये मैल गवाइये जन्म मरण दुख लाथे अंतर बाहर सदा हदूरे परमेश्वर प्रभु साथे मिटे दुख कल्याण कीर्तन बौड़ जोन ना पावा बिनवंत नानक गुर शरण करिए अपने प्रभु भावा आसा छंत महला पंजवा कर चौथा इको अंकार सतगुर प्रसाद हर चरण कमल मन बेदिया किछ आमना मीठा राम राजे मिल संत संगत आरा दिया हर कट कटे जीठा राम राजे हर कट कटे जीठा अमृतो उठा जन्म मरण दुख नाथे गुण निध गाया सब दुख मिटाया हों मैं बिनसी गाथे प्रियो सह सुबाई छोड़ न जाई मन लागा रंग मजीठा हर नानक बेदे चरण कमल किछ आन न मीठा जो राती जल माछली त्यों राम रस माते राम।

आप लिए लड़ लाए। हर रत्न पदार्थो प्रगटो पूर्णो छोड़ना कथो जाए। प्रभ सुगर स्वरूप सुजान स्वामी ताकी मिटे न दाते। जल संग्राती माछली नानक हर माते। चात्रिक जाचे बूंद ज्यो हर प्राण अधारा राम राजे। माल खजीना सुत प्रात नीत सबू ते प्यारा राम राजे। सबू ते प्यारा पुरख निरारा ताकी गत नहीं जानी है। हर सास गिरास न बिसरे कबहू गुर शब्दी रंगमानी है। प्रभ पुरख जग जीवनो संत रस पीवनो जप परम मोह दुख दारा। चात्रिक जाचे बूंद ज्यो नानक हर प्यारा। मिले नारायण अपने मन और थो पूरा राम राजे। ताथी पीत परम की पेटत गुर सूरा राम राजे। पूरन गुर पाए पूर्व लिखाए सब निज दीन दयाला। आद मद अंत प्रभ सोई सुंदर गुर गोपाला। सुख सहज आनंद कनेरे पति पावन साधु तूरा। हर मिले नारायण नानका मन और थो पूरा। आसा महला पंजवा संत कर छेवा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक। जा को पै कृपाल प्रभु हर हर सही जपात। नानक प्रीत लगी तिन राम सिंह पेटक साथ संगात। संत जल दूध न्याई रीत अब दूध आच नहीं मन ऐसी प्रीत हरे। अब उर्जो अल कमले बासन माहे मगन इक खिन भी नाहे तरह। खिन नाहे तरिय प्रीत हरिय सिगार हगरस अर्पिय। जह दुख सुनिय जम पंथ पणिय तह साध संग न डरपिय। कर कीरत गोविंद गुणिय सगल प्राचत दुख हरे। कहो नानक छंत गोविंद हर के मन हर्ष्यो निहो करे हो ऐसी मन प्रीत हरे। जैसी मछली नीर इक खिन भी ना जीरे मन ऐसा निहो करे हो। जैसी चात्रिक प्यास खिन खिन बूंद चवे बरस सुहावे में हो। हर प्रीत करी जय इह मन दी जय अपलाई है चित मुरारी। मान न की जय शरण परी जय दर्शन को बलिहारी। गुर सो प्रसन्ने मिल ना विछुन्ने तन देन दी साथ सनेहा। कहो नानक छंत अनंत ठाकुर के हर्ष्यों की जय नेहा मन ऐसा निहो करे हो। चकवी सूसने हो चितवे आस पणी कर दिनियर देखिए। कोकिल अंब प्रीत चवे सुहाविया मन हर रंग कीजिए। हर प्रीत करी जय मान न की जय इक राशि के हम पावनिया। अज क्या रंग लायो मोह रचायो नांगे आवन जावनिया। फिर साधु सरणी पड़िए चरणी अब टूटस मोह जो किती है। कहो नानक छंत दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत कब दिनियर देखी है। निष्कुरंक जैसे नाद सुन श्रवणी ही ओ डिवे मन ऐसी प्रीत की जय। जैसी तरण पतार उर्जी पिह सिवे यो मन लाल दी जय। मन लाल दी जय पोक करी जय हब खुशियां रंग माने। फिर अपना पाया रंग लाल बनाया अत मिलियो मित्र चिराने। गुरथिया साखी तां जिठम आखी फिर जेहा अवर न दिसे। कहो नानक छंत दयाल मोहन के मन हर चरण गही जय ऐसी मन प्रीत की जय। आशा महला पंजवा श्लोक। बन बन फिरती खोजती हारी बहु अवगाहे। नानक पेटे साध जग हर पाया मन माहे छंत। जा को खोजे असंख मुनि अनेक तपे। ब्रह्मे कोट आराधे ज्ञानी जाप जपे। जप ताप संजम क्रिया पूजा अनेक शोधन बंदना। कर गवन वसुधा तीर्थ मज्जन मिलन को निरंजना। मानुख बन तिन पशु पंखी सगल तुझे आराधते। दयाल लाल गोविंद नानक मिल साध संगत होए गते। कोट विषम अवतार शंकर जटाकार चाहे तुझे दयार मंथन रुच अपार। अपार अगम गोविंद ठाकुर सगल पूरक प्रवतनी। सुर सिद्ध गण गंधर्व त्यावे जप किन्नर गुणपनी। कोट इंद्र अनेक देवा जपत स्वामी जय जयकार। अनाथ नाथ दयाल नानक साध संगत मिल उधार। कोट देवी
जा को सेवे लक्ष्मी अनक पाप गुप्त प्रगट जा को अराधे पौन पानी दिन सुरात नक्षत्र ससियर सूर त्यावे बकद गगना गावे सगल खानी सगल बाणी सदा सदा त्यावे सिमरत पुराण चतुर्वेद खट शास्त्र जा को जपात पतित पावन भगत वचल नानक मिलिए संग सात जेती प्रभु जनाई रसना तेत भनी अनजानत जो सेवे तेती न जाय गनी अवगत अगमत अथा ठाकुर सगल मंजे बाहरा सर्व जाचक एक दाता न दूर संगी जाहरा वस भगत थिया मिले जिया ताकी उपमा कित गनी त्यो दान मान नानक पाए शीश सादे तर चरनी आसा मेला तन्यवा श्लोक उद्दम करो वड पागियो सिमरो हर हर राय नानक जिस सिमरत सब सुख होवे दुख दर्द परम जाए संत नाम जपत गोविंद ने अलसाइए पेट साधु संग जमपुर ने जाइए दुख दर्द ना कहो व्यापे नाम सिमरत सब सुखी साथ साथ आराध हर हर त्याए सो प्रभु मनमुखी कृपाल दयाल रसाल गुण निद कर दया सेवा लाई है नाम प्रेम पै चरण जम पै नाम जपत गोविंद ने अलसाई है पावन पतित पुनीत नाम

सूर्या अगाध बोध समरथ स्वामी सर्व का पौ पंजना नाम स्वयं पै चरण जम्पै पावन पतित पुनीत नाम निरंजना। ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे मोह आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिदे हर चरण कारण करण स्वामी पतित उदरण हर हरे सागर संसार पल उतार नाम सिमरत बहुतरे।

आद अंत बेअंत खोजें, सुनी उदरन संत संग विदे, नानक पयम पै चरण जम पै, ओट गई गोपाल दयाल कृपा निदे। भगत वत्सल हर बिरद आप बनाया, जय जय संत आराध्य तै तै प्रगटाया, प्रभ आप लिए समाये सह सुभाये, भगत कार्य सारिया, आनंद हर जस महा मंगल सर्व दुख विसारिया। चमत्कार प्रगास दह दिस एक तह दृष्टाया, नानक पयम पै चरण जम पै, भगत वत्सल हर बिरद आप बनाया। आशा महला पंजवा, फिर संतन सुहाग मरे न जावे, जा कै गृह हर नाओ सो सद ही रावे, अविनाशी अवगत सो प्रभ सदा नवतन निर्मला, न दूर सदा हदूर ठाकुर दह दिस पूर्ण सब सदा, प्राण पत गत मत जाते प्रिय प्रीत प्रीतम पावे, नानक बखाने गुरु बचन जाने, फिर संतन सुहाग मरे न जावे, जाको राम पतार का कै अमृत घना, सुखवंती सानार सो बापूर बना, मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु, सर्व सिद्ध नव निद तित ग्रह नहीं ऊना सब कछु, मधुर बानी प्रह मानी फिर सुहाग का बना, नानक वखाने गुरु बचन जाने, जाको राम पतार का कै अनद घना, आओ सखी संत पाठ सेवा लागी है, पीछो चरण पखार आप त्यागी है, तब आप मिटे संताप आपने जनाई है, शरण गही जय मान ली जय करे सो सुख पाई है, कर दास बासी तज उदासी कर जोर दिन रैन जागी है, नानक वखाने गुरु बचन जाने, आओ सखी संत पाग सेवा लागी है, जाके मस्तक पाग से सेवा लाया, ताकि पूर्ण आस जिन साथ संग पाया, साथ संग हर के रंग गोविंद सिमरन लागया, परम मोह विकार दूजा सगल तिने त्या गया, मन शांत सह स्वभाव उठा अनद मंगल गुण गाया, नानक वखाने गुरु बचन जाने, जाके मस्तक पाग से सेवा लाया। आशा महला पंजवा श्लोक हर

संत। मिलो संतन के संग मोहे उधार ले हो, बिनो करो कर जोड़ हर हर नाम दे हो। हर नाम मांगो चरण लागो, मान त्यागो तुम दया। सतहुना पावो शरण पावो, करुणा में प्रभ करमया। समर्थ अगत अपार निर्मल सुनो स्वामी बिनो एहो। कर जोड़ नानक दान मांगे, जन्म मरण निवार ले हो। अपराधी मतहीन निर्गुण अनाथ नीच, सठ कठोर कुलहीन व्यापत मोह कीच। मल परम कर्म अहं ममता, मरण चीत न आवे। बनता विनोद आनंद माया, अज्ञान तालप तावे। खिसे जोबन बले जरुआ, दिन निहारे संग मीच। बिनवंत नानक आस तेरी, शरण साधु राख नीच। परमे जन्म अनेक संकट महाजोन, लपट रहे होते संग मीठे पोग सोन। प्रमत पार अगमत आयो, बहु परदेश पायो। अब ओट तारी प्रभ मुरारी, सर्व सुख हर नायो। राखन हारे प्रभ प्यारे, मुझते कछु न हुआ होन। सुख सहज आनंद नानक, कृपा तेरी तय पौन। नाम सारी उधारे पगत संसा कौन। जेन केन प्रकारे हर हर, जस सुनो श्रवण। सुन श्रवण बानी पुरुष ज्ञानी, मन निधाना पावे। हर रंग राते प्रभ विधाते, राम के गुण गावे। वसुध कागद बन राज कलमा, लिखन को जे होए पावन। बेअंत अंत न जाए पाया, गही नानक चरण शरण। आशा महला पंजवा, पुरख पते भगवान ताकी शरण गही। निरपो पे प्राण चिंता सगल लही। मात पिता सुत मीत सुरजन, इष्ट बंधक जानिया। गय कंठ लाया गुर मिलाया, जस विमल संत वखाणिया। बेअंत गुण अनेक महिमा, कीमत कछु न जाए कही। प्रभ एक अनेक अलख ठाकुर, ओट नानक तिस गही। अमृत बन संसार सहाय आप भये, राम नाम उरहार बिक के दिवस गए। गत परम मोह विकार बिन से, जोन आमन सब रहे। अगन सागर तय शीतल, साध अंचल गह रहे। गोविंद गोपाल दयाल समरथ, बोल साधु हर जय जय। नानक नाम त्याय पूरन, साध संग पाई परम गते। जय देखो तय संग एको रव रया, पट पट वासी आप विरले किने लया। जल थल मैयल पूर पूरन कीट हस्त समान्या। आद अंते मत सोई गुर प्रसादी जान्या। ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला, गोविंद गुण निर्जन कहा। सिमर स्वामी अंतर जामी, हर एक नाम कराव रया। जिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे। चरण कमल संग प्रीत कलमल पातरे। दुख पूख दरिद्र नाथे, प्रगट मग दिखाया। मिल साध संगे नाम रंगे, मन लोड़ींदा पाया। हर देख दर्शन चुपुन्नी, कुल संगुआ सब तरे। दिन श्रेण आनंद अंदिन, सिमरंत नानक हर हरे। आशा महला पंजवा, छंत कर सतवा इको अंकार। सतगुरु प्रसाद श्लोक। शुभ चिंतन गोविंद रमन, निर्मल साधु संग। नानक नाम न विसरो एक घड़ी, कर कृपा भगवंत छंत। पिन्नी रैनड़िये चमकन तारे, जागे संत जना मेरे राम प्यारे। राम प्यारे सदा जागे, नाम सिमरे अंजनो। चरण कमल ध्यान हृदय, प्रभ विसरना ही किनो। तब मान मोह विकार मन का, कलमला दुख जारे। बिन हंस नानक सदा जागे, हर दास संत प्यारे। मेरी सेजड़िये अडंबर बनिया, मन अनद भया प्रभ आवत सुनिया। प्रभ मिले स्वामी सुखे गामी, चाव मंगल रस भरे। अंग संग लागे दुख पागे, प्राण मन तन सब हरे। मन इच्छ पाई प्रभ त्याई, संजोग सा शुभ गणिया। बिन हंत नानक मिले श्री पर, सगल आनंद रस बनिया। मिल सकिया पुछे कहो कंत निशानी, रस प्रेम परी कछ बोल न जाने। गुण गुड़ गुपत अपार करते, निगम अंत न पावे। भगत पाए ते आए स्वामी, सदा हर गुण गावे। सगल गुण सो ज्ञान पूरन, आपने प्रभ पानी। बिन हंस नानक रंग राती,
प्रेम सहज समाने, सुख सोए लड़े हर गावन लागे, साजन सरसे अड़े दुख दुश्मन पागे, सुख सहज सरसे हर नाम रहसे, प्रभ आप कृपा सारिया, हर चरण लागे सदा जागे, मिले प्रभ बनवारिया, शुभ दिवस आए सहज पाए, सगल निध प्रभ पागे, बिनवंत नानक शरण स्वामी, सदा हर जन पागे, आशा मैला कंजवा, उठ वंज बटा उड़िया, तैं क्या चिर लाया, मोलत कुनड़िया, कित कूड़ लुभाया, कूड़े लुभाया, तो माया, करे पाप अमित्या, तन पसम तेरी जमे हेरी, काल बकड़े जितया,

संग देखे करणहारा काए पाप समाये, सुकृत की जय नाम लीजे नरक मूल न जाइए। आठ पैर हर नाम सिमरो चले तेरे साथ है, पद साध संगत सदा नानक मिटे दुख कमाते। बलवंश कर उधर परे मूर्ख गावारा, सब किस दे रहा हर देवन हारा। दातार सदा दयाल स्वामी काए मनो विसारी है, मिल साध संगे पद निसंगे कुल समूह तारी है। सिद्ध साधक देव मुंजन भगत नाम आधारा, बिनवंत नान सदा तजिए प्रभ एक करने हारा। खोट न की चई प्रभ परखन हारा, पूर कपट कमाऊं गड़े जन्मे संसारा। संसार सागर तिन्नी तरिया जिन्नी एक से आया, तज काम क्रोध अनिंद निंदा प्रभ शरणाई आया। जल फल मैयल रविया स्वामी पूछ अगम अपारा, बिनवंत नानक टेक जन की चरण कमल आधारा। पेट हर चंदौरड़ी अब फिर किछ नाही, माया रंग जेते से संग न जाही। हर संग साथी सदा तेरे दिन त्रैन संभालिए, हर एक बिन कछ

बिनवंत नानक बद पाग पाई सूख सहज समाही आसा मैला पंजवा चंक पर अठवा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। कमला प्रम पीत हे तीखण मद विपरीत हे अवध अकाल जात गैबर बन कोर गहबर बन कोर हे गृह मूसक मन चोर हे दिन करो अन दिन खात दिन खात जात बिहात प्रभ बिन मिलो प्रभ करुणा पते जन्म मरण अनेक बीते प्रे संग बिन कछ नह गते कुल रूप तूप ज्ञान ही नी कुछ बिना मोहे कौन मात पर जोड़ नानक शरण आयो प्रे नाथ नर हर करो गात मीना जलहीन हे ओह बिछरत मन तन खीन हे कत जीवन प्रे बिन होत सन्मुख सहबान हे मृग अर्पे मन तन प्राण हे ओह बेदियो सहज स्रोत प्रे प्रीत लागी मिल बैरागी खिन रहन त्रिग तंग तिस बिना पलका ना लागे प्रे प्रेम पागे चितवंत अंजन प्रमना श्री रंग राते नाम माते पै परम दुतिया सगल खोत कर मया दया दयाल पूरन हर प्रेम नानक मगन होत अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात हे प्रीत कमल बंदावत आप चात्रिक चित प्यास हे तन बूंद बचित्र मन आस हे अल पीवत बिन सत ताप ताता विनाशन दुख नाशन मिल प्रेम मन तन अतकना सुंदर चतुर सुजान स्वामी पवन रसना गुणपना गह पूजा लेवो नाम देवो दृष्ट तारत मिटत काप नानक जम पै पतित पावन हर दर्श पे सतमह सं

सुंदरतम ज्ञान सुंदरतम ज्ञान हे मन लुबिद गोपाल ज्ञान हे जाचक जन राखत मान प्रभु मान पूरन दुख विदीरन सगल इच पुजंतिया हर कंठ लागे दिन सुभागे मिल नहा शेष सुअंतिया प्रभु दुष्ट तारी मिले मुरारी सगल कलमल पहान बिन वंश नानक मेरी आस पूरन।

सूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद आशा महला पहला वासलोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे पुण्य यशराज की तुने श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने देवहारी सदवार जिन मानस ते देवते की ये करतना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवे सूर चढ़े हजार इते चानन हुंदिया गुरबिन को रंदार महला पहला नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिलबु आर ज्यो सुन्ये अंदर खेत खेते अंदर छुटिया कहो नानक सोना फलिये फुलिये बपड़े पीतन विच सुआ पौड़ी आपी ने आप साजियो आपी ने रचियो नाओ दुई कुदरत साजिए करे आसन जिठो चाहो दाता करता आप तू तुस देवे करे पसाओ तू जानो ही सब से दिल ऐसे जिंद कवाओ करे आसन जिठो चाओ श्लोक महला पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुझ आखे लख करोड़ सच्चे सब कान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह ना सत्यान सच जो मर जमे सो कच ने कच महला पहला वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सच ने आओ वड्डी वड्याई जाने चल खाओ वड्डी वड्याई जाने अलाओ वड्डी वड्याई बुझे सब भाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा पे आप नानक कार न कथनी जाए कीता करना सरबर जाए महला दूजा एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास इकना हुक्म समाए लए इकना हुक्म करे विनाश इकना पाने कड ले इकना माया विच निवास ए पे आख न जा पई जे किसे आने रास नानक गुरमुख जानिए जा को आख करे परदास पौड़ी नानक जी उपाय कह लिखना वे तरम बहा लिया ओथे सच्चे ही सच निबड़े चुन वक कड्डे जिजमा लिया थाओ ना पायन कूड़िया मोका ले दो जुक चालिया तेरे नाय रते से जिन गए हार गए से ठगन वालिया लिखना में करम बालिया श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद पेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिर जंत विस्माद सौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडानी विस्माद करती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद सुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख उड़ान रहा विस्माद नानक पूजन पूरे पाग महला पहला

कुदरत सर्व प्यार, कुदरत जाति जिनसी रंगी, कुदरत जी जहान, कुदरत नेतियां, कुदरत बदिया, कुदरत मान अभिमान, कुदरत पाउन पानी बैसंतर, कुदरत करती खाक, सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नारी पाक, नार कुक में अंदर वेख है वर्ते ताको ताक पौड़ी, आती ने पोट पोट कह होए पसमर पौर सिदाया, वड्डा हुआ दुनीदार गल संगल कब चलाया, अग्गै करनी कीर्त वाची है बहले खा कर समझाया, थाउ ना हुई पाउ दई हुन सुनिए क्या रू आया, मन अंदे जन्म गवाया, श्लोक महला पहला, पैर विच पौन वह सदवाओ, पैर विच चलने लख दरियाओ, पैर विच अगन कटै वे गार, पैर विच तरती दबी पार, पैर विच इंद फिरै सिर पार, पैर विच राजा तरम द्वार, पैर विच सूरज पैर विच चंद को करोड़ी चलतनां, पैर विच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ, पैर विच आडाणे आकाश, पैर विच जोध महाबल सूर, पैर विच आवे जावे पूर, सगे आपो लिखिया सुरलेख, नानक निर्भव निरंकार सचेख महला पहला, नानक निर्भव निरंकार होर केते राम रवाल, केतिया कन कहानियां केते भेद विचार, केते नचे मंगते गिड़मुड़ पूरे ताल, बाजारी बाजार में आए कड़े बाजार, गावे राजे रानियां बोले आल पताल, लख टकिया के मुंडड़े लख टकिया के हार, जित तन पाये नाम का सेतन होवे चार, ज्ञान न गली टूंडी है कठना करड़ा सार, कर्म मिले ता पाये होर हिकमत हुकम खुआर पौड़ी, नदर करे जे आपनी ता नदरी सतगुरु पाया, एहो जियो बहुते जन्म प्रम्या ता सतगुरु शब्द सुनाया, सतगुरु जे वरदाता को नहीं सब सुनियो लोक सुभाया, सतगुरु मिले सच पाया जिनी विच्चों आप गवाया, जिन सचो सच बुझाया, श्लोक महला पहला, कड़िया सबे गोपियां पैर कन गोपाल, गहने पौन पानी बैसंतर चन सूरज अवतार, सगली तरती माल तन वर्तन सर्व जंजाल, नानक मुझसे ज्ञान में होनी खाए गया जमकाल महला पहला, वाइन चेले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर, उड़ उड़ रावा चाटे पाए वेखे लोक हसे कर जाए, रोटियां कारण पूरे ताल आप पछाड़े तरती नाल, गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम, निरपौ निरंकार सच नाम जाका की आ सकल जहां, सेवक सेवे कर्म चढ़ाओ पिन्नी रैन जिना मन चाहो, सिक्की सिख्या गुरु विचार नदरी कर्म लंगाए पार, कोलू चरखा चक्की चक फल वारोले बहुत अनंत, लाटू माधानियां गा पंखी पौंदियां लैन नसा, सूए चार पुआई जंत नाम पौंदिया गंत नांत, बंधन बंद पुआए सोए पै किरत नचै सब कोए, नच नच हसे चले सिरोए उड़ न जाए सिद्ध न होए, नचे कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ी, नाउ तेरा निरंकार है ना ले नरक न जाइए, जियो पिंड सब तिसदा देखा जय आप गवाइए, जे लोड़ है चंगा आपना कर कुन्हू नीच सदाइए, जे जरवाना परहर है जर वेश करें दी आइए, को रह न परिये पाइए, श्लोक महला पहला, मुसलमाना सिर्फ फरियत पर पढ़ करें विचार, बंदे से जे पवे विच बंदी वेखन को दीदार, हिंदू साला ही साला हम दर्शन रूप अपार, तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास में कार, जोगी सुनत्या जेते अलख नाम करतार, सुखम मूरत नाम निरंजन काया का आकार, सतिया मन संतोख उपजे देने के विचार, दे दे मंगे सैसा गुना शोक करे संसार, चोरा यारा तय कुड़ियारा खारा बावे कार, इक होदा खाए चले ऐसाओ तिना बेकाई कार, जल फल जिया प्रिया लोहा आकारा आकार, ओए जे आखे सोटू है जाने तिना भी तेरी सार, नानक पगता पुपसलान सच नाम आधार, सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंतिया पाचार महला पहला, मिट्टी मुसलमान की पेड़ है पई कुम्हार, कर पांडे इट्टा किया जल्दी करे पुकार, जल जल रो वह बपड़ी चढ़ चढ़ को अंगियार, नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी,
बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। सतगुर आप रखियो कर प्रगट आप सुनाया, सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया। उत्तम क्यों विचार है जिन सच्चे सुचित लाया, जग जीवन दाता पाया श्लोक महला पहला। हौ विच आया हौ विच गया, हौ विच जमया हौ विच मोआ, हौ विच दिता हौ विच लया, हौ विच खटिया हौ विच गया। हौ विच सत्यार कूड़ियार, हौ विच पाप पुन विचार, हौ विच नरक सुरग अवतार, हौ विच हसे हौ विच रोवे, हौ विच परिय हौ विच होवे, हौ विच जाति जिन सी खोवे, हौ विच मूर्ख हौ विच सियाणा, मोख मुक्त की सार न जाना। हौ विच माया हौ विच छाया, हौ मैं कर कर जंतु पाया, हौ मैं बूझे ता डर सूझे, ज्ञान में होना कब तक लूझे। नानक हुक्मी लिखी है लेख, जिहा वेख है तिहा वेख मैला दूजा। हौ मैं एहा जात है, हौ मैं कर्म कमाए, हौ मैं एही बंदना फिर जो नहीं पाए। हौ मैं कितो उपजे कितन जम ए जाए, हौ मैं एहो हुक्म है पे है कित फिराए। हौ मैं दीर्घ रोग है दारू भी समाए, कृपा करे जे अपनी ता गुरु का शब्द कमाए। नानक कह सुनो जनो इच्छन जम दुख जाए। पौड़ी सेव की संतोखी, जिन्नी सचो सत्य आया, ओनी मंदे पैर न रखियो कर शुक्र कर्म कमाया। ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया, तू बस्ती सी अगला नित देवे चने सवाया। वड्याई वड्डा पाया श्लोक महला पहला। पुरखा बिरखा तीर्था तत्ता मेगा खेता, दीपा लोआ मंडला खंडा वर पंडा। अंड जेरिज उत्पुजा खानी सेत जहां, सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता। नानक जंत उपाय कै समाले सबना, जिन करते करना किया चिंता वे करनी ता। सो करता चिंता करे जिनु पाया जग, तिस जुहारी स्वस्थ तिस दीवान अपग। नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या पग। महला पहला। लख ने किया चंगियाईया लख पुन्ना प्रमाण, लख तप प्रतिष्ठा सहज योग बेबान। लख सूरतन संग्राम रंग में छुटे प्राण, लख सुरती लख ज्ञान ज्ञान पढ़िए पाठ पुराण। जिन करते करना किया लिखिया मन जान, नानक मती मिथ्या कर्म सच्चा निशान। पौड़ी सच्चा साहिब एक तू, जिन सचो सच वरताया, जिस तू दे तिस मिले सच ता तिन्नी सच कमाया।

होए दारू पाप कड्ढे कोए, नानक वखाण बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी। दान महिंदा तली खाक जे मिले ता मस्तक लाई है, कूड़ा लाल छड़ी है होए इक मन अलग से आई है। फल ते वे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है, जे होवे पूर्व लिखिया ता तूर तिना दी पाई है। मत थोड़ी सेव गवाई है, श्लोक महला पहला। सत्काल पूर्व वर्त्या कल काल बेताल, बियो बीज पक ले गए अब क्यों उगवे दाल। जे इक होए ता उगवे रुत्ति हुरत होए, नानक पाहे बाहरा कोरे रंग न सोए। पैर खुम चढ़ाई है शर्म पावता होए, नानक पगती जे रुपए कूड़े सोए न कोई महला पहला। लब पाप दो राजा महता कूर हो आशिकदार, काम लेव सब पूछिए बह बह करे विचार। अंधी रैयत ज्ञान में होनी पाए परे मुर्दार।

0: मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करें प्यार करमी कर्म करें गावावे मंगे मोख द्वार जति सदावे जुगत न जाने छड़ महे कर बार सबको पूरा आपे हो वह कट ना कोई आखे पग परवाना पिछे पाये ता नानक तोलिया जापे महला पहला वदी सवज्जग नाम का सच्चा वेखे सोए सबनी चाला मारिया करता करे सोए अगे जाप मजोर है अगे जियो नवे जिनकी लेख है पपवे चंगे से के पौड़ी तुर कर्म जिना को तुझ पाया ता किन्नी खपन से आया ए ना जनता के वश किछ नाही तुझ वेकी जगत उपाया इकना नो तू मेल ले इकापो तुझ खुआया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुझ आप बुझाया सहजे ही सच समाया।
1: श्लोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग पाया जा सुख कामना होई तू करता करना मैं नाही जाहो करी न होई बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लखिया रहाओ जात में जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर रहा तू सच्चा साहिब सुवालियो जिन कीती सो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो कुछ करना सो कर गया। महला दूजा। जोग शब्दंग ज्ञान शब्दंग वेद शब्दंग ब्राह्मण है खत्री शब्दंग सूर शब्दंग सूदर शब्दंग प्राकृत है सर्व शब्दंग एक शब्दंग जे को जाने भेयो नानकता का दास है सोई निरंजन देव। महला दूजा। एक कृष्ण सर्व देवा देव देवा पात्मा

गुरु बिन ज्ञान न होए पौड़ी। पढ़ा हो वह गुनेगा ताऊ उमी साधना मारी है, जे हाँ काले कारणा तेवे हो नाव पचारी है, ऐसी कला न खेड़ी है जित दर गए गया हारी है, पढ़िया अत ओमिया विचार गए विचारी है, मुझ चले सो अगे मारी है। श्लोक महला पहला। नानक मेर शरीर का एक रथ एक रथवाओ, जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझे ताहे, सत जुग रथ संतोख का कर्म अग्गे रथवाओ, त्रेते रथ जते का जोर अग्गे रथवाओ, द्वापर रथ कपे का सत अग्गे रथवाओ, कल युग रथ अगन का कूड़ अग्गे रथवाओ।

कार ऊपर आए बैठे कूड़ियार मत बिटे वे मत बिटे यो अनासादा फिटे तन फिटे फेर करेन मन जूठे चुली भरेन कहो नानक सत्य आई है सुच होवे ता सच पाई है पौड़ी चित्ते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंगा आपे देवड़े आईया आपे ही कर्म कराएंगा वडो वडा

सत्तर देव कानून, पंजवा पाया किरत ता हुआ पाक पवित्र, पापी सो संग दया थका पिया चित, जित मुख नाम ना उचरे बिन नावे रस खाए, नानक ए वह जानिए चित मुख थका पाए। महला पहला, पन जमिए पन निमिए पन मंगन भी आहो, पंडो हो वह दोस्ती पंडो चले राहो, पंड मुआ पंड पालिए पंड हो वह बंगान, सो क्यों मंदा आखिए जित जम है राजान, पंडो ही पंड उपजे पंडे बाज न कोए, नानक पंडे बाहरा एको सच्चा सोए, जित मुख सदा सलाही है।

के पाए फिका मूर्ख आखिए पाना लह सजाए महला पहला अंदरों झूठे तेज बार दुनिया अंदर फैल असर तीरथ जे नाम है उतरे नाही मैल जिन पर अंदर बाहर गुदर के फले संसार तिन ने हो लगा रब से ती देखने विचार रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाए परवाह नाही किसे केरी बात सच्चे ना दरवाज ऊपर खर्च मंगा जब देता खाए दीवान एको कलम एका हमा तुमा मेल दर ले लेखा पीर छुटे नान का जो तेल पौड़ी आपते ही करना कियो कल आपते ही सहतारी है।

ना सके रास जे एक अर्चंगी करे दूजी भी वे रास पौड़ी चाकर लग गए चाकरी जे चले खसमे पाए हुरमत किसनो अगली ओ वजो पे गुना खाए खसमे करे बराबरी फिर हैरत अंदर पाए वजो गुआए अगला मुँह मुँह पाना खाए जिस दादुता खावना इस कही ऐसा बास नानक हुकम ना चले नाल खसम चले अरदास।

सुख है जो मिले मेला दूजा, एक नहीं चाकरी जित पौ खसम न जाए, नानक सेवक काढ़िए जैसे ती खसम समाए पौड़ी, नानक अंत न जापनी हर का के पारा बार, आप कराए साक्ती फिर आप कराए मार, इक ना गली जंजीरिया इक तुरी चले बिशियार, आप कराए करे आप हर कैसो करी पुकार।

गुरचरण लाग हम बिनवता, पूछत कह जियो पाया, कवन काज जग उपजे दिन से कहो मुहे समझाया। देव करो दया मुहे मार्ग लावो, जित पै बंधन टूटे।

इन विद अभ्यो न चूके। कहीं न उपजे उपजी जाने पाव अपाव विहूणा। उदय अस्त की मन बुद्ध नासी तो सदा सहज लिवलीना। ज्यो प्रतिबिंब बिंब को मिली है उदक कुंभ बिगराना। कहो कबीर ऐसा गुण परंपरा तो मन सुन समाना। आशा गज साडे तै तै तोतिया तेरे पायन तग। गली जिना जप मालिया लोटे हाथ निबग। ओए हर के संत न आखिए बनारस के ठग। ऐसे संत न मौके पावे डाला सो पेदा गटकावे। रहाओ बासन मांज चरावे ऊपर काफी तोये जलावे। बसदा खोज करे दो चूले सारे मानस खावे। ओए पापी सदा फिरे अपराधी मुखों अपरस कहावे। सदा सदा फिरे।

सूझिया, गुर प्रसाद में सब कुछ सूझिया। आशा इकत पत्थर पर उरकट कुरकट, इकत पत्थर पर पानी, आस पास पंच जोगिया बैठे, बीच नकट दे रानी। नकटी को ठंगन बाबा दू, किने विवेकी काटी तू राव। सगल माहे नकटी का वासा, सगल मार ओहेरी, सगलिया की हो बहन पान जी, जिन्हें बरी तिस्केरी। हमरो परता बड़ो विवेकी, आपे संत कहावे, ओ हमारे माथे कायम,

कछुआ कह अंगार बेलोरो लूकी शब्द सुनाया आशा बटुआ एक बेहतर आधारी एक कोज से द्वारा नवे खंड की पृथ्वी।

चलाए, दिल में सोच विचार कवा दे, पिस्त दोज किन पाए, काजी तै कमन कतेब बखानी, परत गुनत ऐसे सब मारे, किन्हो खबर न जानी रहाओ, सकत स्नेहो कर सुन्नत करिए, मैं न बदौगा पाई, जोरे खुदाए मोह तुर्क करेगा, आपन ही कट जाए, सुन्नत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए, अर्ध शरीरी नार न छोड़े, ताते हिंदू ही रही है, छाड कतेब राम पज बौरे, जुल्म करत है पारी, कबीर है पकड़ी टेक राम की, तुर्क रहे पचहारी।

रे बौरे कोई करी न राखे कोई, तू राम नाम जप सोई रहो, काकी मात पिता थो काको, कवन पुरुष की जोई, कट कूटे को बात न पूछे, काडो काडो होई। ब्योहरी बैठी माता रोवे, खटिया ले गए पाई, लग छुटकाए त्रिया रोवे, हंसी के ला जाए, कह कबीर सुनो रे संतो, कैसा गर कहता ही, इस बंदे से जुल्म होत है, जम नहीं हटे।

एक तो के संत सुन अंग अंत नहीं पाया, वेद पढ़े पर ब्रह्म में जन्म गवाया। हर का बिलोव ना बिलोवो मेरे भाई, सहज बिलोवो जैसे तक ना जाए रहाओ। तन कर मटकी मन माए बिलोई, इस मटकी में सबक संजोई। हर का बिलोव ना मन का विचारा, गुरु पर साथ पावे।

ने कूटा, मंदल ना बाजे नट पे सूता, बुझ गई अगर ना निकसो तुआ, रव रहा एक अगर नहीं दुआ रहाओ। टूटी पंख न बजेर बाब, फूल बिगाड़े अपना।

हार होगनहारे पो गया इस मूरत के मुखचार। मालन पुली जग पुलाना हम पुलाने ना है, कहो कबीर हम राम राखे कृपा कर हर राय आशा। बारह वर्ष बालपन बीते, बीस वर्ष तक तप ना कियो, तीस वर्ष तक देव ना पूजा, फिर पछताना विरद भयो। मेरी मेरी करते जन्म गयो, सायर शोक पुजंग बलयो, रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे, लूने खेत हथवार करे, आयो चोर तुरंत ले गयो, मेरी राखत मुग्ध फिरे, चरण शीश पर कंपन लागे, नैनी नीर असार बहे, जेवा बचन शुद्ध नहीं निकसे, तब रे कर्म की आस करे, हर जियो कृपा करे लिव लावे, लाहा हर हर नाम लियो, गुर प्रसादी हर तन पायो, अंते चल दिया नाल चलियो। कहत कबीर सुनो रे संतो, अंतन कछुए।

चिरगट फास तारा ले गयो तरी तागरी छूटी आशा। हम मस्कीन खुदाई बंदे तुम राज मन पावे, अल्लाह अवल दीन को साहिब जोर नहीं फुरमावे। काजी बोलिया बन नहीं आवे रहाओ, रोजा तरह निवाज गुजारे कलमा।

आप जनाए अवर को जाने तब हुए पिस्तरी की माटी एक पेक तर नाना तामे ब्रह्म पछाना कह कबीरा पिस्त छोड़ कर दोजक सो मन माना आशा गगन नगर एक बूंद न बरखे नाद कहा जो समाना पार ब्रह्म पर

ना साखी शब्द सुरत नहीं उपजै खिंच तेज सब लीना श्रवणन बिकल पए संग तेरे इंद्री का बल खाका चरण रहे कर तर्क परे है मुखो न निक्षय बाता थाके पंच दूत सब तस्तर आप आपने प्रमते खाका मन कुंचर उर खाका तेज सूत तर रमते मृतक पए दस बंद छूटे मित्र पाई सब छोरे कहत कबीरा जो हर त्याव जीवत बंधन तोरे आसा इक तुके चौथा सर्पनी ते ऊपर नहीं बलिया जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव छलिया मार मार सर्पनी।

जिन साज पछानिया तिन सरपनी खाई, सरपनी ते आन छूच नहीं अवरा, सरपनी जीती कहां करे जमरा। ए सरपनी ताकी कीती होई, बल अबल क्या इस्ते होई, ए बस्ती का बस्त शरीरा, गुर प्रसाद सहज तरे कबीरा। आशा कहां स्वाम को सिमरत सुनाए, कहां साकत कह हर गुण गाए, राम राम राम रमे रम रही है, साकत सो पूल नहीं कही है रहाओ। कौआ कहां कपूर चराए, कह बिसियर को दूध पियाए, सत्संगत मिल विवेक बुद्ध होई, पारस परस लोहा कंचन सोई, साकत स्वान सब करे कराया, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया, अमृत ले ले नीम सिंचाई, कह कबीर ओआ को सहज न जाई। आशा लंका सा को

रहाया, दस मास माता उधर राखिया, बहुर लागी माया, प्राणी काहे को लोभ लागे, रतन जन्म खोया, पूरब जन्म कर्म पूम बीज नाही बोया, राव बारिक ते बिर्द पया, होना सो होया, जा जम आए चोट पकड़े, तब है काहे रोया, जीवने की आस तरह जम निहारे सासा, बाजी गरी संसार कबीरा, चेत टाल पासा, आसा, तन रैनी मन पुनरप कर हूं, पांचों तत बराती, राम राय स्यो पावर ले हो, आत्म तिह रंग राती, गाओ गाओरी दुल्हनी मंगल चारा, मेरे गृह आए राजा राम पुकारा रहो, नाभि कमल में बेदी रचले, ब्रह्म ज्ञान उचारा, राम राय सो दूलो पाया, असबद पाग हमारा, सुर नर मुन जन कौतक आए, कोट तेतीस उजाना, कह कबीर मोहि ब्याह चले हैं, पुरख एक पगवाना, आशा, सास की दुखी ससुर की प्यारी, जेठ के नाम डरो रे, सखी सहेली ननद गहेली, देवर के बिरह जरोरे, मेरी मत गौरी मैं राम बिसारे हो, किन विद रहन रहो रे, से जय रमत नैन नहीं पेखो, यो दुख कासों कहो रे, रहाओ, बाप सांव का करें लड़ाई, माया सब

मतवारी, बड़े काई के जब संग होती तब होना प्यारी। कैद कबीर पंच को चगरा, चगरत जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांधिया, मैं राम रमत सुख पाया। आशा हम कर सूत तने नित ताना, कंठ जनेऊ तुम्हारे, तुम तो वेद पढ़ो गायत्री, गोविंद हृदय हमारे। मेरी जेबा बिसुन नैन नारायण, हृदय बसे गोविंदा, जम द्वार जब पूछस बवरे, तब क्या कहस मुकंदा। रहाओ हम गोरु तुम ग्वार गुसाई, जन्म जन्म रखवारे, कब हू न पार उतार चढ़ायो, कैसे खसम हमारे। तू बामन मैं काशीक दुल्हा, बुझो मोर ज्ञाना, तुम तो जाचे कुपत राजे, हर्षो मोर त्याना। आशा जब जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन सुपन समान, साच कर हम गांठ दीनी, छोड़ परम निधान, बाबा मा

आशा जो मैं रूप किए बहुत तेरे अब पुन रूप न होई ताजा तन साज सब थाका राम नाम बस होई अब मोहे नाचनो ना आवे मेरा मन मंदरिया।

आ गया परम सब छूटे सर्व पूत ए तय कर जानिया चूके बाद विवादा कह कबीर मैं पूरा पाया पै राम प्रसादा आशा रोजा करे मना।

तेरा सोच विचार न देखे, खबर न करे दीन के बौरे, ताते जन्म अलेख है रहाओ। साच कतेब बखाने अल्हो, नार पुरख नहीं कोई, पदे गुने ना ही कछ गौरे, जो दिल में खबर न होई। अल्हो गैब सगल कट पीतरे।

गजनी में पाई। हर की कथा अनाहद बानी, हंस होए हीरा ले पछानी रहाओ। तें कबीर ही रास देखियो, जग में रह समाए। गुप्ता हीरा प्रगट पयो जब, गुरगम दिया दिखाई। आशा पहली करूप कुजात कुलखनी, सहुरे पे ये बुरी, अब की स्वरूप सुजा।

रहो रहोरी बहुरिया कुंगट जिन पाडे अंक की बार लहेगी ना आडे रहाओ कुंगट काट गई तेरी आगे उनकी गैल तोहे जिन लागे कुंगट पादे की एह बढ़ाई दिन दस पांच बहु पले आई कुंगट तेरो तो पर साचे।

जो तन चीरे अंग न मोरो, पिंड परे को प्रीत न तोरो। हम तुम बीच भयो नहीं कोई, तुम्हें सुकंत नार हम सोई। कहत कबीर सुनो रे लोई, अब तुमरी प्रतीत न होई। आशा कोरी को काहू मरम न जाना, सब जग आंत आयो ताना। रहाओ जब तुम सुन ले वेद पुराना, तब हम इतनक पसरो ताना। तरन आकाश की कर घे बनाई, चंद सूरज दो साथ चलाई। पाई जोर बात इक कीनी, कह कांति मन माना। जो लाहे कर अपना चीना, कट ही राम पछाना। कहत कबीर कार गह तोरी, सूते सूत मिलाए कोरी। आशा अंतर मैल जे तीर्थ नावे, किस बैकुंठ न जाना। लोक पति ने कछु न होवे।

जैसे मेंढक तैसे ओए नर फिर जोनी आवे। मनो कठोर मरे बनारस नरक में बांचिया जाए। हर का संत मरे हाड़म बैठा सगली सेंतराई। दिन सुनरे बेद नहीं शास्त्र तहां बसे निरंकारा। कह कबीर नरक।

का, मन मेरो गाजी जुहबा मेरी काटी, मत मत काटो जम की फांसी, कहां करो जाती कह करो पाती, राम को नाम जपो दिन राती रहाओ, रांगन रांगो सीवन सीवो, राम नाम बिन करी न जीवो, भगत करो हर के गुण गावो, आठ पहर अपना खसम प्यावो, सोईने की सुई रुपे का तागा, नामे का चित हर सो लागा, आशा साप कुंठ को डे दिख नहीं छाडे, उदक माहे जैसे बग त्यान माडे, काहे को की जय त्यान जपन्ना, जब ते सुध नाही मन अपना, रहाओ सिंगच पोजने जो नर जाने, ऐसे ही ठग देओ बखाने, नामे के स्वामी लाए ले चगरा, राम रसायन पियो रे दगरा, आशा पार ब्रह्म जे चीन सी, आशा ते ना भाव सी, रामा पगते चे

काल सास अबद लागे कछ न चले उपाय। रविदास दास उदास तज प्रम तपन तप गुर ज्ञान, भगत जन तय हरन परमानंद करो निदान। आशा

संत आचरण, संत चो मार्गे, संत चो ओलग ओलगणे, और इक मांगो भगत चिंता मन, जनी लखावो असंत पापी सन, रविदास पने जो जाने सो जान, संत अनंत अंतर नाही आशा। तुम चंदन हम अरिंद बापुरे, संग तुम्हारे बासा, नीच रूख के ऊंच पे हैं गंध सुगंध निवासा। मादो सत्संगत शरण तुम्हारी, हम अवगण तुम उपकारी रहाओ, तुम मक्तूल सुपेत सपैयल, हम बपरे जस कीरा, सत्संगत मिल रही है मादो जैसे मधु मखीरा, जाती ओछा पाती ओछा।

चरण अरविंद पान मन, पान करत पायो पायो रमैया धन, रहाओ संपत विपते पटल माया धन। ताम है मगन हो।

आओ हर के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के काटे कागर, निमत नाम दियो दूध पियाया, तो जग जन्म संकट नहीं आया, जन रविदास राम रंग राता, क्यों गुर प्रसाद नरक नहीं जाता। माटी को पुतना कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौरे फिरत है रहो, जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है, मन बच क्रम रस कसे लुभाना।

प्रमत सुरत बहु जन्म दिलाने, तन मन तन नहीं तीरे, लालच दिख काम लुगद राता, मन बिसरे प्रभ हीरे। रहाओ दिख फल मीठ लगे मन बौरे, चार विचार न जानिया, गुंते पीत बदी अनपांती, जन्म मरण फिर तानिया। जुगत जान नहीं हृदय निवासी, जलत जाल जम फंद परे, दिख फल संच परे मन ऐसे, परम पुरख प्रभ मन बिसरे। ज्ञान प्रवेश गुरे तन दिया, ध्यान मान मन एक मय, प्रेम पगत मानी सुख जानिया, तृप्त अघाने मुकुट भय। ज्योत समाए समानी जाके, अचली प्रभ पहचानिया, तन्ने तन पाया तरनी तर, मिल जन संत समा।

त्यागी माया, प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया। सैन नाई बुतकारिया ओ कर कर सुनिया, हृदय वक्षया पार ब्रह्म पगता में गनिया।

सोहंदियां फिर गल बाड़ियां चले चलन हार विचारा ले मनो गंडेंदियां छे महा तुड़ंदियां हिक सिनो

कीचे नाम त्याये बिन नावे पूज न होए रहाओ। बाहर देव पखालिए जे मन तोवे कोई झूठ लह जियो मांजिए मोख पयाना होए। पशु मिले संग आईया।

कार रहाओ। राव सस दीपक जाके त्रिभुवन एका ज्योत मुरार, गुरुमुख हुए सो एनस निर्मल मन मुख रहन अंधार, सिद्ध समाज करे नित चगरा दोह लोचन क्या हेरे, अंतर ज्योत शब्द तुन जागे सतगुरु चगर निवेरे, सुर नर नाथ बेअंत अजोनी सच महल अपारा, नानक सहज मिले जग जीवन नदर करो निस्तारा।

जित हर प्रीत न पाए, जित कम हर विसरै दूजे लगे जाए। ऐसा सतगुर सेविए मना, जित सेविए गोविंद प्रीत उपजै, अवर विसर सब जाए। हर से की चित दहर है, जरा का पौ न हो वही जीवन पदवी पाए। रहाओ गोविंद प्रीत सो इक सहज उपजिया, वेख जैसी भगत बनी आप से ती आप खाया। तामन निर्मल हुआ ज्योति ज्योत समयी, दिन पागा ऐसा सतगुरु ना पाये, जे लोचे सब कोय। कूड़े की पाल विच्चों निकले का सदा सुख होए। नानक ऐसे सतगुरु की क्या ओ सेवक सेवा करे, गुर आगे जियो तरे। सतगुर का पाना चित करे, सतगुर आपे कृपा करे। गुजरी महला की जा, हर की तुम सेवा करो, दूजी सेवा करो ना कोई जी। हर की सेवा ते मनु चिंदिया फल पाई है, दूजी सेवा जन्म बिरखा जाएगी। हर मेरी प्रीत रीत है, हर मेरी कथा कहानी जी। गुर प्रसाद मेरा मन पीजे, यहाँ सेव बनी जियो राव। हर मेरा सुमृत, हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंधक, हर मेरा भाई। हर की मैं भूख लागे, हर नाम मेरा मन तृप्त है। हर मेरा साथ अंत होए सखाई, हर दिन होर रास पूरी है, चल दिया नाल न जाई। हर मेरा तन मेरे साथ चाले, जहाँ हो जाऊं तह जाई। सो टूठा जो टूठे लागे, सूठे कर्म कर।

जाओ। सतगुरु मिले हर मन वसै, सहजे रह समाए रहाओ। जा पौ पाए अपना बैराग उपजे मन आए, बैराग ते हर पाए हर सु रह समाए। से मुक्ते जे मन जिन्हें फिर तात न लागे आए, दसवें द्वार रहत करे त्रिभुवन सो जी पाए। नानक गुर ते गुर होया वेखो तिस की रजाए, इहो कारण करता करे।

अंत गया पछताए। त्यो मन काशी सब तीरथ सिमरत सतगुरु दिया बुझाए। अब तक तीरथ किस संग रहे जिन हर हृदय रहा समाए। नानक सतगुरु मिले हुक्म बुझिया एक वसिया मन आए। जो तुद पावे सब सच है सच्चे रहे समाए। गुजरी महला तीजा तीजा एको नाम निधान पंडते सुन शिक्षा से। दूजे पाए जेता पढ़े परत गुणत सदा दुख होई। हर चरणी तू लाग रहो गुर शब्द सोजी होई। हर रस रसना चाक तू तामन निर्मल होई राव। सतगुरु मिले मन संतोषी है ता फिर कृष्णा पूख न होए। नाम निधान पाया पर कर जाय ना कोई। कतनी बदनी जे करे मन मुख बूझ न होए।

सो मूर्ख जो आप ना पछाने सच ना करे प्यार, सच्चे जगत डहकाया कहना कछु न जाए, नानक जो किस

संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते पादहीन जम पास, जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए तिग जीवे तिग जीवास। जिन हर जन सतगुरु संगत पाए तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास, तन तन सतसंगत जित हर रस पाया मिल नानक नाम प्रगास। गुजरी महला चौथा। गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम मिल सतसंगत शब्द मन मोह, जप गोविंद गोविंद त्याय सबको दान दे प्रभ ओ है। मेरे भाई जना मोह को गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह है, गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा मिल गुर साध संगत जन सो है। रहाओ सुख सागर हर पगत है गुरमुख कौला रिद सुध लागे पग ओ है। जन को राम नाम आधारा हर नाम जपत हर नामे सो है। दुर्मत पागहीन मत फीके नाम सुनत आवे मन रो है। कौआ काग कौ अमृत रस पाई है तृप्त विस्ता खाए मुख गो है। अमृत सर सतगुर सतवादी जित

कौआ हंस होवे, नानक तन तन वड्डे वड पागी, जिन गुरमत नाम हृदय मल तो है गुजरी महला चौथा। हर जन उत्तम उत्तम बाणी मुख बोले पर उपकारे, जो जन सुने सरदार।

तुम प्राण सतगुर गुर पूरा हम पापी गुर निस्तारे रहाओ। गुरमुख वड पागे जिन हर हर नाम अधारे हर हर अमृत हर रस पावे हैं गुरमत भगत पंडारे जिन दर्शन सतगुर सतपुरुष।

नानक जन हर की शरण आई, हर पावे हर निस्तारे, गुजरी मैला चौथा। ओ दयाल मेरा मन लावो, हूँ अंगन राम नाम नित्याई, सब सुख सब गुण सब निधान, हर जित जपे दुख पुख सब ले जाई। मन मेरे मेरा राम नाम सखा हर पाई, गुरमत राम नाम जस गावा, अंत बेली दर्ज है ले छाई राव। तू आपे दाता प्रभ अंतर जामी, कर कृपा लोच मेरे मन लाई, मैं मन तन लोच लगी हर सेती, प्रभ लोच पूरी सतगुरु शरणाई। मानस जन्म पुन कर पाया, बिन नामे त्रिग त्रिग बिरथा जाय, नाम बिना रस कस दुख पावे, मुख फीका थुक थूक मुख पाई। जो जन हर प्रभु हर हर शरणा, तिन दर्जे हर हर देव डे आई, तन तन सबा सह।

प्राण जीवाया। हम हो गए लाले गोले गुरसिखा के, जिना अन दिन हर प्रभ पुरख ते आया। मेरे मन तन बिनो गुरसिख पग लाया, मेरे प्राण सखा गुर के सिख पाई। मोको करो उपदेश हर मिले मिलाया। रहाओ जहाँ हर प्रभ पावे ता गुरमुख मेले, जिन वचन गुरु सतगुरु मन पाया। वड पागी गुरु के सिख प्यारे, हर निर्वाणी निर्वाण पद पाया। सब संगत गुर की हर प्यारी, जिन हर हर नाम मीठा मन पाया। जिन सतगुरु संगत संग न पाया, से पागहीन पापी जम खाया। आप कृपाल कृपा प्रभ तारे, हर आपके गुरमुख मिले मिलाया। जन नानक बोले गुरबाणी गुरबाणी, हर नाम समाया। गुजरी महला चौथा, जिन सतगुरु पुरख जिन हर प्रभ पाया। मोको कर उपदेश हर मीठ लगावे, मन तन शीतल सब हरिया हुआ। वड पागी हर नाम से आवे, पाई रे मोको कोई आयु मिले हर नाम दृढ़ावे। मेरे प्रीतम प्राण मन तन सब देवा, मेरे हर प्रभ की हर कथा सुनावे। रहाओ नीरज तरम गुरमत हर पाया, नित हर नाम है हर सोचित लावे। अमृत बचन सतगुरु की बाणी, जो बोले सो मुख अमृत पावे। निर्मल नाम जित मैल न लागे, गुरमत नाम जपै लिव लावे। नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया, से पागहीन मोए मर जावे। अनद मूल जग जीवन दाता, सब जन को अनद करो हर त्यावे। तू दाता जी सब तेरे, जन नानक गुरमुख बख्श मिलावे। ओंकार सतगुरु प्रसाद, गुजरी महला चौथा कर कीजा। माई बाप पुत्र सब हर के किए, सबना को संबंध हर कर दिए। हमरा जोर सब रहो मेरे वीर, हर का तन मन सब हर के वस है शरीर। रहाओ भगत जना को सरदा आप हर लाई, विच्चे दुरुस्त उदास रहाई। जब अंतर प्रीत हर्ष्यों बन आई, तब जो किस करे सो मेरे हर प्रभ पाई। जित कारे कम हम हर लाए, सो हम करें जो आप कराए। जिनकी पगत मेरे प्रभ पाई, ते जन नानक राम नाम लिवलाई।

हारी अंतर मेल न उतरे हूँ मैं बिन गुरु बाजी हारी। मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा धारी कोट मदे को विरला सेवक हो सगले व्यवहारी रहा। शासक वेद सिमरत सब सो दे सब एका बात पुकारी। बिन गुरु मुक्त न को पावे मन वेखो कर बिचारी। अच मज्जन कर स्नाना प्रम आए थर सारी अनक सोच करें दिन राती बिन सतगुर अंधियारी। तावत तावत सब जग पायो अब आए हर द्वारी दुर्मत मेष बुद्ध परगासी जन नानक गुरमुख तारी। गुजरी महला पंजवा हर तन जाप हर तन ताप हर तन भोजन पाया निमख न बिसरो।

कहा हर तन स्नान हर तन ज्ञान हर संग लाए त्याना हर तन तुल्हा हर तन देड़ी हर हर तार पराना।

अमृत पाई आश्चर्य हर सोकार आवो खर्चो कोट न आवे हलत पलत के संगे लाज खजाना गुरु नानक को दिया यो मन हर रंग रंगे।

प्रीत कापड़ पथ परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत अनद अनंता रंग तमाशा पूर्ण आशा कभे न व्यापे चिंता पावर तुम्हारा यो मन हो हर चरणा हो कौला नानक दास।

काटे, काम क्रोध माया दुख ममता, तू ब्याज के हाटे, हर जस साध संग मिल गायो, गुर प्रसाद पयो मन निर्मल, सर्व सुखा सुख पायो।

दुख परया पार ब्रह्म जिन हृदय अराध्या तिन पौ सागर तरया गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटे प्रभ तज अवर सेवक जे होई है तित मान महत जस काटे रहाओ माया के संबंध सेन साथ कित ही कामना आया हर का दास नीच कुल ऊंचा किस संग मन बांचत फल पाया लाख कोट बिखिया के बिंजन तामे तृष्ण न बूझी सुमरत नाम कोट उजियारा बस अगोचर सूजी फिरत फिरत तुम रह द्वार।

सुंदर बाग मंदिर संग न कछु जाया, अवर सब मिथिया लोभ लभी, गुरपुरे दियो हर नामा, जी को एहा वस्त सबी रहाओ। इष्ट मीत बंद सुत पाई, संग बनता रच हसया, जब अंति

पाणा मिलिया होर सगल कयो बिराना हैवर गैवर रथ संभाहे गौ कर कीने मेरे जब ते होई लामी ताई चले नाही इक पैरे नाम तन नाम सुख राजा नाम कुटुंब सहाई नाम संपत गुरु।

नाम विधान सतगुरु दृढ़ाया, दिन सुनावे जाई हर जप माया बंधन टूटे। ऐ कृपाल दयाल प्रभु मेरे, साध संगत मिल छूटे। रहाओ आठ पैर।

सगल करत नमस्कारो, वर्ण जात को पूछे नाही, बाछे चरण रवारो, ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो, सगल सृष्ट को तनी कही जय, जन को अंग निरारो रहाओ, साध संग नानक बुद्ध पाई, हर कीर्तन आधारो, नाम देव त्रिलोचन।

करे प्रतपाल बारक की न्याय, जन को लाड लड़ायो रहाओ। जप तप संयम कर्म तरम हर कीर्तन जन गायो, सन परयो नानक ठाकुर की अभय दान सुख पायो। गुजरी महला पंजवा, दिन राती आराधो प्यारो, निमख ना की जय टीला, संत सेवा कर पावनी लाये, त्याग मान हथीला, मोहन प्राण मान रंगीला, बास रहो।

पई कल्याण आनंद रूप हुई है, उबरे बाल गोपाल रहाओ, मिलवर नारी मंगल गाया ठाकुर का जयकार, कहू नानक तिस गुर बलिहारी, जिन सबका किया उधार, गुजरी महला पंजवा। मात पिता पाई सुख बंदत, तिनका बल है थोड़ा, अनक रंग माया के पेखे, किछ साथ न चाले पोरा, ठाकुर तुझ बिन आए न मोरा, मोहे अनाथ निर्गुण गुण नाही, मैं आयो तुमरा तोरा रहाओ। बल बल बल बल चरण तुम्हारे, इहां उहां तुम्हारा जोरा, साध संग नानक।

पूरे मेरे सतगुरु मन शरण तुम्हारे परी अचेत्या ने बारक नानक हम तुम राखो तार करे। गुजरी महला पंजवा तू दाता जिया सबना का बसो मेरे मन माहे चरण कमल रिद माहे समाये तह परम अंधेरा नाहे ठाकुर जा सिमरा तू ताहे कर कृपा सर्व प्रतपालक प्रभु को सदा सला।

ओर चुत चुत वो हर रसन अरादो निरखो तुमरी ओर रहाओ। दयाल पुरख सर्व के ठाकुर दिनों करो कर जोर नाम जपे नानक दास।

पंजवां अप जस मिट होवे जग कीरत दरगे बैसन पाये जम की त्रास नाश होए खिन में सुख अनंत से कर जाइए।

0: कमल संगराच सगल जी जाको आराधे ताहू को तू चाच रहाओ नानक शरण तुम्हारी करते तू प्रभ प्राण आधार होए सहाय जिस तू राखे तिस कहा करे संसार। गुजरी महला पंजवा
1: जल की तेज सवारी आप
0: हर हर नाम दियो गुर अवखद उतर गयो सब ताप राव हर गोविंद रखियो परमेश्वर अपनी कृपा तार।

पुरख कपटे अनक जुगत कर कायो, बिसरत प्रभ के ते दुख गनिये महामोनी खायो। करो अनग्रो स्वामी मेरे गनो न मोहे कमायो, गोविंद दयाल कृपाल सुख सागर नानक हर शरणायो। गुजरी मैला पंजवा रसना राम राम रवंत, छोड़ आन व्यवहार मिथ्या पाज सदा भगवंत।

पंजवा तू सम्राट शरण को दाता दुख पंजन सुख राय जाय कलेश मिटे तय परमा निर्मल गुण प्रभु गाय गोविंद तुझ बिन अवर ना ठाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाओ रहाओ। सतगुर सेव लगे हर चरणी वड्डे पाग लिवलागी कवल प्रगास पए साध संगे दुर्मत बुद्ध त्यागी आठ

योगी काम क्रोध अहंकार तजियले लोभ मोह तिष्माया मन तत अविगत त्याया गुरु प्रसादी पाया ज्ञान ज्ञान सब दात तकियले सेत बरन सब दूता ब्रह्म कमल मद।

बिस्तज अमृत पियाया, गुजरी मैला पहला। कवन कवन जाचे प्रवदाते, ताके अंत ना परे सुमार। जैसी पूख होए अब अंतर, तू समरथ सच देवनहार। ऐ जी जब तक संयम सच आधार, हर हर नाम दिन सुख पाई है, तेरी भगत परे पंडार रहाओ। सुन समाज रहे लिव लागे, एका एकी शब्द विचार, जल

ना तद माया मगर न छाया, ना सूरज चंद ना जोत अपार, सर्व दृष्ट लोचन अब अंतर, एका नदर सो त्रिगुण सार। पवन पाणी अगन तिनकिया, ब्रह्मा विष्णु महेश अकार, सर्वे जाचक तू प्रभदाता, दात करे अपने विचार, कोट के तिस जाचे प्रभ नायक, देंदे तोट नाही पंडार, ऊंदे पांडे कछ ना समावे, सीधे अमृत परे निहार, सिद्ध समाधि।

चुक लाई गुर प्रसादी हर प्रभ जाके ऐसी नाम बढ़ाई रहाओ। है जी बहुते पेट करें पिछिया को के ते उधर परन कहताएं बिन हर भगत ना।

सोग बिजोग विसर्जत रोग। पाई रे गुर कृपा ते भगत ठाकुर की, सतगुरु वाक हृदय हर निर्मले, ना जम कान ना जम की बाकी रहाओ। हर गुण रसन रवे प्रभ संगे, ज्योतिष पावे सहज हरी, बिन हर नाम बिरथा जग जीवन, हर बिन नेफल नेत करी।

निंदक नर काले मुख निंदा जिन गुर की दात न पाए। सहजी शरण परे प्रभु बख्श मिलावे बिलम न अधुआ राई। अनदे मूले नाथ सिरनाथा सतगुर मेल मिलाई। सहजी सदा दयाल दया कर रव्या गुरमते प्रमन चुकाई। पारस पेट कंचन तात होई सत्संगत की वड़ियाई। हर जल निर्मल मन स्नानी मज्जन सतगुरु पाई पुनरप जन्म।

भगत प्रेम आराधितं सच प्यास परम हितं बिललाप बिलल बिनंतिया सुख पाए चित हितं जप मन नाम हर सरणी संसार सागर तार तारण राम नाम कर करनी रहाओ।

हर बिन जियरा रह न सके ज्यो बालक खीर अधारी अगम अगोचर प्रभ गुरमुख पाये अपने सतगुर के बलिहारी मन रे हर कीरत तर तारी गुरमुख नाम अमृत जल पाये जिनको कृपा तुम्हारी रहाओ सनक सनंदन नारद मुन सेवे अंदिन जब

एका जोत मुरारी, सब जाचक तू एको दाता मांगे हाथ पसारी। भगत जना की उत्तम वाणी गावे, अकथ कथा नित न्यारी, सफल जन्म पया तिनकेरा आप सरे कुलतारी। मनमुख दुबदा दुर्मत व्यापे, जिन अंतर मोह गुबारी, संत जना की कथा ना पावे, कोई डूबे सन परवारी। निंदक निंदा कर मल तोवे, ओ मल पख माया तारी, संत जना की निंदा व्यापे, ना उरवार ना पारी। यो परपंच खेल किया सब।

करते हर करते सब कल तारी, हर एक को सूत वरते जुग अंतर सूत किंचे एकंकारी। रसन रसन रस गावे हर गुण रसना हर रस तारी, नानक हर बिन अवर

तब आ गया हुक्मन सिर हुक्मा, ज्यों बुलावे त्यों बोले स्वामी, कुदरत कवन हमारी, साध संग नानक जस गायो, जो प्रभु की अत प्यारी। गुजरी महला पंजवा, कर चौथा इको ओंकार सतगुर प्रसाद। नाथ नर हर दीन बंदव, पतित पावन देव, पै त्रास नास कृपाल गुण निधि।

मदमोह दहन मुरार मन मकरंद जन्म मरण निवार तरणी तर पत राख परमानंद जलत अनक तरंग माया गुर ज्ञान हर रिदमंत छेद अहं बुद्ध करुणा में चिंत मेट पुरख अनंत सिमर समरथ पल मुहूर्त प्रभ ध्यान सहज समाद दीन दयाल प्रसन्न पूरन जाचिए रजसाद मोह मिथन दुरंत आसा बासना बिकार रख धर्म परम बिदार मनते उदर हर निरंकार तनाड आड पंडार हर निद होत जिनाना चीर खल मुगद मूड कटाक्ष श्री तर पे गुण मत तीर जीवन मुक्त जगदीश जप मन तार रिद प्रतीत जी दया मया सर्वत्र रमणं परम हंसै रीत देत दर्शन श्रवण हर जस रसन नाम उचार अंग संग भगवान परसन प्रभ नाम।

जा। एहो जगत ममता मुआ जीवन की विध नाहे, गुर कै पाणे जो चले ता जीवन पदवी पाहे। ओए सदा सदा जन जीवते जो हर चरणी चित लाहे, नानक नदरी मन वसै गुरमुख सह समाए। महला तीजा। अंदर सहसा दुख है आपै सिर तंदे मार, दूजे पाए सुते कभे न जागे माया मोह प्यार। नाम ना चेते शब्द ना विचारे क्यों मन मुक्का आचार, हर नाम न पाया जन्म बिरथा गवाया, नानक जम मार करे खुआर पौड़ी। अपना आप उपायन तदो होर ना कोई, मता मसूरत आप करे जो करे सो होई। तदो आकाश ना पताल है ना त्रैलोई, तदो आपे आप निरंकार है ना ओपत होई।

वह ना जाए, सदा सदा सो सेवी है जो सब में रह समाए। अवर न दूजा क्यों सेवी है जब मैं ते मर जाए। नेफल तिन का जीविया जे खसम ना जाने अपना अवरी को चितलाए। नानक एव न जापई करता केती दे सजाए। महला तीजा सच्चा नाम त्याई है सबो वरते सच। नानक हुकम बुझ परवान होए ता फल पावे सच। कथनी बदनी करता फिरे हुक्मे मूल न बुझई अंधा कच निकच पौड़ी। संजोग विजोग उपायन सृष्टि का मूल रचाया। हुक्मी सृष्ट साजियन ज्योति ज्योत मिलाया। ज्योति हूँ सब चानना सतगुर शब्द सुनाया। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रैगुण सिर तंदे लाया। माया का मूल रचायन दुरिया सुख पाया। श्लोक महला तीजा सो जप सो तप जे सतगुर पावे। सतगुर के

माया मोह अज्ञान है बिखम अत पारी, पत्थर पाप बहु लद्या क्यों तरिये तारी, अन दिन पगती रत्या हर पार उतारी, गुर शब्दी मन निर्मला हौ मैं छड़ विकारी, हर हर नाम त्याय है हर हर निस्तारी। श्लोक कबीर मुक्त दुआरा संकुड़ा, राई दसवें पाए मन त

होए सो जाए। हौ मैं मन अस्थूल है क्यों कर विच दे जाए। सत गुरु मिले हौ मैं गई जोत रही सब आए। इहो जियो सदा मुक्त है सहजे रहा समाए। पौड़ी प्रभ संसार उपाय कै वस अपने कीता। गणते प्रभु न पाईए दूजे परमीता। सतगुरु मिले जीवत मरे बुझ सच समीता। सब दे हों मैं खोईए हर मेल मिलीता। सब किछ जाने करे आप आपे विगसीता। श्लोक महला तीजा। सतगुर स्यों चित न लायो नाम न वस्यो मन आए। त्रिग एवे हा जीविया क्या जुग मैं पाया आए। माया खोटी रास है एक चसे में पाज लह जाए। हथों छुड़की तन स्याव होए बदन जाए कुमलाए। जिन सतगुर स्यों चित लाया तिन सुख वस्या मन आए। हर नाम त्यावे रंग स्यों हर नाम रहे लिव लाए। नानक सतगुर सो तन सौंपया।

आई जल मोई कंत न लायो पाओ, नानक सुख वसन सुहागणी जिन प्यारा पुरख हर राव पौड़ी। सब जग फिर मैं देखिया हर इको दाता, उपाय किते न पाई हर कर्म विदाता। गुर शब्दी हर मन वसे हर सहजे जाता, अंदरों तृष्णा अग्न बुझी हर अमृत सरना।

केसनो कूड़ बोल के खवा लिया, जे चल दिया नाल न जाए। काया मिट्टी अंध है पौने पुछो जाए, हौ ता माया मोहया फिर आवा जाए। नानक हुकम ना जातो खसम का, जे रहा सच समाए महला तीजा। एको ने चल नाम तन होर तन आवे जाए, इस तन को तस्कर जोए न सके ना ओ चक्का ले जाए। के ओ हर तन जी ऐसे

जिना नाम तन खटिया ए पौड़ी। मेरा साहिब अत वड्डा सच गहर गंभीरा, सब जग तिसके वस है सब तिसका चीरा। गुर प्रसादी पाई नेचल तन तीरा, कृपा ते हर मन वसे पेटे गुरसूरा। गुणवंती सलाया सदा थिर नेचल हर पूरा। श्लोक महला तीजा। त्रिग तिना दा जीविया जो हर सुख पर हर त्याग दे, दुखों में पाप कमाए। मनमुख अज्ञानी माया मोह व्यापे, तिन बूझ ना काई पाए। हलत पलत ओए सुख ना पावे, अंत गए पछताए। गुर प्रसादी को नाम त्याए, तिस होमे विच्चों जाए। नानक जिस पूर्व होवे लिखिया, सो गुर चरणी आए पाए। महला तीजा। मनमुख ऊदा कौल है ना तिस भगत ना नाओ, शक्ति अंदर वर्तदा कूड़ तिसका है उपाओ। तिसका अंदर चितना पिजई मुख फीका लाओ। ओए तरम रलाए ना रलन, ओ ना अंदर कूड़ सुहाओ। नानक करते बनत बनाई, मनमुख कूड़ बोल बोल डुबे। गुरमुख तरे जप।

हर सुख दाता मन वसै, हौ मैं जाय गुमान नानक नदरी पाई है, ता अंदिन लागे ध्यान पौड़ी। सत संतोख सब सच है गुरमुख पविता, अंदरों कपट विकार गया मन सहजे जीता, तह जोत प्रगास आनंद रस अज्ञान गविता, अंदिन हर के गुण रवे गुण प्रगट किता, सबना दाता एक है इको हर मिता। श्लोक महला तीजा। ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण कहिए, जे अंदिन हर लिवलाए, सतगुरु पुछे सत संजम कमावे, हो मैं रोग तिस जाए, हर गुण गावे गुण संग्रह है, ज्योति ज्योत मिलाए, इस युग में को विरला ब्रह्म ज्ञानी, जे हो मैं मेट समाए, नानक तिसनो मिलिया सदा सुख पाई है, जे अंदिन हर नाम त्याए। महला तीजा। अंतर कपट मन मुख अज्ञानी, रसना झूठ बुलाए, कपट कीते हर पुरख न पीजे, नित वेखे सुने सुवाए, दूजे पाए जाए जग प्रबोधे, बिख माया मोह सुवाए, इत कमाणे सदा दुख पावे, जम्मे मरे फिर आवे जाए, सहसा मूल ना चुकई विच विष्टा पचे पचाए, जिसनो कृपा करे मेरा स्वामी, तिस गुर की सिख सुनाए, हर नाम त्यावे हर नामो गावे, हर नामो अंत छड़ाए। पौड़ी। जिन्ना हुकुम मनायोन ते पूरे संसार, साहिब सेवन अपना पूरे शब्द विचार, हर की सेवा चाकरी सच्चे शब्द प्यार, हर का महल तिन्नी पाया जिन्हो मैं विच्चो मार, नानक गुरमुख मिल रहे जब हर नामा उरधार। श्लोक महला तीजा। गुरमुख त्यान सहज तुन उपजे, सच नाम चित लाया, गुरमुख अंदिन रहे रंग राता।

ही लपटा है, गुर कै शब्द पर जा लिए ता ए विचो जाए, तन मन होवे उजला नाम वसे मन आए, नानक माया का मारण हर नाम है, गुरमुख पाया जाए मैला तीजा, त्यो मन केतड़िया जुग परमिया थिर रह ना आवे जाए, हर पाणा ता परमायन कर परपंच खेल उपाए, जा हर बख्शे ता गुर मिले अस्थिर रह समाए, नानक मन ही

पे रस होगी। आप अतीत अलिप्त है निर्जोग हर जोगी, ज्योतिष पावे सो करे हर करे सो होगी, हर गुरुमुख नाम ते आई है लह जाहे विजोगी। श्लोक महला तीजा, वाह वाह आप अखाए दा।

नानक वाह वाह करत्या प्रभ पाया करम प्राप्त होए मैला तीजा। वाह वाह करती रसना सबद सुहाई पूरे सबद प्रभ मिलियाई वड पागिया वाहो वाहो मोह कढाई। वाहो वाहो करें सही जन सोने तिनको प्रजा पूजने आई। वाहो वाहो करम प्राप्त होवे नानक दर सच्चे शोभा पाई पौड़ी। वज्र कपाट काया गढ़ पीतर कूड़ कुसत अभिमानी परम फूले नदर नामनी मन मुख अंध अज्ञानी उपाय कितै न लबनी कर पेख थके पेखवानी। गुर शब्दी खोलायन हर नाम जपानी हर जियो अमृत बिरख है जिन पिया ते तृप्तानी। श्लोक महला तीजा। वाह वाह करत्या रहन सुख विहाय वाह वाह करत्या सदा आनंद होवे मेरी माए। वाह वाह करत्या हर्ष्यो लिवलाए वाह वाह करमी बोले बोलाए। वाह वाह करत्या शोभा पाए नानक वाह वाह सत।

जे सतगुर दिया दिखाए महला तीजा, वाह वाह गुरमुख सदा करें, मनमुख मरे बिख खाए, ओना वाह वाह ना पावे दुखे दुख विहाए, गुरमुख अमृत पीवना वाह वाह करें लिव लाए, नानक वाह वाह करें से जन निर्मले, त्रिभवन सोजी पाए पौड़ी, हर के पाणे गुर मिले सेवा भगत बनी जाए, हर के पाणे हर मन वसे सहजे रस पी जाए, हर के पाणे सुख पाइए हर लाहा नित ली जाए, हर के तख्त बहालिए।

आए वाह वाह करत्या मन निर्मल होवे हो मैं विच्चों जाए वाह वाह गुरसिख जो नित करे सो मन चिंदिया फल पाए वाह वाह करें से जन सोहने हर तिन के संग मिलाए।

जिन सेविया तिन फल पाया हो तिन बलिहारे जाओ। वाह वाह गुणी निदान है जिसनो देसो खाए। वाह वाह जल थल भरपूर है गुरमुख पाया जाए। वाह वाह गुरसिख नित सब करो गुर पूरे वाह वाह पावे। नानक वाह वाह जो मन चित करे तिस जम कंकर नेड़ ना आवे। पौड़ी हर जियो सच्चा सच है सच्ची गुरबाणी। सतगुर ते सच पछाणी है सच है इसमाणी। अन दिन जागे ना सवे जागत रहन विहानी। गुरमति हर रस चाखिया से पुन पराणी। बिन गुर किने न पायो पच मोए अजानी। श्लोक महला तीजा। वाह वाह बाणी निरंकार है तिस जेवड़ अवर न कोए।

गुरमुख प्रगटैया तिथे शोक विजोग ना व्यापै अस्थिर जग थिया। श्लोक महला तीजा। एहो सब किछ आवन जान है जेता है आकार जिन एहो लेखा लिखिया सोहो आपरवान नानक जे को आप गणाईदा सो मूरख गावार। महला तीजा। मन कुंचर पीलक गुरु ज्ञान कुंडा जह खिंचे तह जाए नानक हस्ती कुंडे बहरा फिर उजड़ पाए पौ।

सब फल पाया, अमृत हर का नाम सदा ते आया, संत जना के संग दुख मिटाया, नानक पय अचिंत हर तन ने चलाया। श्लोक महला तीजा, खेत में आला उचिया कर उच्चा निर्णय, महल भक्ति कर सरे सज्जन पाहुण्यो, बरसना ता बरसकना बहुड़ बरसे काहे, नानक तिन बलिहारण जिन गुरमुख पाया मन माहे। महला तीजा, मिठा सो जो पावदा सज्जन सो जे रास, नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे परगास। पौड़ी, प्रभु पास जन की अरदास, तू सच्चा साई, तू रखवाला सदा सदा हो तुद ते आए, जी जंत सब तेरे आ तू रहा समाए, जो दास तेरे की निंदा करे तिस मार पचाए, चिंता छड़ अचिंत रहो नानक लग पाए। श्लोक महला तीजा, आशा करता जग मुआ आशा मरे न जाए, नानक आशा पूरिया सच्चे स्यो चित लाए। महला तीजा, आशा मनसा मर जाए सी जिन कीती सो ले जाए, नानक ने चल को नहीं बाजो हर कहनाए। पौड़ी, आपे जग तो पायुन कर पूरा थाट, आपे साओ आपे वनजारा आपे ही हर हाट, आपे सागर आप

गुर आराधना जेवा जप गुर नाओ नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुमना गुर नाओ सतगुर से तीरतया दरगे पाये थाओ कहो नानक कृपा करे जिसनो ए वत दे जग में उत्तम कादिये विरले के ही के महला पंजवा रखे रखन हार आप उबारियन गुर की पैरी पाए काज सवारियन हुआ आप दयाल मनो ना विसारियन साप जना के संग पव जल तारियन साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बिदारियन तिस साहिब की टेक नानक मन्ने माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए पौड़ी अकुल निरंजन पुरख अगम अपारी है सच्चो सच्चा सच सच निहारी है कूड़ न जापे किछ तेरी तारी है सबसे दे दातार जेत उपारी है इक्कत सूत परोए जोत संजारी है हुक्मे पवजल मंज हुक्मे तारी है प्रभ जियो तुद त्याए सोए जिस पाग मथारी है तेरी गत मित लकी ना जाए हौं तुद बलिहारी है। श्लोक महला पंजवा। जा तू तुसे मेरवान अचिंत वसे मन माहे जा तू तुसे मेरवान नौ निद कर्म है पाहे जा तू तुसे मेरवान ता गुर का मंत्र कमाए जा तू तुसे मेरवान ता नानक सच समाहे। महला पंजवा। किती बहन बहने मुच बजाएन वाज नानक सच्चे नाम विण किसे ना रहिया लाज़।

पौड़ी तुद्यायन वेद कते मां सन खड़े गणती गणी न जाए तेरे दर पड़े ब्रह्मे तुद त्यायन इंद्र इंद्रासना शंकर विष्णु अवतार हर जस मुखपणा पीर पिकाबर शेख मसायक औलिये ओत पोत निरंकार कटकट मौलिये कूड़ो करे विनाश तरमे तगी है जित जित लाए आप तित तित लगी है। श्लोक महला पंजवा। चंग्याई आलक करे बुरियाई होए शेर नानक अजकल आवसी गाफल फाही पेर। महला पंजवा। कितिया कुटंग गुज्जा थी है नाहित नानक तैसे टकिया मन में सच्चा मित पौड़ी। हौ मांगो तुझे दयाल कर दासा गोलिया नवनिद पाई राज जीवा बोलिया अमृत नाम निधान दासा कर कणा तिनके संग निहाल श्रवणी जस सुना कमावा तिनकी कार शरीर पवित्र होए पखा पानी पीस भिक्षा पैर तोए आपको कछु न होए प्रभ नदर निहाली है मोहि निर्गुण चैथाओ संत तरमशाली है। श्लोक महला पंजवा।

जीव दया नित जापिए नानक साचा नाओ। महला पंजवा, सिमरत सिमरत प्रभ आपना सब फल पाए आहे, नानक नाम आराध्या गुरु पूरे दिया मिलाए। पौड़ी, सो मुक्ता संसार जे गुर उपदेशया, तिसकी गई बलाए मिटे अंदेशया, तिसका दर्शन देख जगत निहाल होए, जन के संग निहाल पापा मैल तोए, अमृत साचा नाओ ओथे जापिए, मन को होए संतोख पुखा त्रापिए, जिस काट वस्या नाओ तिस बंधन काटिए, गुर प्रसाद किने विरले हर तन खाटिए। श्लोक महला पंजवा।

पन्नवा दृष्ट तार प्रभ राखिया मन तन रता मूल नानक जो प्रभ पानिया मरो विचारी सूल। पौड़ी जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर छोड़ सियाणप सगल मन तन अरप तर पूजो गुर के पैर दुर्मत जाए जर सात जना कै संग पव जल बिखम तर सेवो सत गुरुदेव अगे न मरो डर हिन मैं करे निहाल ऊने सुवर भर मन को होए संतोख त्याये सदा हर सो लगा सतगुर सेव जाको कर्म तुर। श्लोक महला पंजवा लगड़ी सुथान जोड़न हार है जोड़िया नानक लहरी लख से आन डुबन दे नामा पिरी। महला पंजवा बन पिहाव लै हिक साथी लदम दुख हरता हर नामा बल बल जाई संत प्यारे नानक पूरन कामा। पौड़ी पायन सब निधान तेरे रंग रत्या ना होवी पछोताओ तुदनो जपत्या पहुंच न सके कोई तेरी टेक जन गुर पूरे वाओ वाओ सुख लहा चितार मन गुर पै सिफत भंडार करमी पाये सतगुर नदर निहाल बहुड़ ना ताये रखे आप दयाल कर दासा अपने हर हर हर।

तेंदे सिमरन हब किच लगदम बिखमना डिठम कोई जिस पत रखे सच्चा साहिब नानक मेट न सके कोई पौड़ी होवे सुख कणा दे त्याए वन्ये रोगा कान हर गुण गाए अंदर वरते ठांड प्रभचित आए पूरन होवे आस नाए मन प्रसाए कोई न लगे बिघन आप गवाए ज्ञान पदार्थ मत गुरते पाए तिन पाए सभ्य थोक जिस आप दिवाए तू सबना का खसम सब तेरी छाए। श्लोक महला पंजवा। नदी तरंदड़ी मैडा खोज न खुंबे मंज मुहब्बत तेरी कौ सह चरणी मैडा हीड़ा सीतम हर नानक तुल्हा बेड़ी। महला पंजवा। जिना दिसंदड़िया दुरमत बंजे मित्र असाडड़े से हों टूडे दी जग सबाया जन नानक विरले के पौड़ी आवे साहिब चित तेरिया पगता डिठिया मन की कटिये मैल साथ संग उठिया जन्म मरण पौ कटिये जन का शब्द जप बंधन खोलन संत दूत सब जाहे छप तिस्यो लाइन रंग जिस दी सब तारिया ऊंची हूँ ऊंचा थान अगम अपारिया रैन दिनस कर जोड़ सास सास ते आई है जा आपे होए दयाल ता भगत संग पाई है। श्लोक महला पंजवा। बार विडानले हुमस तुमस कूका पैया राही तौ सह सेती लगड़ी डोरी नानक अनद सेती बन गाही। महला पंजवा। सच्ची बैसक तिना संग जिन संग जपिए नाओ तिन संग संग न की चई नानक जिना अपना सुआओ। पौड़ी सावेला परवान जिस सतगुर पेटिया हुआ साधु संग फिर दुख न तेटिया पाया नेचर थान फिर गर्भ न लेटिया नदरी आया इक सगल ब्रह्मेटिया तत ज्ञान लाए त्यान दृष्ट समेटिया सबो जपिए जाप जे मुखो बोलेटिया हुक्मे बुझ निहाल सुख सुखेटिया परख खजाने पाए से बहुर न खोटिया। श्लोक महला पंजवा। विछोहे जंबूर खवे ना वंजन गाखड़े जेसो तनी मिलन नानक सुख संभू सच। महला पंजवा। जिमी वसंदी पानी है ईदन रखे पाए नानक सो सो आहे जाके आडल हब को। पौड़ी तेरे कीते कम तुदे ही गोचरे सोई वरते जग जे किया तुद तुरे बिस्म पे बिस्माद देख कुदरत तेरिया शरण परे तेरी दास करगत होए मेरिया तेरे हाथ निधान पावे तिस दे जिसनो होए दयाल हर नाम से ले अगम अगोचर बेअंत अंत न पाई है जिसनो हो है कृपाल सो नाम ते आई है। श्लोक महला पंजवा। करछिया फिरन सुआव ना जान सुनिया से मुख दिसन नानक रते प्रेम रस। महला पंजवा। खोजी लदम खोज छड़िया उजाड़ तैसे दिती वाड़ नानक खेत न छिजई। पौड़ी आरा दियो सच्चा सोए सब किछ जिस पास दोहा सिरिया खसम आप खिन में करे रास त्यागो सगल उपाव तिसकी ओट गहो पौ शरणाई पज सुखी हो सुख लहो कर्म कर्म तत ज्ञान संता संग होए जपिए अमृत नाम बिघन न लगे कोए जिसनो आप दयाल तिस मन उठिया पायन सब निधान साहिब तुठिया। श्लोक महला पंजवा। लदम लबन हार कर्म करन दो मापिरी इको सिरजन हार नानक बिया ना पसी है। महला पंजवा। पापड़िया पछाड़ बाण सचावा सन कै गुर मंत्रड़ा चितार नानक दुख ना थी वही। पौड़ी वाह वाह सिरजन हार पायन ठाड़ आप जी जंत मेरवान तिसनो सदा जाप दया तारी समरथ चुके बिल बिलाप नठे ताप दुख रोग पूरे गुर प्रताप कीतियन अपनी रख गरीब निवाज थाप
आपे लयन छिडाए बंधन सगल काप, तिसन बुझी आस पुन्नी मन संतोख त्राप, वड्डी हूँ वड्डा अपार खसम जिस लेप न पुन पाप। श्लोक महला पंजवा। जाको पै किरपाल प्रभ हर हर से जपात, नानक प्रीत लगी तिन राम स्यों पेटत साध संगात। महला पंजवा। राम रमो बड़ पागी हो जल थल महल सोए, नानक नाम अराध्य है बिघन न लागे कोई पौड़ी। भगता का बोलिया परवान है दरगे पवे थाए, भगता तेरी टेक रते सच नाए, जिसनो होए कृपाल तिसका दुख जाए। भगत तेरे दयाल ओ ना मेहर पाए, दुख दर्द वड रोग ना पोहे तिस माए, भगता एहो आधार गुण गोविंद गाए, सदा सदा दिन रैन इको इक त्याए, पीवत अमृत नाम जन नामी रहे अगाए। श्लोक महला पंजवा। कोट बिघन तिस लागते जिसनो विसरै नाओ, नानक अंदिन बिलपते ज्यो सुन्ये कर काओ। महला पंजवा। प्री मिलावा जाथी है साई सुहावी रुत, कड़ी मोहत ने विसरै नानक रविये नित पौड़ी। सूर वीर वरी आम किने न होड़िए, फौज पानी हाठ पंचा जोड़िए, दस नारी औ दूत देन चमोड़िए, जिन जिन लैन रलाए एहो ए ना लोड़िए, त्रै गुण इन कै वस किने न मोड़िए, परम कोट माया खाई कहो कित बिद तोड़िए, गुरपूरा आराध बिखमंदल फोड़िए, हौ तिस अगै दिन रात रहा कर जोड़िए। श्लोक महला पंजवा। किलविक सबे उतरन नीत नीत गुण गाओ, कोट कलेसा उपजै नानक बिसरै नाओ। महला पंजवा। नानक सतगुर पेटे पूरी होवै जुगत, हसंदियां खेलंदियां पैनंदियां खावंदियां विचे होवै मुक्त पौड़ी। सो सतगुर तन तन जिन परम गर तोड़िया, सो सतगुर वाहो वाहो जिन हरस्यों जोड़िया, नाम निधान अखुट गुर दे दारुओ, महारोग विकराल तिने बिदारुओ, पाया नाम निधान बहुत खजानिया, जिता जन्म अपार आप पछानिया, महिमा कही न जाए गुर समरथ देव, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अपरंपर अलख अभेव। श्लोक महला पंजवा। उद्दम करेंदिया जियो तू, कमाउंदिया सुख पुंच, त्याय दिया तू प्रभु मिल नानक उतरी चिंत। महला पंजवा। शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग, नानक नाम ना विसरो एक कड़ी, कर कृपा भगवंत पौड़ी। तेरा कीता होए ता काहे डरपिए, जिस मिल जपिए नाओ तिस जियो अर्पिए, आए चित निहाल साहिब बेसुमार, तिसनो पोहे कवन जिस वाल निरंकार, सब किछ तिस कै वस ना कोई बारा, सो भगता मन उठा सच समाहरा, तेरे दास ते आयन तुद तू रखन वालिया, सिर सबना समरथ नदर निहालिया। श्लोक महला पंजवा। काम क्रोध मद लोभ मो दुष्ट वासना निवार, राख लियो प्रभ अपने नानक सद बलिहार। महला पंजवा। खांदिया खांदिया मोह कटा, पैनंदिया सब अंग, नानक त्रिग तिना दा जीविया, जिन सच ना लगो रंग पौड़ी। ज्यो ज्यो तेरा हुक्म त्यों त्यों होना, जय जय रखे आप तह जाए खड़ोवना, नाम तेरे कै रंग दुर्मत तोवना, जप जप तुद निरंकार परम पौ खोवना, जो तेरे रंग रते से जोन न जोवना, अंतर बाहर इक नैन अलोवना, जिनी पछाता हुक्म तिन कदे ना रोवना, नाओ नानक बख्शीस मन माहे परोवना। श्लोक महला पंजवा। जीवन दिया ना चेत्यो मुआ रलंदड़ो खाक, नानक दुनिया संग गुदारिया साकत मूड नपाक। महला पंजवा। जीवन दिया हर चेत्या मरन दिया हर रंग, जन्म पदार्थ तारिया नानक साधु संग पौड़ी। आप जुगादी आप रखन वालिया, सच नाम करतार सच पसारिया, ऊना कही न होए कटे कट सारिया,
मेहरवान समरथ आपे ही कालिया, जिन मन उठा आपसे सदा सुखा लिया, आपे रचन रचाए आपे ही पालिया, सब किछ आपे आप बेअंत अपारिया, गुर पूरे की टेक नानक समालिया। श्लोक महला पंजवा। आद मद अर अंत परमेश्वर रखिया, सतगुर दिता हर नाम अमृत चखिया, सादा संग अपार अंदिन हर गुण रवे, पाए मनोरथ सब जोनी न पवे, सब किछ करते हथ कारण जो करे, नानक मंगे दान संता तूर तरे। महला पंजवा। तिसनो मन वसाए जिन उपाया, जिन जनते आया कसम तिन सुख पाया, सफल जन्म परवान गुरमुख आया, हुक्मे बुझ निहाल खसम फुरमाया, जिस हुआ आप किरपाल सो नह परमाया, जो जो दिता खसम सोई सुख पाया, नानक जिसे दयाल बुझाए हुक्म मित, जिसे पुलाए आप मर मर जम्मे नित। पौड़ी। निंदक मारे तत्काल खिन टिकन न दिते, प्रभ दास का दुख ना खब सके, हर जोनी जुते मत्थे वाल पछाड़ियन जम मार्ग मुते, दुख लगे बिल लाणिया नरक कोर सुते, कंठ लाए दास रखियन नानक हर सते। श्लोक महला पंजवा।

महला पंजवा कोट बिघन तिस लागते जिसनो विसरै नाओ नानक अन दिन बिलपते जो सुन्ये कर काव पौड़ी सिमर सिमर दातार मनोरथ पूरिया इच पुन्नी मन आस गए विसूरिया पाया नाम निधान जिसनो पालदा जोत मिली संग जोत रहया कालदा सुख सहज आनंद उठे तित कर आवन जान रहे जन्म ना तहां मर साहेब सेवक इक इक दृष्टाया गुर प्रसाद नानक सच समाया।

चार पाव दो सिंग गुंग मुख तब कैसे गुन गई है। उठत बैठत ठेगा पर है तब कत मूड लुकई है। हर बिन बैल बिराने होई है फाटे नाकट टूटे कादन कोदो को पुसखई है। रहाओ सारो दिन डोलत बन मैया अजो ना पेट अगही है। जन भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महाप्रम बूडो अनिक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ बिसर्यो इहो अवसर कत पई है। प्रमत फिरत तेलक के कप ज्यो गत बिन रहन बेही है। कहत कबीर राम नाम बिन मूंड तुने पछतई है। गुजरी करती जा मुस मुस रोवे कबीर की माई। ए बारक कैसे जीवे रघुराई। तनना बुनना सब तजो है कबीर हर का नाम लिख लियो शरीर। रहाओ जब लग तागा बाहो बेई तब लग बिसरे राम सिनेही।

रघुराई गुजरी श्री नाम देव जी के पदे कर पहला इको अंकार सतगुर प्रसाद। जो राज दे ता कमन बढ़ाई, जो पीख मंगावे ता क्या कट जाई। तू हर पज मन मेरे पद निर्बान, बहुर ना होए तेरा आवन जान। रहाओ सब ते उपाई परम पुलाई, जिस तू देवे तिसे बुझाई, जिस तू देवे तिसे बुझाई। सतगुरु

मले ना लाचे पार मलो परमलियो बैठो री आई आवत किने ना पेखियो कवने जाने री बाई कौन कहे किन बूजिए रमैया आकुल री बाई रहाओ ज्यो आकाश है पंखियलो खोज निरखियो ना जाई ज्यो जल माजे माछलो मार्ग पेखनो ना जाई ज्यो आकाश है कड़ुअलो मृग तृष्णा परया नामे

दूध तं बचरै थनो बिटारियो, फूल पवर जल मीन बिगारियो। माई गोविंद पूजा कहां ले चरावो, और ना फूल अनूप ना पावो रहाओ। मैलागर बेरे है पयंगा, बिख अमृत बसे इक संगा। तूप दीप नई बेदे बासा, कैसे पूज करें तेरी दासा। तन मन अर्प

बाद अंतरमल निर्मल नहीं कीना बार पे खुदासी हृदय कमल कट ब्रह्म न चीना काहे पया सन्यासी परमे पूली रे जय चंदा नहीं नहीं चीनिया परमानंदा रहाओ कर कर खाया पिंड बंडाया चिंता मुंडा माया ओम मसान की पसम लगाई गुर बिन तप्त न पाया काय जपोरे काय तपोरे काय बिलो वो पानी लख चौरासी जिन उपाय सो सिमरो निर्वाणी काय कमंडल कापड़िया रे अड़सठ काय फिराही बदत त्रिलोचन सुन रे प्राणी कण बिन गाहो के पाही गुजरी अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे सर्प जोन वल वल अवतरे।

0: बेसवा जोहन वल वल अवतरे।
1: अंत काल जो लड़के सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे।
0: सूकर जोन वल वल अवतरे।
1: अंत काल जो मन

परमाद पुरुष मनोपिमंग सत आद पावरतंग परमद पुतंग परकृत परंग जग चिंत सर्वगतंग केवल राम नाम मनोरमंग बद अमृत तत्मयं नादनोत जस समरणेन जन्म जराद मरण पयं प्रहाव इच्छस जमाद पराभयं जस स्वस्थ सुकृत कीर्तं पाव पूत पाव समभ्यं परमं प्रसन्न मिदं लोबाद दृष्ट परग्रहं जद विद आचरणं तज सकल दोकृत दुर्मति पज चक्र तर शरणं हर भगत निज ने केवला हृद कर्मणा।

तिन मुख पाग सुपागे रहाओ। टूटे माया के बंधन फाहे, हर राम नाम लिव लागे। हमरा मन मोयो गुरमोहन, हम विषम कई मुख लागे।

चित गले हर को संत बतावो मार्ग हम पीछे लाज चली रहा प्रिय के वचन सुखाने ही रहे चाल बनी है पली लकड़ी मदरी ठाकुर पाई ओ सुंदर हर कुल मिली एक प्रियो सखिया सब प्रह की जो पावे पुरसा बली नानक गरीब क्या करे बिचारा हर पावे कितरा है चली देव गंधारी मेरे मन मुख हर हर हर बोली है गुरमुख रंग चलू ले राती हर प्रेम पीनी चोली है रहा हों फिरो दीवानी आवल बावल किस कारण हर टोली है कोई मिले मेरा प्रीतम प्यारा हम किसकी गुलगोली है सतगुरु पुरख मनावो अपना हर अमृत पी चोली है गुरु प्रसाद।

नाही ना का बोल करत निम्फ न बिसरो हिये मोरे ते बिसरत जाई हों मरत सुखदाई पूरन प्रभ करता मेरी।

हे गुणारी मन जो अपने प्रभावो नीचो नीच नीच अपनाना होए गरीब बुलावो रहाओ अंत अडंबर माया के बिरते तासो प्रीत कटावो जो अपनो स्वामी सुख माने ताम है शोभा पावो दासन दास रे दासन की जन की टहल कमावो सर्व सुख बढ़ियाई नानक जीवो मुखो बुलावो देव गंगारी प्रभ जी तो प्रसाद प्रम डार्यो तुमरी कृपा ते सबको अपना मन में यह विचार्यो रहाओ कोट पराध मिटे तेरी सेवा दर्शन दुख उतार्यो नाम जपत महासुख पायो चिंता

देव जनारी मन सगल श्यानत रही कर्म कराउन हार स्वामी नान कोट गही रहाओ आप मेक पय शरणाई इह मत साधु कही प्रभु की आज्ञा मान सुख पाया परम अंधेरा लही जान प्रवीण स्वामी प्रभु मेरे शरण कुमारी रही खिन मैं खाप उठापन हारे कुदरत कीम न पही देव नारी महला पंजवा हर प्राण प्रभु सुख दाते गुरु प्रसाद पाहुं जाते रहाओ संत तुम्हारे तुमरे प्रीतम तिनको काल न खाते रंग तुम्हारे लाल पे है राम नाम रसमाते महाकिल्बित कोट दो करोगा प्रभु दिष्ट तुम्हारी हाते सोत जागो हर हर हर गाया नानक गुरु चरण पराते देव गंगा।

अंग गुंग पिंगल मत हीना प्रभ राखो राखन हारा करें करावन हार समरथा क्या नानक जंत बिचारा देव गंधारी महला पंजा। सो प्रभ नेरे हूते नेरे सिमरते आए गाय गुण गोविंद दिन रैन सांझ सवेरे रहाओ उदर दे दुलभ साधु संग हर हर नाम जपे रह करी न मोहत न चसा बिलंब हो काल नित नित हेरे अंग बिलास।

अगम अगम्मा कमल महमा मन जीव सुन सो चार आश्रम चार ग्रन्ना मुकत पे शेर तो गुर शब्द दृढ़ाया परम पद पाया द्वितीय गए सुख हो कहो नानक पव सागर तरिया हर निज पाई सहजो। राग देव गंधारी महला पंजवा कर छेवा एक ओंकार।

कहत थारो हों करत तराई दुश्मन बिस्मे कहन कहात गण गंधर्व सिद्ध अर साधिक सुर नर देव ब्रह्म ब्रह्मादिक चतुर्वेद उचरत दिन रात अगम अगम ठाकुर आगाद गुण बेअंत बेअंत तन नानक कहन न जाई परे परा देव गंधारी महला पंजवा त्याए गाए करने हार पौ नाही सुख सहज आनंदा अनु कोही रे एक समार रहाओ सफल मूरत गुर मेरे माथे है जब तक देखो तब तक साथ है चरण कमल मेरे प्राण आधार समर्थ अथा बड़ा प्रभ मेरा कट कट अंतर साहिब मेरा ताकी शरण आसर प्रभ नानक जा का अंत ना पारावार देव गंधारी महला पंजवा उल्टी रे मन उल्टी रे सातक्षों कर उल्टी रे झूठे की रे झूठ परीत छुटकी रे मन छुटकी रे सात संग।

रीत अंधकार संगीन है को ए अचरज है रीत मन मूरख अजहूने संगत सिख दे हारियो नीत नानक पौजल पार परे जो गावे प्रभ के गीत। इको अंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वय अकाल अमृत अजूनी सैभन गुरु प्रसाद राग विहागरा चौक दे महला पन्या।

करिया बहु बंदे करिया फिर साध सफरिया जय कीर्तन हरिया नानक सरनरिया। इको ओंकार सतगुर प्रसाद राग बिहागरा महला नावा हर की गत नह को जाने जोगी जति तपि पचहारे और बहु लोग सियाने रहाओ छिन में राव रंग को कर ली राव रंग कर डारे रीते परे परे सखनावे यह ताको विवहारे अपनी माया आप पसारी आपे देखन हारा नाना रूप तले बहुरंगी सबसे रह न्यारा अगनत अपार अलख निरंजन जे सब जग परमायो सगल परम तज नानक प्राणी चरण ताहि चितलायो। राग बिहागड़ा संत महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर नाम से आई है मेरी जिंदड़िए गुरुमुख नाम अमोले राम हर रस बीदा हर मन प्यारा मन हर रस नाम से

मन सिंधियाला फल पाया हर प्रभु गुण नानक बाणी बोले राम गुरमत मन अमृत उठदा मेरी जिंदड़ी है मुख अमृत बैन अलाए राम अमृत बाणी भगत जना की मेरी जिंदड़ी है मन सुनिए हर लिव लाए राम चिरी विचुना हर प्रभु पाया गल मिलिया सहज।

कोई हर सब आन मिलावे राम हौ मन देवो किस अपना मेरी जिंदगी हर सब की हर कथा सुनावे राम गुरुमुख सदा आराध हर मेरी जिंदगी मन चिंदेड़ा फल पावे राम नानक पद हर शरणागति मेरी जिंदगी वड पागी नाम तेरा वे राम कर कृपा प्रब आए मिल मेरी जिंदगी गुरमत नाम प्रगासे राम हौ हर बाज उगीनिया मेरी जिंदगी ज्यों जल बिन कम

जन नाम घर में लाया मेरी जिंदड़ी करवा जी शब्द कनेरे राम। मन हो मैं विचड़े मेरी जिंदड़ी बिख बांधे हो मैं जाने राम। जो पंखी कप

गुर सतगुर वीख लगाया राम कर कृपा सुन बेनती हर हर जन नानक नाम से आया राम बिहागरा महला चौथा जग सुकृत कीरत नाम है मेरी जिंदड़ी हर कीरत हर मन तारे राम हर हर नाम पवित्र है मेरी जिंदड़ी जप हर हर नाम उधारे राम सब के लिए पाप दुख कटिया मेरी जिंदड़ी मल गुरुमुख नाम उतारे राम वद पुन्नी हर प्याया जन नानक हम मूरख मुगत निस्तारे राम जो हर नाम से आए दे मेरी जिंदड़ी तिना पंचे वसगत आए राम अंतर नव निज

तर्क पाताल आकाश है मेरी जिंदड़िए, सब हर हर नाम से आवे राम, पौन पानी दे संतरो मेरी जिंदड़िए, नित हर हर हर जस गावे राम, वाण तृण सब आकार है मेरी जिंदड़िए, मुख हर हर नाम से

जो मनमुख पाप लुभाने राम जन नानक गुरु मिल उबरे मेरी जिंदड़िए हर जप हर नाम समाने राम। सब जाए मिलो सतगुरु को मेरी जिंदड़िए जो हर हर नाम दृढ़ावे राम हर जप दिया।

ए मन तन सब अर्के हा राम, मन तन तन सब प्रभु के रा, क्या को पूज चढ़ावे जिस होए कृपाल दयाल स्वामी, सो प्रभ अंक समावे पाग मस्तक होए जिसके, तिस गुर नाल सुनेहा जन कहे नानक मिल साध संगत, हर हर नाम पूजे हा। देह दिस खोजत हम फिरे वे लाल जियो, हर पायड़ा कर आए राम, हर मंदर हर जियो साजिया मेरे लाल जियो, हर तिस में रहा समाए राम, सर्वे समाना आप स्वामी गुरुमुख प्रगट होया।

जन कहे नानक सतगुर मिलाया हर पाए अड़ा कर आए। राज बिहागरा महला पंजवा अत प्रीतम मन मोहना कट सोहना प्राण अधारा राम सुंदर शोभा लाल गोपाल।

कवन रसना गुण कना प्रम लोभ मोह विकार खाके मिल सखी मंगल गाया नानक परम पै संत जम पै जिन हर हर संजोग मिलाया। बिहागड़ा महला पंजवा कल कृपा।

कर दया मया गोपाल गोविंद कोई नहीं तुझ बिना समरथ अगत अपार पूरन जियो तन तन तुम मना मूरख मुग्ध अनाथ चंचल बलहीन नीच अजाना।

जिन विदाता पाया नाम राते जीव दाते नित दिन चढ़े सवाया रिद्ध सिद्ध नव निध।

बहु खजाना तिन पे हर जियो हर कीर्तन लाहा राम। काम क्रोध ना लोभ ब्यापे जो जन प्रभ सिउ राखिया।

हर की भगत मंगे, हर भगत पाये प्रभु के आये, जाए मिलिए हर जना, मान मोह विकार तजिए, अर्थ तन तन इहो मना, बब पुरख पूरन गुण संपूरन, प्रम तीर्थ।

नानक सब किछ आप है अवर न दूज जाए पौड़ी। तेरी वड्याई तू है जानदा, तुझ जेवड़ अवर न कोई, तुझ जेवड़ होर शरीक।

सतगुरु कह तै पन ना करो रहे अंक समाए। अन दिन सहसा कदे न चूके बिन शब्द दुख पाए। काम क्रोध लोभ अंतर सबला।

तोड़े सच वसे अज्ञान अंधेरा जाए। सब किस देखे किसे का जिनकी आतन साजे, नानक शरण करतार की करता राखे लाज। पौड़ी जदों आपे साथ किया, जदों आपे साथ किया बह करते, तदों कुछ ना सेवक दिया, तदों क्या को लेवे क्या को देवे, जा अवर ना दूजा किया। फिर आपे जगत उपाया करते, दान सबना को दिया, आपे सेव बनायन गुरमुख आपे।

कहे कथे ना पाए अन दिन रहे सदा गुण गाए जिन कर्मे किन ना पायो पौके मुए बिन लाए गुर के शब्द मन तन तुझे आप वसे मन आए नानक नगरी पाए आपे ले मिलाए पौड़ी आपे वेद पुराण सब शास्त्र आप कथे आप पीजे आपे ही दह पूजे करता आप पर पंच करी जय आप परवृत आप निर्वृति आपे अकथ कटीजे आपे पुन सब आप कराए आप अलिपत वर्ती जय आपे सुख दुख दे रहे करता आपे बख्श करी जय आपे सुख दुख दे रहे करता आपे बख्श करी जय श्लोक महला तीजा शेखा अंदरों जोर छड़ तू पौ कर चल गवाए गुर कह तह के निस्तरे तैरच निरपौ पाए मन कठोर शब्द तेज तू शांत वसे मन आए शांति विच कार कमावनी सा खसम पाए खाए नानक काम क्रोध किने न पायो पुछो ज्ञानी जाए महला की जा मन मुख माया मोह है नाम ना लगो प्यार कूड़ कमावे कूड़ संग्रह कूड़ करे आहार दिख माया

पार पवै जिना अंदर सच्चा सोए, नाम समाले नाम संग्रह नामे ही पत होए, नानक सतगुर पाया कर्म परापत होए। पौड़ी आपे पारस आप ताप है, आप की कौन कंचन, आपे ठाकुर सेवक आपे, आपे ही पाप खंडन, आपे सब कट भोग वै स्वामी, आपे ही सब अंजन, आप विवेक आप सब देता, आपे गुरुमुख पंजन, जन नानक सालाहे नारजे तुद करके तू हर सुख दाता वडन। श्लोक महला चौथा।

नानक सतगुरु मिले मेरी प्यास गई, फिर पाया कर आए पौड़ी। आपे संत परम संत सब आपे, आपे ठाकुर दास पया, आपे दस अठ वर्तु पायन, आप ब्रह्म आप राज लया, आपे मारे आपे छोड़े, आपे बख्शे करे दया, आप अपुल न भूले कभी, सब सच कपाव से सच।

चाहे हो सतगुरु का पाना चित रखो संयम सच्चा ने हो नानक ऐसे सुख है अंदर रखसी अग्गे हर्षों केल करे हो पौड़ी आपे पार अठारे बनस्पत आपे ही फल लाए आपे माली आप सब सूचे आपे ही मोह पाए आपे करता आपे पुगता आपे दे दिवाए आपे साहिब आपे है राखा आपे रहा समाए जन नानक वडियाई आखे हर करके की जिसनो तिल ना कमाए। श्लोक महला तीजा मानस परया आया मानस परया आए जित पीते मत दूर होए बरल पवे विच आए अपना पराया

हो सब कुछ पावे जिसनो कृपा निरंजन केरी सोई साओ सच्चा बनजारा जिन वत्तर लदिया हर नाम तन तेरी सब किसे नो सालायो संतो जिन दूजे पा

0: पौड़ी
1: जा आप कृपाल होवे हर स्वामी ता अपना नाउ हर आप जपावे है आपे सतगुरु मेल सुख देवे अपना सेवक आप हर पावे अपने सेवका की आप पैज रखे अपने भगता की पैरी पावे धर्म राय है हर का किया हर जन सेवक नेड़ ना आवे जो हर का प्यारा।

बस सब जो तेरे बस है तू सच्चा चाहो भगत रते रंग एक कह पूरा वे साहो अमृत भोजन नाम हर रज रज जन खाहो सब पदार्थ पालन सिमरन सच लाहो संत प्यारे पार ब्रह्म नानक हर अगम अगाहो श्लोक महला तीजा सब कुछ हुक्म।

तखनो गुरुमुख नाम प्राप्त होए। तिस जोगी की नगरी सबको वसे पेटी जोग न होए। नानक ऐसा विरला को जोगी जिस पट प्रगट होए। पौड़ी।

होए ममता की मल उतरे इन मन हच्चा होए। वडहंस महला तीजा नदरी सतगुरु सेवी है नदरी सेवा होए नदरी ए मन वस आवे नदरी मन

सतगुरु मोको हर दिया, सतगुरु मोको हर दिया बुझाए रहाओ। दुहागनी खरिया बिल्ला दिया, तिना मैल न पाए, दूजे पाए करूपी दुख पावे आगे जाए। गुणवंती नित गुण।

एक को सच वर्त है सब अंतर सब ना करे सतपाला नानक इक्कस दिन मैं अवर ना जाना सब ना दीवान दयाला वडहंस महला तीजा गुरुमुख सत संजम तत ज्ञान है गुरुमुख साचे लगे ध्यान

गुरुमुख जात पत सच सोए, गुरुमुख अंतर सखाई प्रभ होए, गुरुमुख जिसनो आप करे सो होए, गुरुमुख आप वडाई देवे सोए, गुरुमुख शब्द सच करे।

का मन बिरसा जाए, हर चेत मन मेरे तू गुर का शब्द कमाए, हुक्म मन्ने ता हर मिले ता विच्चों हो मैं जाए रहाओ, हो मैं सब शरीर है, हो मैं ओपत होए, हो मैं वड़ा गुबार है, हो मैं विच बुझ ना सके कोए, हो मैं विच पगत ना हो वही, हुक्म ना बुझे आ जाए, हो मैं विच जियो बंद है, नाम ना वसे मन आए, नानक सतगुर मिले हो मैं गई, ता सच वसया मन आए, सच कमावे सच।

मैं अवगुण भरपूर शरीरे हाओ क्यों कर मिला अपने प्रीतम पूरे जिन गुणवंती मेरा प्रीतम पाया से मैं गुण नाही हौ क्यों मिला मेरी माया हौ कर साका उपाव बहु तेरे नानक गरीब राखो हर मेरे वडहंस महला चौथा मेरा हर प्रभ सुंदर मैं सार ना जानी हौ हर प्रभ छोड़ दूजे लोवाणी हौ क्यों कर फिर को मिलो ए आनी जो फिर पावे।

ते मैं गुण नाही हौ क्या करी दुहागण, नित सुहागण सदा फिर रावे, मैं कर्महीन तब ही गल लावे, तू फिर गुणवंता हो अवगण आरा, मैं निर्गुण।

क्यों कर हर दर्शन पावा हों जाए कुछा अपने सतगुरे गुर कुछ मन मुग्ध समझावा पूला मन समझे गुर शब्दी हर हर सदा ते आए नानक जिस नजर करे मेरा प्यारा सो हर चरणी चितलाए हों सब वेश करी तिर कारण जे हर प्रभ साचे भावा तो फिर प्यारा मैं नजर ना देखे हों क्यों कर धीरज पावा जिस कारण हों सिगार सिगारी सो फिर रत्ता मेरा अवरा नानक तन तन तन सुहागन जिन फिर रावे अड़ा सच सवरा हों जाए पुछा सुहाग सुहागन तुसी क्यों कर पायड़ा प्रभ मेरा मैं ऊपर नजर करी फिर साचे मैं छोड़ेड़ा मेरा तेरा सब मन तन जियो करो हर प्रभ का इस मार्ग पैने मिली है आपनड़ा प्रभ नजर कर देखे नानक जोत ज्योति रली है जो हर प्रभ का मैं

हर हर कथा सुनाए। तन तन गुरु गुर सतगुर पूरा नानक मन आस पुजाए। गुर सज्जन मेरा मेल हरे जित मिल हर नाम ते आवा। गुर सतगुर पासो हर गोष्ट पूछा कर सांझी हर गुण गावा। गुण गावा नित नित सद हर के मन जीवे नाम सुन तेरा। नानक जित वेला विसरे मेरा स्वामी तित वेले मर जाए जियो मेरा। हर वेखण को सब कोई लोचे सो वेखे जित आप विखाले। जिसनो नजर करे मेरा प्यारा सो हर हर सदा समाले। सो हर हर नाम सदा सदा समाले। जिस सतगुरु पूरा मेरा मिलिया नानक हर जन हर इक्के होए। हर जप हर ते

रहाओ। लाख भगत जाको आराधे, लाख पति सर तप ही साधे, लाख जोगी सर करते जोगा, लाख पोगी सर पोगे पोगा, कट कट वक्ते जाने तोरा, है कोई साजन परदा तोरा, करो जतन जे होए मेहरवाना, करो जतन जे होए मेहरवाना, ताको देई जियो कुर्बाना, फिरत फिरत संतन पे आया, दुख परम हमारा सगल मिटाया, महल बुलाया प्रभ अमृत पूछा, कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा। वढ़हंस महला पंजवा, तन सोवेला जित दर्शन करना, हौ बलिहारी सतगुर चरणा, जी के दाते प्रीतम प्रभ मेरे, मन जीवे प्रभ नाम चितेरे। रहाओ सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, शीतल पुरुष दृष्ट सुजानी, सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी, आए ना जावे मेरा प्रभ अविनाशी, तुम मेहरवान दास हम दीना, नानक साहिब पर पुर लीना। वढ़हंस महला पंजवा, तू बेअंत को विरला जाने, गुर प्रसाद को

ने तू जाते सदा सदा जाई बलिहारी इत उत देखो ओट तुम्हारी मोहे निर्गुण गुण कछु न जाता नानक साधु देख मन राता वड़हंस महला पंजवा।

महला पंजवा कुवड दाता अंतर जामी सब में रव्या पूरन प्रभ स्वामी मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा हौ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे मन निर्मल होए संता दूरे चरण कमल हृदय उधारे तेरे दर्शन को जाई बलिहारे कर कृपा तेरे गुण गावा नानक नाम जपत सुख पावा वढांस महला पंजवा साध संग हर अमृत पीजे ना जियो मरे ना कबहू छीजे वड पागी गुर पूरा पाये गुर कृपा ते प्रभु ते आये रहाओ रतन जवाहर हर मानक लाला सिमर सिमर प्रभ कहे निहाला जत कत पेखो साधु सरना हर गुण गाए निर्मल मन करना कट कट अंतर मेरा स्वामी ऊठा नानक नाम पाया प्रभ तूठा वढांस महला।

मेरे अंतर भुख ना उतरे अमाली जे सो भोजन मैं नीरे। मेरे मन तन प्रेम प्रम का बिन दर्शन क्यों मन तीरे। सुन सज्जन मेरे प्रीतम पाई मैं मेलियो मित्र सुखदाता। ओह जी की मेरी सब वेदन जाने नित सुनावे हर किया बाता। हों एक दिन तिस बिन रह ना सका जो चात्रिक जल को बिल लाता। हों क्या गुण तेरे सार संभाली मैं निर्गुण को रख लेता। हों पई उड़ीनी कंस को अमाली सो फिर कद नैनी देखा। सब रस भोगन विसरे बिन फिर किते न लेखा। एहो कापड़ तन ना सुखावई।

ऐ सब सिंगार बनाया अमाली बिन फिर काम ना आए जा सह बात ना पुछिया अमाली ता बिरथा जोबन सब जाए तन तन ते सुहागनी अमाली जिन सो रहा समाए हों वारिया तिन सुहागनी अमाली तिनके तोवा सद पाए जिचर दूजा परम सा अमाली तिचर मैं जान।

सच तुने सच शब्द विचारा, अंजन सच सलाना, तन तन वड भाग हमारा। मन मेरे साचे नाम विटों बल जाओ, दासन दासा।

बिन साचे होर सलाहना जासे जन्म सब खोए सच खेती सच बीजना साचा वा पारा अंदिन लाहा सच नाम तन भगत परे पंडारा सच खाना सच पहनना सच टेक हर नाओ जिसनो बख्शे तिस मिले महली पाए थाओ आवे सच्चे जावे सच्चे फिर जूनी मूल न पाहे गुरमुख दर साचे सच्यार है साचे माहि समाहे अंतर सच्चा मन सच्चा सच्ची सिफत सुनाए सच्चे थान सच सलाना सतगुर बलिहार है जाओ सच वेला मूरत सच जित सच्चे नाल प्यार सच वेखना सच बोलना सच्चा सब आकार नानक सच्चे मेले ता मिले आपे ले मिलाए ज्यों पावे।

अधिकाई काम क्रोध नित संतावे वाहो वाहो सहजे गुण रवि जय राम नाम इस युग में दुर्लभ है गुरुमत हर रस की जय रहाओ शब्द चीन मन निर्मल होवे ता हर के गुण गावे गुरुमत

नाता सो प्रमाण सच कमाइए, जब साच अंदर होए साचा ताम साचा पाइए। लिखे बाजो सुरत नाही बोल बोल गवाइए, जिथे जाए बइए भला कहिए, सुरत शब्द लिखाइए काया कूड़ बिगाड़ काहे नाइए। ता मैं कहया कहन जा तुदे कहाया, अमृत हर का नाम मेरे मन पाया, नाम मीठा मने लागा दुख डेरा ताया, सुख मन में आए वस्या जाम तै फुरमाया, नदर तुद अरदास मेरी जिन आप उपाया, ता मैं कहया कहन जा तुदे कहाया। वारी खत्म कढ़ाए किरत कमावना, मंदा किसे नाख झगड़ा पावना, नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप वजावना, जिस नाल संगत कर सरीकी जाए क्या रुआवना, जो दे सेना मने कहना आख नाही वावना। वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, सब उपायन आप आपे नजर करे, कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे, सब कोई मीठा मांग देखे, सब कोई मीठा मांग देखे, खसम पावे सो करे, किछ पुन दान अनेक करनी, नाम तुल ना समतरे, नानका जिन नाम मिलिया कर्म होआ तुर कदे, सब उपायन आप आपे नदर करे। वडांस महला पहला, करो दया तेरा नाम वखाना, सब उपाय है आप आपे सर्व समाना, सर्वे समाना आप तू है उपाय तंदे लाया, एक तुझ ही किए राजे एक ना पिख पवाया, लोभ मोह तुझ किया मीठा एक परम पुलाना, सदा दया करो अपनी ताम नाम वखाना, नाम तेरा है साचा सदा मैं मन पाना, दुख गया सुख आए समाना, गावन सुरनर सुगड़ सुजाना, सुरनर सुगड़ सुजान गावे जो तेरे मन पावे, माया मोहे चेते नाही एला जन्म गवावे, एक मूड मुगद ना चेते मूले जो आया तिस जाना, नाम तेरा सदा साचा सोए मैं मन पाना, तेरा वक्त सुहा

एक करम तरम ना होए संजम जाम ना एक पछाणी वक्त सुहावा सदा तेरा अमृत तेरी बाणी। हों बलिहारी साचे नावे राज तेरा कब हो ना जावे राजो ता तेरा सदा नहीं चले एहो कब हो ना जावे चाकरता तेरा सोए होवे जोए सहज समावे दुश्मन ता दुख ना लगे मूले पाप नेड़ ना आवे हों बलिहारी सदा होवा एक तेरे नावे। जुगे जुगंतर भगत तुम्हारे कीरत करें स्वामी तेरे द्वारे।

जुगै जुगंतर भगत तुम्हारे वड्डे मेरे साहेबा अलख अपारा क्यों कर करो बेनंती हो आप न जाना नदर करें ता साच पछाना।

आप वाणी सिच मन की पूरी सारंग ज्यों पग तरे ठिम ठिम आप संदूरे श्री रंग राती फिरे माती उदक गंगा वाणी बिनवंत नानक दास हर का तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी बाणी। वडहंस महला तीजा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद अपने पिर के रंग रती मोइये सोभावंती नारे सच्चे शब्द मिल रही मोइये पिर रावे पाए प्यारे सच्चे पाए प्यारी कंक सवारी हर हर स्यो निहो रचाया आप गवाया ता पिर पाया गुर के शब्द समाया सा तन शब्द सुहाई प्रेम कसाई अंतर प्रीत प्यारी नानक सा तन मेल लई फिर आपे साचे सहे सवारी निर्गुण वंतड़िए फिर देख हदूरे राम गुरुमुख जिन्नी रावया मोये फिर रव रहा पर पूरे राम फिर रव रहा पर पूरे वेख हजूरे जुग जुग एको जाता तन बाली कोली फिर सहज रावे मिलिया कर्म विदाता जिन हर रस चाखिया शब्द सो पाखिया हर सर रही पर पूरे नानक कामन सा फिर पावे शब्दे रह हदूरे सुहागनी जाए पूछो मुइये जिनी विच्चों आप गवाया फिर का हुक्म ना पायो मुइये जिनी विच्चों आप ना गवाया जिनी आप गवाया तिनी फिर पाया रंग स्यों रलिया माने सदा रंग राती सहजे माती अंदिन नाम वखाने कामन वड़ पागी अंतर लिव लागी हर का प्रेम सुभाया नानक कामन सहजे राती जिन सच सिगार बनाया हों मैं मार मुये तू चल गुर के पाए हर वर रावे सदा मुये निज कर वासा पाए निज कर वासा पाए शब्द बजाए सदा सुहागन नारी फिर रलियाला जोगन बाला अंदिन कंक सवारी हर वार सुहागो मस्तक पागो।

गुण संग्रह अवगुण विकणे आपे आप पछाणे गुरमत पाई वड्डी वड्याई सच्चे शब्द रस तीजे नानक हर की भगत निराली गुरमुख विरले कीजे गुरमुख खेती हर अंतर बीजिए हर लीजे शरीर जमाए राम अपने घर अंदर रस पुंच तू लाहा ले परथाए राम लाहा परथाए हर मन वसाए तन खेती वापारा हर नाम से आए मन वसाए बूजे गुर विचारा मन मुख खेती वणज कर थाके कृष्णा पुख न जाए नानक नाम बीज मन अंदर सच्चे शब्द सुहाए हर व्यापार से जन लागे जिना मस्तक मणि वड पागो राम गुरमति मन निज कर वस्या सच्चे शब्द बैरागो राम मुख मस्तक पागो सच बैरागो साच रते विचारी नाम बिना सब जग बोराना सब दे हो मैं मारी साचे शब्द लाग मत उपजे गुरुमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिले पौ पंजन हर रावे मस्तक पागो खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वड्याई राम गुरमति हुक्म बूझिए हुक्मे मेल मिलाई राम हुक्म मिलाई सहज समाई गुर का शब्द अपारा सच्ची वड्याई गुर ते पाई सच सवारण हारा पौ पंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मिलाई कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर हुक्मे रहा समाई स्वडहंस महला तीजा मन मेरिया तू सदा सच समाल जियो अपने कर तू सुख वसे ओहे ना सके जम काल जियो काल जाल जम जोहे न साके साचे शब्द लिव लाए सदा सच रता मन निर्मल

फिर होए ना फेरा अंत सच नवेड़ा गुरमुख मिले वड्याई साचे रंग राते सहजे माते सहजे रहे समाई सच्चा मन पाया सच वसाया।

राम दृढ़ाए, जप हर हर नाम विकसे राम। जप हर हर नाम कमल प्रगासे, हर नाम नमन निध पाई। हौ मैं रोग गया दुख लाथा, हर सहज समाध लगाई।

मेरा सतगुरु पूरा राम हो मन तन देवा किस काट शरीरा राम हो मन तन काट काट किस दे जो सतगुरु वचन सुनाए मेरे मन बैराग पया बैरागी मिल गुरु दर्शन सुख पाए हर हर कृपा करो।

गुरजेवड़ गुरजेवड़ दाता मैं अवर न कोई। वडहंस मैला चौथा हाँ गुरबिन खरी निवाणी राम। जग जीवन दाता गुर मेल समाणी राम। सत गुर मेल हर नाम समाणी जप हर हर नाम से आया। जिस कारण हूँ तू टूडेंदी सो सज्जन हर कर पाया।

हर हर नाम मेरा प्राण सखाई, किस दिन करी निमख नहीं जीवा। हर हर कृपा करे सुखदाता, गुरुमुख अमृत पीवा। हर आपे सरदा लाए।

हर आपे मूले करे सो होई राम। जो हर प्रभ पावे सोई होवे अवर न करना जाई, बहुत श्यान पलया न जाई, कर था के सब चतराई। गुर प्रसाद जन नानक देखिया, मैं हर दिन अवर न कोई, हर आपे पुरख निरंजन सोई। वडहंस महला चौथा, हर सतगुर मेल, हर सतगुर चरण हम पाया राम, सिमर अज्ञान गवाया, गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम, गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया, अज्ञान अंधेर विनाशे, सतगुर से परम पद

निफल जन्म किन बिरछा गवाया, ते सापक मोए मर चूरे, कर होंदे रतन पदार्थ भूखे, भागहीन हर दूरे। हर हर तिन सा दर्श न करियो, जिनी हर हर नाम न प्याया, जिनी दर्शन सतगुरु पुरख न पाया, हम चात्रिक दीन।

जम कंकर मार बिदारे। हर प्रभु कृपा तारी सुख दाते, दुख लाके पाप संतापा। सुन गुरमुख नाम सब दिन से हों मैं पापा। जप हर हर नाम मेरे मन पाया राम। मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम। गुरमुख जप सब रोग गवाया हर रोग तय शरीरा। अनदिन सहज समाध हर लागी हर जपिया गहर गंभीरा। जात अजात नाम जिन पाया तिन परम पदार्थ पाया। जप हर हर नाम मेरे मन पाया। हर तारो कृपा।

महामार्ग पंथ बिखरा जन नानक पार लंघाया। कोड़ी तेजन दे राम पाया राम, जित हर प्रभ जापै सा तन तन तुखाया राम। जित हर प्रभ जापै।

हर हर काज रचाया पूरे मिल संत जना जंग आई जन नानक हर वर पाया मंगल मिल संत जना वधाई। वडहंस महला चौथा दे तेज नड़ी।

हर नाम गत मिट जानिया, सब जन्म सफलो किया करते हर राम नाम वखानिया। हर राम नाम सलाए हर प्रभु हर

हर गाय मंगल राम नामा, हर सेव सेवक सेव की, प्रभ जाय पावे रंग महली, हर रंग माने रंग की, गुण राम गाए मन सुवाए, हर गुरुमति मन त्याया, जन नानक हर

आज सबके आया मंगल गाया, चूके मनो आदेशा, सो प्रभ पाया कथे न जाया, सदा सदा संग बैसा। प्रभ जी पाना सच्चा माना, प्रभ हर तन सहजे जीता।

ठाकुर माने से प्रधाने हर सेती रंग राते हर रसय अघाए सह समाए कट कट रमैया जाते से सज्जन संत से सुखिए ठाकुर अपने भाने कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा तिन कै सत गुरु बाणे श्लोक।

दुख नाश परम विनाश संते जप जगदीश ईश्वर जय जय। मोह रहत विकार था के पंच ते संग टूटा।

तह सुन सहज समाध लागी एक एक वखाणी है। आप दुखता आप मुक्ता आप वखाना नानक ब्रह्म कह गुण बिना से।

प्रम दुख दर्द निवार खिन में रख ले हो दीन दयाला। मात पिता स्वाम सज्जन सब जगत बाल गोपाला। जो शरण आवे गुण निधान पावे सो बहुर जन्म न मरता। दिनवंत नानक दास तेरा सब जी तेरे तू करता। आठ पैर हर प्याये राम मन इच्छा फल पाये राम मन इच्छ पाये।

पट पट हर गोविंद गाजे राम, गोविंद गाजे सदा विराजे अगम अगोचर ऊंचा, गुण के अंत किस कह न जाई, कोई न सके पहुंचा, आप उपाय

आप निरालम तंदे बांधी कर हुकम छडावन हारो अज कल कर दिया काल दिया पै दूजे पाए विकारो जम मार्ग पंथ ना सुजई उजड़ अंग गुबारो वा ना जल लेप तुलाइया ना भोजन परकारो वा भोजन पाओ ना।

सा तन रंड न कबू बह सही ना कदे हो वह सोग ना कदे हो वह सोग अंदिन रस पोग सा तन मैल समाणी जिन प्रयो जाता कर्म विधाता बोले अमृत बाणी गुणवंतिया गुण सारे अपने कम समाले ना

वडहंस है सच नाम उद्धार सत संग्रह है सद सच रहे सच्चे नाम प्यार सदा निर्मल मैल न लग गई नदर की थी करतार नानक हो तिन

नानक गुरमुख हर नाम पाया सहजे सच समाए पौड़ी। गुरमुख प्रहलाद जप हर गत पाई गुरमुख जनक हर नाम लिव लाई गुरमुख वशिष्ठ हर उपदेश सुनाई बिन गुर हर नाम।

तुके। सतगुर मिले उल्टी भई भाई, जीवत मरे तां बूझ पाए। सो गुरु सो सिख है पाई, जिस ज्योति ज्योत मिलाए। मंगे हर हर सेती लिवलाए, मन हर जप मीठा लागे पाई।

सदा हर के गुण गाए रहाओ। ना मैं ते सब उपजे भाई, ना ही विसरे मर जाए, अज्ञानी जगत अंध है भाई, सूते गए मुहाए।

हर। गुरु शरणाई उबरे भाई, राम नाम लिव लाए, नानक नाओ बेड़ा नाओ तुलहड़ा, पाई जित लग पार जन पाए। श्लोक महला तीजा कर पहला, सतगुर सुख सागर जग अंतर, होर थे सुख नाही, होमे जगत दुख रोग व्यापिया, मर जन में रोवे ताही। प्राणी सतगुर सेव सुख पाए, सतगुर सेवे ता सुख पावे, नाहे ता जाएगा जन्म गवाए। रहाओ त्रै गुण ताक बहु कर्म कमावे, हर रस साधना आया, संध्या तर्पण करे गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। सतगुर सेवे सो वड भागी, जिसनो आप मिलाए, हर रस पी जन सदा तृप्ता, सेव चो आप गवाए। यो जग अंधा सब अंध कमावे, बिन गुर मग न पाए, नानक सतगुर मिले ता

महला चौथा हर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद आपे आप वरतना प्यारा आपे आप अपाहो बंजारा जग आप है प्यारा आपे साचा साहो आपे वंज वपारिया प्यारा आपे सच विसाहो जप मन हर हर नाम सलाहा गुरु कृपा से पाये प्यारा अमृत अगम अथाह रहाओ आपे सुन सब वेखदा प्यारा मुख बोले आप मुहाओ आपे उज्जर पायदा प्यारा आप विखा ले राहो आपे ही सब आप है प्यारा आपे वे परवाहो आपे आप उपायदा प्यारा सिर आपे तंदड़ै लाहो आप तराए शास्ती प्यारा आप मारे मर जाहो आपे पत्तन पातनी प्यारा आपे पार लंगाहो आपे सागर बोहिथा प्यारा गुर खेवट आप चलाहो आपे ही चढ़ लंगदा प्यारा कर चोज वेखे पाप साहो आपे आप दयाल है प्यारा जन नानक बख्श मिलाहो सोरठ महला चौथा चौथा आपे अंडज जेरज सेतज उत्खुज आपे खंड आपे सब लोए आपे सूत आपे बहुमानिया कर शक्ति जगत परोए आपे ही सूत तार है प्यारा सूत खिंचे तह तेरी होए मेरे मन में हर दिन अवरना कोए सतगुरु विच नाम निधान है प्यारा कर दया अमृत मुख चोए रहाओ आपे जल फल सबत है प्यारा प्रभ आपे करे सो होए सबना रिज्क समाहदा प्यारा दूजा अवरना कोए आपे खेल खेला

आपे कारे लाया जो आप चलाए त्यों चलिए प्यारे जो हर प्रभ मेरे पाया आपे जंती जंत है प्यारा जन नानक वजह बजाया सोरठ महला चौथा आपे सृष्ट उपाय दा प्यारा कर सूरज चंद चनान आप निताणिया तान है प्यारा आप निमाणिया मान आप दया कर रखदा प्यारा आपे सुगड़ सुजान मेरे मन जप राम नाम निशान सत्संगत मिल त्याए तू हर हर बहुर न आवन जान रहा आपे ही गुण वरतदा प्यारा आपे ही परवान आपे बच कराएगा प्यारा आपे सच निशान आपे हुक्म वरतदा प्यारा आपे ही फुरमान आपे भगत भंडार है प्यारा आपे देवे दान आपे सेव कराएगा प्यारा आप दिवावे मान।

आपे शब्द समाह, आपे लेखन आप लिखारी, आपे लेख लिखाहा। मेरे मन जप राम नाम ओ माहा, अंदिन अंद होवे वडपागी, ले गुर पूरे हर लाहा रहाओ। आपे गोपी कान है प्यारा, बन आपे गऊ चराहा, आपे सावल सुंदरा प्यारा, आपे वंश वजाहा। कोवलिया पीड़ आप मरायदा प्यारा, कर बालक रूप पचाहा, आप अखाड़ा पाएदा प्यारा, कर वेख है आप चोजाहा, कर बालक रूप उपायदा प्यारा, चंदूर कंस के समाराहा। आपे ही बल आप है प्यारा, बल पन्ने मूरख मुगदाहा, सब आपे जगत उपायदा।

जिंद प्रीत लगी अख्यारी जब सत्संग पे साधु जन हृदय मिलिया सांत मुरारी रहाओ तू हृदय गुप्त वसें।

हर रस अंतर पाई, नानक दीन दयाल पए हैं, कृष्णा शब्द बुझाई। सोरठ महला चौथा पंच पदा, अचर चरै ता सिद्ध होई, सिद्धि ते बुद्ध पाई, प्रेम के सर लागे तां पीतर, तां श्रम काटिया जाई। मेरे गोविंद अपने जन को देह वढाई, गुरमत राम नाम।

कोई। सोरठ महला पंजवा कर पहला सिख के एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। किस हो जाची किस आरादी जा सबको कीता होसी जो जो दी सै वडा वडेरा सो सो फाकूरा।

तू सर्व जिया दयाला सब किच कीता तेरा वरतै क्या हम बाल गोपाला राख ले हो नानक जन तुमरा ज्यो पिता पूत के पाला। सोरठ महला पंजवा कर पहला चौथ के गुरु गोविंद सलाई है पाई मन तन हृदय पार साचा साहिब मन वसै पाई एहा करनी सार जित तन नाम न उपजै पाई से तन होए छार साध संगत को वारिया भाई जिन एक ओंकार आधार सोई सत आराधना पाई जिससे सब किछु होए गुर पूरे जानाया पाई तिस बिन अवर न खोए रहाओ। नाम विहुने पच होए भाई गणत न जाए गणी विन सच सोच न पाईए भाई साचा अगम धनी आवन जान न चुके भाई झूठी दुनी मणि गुरमुख कोट उधार दा भाई दे नामे एक कणी सिमरत साखत सो दिया भाई विन सतगुर परम न जाए अमित कर्म कर थाकिया भाई फिर बंधन पाए चारे कुंडा सो दिया भाई।

सच सदा है निर्मला भाई, निर्मल साचे सोए, नजर करे जिस अपनी पाई, तिस प्राप्त होए। कोट मदे जन पाए भाई, विरला कोई कोए, नानक रत्ता सत नाम भाई, सुन मन तन निर्मल होए। सोरठ महला पंजवा दो तुके

हो बुझाई सेवो साध गहो ओट चरना नै बिचरे मोत चसाई रहाओ। रे मन मुग्ध अचेत चंचल चित तुम ऐसी हृदय न आई प्राण पत त्याग आम तू रचिया उर्जो संग बैराई सोग न व्यापे आप न थापे साध संगत बुद्ध पाई साकत का बकना यूं जानो जैसे पान चुलाई ओत पराध अछाद्यो ए मन कहना कछु न जाई जन नानक दीन शरण आयो प्रभ सब लेखा रखो उठाई। सोरठ महला पंजवा पुत्र कलत्र लोक गृह बनता माया संबंधे ही अंत की बार को खरा न होसी सब मिथ्या अपने ही। रे नर काहे पपोरो देही उड़ जाएगो तुम।

अनक पाँच कर मणिये साजे पाचे ताग परोही टूट जाए गो सूत बापुरे फिर पाछे पछतोही। जिन तुम सिरजे सिरज सवारे तिस प्यावो दिन रहने ही जन नानक प्रभ कृपा पारी मैं सतगुर ओट गए ही। सोरठ महला पंजवा। गुरपुरा पे प्यो वड पागी मने पया तरगासा कोई न पहुंचन हारा दूजा अपने साहिब का भरवासा। अपने सतगुर कै बलिहार है आगे सुख पाछे सुख सह।

एक राम नाम आधारा, सकल दर्शन अकाल मूरत, प्रभ है बिहोन हारा, कंठ लगाए अपने जन राखे, अपनी प्रीत प्यारा, वड्डी वड्याई अचरज शोभा, कारज आया रासे, नानक तो गुरु पूरा पेटे हो, सगले दुख विनाशे, सोरठ महला पंजवा, सुखिये को पेखे सब सुखिया, रोगी के पाने सब रोगी, करण करावन हार स्वामी, आपन हाथ संजोगी, मन मेरे जिन अपना कर्म गवाता, तिसके पाने कोई न फूला, जिन सगलो ब्रह्म पछाता।

करते जन सेवा हर कीर्तन रस गाये इहा सुख आगे मुख उजल जन का संगवड पागी पाये रचना एक अनेक गुण पूरन जन की केतक उपमा कही है अगम अगोचर सद अविनाशी शरण संतन की लही है निर्गुण नीच अनाथ अपराधी ओट संतन की आही बूढ़क मोगृह अंग कूप में नानक लेहो निवाही सोरठ महला पंजवा हर पहला जाके हृदय वस्या तू करते ताकी तै आस पुजाई दास अपने को तू विसरै नाही चरण पूर मन पाई तेरी अकथ कथा कथन ना जाई गुण निदान सुख दाते स्वामी सबते ऊच बढ़ाई रहाओ सो सो कर्म करत है प्राणी जैसी तुम लिख पाई सेवक को तुम सेवा दीनी दर्शन देख अभाई सर्व निरंतर तुम्हें समाने जाको तुद आप बुझाई गुर प्रसाद मिट्यो अज्ञाना प्रगट पाए सब ठाई सोई ज्ञानी सोई प्यानी सोई पुरख सुभाई कहो नानक जित पाए दयाला ताको मन ते बिसर न जाए सोरठ महला पंजवा सगल समग्री मोहे व्यापी कब ऊंचे कब नीचे शुद्ध न होई है काहू जतना ओरक को ना पहुँचे मेरे मन साधु शरण छुटकारा बिन गुर पूरे जन्म मरण न रही फिर आवत बारो बारा रहाओ ओहो जो कर्म पुलावा कहियत तिन में उर्जो सगल संसारा पूरन भगत पुरख स्वामी का सर्व थोक ते न्यारा निंदो नाही काहू बात है एहो खसम का किया जासो कृपा करी।

पूरन तट बिचारा सूरत महला पंजवा। खोजत खोजत खोज बिचार्यो राम नाम सतसारा, किलबिक काटे निमक अरादया गुरमुख पार उतारा। हर रस पीवो पुरख ज्ञानी सुन सुन महा कृपत मन पावे, साधु अमृत बानी रहाओ मुक्त पुगत जुगत सच पाये। सर्व सुखा का दाता अपने दास को भगत दान देवे, पूरन पुरख विधाता। श्रवणी सुनिए रसना गाये हृदय त्याय सोई, करण कारण

साध संग नानक गुण गावे सिमरै सदा गोपाला सोरठ महला पंजवा। कर स्नान सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा कोट बिघन लाते प्रभ सरणा प्रगटे पले संजोगा। प्रभ बाणी शब्द सुवाख्या गावो सुनो पढ़ो नित भाई गुर पूरे तू राख्या रहाओ साचा साहिब अमित वडाई तगत वचल दयाला संता की पैज रखदा आया आग बिरद प्रतपाला। हर अमृत नाम भोजन नित पुंचो सर्व वेला मुख पावो जरा मरा पाप सब नाठा गुण गोविंद नित गावो। सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्व कला बने आई प्रगट पई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई। सोरठ महला पंजवा कर दूजा चौपदे

ते भयानक भया करें बेनती राख ठाकुर ते हम तेरी शरणया जह भंडार गोविंद का खुलिया जे प्राप्त ते लया एक रतन मोको गुरु दीना मेरा मन तन शीतल थया एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर न हुआ भगत भंडार गुरु नानक को सौंपे फिर लेखा मूल न लया सोरठ महला पंजवा चरण कमल स्यों जा का मन लीना सेजन कृपित अभाई गुण अमोल जिस हृदय न वस्या ते नर कृष्ण त्रिपाई हर आराधे अरोग अनुदाई जिसनो विसरै मेरा राम स्नेही किस लाख बेदन जन आई रहाओ जे जन ओट गई प्रभ तेरी से सुखिए प्रभ सरने जे नर बिसरिया पुरख विधाता ते दुखिया मैं गणने जे गुरमान प्रभु लिवलाए तेह महा आनंद रस करया जे प्रभु विसार गुर ते बेमुखाए ते नरक कोर में परया जितको लाया तित ही लागा तैसो ही वरतारा नानक से पकरी संतन की हृदय पै मगन चरनारा सोरठ महला पंजवा राजन में राजा उरझायो मानन में अभिमानी लोभन में लोभी लोभायो त्यों हर रंग रचे ज्ञानी हर जन को यही सुहावे एक निकट कर सेवा सतगुरु हर कीर्तन ही तृप्त पावे रहाओ अमलम स्यो अमली लग पायो कुमन कुम प्यारी खीर संग बारक है लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या में विद्यांशी रचिया नैन देख सुख पावे जैसे रखना साग लुभानी त्यों हर जन हर गुण गावे जैसी पूख तैसी का पूरक सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लगी।

करण हार त्रिन जाने तू दाता मांगन को सगली दान दे तब कौने खिन में अवर खिने में अवरा अचरज चल तुम्हारे रूड़ो गूड़ो गहर गंभीरो ऊंचो अगमा पारे साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी अनद पया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी सोरठ महला पंजवा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की शरणा संत हमारी ओट सतानी संत हमारा गहना हम संतन स्यो बन आई पूरब लिखिया पाई ए मन तेरा भाई रहाओ संतन स्यो मेरी लेवा देवी संतन स्यो व्योहारा संतन स्यो हम लाहा खाटिया हर पगत परे भंडारा संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का पोखा।

मोह अभिमाना ता मैं सुख नहीं पाये। हो रेन तू सगल की मेरे मन तो अंग मंगल सुख पाये। काल न पाने अंतर विद जाने ताकि कर मन सेवा कर पूजा होम ए मनवा। अकाल मूरत गुरुदेवा गोविंद दमोदर दयाल माधवे पार ब्रह्म निरंकारा। नाम वर्तन नामो वालेवा नाम नानक प्राण अधारा। सूरठ मेला पंजवा मृतक को पायो तम सासा विचरत आन मिलाया। पशु परेत मुगद पै श्रोते हर नामा मुख।

अंग मंगल विश्रामा, मन बाचत फल मिले अचिंता, पूरन होए कामा। इहा सुख आगे मुख उजल, मिट गए आवन जाने, निरपो पे हृदय नाम वस्या, अपने सतगुर के मन पाने। उठत बैठत हर गुण गावे, दुख दर्द क्रम पागा, कहो नानकता के पूर करमा, जासा गुर चरनी मन लागा। सोरठ महला पंजवा, रतन छाड़ कौडी संग लागे, जाते कछु न पाये, पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर, मेरे मन सभा से आये। सिमरो हर हर नाम परानी, बिनसै काची दे अज्ञानी, रहाओ मृग कृष्णा अर सुपन मनोरथ, ताकि कछ न गढ़ाई, राम भजन।

साधु संग उधारे पूरे गुर मेट्यो परम अंधेरा सज प्रेम भगत प्रभ नेरा रहाओ हर हर नाम निधान रस पिया मन तन रहे अघाई जत कत पूर रहो परमेश्वर कत आवे कत जाए जब तक समझम ज्ञान पत बेता जिस मन वसै गोपाला नाम रतन जिन गुरमुख पाया पापी पूरन पाला कल कलेश मिटे दुख सगले पापी जम की पाता कहो नानक प्रभ कृपा तारी मन तन पे बिगाता सूरठ मैला पंजवा करण करावण हार प्रभ दाता पार ब्रह्म प्रभ स्वामी सगले जी किए दयाला सो प्रभ अंतर जामी।

साथी दरगह माने गुण गावत आराध नाम हर आए अपने खाने जय जयकार करे सब उस्तक संगत साध प्यारी सब दलिहार जाओ प्रभ अपने जिन पूरन पैस सवारी गोष्ठ ज्ञान नाम सुन उदरे जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नान प्रभ अपना अनुज सेती पर आया सूरत महला पंजवा प्रभ की शरण सगल पहला से दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुर त्याया प्रभ जियो तू मेरो साहिब दाता कर कृपा प्रभ दीन दयाला गुण गावो रंग राता रहाओ सतगुर नाम निधान दृढ़ाया चिंता सगल विनाशी कर कृपा अपनो कर लीना मन वस्या अविनाशी ताको विघ्न ना को लागे जो सतगुर अपने राखे चरण कमल बसे रिद अंतर अमृत हर रस्ता के कर सेवा सेवक प्रभ अपने जिन मन की

सोरठ महला पंजवा। माया मोह मगन अंधियार है, देवन हार न जाने, जियो पिंड साब जिन रचिया बल अपनो करमाने। मन मूड़े देख रहे हो प्रभु स्वामी, जो किच करे सोई सोई जाने, रहे न कछु छानी रहाओ। जेवा स्वाद लोभ मद मातो, उपजे अनक बिकारा, बहुत जोन परमत दुख पाया, हूँ मैं बंधन के पारा। देख वार अनक पर्दे में, परदारा संग थाके, चित्रगुप्त जब लेखा मांगे, तब कौन पर्दा तेरा ठाके। दीन दयाल पूरन दुख पंजन, तुम बिन ओट न पाई, काड ले हो संसार सागर में, नानक प्रभु शरणाई। सोरठ महला पंजवा। पार ब्रह्म हुआ सहाय, कथा कीर्तन सुखदाई, गुर पूरे की बाणी, जप अंग करो नित पाणी। हर आचा सिमरो भाई, साध संग सदा सुख पाये, हर विसर न कभू जाय रहाओ। अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरे सो जीवे, जिसनो कर्म परापत होवे, सो जन निर्मल थीवे। विघ्न विनाशन सब दुख नाशन, गुर चरणी मन लागा, गुण गावत अचुत अविनाशी, अन दिन हर रंग जागा। मन इच्छे से ही फल पाए, हर की कथा सुहेली, आद अंत मद नानक को, सो प्रभु हुआ बेली। सोरठ महला पंजवा। पंच पदा। बिन से मोह मेरा और तेरा, बिन से अपनी सारी, संतो यहाँ बताओ कारी, जित हो मैं गर्भ निवारी रहाओ। सर्व पूत पार ब्रह्म कर मान्या, होवा सगल रे नारी।

पाये गुरु दुआरी, कहो नानक जिस मस्तक लिखिया तिस गुर मिल रोग बिदारी। सोरठ महला पंजवा हर दूजा दो पदे इको अंकार। सतगुर प्रसाद सगल बनस्पत में बैसंतर, सगल दूध में किया ऊंच नीच में जोत समानी, कट कट माधो जिया संतो कट कट रहा।

समायो सोरत महला पंजवा जाओ कै सिमरन होए आनंदा बिन सह जन्म मरण पै दुखी चार पदार्थ नवनिध पावे बहुर ना तृष्णा।

रहाओ। सांत पावे होवे मन शीतल, अजन नाम कर तुखी, गुरु नानक को प्रभु दिखाया, जल थल से पवन रुखी। सूरत महला पंजवा, काम क्रोध लोभ झूठ निंदा, इनके आप छुड़ाओ, ए पीतर ते इनको डारो, आपन निकट बुलाओ, अपनी विद आप जनाओ, हर जन मंगल गाओ, रहाओ, विसर नाही कब हुए ते, ए विद मन में पावो, गुर पूरा पे क्यो वड़ पागी, जन नानक फतेह न पावो। सूरत महला पंजवा, जा के सिमरन सब कछ पाये, बिरती काल न जाई, किस प्रभ त्याग अवर कतराचो, जो सब में रहा समाई, हर हर सिमरो संत गोपाला, साध संग मिलना।

जगत जीवन कैसे पावे। सूरठ मेला पंजवा अविनाशी जीवन को दाता सिमरत फरनल कोई गुण निदान भगतन को बर्तन बिरला पावे कोई। मेरे मन जत गुरु गोपाल प्रभ सोई जाकी शरण पै सुख पाये बहुत दुख न होई। रहाओ वड भागी सात संग प्राप्त तिन पेटत दुर्मत खोई।

बख्श ले हो साहिब प्रभ अपने लाख खते कर फेरो। प्रभ जी तू मेरो ठाकुर नेरो, हर चरण शरण मोहि।

चौनी दे वड्याई सोभा नीता नीत रहाओ जी जंत प्रभ सगल उधारे दर्शन देखन हारे गुरपूरे की अचरज वड्याई नानक सद बलिहारे सोरठ महला पंजवां संचन करो नाम तन निर्मल थाती अगम अपार बिलख बिनोद आनंद सुख मानो खाए जीवो सिख परवार हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद पायो सच

कीमत कहन न जाई, नानक भगत पए अविनाशी, अपना प्रभु पया सहाय। सोरठ महला पंजवा, गए कलेश रोग सब नासे,

सिमर सिमर गुर सतगुरे अपना सगला दुख मिटाया, पाप रोग गए गुर बचनी मन इच्छे फल पाया। मेरा गुर पूरा सुखदाता करण कारण समरथ स्वामी, पूरन पुरख विधाता रहाओ आनंद विनोद मंगल।

हर के चरण हृदय उधार, सदा सदा प्रभ सिमरिए पाई, दुख किलबिक काटन हार। रहाओ तिसकी सरणी उबरे पाई, जिन रचिया सब कोए, करण कारण समरथ सो पाई,

हर हर नाम ते आई सुख सागर प्रभ विसरो नाही मन चिंदियाड़ा फल पाई रहाओ सतगुर पूरे ताप गवाया अपनी कृपा धारी पार ब्रह्म प्रभ पए दयाला दुख मिटिया सब परवारी सर्व निधान मंगल रस रूपा हर का नाम आधारो नानक पत राखी परमेश्वर उदरिया सब संसारो सोरत महला पंजवा मेरा सतगुर रखवाला होआ पार कृपा प्रभ हाथ दे राखिया हर गोविंद नवा निरोआ रहाओ साप दया प्रभ आप मिटाया जन की इलाज रखाई साध संगत ते सब फल पाए सतगुर कै बल जाए हलत पलत प्रभ दोवें सवारे हमरा गुण अवगुण ना बिचारिया अटल बचन नानक गुर तेरा सफल कर मस्तक धारिया सूरत महला पंजवा जी जंत्र

बढ़ाए। पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल, गुरपूरै पूरी सब राखी, होए सर्व दयाल रहाओ। अंदिन नानक नाम ध्याए, जी प्राण का दाता, अपने दास को कंठ

सुख कल्याण मंगल स्यों कर आए कर स्नाना रहाओ। साची गुर वड्याई ताकी कीमत कहन ना जाई, सिर साहा पात साहा गुर पेटत मन ओ माहा। सगल पराशत लाथे मिल साध संगत कैसा थे, गुण निधान हर नामा जप पूरन होए कामा। गुर कीनो मुकुट द्वारा सब सृष्ट करे।

पूरे कृपा तारी प्रभ पूरी लोच हमारी कर स्नान गृह आए आनंद मंगल सुख पाए संतो राम नाम निस्तरिय उठत बैठत हर हर त्याय अनदिन सुकृत करिय रहाओ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वडभागी पाए कोट जन्म के किल विखनासे हर चरणी सिसलाए उस्तत करो सदा प्रभ अपने।

सब दुख नासन सतगुर नाम दृढ़ाया, होए पाप भए सब पावन जन नानक सुख कर आया। सोरठ महला पंजवा साहिब गुनी गहेरा, कर लखतर सब तेरा, रखवाले गुर गोपाला सब जी भय दयाला। जप अनद रहो गुर चरणा, पौ कत है नहीं प्रभ सरणा। रहाओ तेरिया दासा हृदय मुरारी, प्रभ अवचल नीव उसारी। बल तन तकिया तेरा, तू पारो ठाकुर मेरा। जिन जिन साध संग पाया, सो प्रभु आप तराया। कर कृपा नाम रख।

सास सास प्रब त्याय हर मंगल नानक दाई है। सोरठ महला पंजवा सुख सहज आनंदा प्रभ मिलियो मन पावंदा पूरे गुर कृपा तारी तागत पई हमारी हर की प्रेम पर।

तिन सगली बात सवारी। प्रभ अपना बिरद संवारिया, हमरा गुण अवगुण ना विचारिया, गुर का शब्द

अपने दास का सदा रखवाला, पर कृपा अपने कर राखे, मात पिता जो पाला रहाओ। वडपागी सतगुर पाया, जिन जम का पंथ मिटाया, हर भगत पाए चित लागा, जप जीवे से वडपागा। हर अमृत बाणी गावे, साधा की दूरी नावे, अपना नाम

प्रीति पूरी प्रभ रव रहा पर पूरी खेम कुशल पया स्नाना पार ब्रह्म विटो कुरबाना गुर के चरण कवल रिद कारे विघ्न ना लागे तिल का कोई कार्य सगल सवारे रहाओ मिर साधु दुर्मत खोए पतत पुनीत सब हुए रामदास सरोवर नाते सब लाते पाप कमाते गुण गोविंद नित गाये साध संग मिल त्याये मन बांचत फल पाए गुर पूरा हृदय त्याए गुर गोपाल आनंदा जप जप जीवे।

हर जियो निमाणिया तू मान, निकी जिया चीज करे मेरा गोविंद, तेरी कुदरत को कुर्बान रहा। जैसा बालक पाए सवाई, लख अपराध कमावे, कर उपदेश छिड़के बहु पांती, बहुड़ पिता दल लावे। पिछले अवगण बख्श लए प्रभु, आगे मार्ग पावे, हर अंतर जामी सब विद जाने, ता किसते आख सुनाये, कहने कथन ना पीजे गोविंद, हर पावे पैज रखाये। अवर ओट में सगली देखी, एक तेरी ओट रहाये। ओए दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर, आपे सुने विनंती, पूरा सतगुर मेल मिलावे, सब चूके मन की चिंती। हर हर नाम अवखद मुख पाया, जन नानक सुख वसंती। सोरठ महला पंजवा, सिमर सिमर प्रभ पय आनंदा, दुख कलेश सब नाथे, गुण गावत त्यावत प्रभ अपना, कार्य सगले सांठे, जग जीवन नाम।

आपे दाता आपे भुगता, क्या इन जंत विचारा, क्या गुण तेरे आख वखाने, कीमत कहन न जाई, पेख पेख जीवे प्रभ अपना, अचरज तुम्हें वडाई, तार अनुग्रह आप सब स्वामी, पत मत कीनी पूरी, सदा सदा नानक बलिहारी, बाछो संता धूरी, सोरठ मैला पंजवा, गुर पूरा नमस्कारे, प्रभ सबे काज सवारे, हर अपनी कृपा तारी, प्रभ पूरन तेज सवारी।

सवारी मन सिंधिया फल पाया प्रभ अपना सदा त्याया। संतो इस दिन अवर न कोई करण कारण प्रभ सोई रहाओ प्रभ अपने वर्गी ने सगल जी वक्ति ने जन नानक नाम।

जो तुध भावे मोहे सियाणप कछु ना आवे। हम बारिक तौ शरणाई प्रभ आपे तेज रखाई। मेरा मात पिता हर राया कर कृपा प्रकट।

काज हमारा होया प्रभ चरणी मन लागा पूरन जाके भागा मिल साध संग हर ध्याया आठ पहर आराध्यो हर हर मन चिंधिया।

आनंद करो पित माता, परमेश्वर जी का दाता। शुभ चितवन दास तुम्हारे।

आ सदा हर जाते प्रभु बालक राखे आते शीतला छाक रहाई बिघन गए हर नाई मेरा प्रभु हुआ सदा दयाला हरदास सुनी पवे।

हर आराधो हर आराध सबो किछ पाये कार्य सगले साधो रहाओ। प्रेम भगत प्रभ लागी सो पाए जिस वड भागी।

दुख रोग का डेरा बनना, परमेश्वर दिता बनना, दुख रोग का डेरा बनना, आनंद करे नर नारी, हर हर प्रभु।

साच साच वखाना सोरठ महला पंजवा ऐथे ओथे रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला ऐथे ओथे रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला दास अपने आप राखे कट कट शब्द सो पाके गुर के चरण ऊपर बल जाई दिन सुरैन साथ साथ संभाली पूरन सबनी साई रहाओ आप सहाई होआ सच्चे दा सच्चा टोआ आप सहाई होआ सच्चे दा सच्चा डोआ तेरी भगत वड्याई पाई नानक प्रभ सरनाई सोरठ महला पंजवा सतगुर पूरे भाणा ता जपया नाम रम।

धारी प्रभु राखी तेज हमारी हर के चरण सदा सुखदाई जो इच्छे सोई।

कृपा करे जिस प्राण पत दाता सोई संत गुण गावे प्रेम पदत ताका मन लीना पार ब्रह्म मन पावे आठ कहर हर का जस रवना दिखे खगौरी लाती संग मिलाए ली।

खन्ना सगल रेन चारी, इस आगे को न टिके विकारी, गुर पूरे ए गल सारी, हर हर नाम संतन की ओटा, जो सिमरे तिसकी गत होवे, उधरे सगले कोटा रहाओ। संत संग जस गाया, ए पूरन हर तन पाया, कहो नानक आप मिटाया, सब पार ब्रह्म नगरी आया। सोरठ महला पंजवा, गुरपूरे पूरी कीनी, बस अपनी कर दीनी, नित आनंद सुख पाया, थाम सगले सुखी वसाया। हर की भगत फल दाती, हर की भगत फल दाती, गुरपूरे कृपा कर दीनी, विरले किन्ही जाती रहाओ। गुरबाणी गावे भाई, ओ सफल सदा सुखदाई, गुरबाणी गावे भाई, ओ सफल सदा सुखदाई, नानक नाम ते आया, पूरब लिखिया पाया। सोरठ महला पंजवा।

संतो राम जपत सुख पाया, संत स्थान बसे सुख सहजे, सगले दुख मिटाया। रहाओ गुरपुरे की बाणी, पार ब्रह्म मन पाणी, नानक दास वखाणी, निर्मल अखत कहानी। सोरठ महला पंजवा, ऊखे खावत लाज ना आवे, क्यों हर जन हर गुण गावे। ऊखे खावत लाज ना आवे, क्यों हर जन हर गुण गावे। अपने काज को क्यों अलकाइए, जित सिमरन दर गए मुख उजल, सदा सदा सुख पाइए। रहाओ जो कामी काम लुभावे, क्यों हर दास हर जस भावे।

जिसनों बख्श ले मेरे प्यारे सो जस तेरा गावे रहाओ। तू पारो स्वामी मेरा संता परवासा तेरा नानक प्रभ शरणाई मुख निंदक कै छाई। सोरठ महला पंजवा आगे सुख मेरे मीता पाछे आनंद प्रभ कीता परमेश्वर बनत बनाई फिर डोलत कथु नाही। साचे साहिब सिउ मन मानिया हर सर्व निरंतर जानिया रहाओ। सब जी तेरे दयाला अपने भगत करें प्रतपाला अचरज तेरी वड्याई नित नानक नाम ते आई। सोरठ महला पंजवा नाल नारायण मेरे जमदूत ना आवे नेरे कंठ लाए प्रभ राखे सतगुर की सच साखे गुर पूरे पूरी कीती दुश्मन मार विडारे सगले दास को सुमत दीती रहाओ। प्रभ सगले थान वसाए सुख सांद फिर आए नानक प्रभ शरणाए जिन सगले रोग मिटाए। सोरठ महला पंजवा सर्व सुखा का दाता सतगुरता की सरनी पाई है दर्शन पेटत होत आनंदा।

शरण आई रहाओ तिसे प्राप्त जिस तुर लिखिया सोई पूरन भाई नानक की बेनंती प्रभ जी नाम रहा लिवलाई। सोरठ महला पंजवा करन करावन हर अंतर जामी जन अपने की राखे जय जयकार होत जग पीतर सबद गुरु रस चाखे। प्रभ जी तेरी ओट गुसाई तू समरथ शरण का दाता आठ पहर तुम त्याई रहाओ जो जन भजन करे प्रभ तेरा तिसे अंदेसा नाही सतगुर चरण लगे पौ मिटिया हर गुण गाए मन माही। सुख सहज आनंद कनेरे सतगुर दिया दिलासा जिन कर आए।

ना हर पजे ना तीर्थ सेवे चोटी काल गही राव दारा मीत पूत रख संपत तन पूरन सब मही अवर सगल मिथ्या ए जानो भजन राम को सही। फिरत फिरत बहुते जुग हारयो मानस दे लही नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहा नहीं। सोरठ महला नामा मन रे कौन कुमत तैलीनी परदारा निंदिया रस रच्यो राम भगत नह कीनी। रहाओ मुकत पंथ जान्यो तैनाहिन तन जोरन को धाया अंत संग काहू नहीं दीना बिरथा आप बंदाया। ना हर पज्यो ना गुरजन सेव्यो न उपजो कछ ज्ञाना कट ही माहे निरंजन तेरे तैं खोजत उद्याना। बहुत जन्म परमत तैं हारयो अस्थिर मत नहीं पाई मानस दे पाए पद हर पज नानक बात बताई। सोरठ महला नावा मन रे प्रभ की शरण विचारो जेह सिमरत गनकासी उदरी ताको जस उधारो। रहाओ अटल भयो त्रू जाके सिमरन अर निरपय पद पाया दुख हरता ए विद को स्वामी तैं काहे बिसराया। जब ही शरण गई कृपा निद गज ग्रहते छूटा महमा नाम कहां लो बरनो राम कहत बंधन ते टूटा। अजामल पापी जग जाने।

हार सगल जगत है जैसे सुपना बिनसत लगत ना बार रहाओ बारू पीत बनाई रचपच रैत नहीं दिन चार तैसे ही ए सुख माया के उर्जो कहां गवार अजमु समझ कछ बिगड़ियो नाहन पाजले नाम मुरार कहो नानक निज मत साधन को पाक्यो तोहे पुकार सोरठ मैला नावा ए जग मीत ना देखियो कोई सगल जगत अपने सुख लागियो

स्वान पूछ ज्यो पयो ना सूदो, बहुत जतन में कीनो, नानक लाज बिरद की राखो, नाम तुहारो लीनो, सोरठ मैला नावा। मन रे गयो ना गुरु उपदेश, कहां पयो जो मूड मुडायो, पगवो कीनो पेश रहाओ, साथ छोड़ के चूठे लागयो, जन्म अकारत खोयो, कर पर पंच उदर निज पोखे।

संग छाड़ सब पागे। कहो कहा जिया मन बौरे को इनस्यों निहो लगायो। दीना नाथ सकल पै पंजन जस ताको बिसरायो।

कंचन माटी माने रहाओ, नह निंदिया नह उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना हर सोगते रह न्यारो, नाहे मान अपमान।

एको चेतै मनुआ ना डोलै पावत वर्ज रहावै सहजे माता सदा रंग राता साचे के गुण गावै मनुआ पौन बिंद सुखवासी नाम वसै सुख पाई जेबा नेत्र सोत्र सचराते जल बूजी तुझे बुझाई आस निरास रह बैरागी निज कर तारी लाई पिख्या नाम रज

गुरबिन अलख ना लखिए पाए, जग बूढ़े पत खोए, मेरे ठाकुर हाथ वडाया पाए, जय पावे तें दे। बैसर बोले मीठली पाई, साच कहे पिर पाए, बिर है बेदी सच वसी पाई, अधिक रही हर नाए। सबको आखे आपना पाई, गुरते बूजे सुजान, जो भी देश से उबरे पाई, शब्द सच्चा निशान। ईदन अधिक सके लिए पाई, पावक रंचक पाए, खिन पल नाम हृदय वसै पाई, नानक मिलन सुवाए। सोरठ महला तीजा कर पहला तितुकी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो, तुर तू रखदा आया, प्रहलाद जन तुद राख ले, हर जियो हरनाथ समार पचाया। गुरमुखा नो प्रतीत है हर जियो, मनमुख परम पुलाया। हर जी ए तेरी वड्याई, भगतां की पैज रख तू स्वामी, भगत तेरी शरणाई रहाओ। भगतां नू जम जोहे ना साके, काल न नेड़े जाई, केवल राम नाम मन वस्या, नामे ही मुक्त पाई। रिद्ध सिद्ध सब भगतां चरणी लागी, गुर कै सहज सुभाई, मन मुखा नू प्रतीत न आवे, अंतर लोभ सुआओ। गुरमुख हृदय शब्द न भेजो, हर नाम न लागा पाओ। कूड़ कपट पाज लह जासी, मनमुख फीका लाओ। भगतां विच आप वरदा प्रभ जी, भगती हूं तू जाता, माया मोह सब

सवाणी गुर के शब्द पछाता अचिंत कम करें प्रव तिनके जिन हर का नाम प्यारा गुर प्रसाद सदा मन वस्या सब काज सवारण हारा ओना की रीस करे सो विगुचे जिन हर प्रभ है रखवारा बिन सतगुर सेवे किने ना पाया मन मुख पौ के मुए बिल लाई आवे जावे ठौर न पावे दुख में दुख समाई गुरमुख होवे सो अमृत पीवे सहजे साज समाई बिन सतगुर सेवे जन्म ना छोड़े जे अनेक कर्म करे अधिकाई वेद पढ़े ते वाद वखाणे बिन हर पत गवाई सच्चा सतगुर साची जिस बाणी पज छूटे गुर शरणाई जिन हर मन वस्या से दर साचे दरसा चै सचियारा ओना दी शोभा जुग जुग होई कोए न मेटन हारा नानक तिन कै सद बलिहार है जिन हर राख्या उधारा सोरठ मैला तीजा दुत की निगुणिया नो आपे बख्श ले पाई सतगुर की सेवा लाए सतगुर की सेवा उत्तम है पाई राम नाम चित लाए हर जियो आपे बख्श मिलाए गुणहीन हम अपराधी पाई पूरे सतगुर लेर लाए रहा कौन कौन अपराधी बख्शियन प्यारे साचे शब्द विचार पौजल पार उतारन पाई सतगुर बेड़े चार मनूरे ते कंचन भय भाई गुर पारस मेल मिलाए आप छोड़ नाव मन वस्या पाई ज्योति ज्योत मिलाए हों वारी हों वारने पाई सतगुर को सद बलिहारे जाओ नाम निधान जिन दित्ता पाई गुरमत सहज समाओ गुर बिन सहज ना उपजे पाई पूछो ज्ञानिया जाए सतगुर की सेवा सदा कर पाई विच्चों आप गवाए गुरमति पौ उपजे पाई पौ करनी सच सार प्रेम पदार्थ पाई पाई सच नाम आधार जो सतगुर सेवे अपना पाई तिनके हो लागो पाए जन्म सवारी अपना पाई कुल भी लई बख्शाए सच बाणी सच शब्द है पाई गुर कृपा ते होए नानक नाम हर मन वसे पाई तिस बिघन न लागे कोए सोरठ मैला तीजा हर जियो शब्दे जापदा पाई पूरे पाग मिलाए सदा सुख सोहागणी पाई अंदिन रतिया रंग लाए हर जी तू आपे रंग चढ़ाए गावो गावो रंग राते हो पाई हर सेती रंग लाए रहाओ गुर की कार कमावणी पाई आप छोड़ चित लाए।

मन हठकार कमावनी पाई बिन नावे कूड़ियार से गावे जिन मस्तक भाग है पाई पाए सच्चे बैराग अन दिन राते गुण रवे पाई निरपो गुर लिव लाग सबना मार जीवालदा पाई सो सेवो दिन रात सो क्यों मनो विसारिय पाई जिस दी वड्डी है दात मन मुख मैली डुमनी पाई दरगे नाही थाओ गुरमुख होवे ता गुण रवे पाई मिल प्रीतम साच समाओ एक जन्म हर ना चेत्यो भाई क्या मोह देसी जाए किड़ी पवंदी मोह आयोन पाई बिख्या नो लो भाए नाम समाले सुख वसे भाई सदा सुख सांत शरीर नानक नाम समाल तू पाई अपरंपर गुणी गहीर सोरठ मैला पंजवा कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब जग जिने उपाया भाई करण कारण समरथ जियो पिंड जिन साजिया पाई देकर अपनी वथ किन कही है क्यों देखिए पाई करता एक अकथ गुरु गोविंद सलाहिए पाई जिसते जापे तथ मेरे मन जपिए हर भगवंता नाम दान दे जन अपने दुख दर्द का हंता रहाओ जा के कर सब किछे पाई नौनिद परे पंडार जिसकी कीमत ना पवे पाई ऊंचा अगमा पार जी जंत प्रतपालदा पाई।

तुद बिन अवर ना करन हार प्यारे अंतर जामी एक रहाओ। कोट जन्म प्रम आया प्यारे अनक जोन दुख पाए साचा साहिब विसरिया प्यारे बहुती मिले सजाए। जिन पेटे पूरा सतगुरु प्यारे से लागे साचे नाए तिना

ज्ञान तिस पयो प्राप्त जिस पूर्व लिखे का लहना तेरो सेवक ए रंग माता पयो कृपाल दीन दुख पंजन हर हर कीर्तन ए मन राता रहाओ दूजा राग सोरठ वार महल।

पैवसी सतगुर सेवन संग पर हर कपड़ जे पिर मिले खुशी रावे पिर संग सदा सिगारी नाओ मन कदे न मैल पतंग देवर जेठ मोए दुख ससु का डर किस जे पिर पावे नानका कर्म मणि सब सच महला चौथा सोरठ ताम सुहावणी जा हर नाम टंडोले गुर पुरख मनावे अपना गुरमती हर हर बोले हर प्रेम कसाई दिन सरात हर रती हर रंग चोले हर जैसा पुरख न लब्बई सब देखिया जगत में टोले गुर सतगुर नाम दृढ़ाया मन अंत न काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सतगुर के गोल गोले पौड़ी तू आपे शिष्ट करता सृजन हारिया तुद आपे खेल रचाए तुद आप सवारिया दाता करता आप पोगन हारिया सब तेरा शब्द वरतै उपावन हारिया हौं गुरमुख सदा सलाही गुर को वारिया। श्लोक महला तीजा हौं मैं जलते जल मोए प्रम आए दूजै भाए पूरे सतगुर राख ली।

सफलियो सतगुर सेविया तन जन्म प्रवान जिना सतगुर जीवंदिया मोया ना विसरै सेई पुरख सुजान कुल उधारे आपना सो जन होवै प्रवान गुरमुख मोए जीवंदे प्रवान है मन मुख जन्म मराहे नानक मोए ना आखियै जे गुर कै शब्द समाए पौड़ी हर पुरख निरंजन सेव हर नाम त्याई है सत संगत साधु लग हर नाम समाई है हर तेरी वड्डी कार मैं मूरख लाई है हौ लाला गोला तुद मैं हुक्म फरमाई है हौ गुरमुख कार कमावा जे गुर समझाई है श्लोक महला तीजा पूरब लिखिया कमावना जे करते आप लिखियास मोठ गौली पायन विसरिया गुणतास मत जानो जग जीवदा दूजे पाए मोयास जिन्नी गुरमुख नाम न चेत्यो से बहन न मिलनी पास दुख लागा बहु अतकणा पुत कलत ना सास कोई जास लोकां विच मुह काला होआ अंदर उब्बे सास मन मुखानो को ना विसही चुक गया वे सास नानक गुरमुखानो सुख अगला जिना अंतर नाम निवास महला तीजा से सैन से सज्जना जे गुरमुख मिले सुभाए सतगुर का पाणा अनदिन करे से सच रहे समाए दूजे पाए लगे सज्जन ना आखिए जे अभिमान करे वेकार मन मुख आप स्वार्थी कारज ना सके सवार नानक पूरब लिखिया कमावना कोई ना मेटन हार पौड़ी तुद आपे जगत उपाय कै आप खेल रचाया त्रै गुण आप सिरजिया माया मोह वधाया विच हो मैं लेखा मंगी है फिर आवे जाया जिना हर आप कृपा करे से गुर समझाया बलिहा।

जग कमला फिरे गुरुमुख नदरी आया। तंदा करतिया ने फल जन्म गवाया, सुखदाता मन ना वसाया। नानक नाम तिना को मिलिया, जिनको तुर लिख पाया महला तीजा। कर ही मैं अमृत भरपूर है, मन मुखा साज न पाया। ज्यो कस्तूरी मृग न जाने, परम दा परम पुलाया। अमृत ताज बिख संग्रह करते आप खुआया, गुरमुख विरले सो जी पई, तिना अंदर ब्रह्म दिखाया। तन मन शीतल होया, रसना हर साध आया। सबदे ही नाउ उपजे, सबदे मेल मिलाया। बिन सबदे सब जग बोराना, बिरथा जन्म गवाया। अमृत एको शब्द है, नानक गुरमुख पाया पौड़ी। सो हर पुरख अगम है, कहो कित विद पाई है। तिस रूप न रेख अदृष्ट कहो, जन क्यों त्याई है। निरंकार निरंजन हर अगम क्या कहे, गुण गाई है। जिस आप बुझाए आप, सो हर मार्ग पाई है।

फिर मिलन ना पाए नहीं जम्मे ते मर जाए। सहसा रोग ना छोड़े दुख ही मैं दुख पाहे, नानक नदरी बख्श ले सबदे मेल मिलाए। मैला तीजा जो सतगुर ते मोह फिरे तिना ठौर न ठाओ, ज्यो छुट्टड़ कर कर फिरे दो चारण बदनाओ। नानक गुरुमुख बख्शी है से सतगुर मेल मिलाओ पौड़ी, जो से मैं सत मुरार से पवजल तर गया। जो बोले हर हर नाओ तिन जम छट गया, से दरगह पैंदे जाहे जिना हर जप लया। हर सेवे से ही पुरख जिना

नानक बिन कर्मा क्या पाये, पूरब लिखिया कमाए पौड़ी। बै सखिया जस गावे गावन हारिया, हर नाम सलाहो नित हर को बलिहारिया।

नानक नाम रत्या बल जाओ पौड़ी। से हर नाम त्यावे जो हर रत्या, हर इक त्यावे इक इको हर सत्या। हर इको वरते इक इको उत्पत्या, जो हर नाम त्यावे तिन डर सच कत्या। गुरमति देवे आप गुरमुख हर।

जा। हर गुण तोट ना आवई कीमत कहन ना जाए, नानक गुरमुख हर गुण रवे गुर में रह समाए पौड़ी। हर चोली दे सवारी कड पैंदी भगत कर, हर पाठ लगा अधिकाई बहु बहु विद पांत कर। कोई बूझे बूझन हारा अंतर विवेक कर, सो बूझे इहो विवेक जिस बुझाए आप हर। जन नानक कह विचारा गुरमुख हर सत।

गुरुमुख चित न लायो अंत दुख पहुताए, अंदरों बारों अंधियां सुध ना काई पाए। पंडित तिन की बरकती सब जगत खाए, जो रखते हर नाए। जिन गुर के शब्द सलाहया हर स्यो रहे समाए, पंडित दूजे पाए बरकत ना हो वही, ना कन पल्ले पाए। पर सके संतोख ना आयो अम दिन जलत विहाए, कूक पुकार ना चुकई ना संसार विचों जाए। नानक नाम विहुणिया मोह काले उठ जाए पौड़ी, हर सज्जन मेल प्यारे मिल पंथ दसाई। जो हर दसे मित तिस हो बल जाए, गुण सांझी तिन स्यों करी हर नाम ते आई। हर सेवी प्यारा मित सेव हर सुख पाई, बलिहारी सतगुरु तिस जिन सो जी पाई। श्लोक महला तीजा, पंडित मैल न चुकई जे वेद पढ़े जुग चार। त्रै गुण माया मूल है विच हो मैं नाम विसार,

पाए मन हाथ सहज न बीजियो उखा के अगे खाए नाम निधान विसारिया दूजे लगा जाए नानक गुरमुख मिले वडियाईया जे आपे मेल मिलाए पौड़ी हर

करें। क्यों गुरुमुख आप निवार्य है सब राज सृष्ट काले, नानक गुरुमुख बुझिए जा आपे नजर करे महला तीजा। जिन गुरुमुख नाम से आया आए ते परवान, नानक कुल उदार है अपना दरगे पावे मान पौड़ी।

तन तन भाग तिना भगत जना जो हर नामा हर मुख कहत्या। तन तन भाग तिना संत जना जो हर जस श्रवणी सुनत्या। तन तन भाग तिना साज जना हर कीर्तन गाए गुणी जन बनत्या।

साथ सिद्ध सा करमात है अचिंत करे जिस दात नानक गुरमुख हर नाम मन वस है एहा सिद्ध एहा करमात पौड़ी हम ताडी हर प्रभु खसम के नित गावे हर गुण क्षमता हर कीर्तन करें हर जस सुने।

हर गुण गावा हर नित चवा गुरमति हर रंग सदा मान हर जप जप औखद खा दिया सब रोग गवाते दुखा कान जिना सास गिरास न

नानक गुर शरण आई उबरे सच मन शब्द ते आए महला तीजा। शब्द रते हो मैं गई सो बावंती नार पिरके पाने।

ई जंत सरबत नाव तेरा त्यावना, तू दाता दातार तेरा जिथा खावना, भगत जना के संग पाप गवावना, जन नानक सद बलिहार है बल बल जावना। श्लोक महला चौथा। अंतर अज्ञान पई मत मद्दम, सतगुरु की प्रतीत नाही, अंदर कपट सब कपटो कर जाने, कपटे खपे कपाही, सतगुरु का पाना चित ना आवे, अपने स्वाय फिराही, कृपा करे जे अपनी ता नानक शब्द समाही। महला चौथा। मन मुख माया मोह व्यापे, दूजे पाए मनुआ फिर नाहे, हम दिन जलत रहे दिन राती, हो मैं खपे खपाहे, अंतर लोभ मां गुबारा, तिनके निकट न कोई जाहे, कोई आप दुखी सुख कभू न पावे, जन्म मरे मर जाए, नानक बख्श ले प्रभु साचा, जे गुर चरणी चितलाहे पौड़ी। संत भगत परवान जो प्रभु पाया, सही विचक्षण जंत जिन्नी हर त्याया, अमृत नाम निदान भोजन खाया, संत जना की तूर मस्तक लाया, नानक पय पुनीत हर की रचनाया। श्लोक महला चौथा। गुरुमुख अंतर शांत है, मन तन नाम समाए, नामो चितवे नाम पढ़े, नाम रहे लिवलाए, नाम पदार्थ पाया चिंता गई बिलाए, सतगुरु मिले नाम।

आपे सिष्ट सिंधिया आपे सुनगोई सब इको शब्द वर्तदा जो करे सो होई वड्याई गुरुमुख दे प्रभ हर पावे सोई गुरुमुख नानक आराध्या सब आखो तन तन तन गुर सोई सुध राग सोरठ बाणी भगत कबीर जी की कर पहला इको अंकार सतगुर प्रसाद बुत पूज पूज हिंदू मुए तुर्क मुए सिरनाई ओइले जा रे ओइले

पाई। दर्भ संच संच राजे मुए गडले कंचन भारी। वेद पढ़े पढ़ पंडित मुए रूप देख देख नारी। राम नाम बिन सबै बिगूते देखो निर्ख शरीरा। हर के नाम बिन किन गत पाई कह उपदेश कबीरा। जब जरिए तब होए पसम कन रह किरम दल खाई। काची गागर नीर परत है या तन की यह बड़ाई। काहे पैया फिर तो फूलिया फूलिया

मरती बार लेहो लेहो करिए पूत रहन क्यों दिया। देहोरी लो बरी नार संग भाई आगे सजन सुहेला मरकट लो सब लोग कुटुंब भयो आगे हंस अकेला। कहत कबीर सुनो रे प्राणी परे काल ग्रस्त हुआ चूठी माया।

आई बाजीगर स्वांग सुकेला अपने रंग रवे अकेला कथनी कह परम न जाई सब कट कट रही लुकाई जा को गुरु

एक बस अगोचर लही है, बस अगोचर पाई, कट दीपक रहा समाए। कह कबीर अब जान्या, जब जान्या तो मन मान्या, मन माने लोग ना पतीजे।

नाद समायलो रे सतगुर पेटले देवा राव जय चिल मिल कार दिसंता।

पिखारी अछत राज बिछरत दुख पाया सोगत पई हमारी। राजपुर अंग प्रसंग जैसे हैं अब कछ मर्म जनाया अनिक कटक जैसे फूल परे अब कहते कहन न आया। सर्वे एक अनेक स्वामी सब कर...

तीन पकरफा के ओर काट्यो राम की ओ बहुबानी खंड खंड कर भोजन कीनो तऊ ना बिसरो पानी आपन बापे ना ही किसी को पावन को हर राजा मोह पटल सब जगत व्यापियो भगत नहीं संतापा कह रविदास।

नहीं ऐसी बेदन उपज खरी भई वाका औखद नाही। हर का नाम अमृत जल निर्मल ए औखद जग सारा गुर प्रसाद कह जन तीखन पावो मोख द्वारा। ऐसा नाम रतन निर्मोलक पुन पदार्थ पाया अनक जतन कर।

क्यों सिमरी सिवरिया नहीं जाए, तपे ही आओ जीड़ा बिल लाए, सिज सवारे साचा सोए, तिस विसरिय चंगा क्यों होए, हिकमत हुक्म न पाया जाए, क्यों कर सास मिलो मेरी माए, रहा वक्खर नाम देखन कोई जाए, ना को चाखे ना को खाए, लोक पतीने ना पत होए, ता पत रहे राखे जा सोए, जै देखा तेरे आसमाए, तुद बिन दूजी ना ही जाए, जे को

कूड़ कबाड़, पावे सब आखो संसार, तुद पावे अदि परवान, नानक जाने जान सुजान, तना फ्री मेला पहला।

पहला आरती एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। तूप मले आन लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए पव खंडना, तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत बेरी रहा। सहस तव नैन नम नैन है तोहे को, सहस मूरत नन्ना एक तोही। सहस पद विमल नन एक पद गंद बिन, सहस तव गंद इव चलत मोही। सब में ज्योत ज्योत है सोए, तिसके चानन सब में चानन होए। गुरसाखी ज्योत प्रगट होए, जो पिस पावे सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो, हम जिनो मोहे आई प्यासा। कृपा जल दे नानक सारन को, होए जाते तेरे नाम वासा। त्रासरी महला तीजा, कर दूजा चौक दे इको अंकार सतगुर प्रसाद। ए तन अखुट नान खुटे ना जाए, पूरे सतगुर दिया दिखाए। अपने सतगुर को सदबल जाए, गुर कृपा से हर मन वसाए। से तनवंत हर नाम लिवलाए, गुर पूरे हर तन पर गासिया। हर कृपा से वसे मन आए रहाओ। अवगुण काट गुण हृदय समाए, पूरे गुर कैसे सुवाए। पूरे गुर की साथी बाणी, सुख मन अंतर सहज समाणी। एक अचरज जन देखो भाई, दुखदा मार हर मन वसाई। नाम अमोलक ना पाया जाए, गुर प्रसाद वसे मन आए। सब में वसे प्रभ एक को सोए, गुरमति कट प्रगट होए। सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिले मन मानिया। त्रासरी महला तीजा, हर नाम तन निर्मल अच अपारा। गुर के शब्द परे पंडारा, नाम तन बिन होर सब दिख जान। माया मोह जले अभिमान, गुरमुख हर रस चाखे कोए। तिस सदा आनंद होवे, दिन राती पूरे पाक प्राप्त होए रहा। शब्द दीपक वरते ते लोए, जो चाखे सो निर्मल होए। निर्मल नाम हो मैं मल तोए, साची प्रगट सदा सुख होए। जिन हर रस चाखिया सो हर जन लोग, तिस सदा हरख नाही कदे सोग। आप

राम कुमारी शब्द मिले प्रीतम सदा त्याए सात नाम वड्याई पाए आपे करता जुग जुग सोए नदर करे मेलावा होए गुरबाणी ते हर मन वसाए नानक सात रते प्रभ आप मिलाए तना श्री मैला तीजा।

खाए अपनी पत खोई। गुर सेवा से जन निर्मल होए, अंतर नाम वसे पत उत्तम होए रहाओ। गुरमुख उबरे हर शरणाई, राम नाम राते पगत दृढ़ाई।

हो तन पुरख जिस नाम प्यार। तिन प्रभ साचे इक सच लाए, उत्तम वाणी सब सुनाए। प्रभ साचे की साची कार, नानक नाम सवारण हार। तनास जी मैला तीजा, जो हर सेवै तिन बल जाओ। तिन हृदय साच सच्चा मुख नाओ, साचो साच संभालो दुख जाए। साचे शब्द वसै मन आए, गुरबाणी सुन मैल गवाए। सहजे हर नाम मन वसाए रहाओ, कूड़ कुसत तृष्णा अग्न बुझाए। अंतर सांप सहज सुख पाए, गुर के पाणे चले ताँ आप जाए। सात महल पाए हर गुण गाए, ना शब्द बूझे ना जाने बाणी। मन मुख अंधे दुख विहानी, सतगुर पेटे ताँ सुख पाए। हों मैं विच्चों ठाक रहाए, किसनो कही है दाता एक सोए। कृपा करे शब्द मिलावा होए, मिल प्रीतम साचे गुण गावा। नानक साचे साचा भावा, त्रासी मैला तीजा। मन मरे तात मर जाए, बिन मन हुए कैसे हर पाए। ए मन मरे दारू जाने कोए, मन शब्द मरे बूझे जन सोए। जिसनो बख्शे हर देव डियाई, गुर प्रसाद वसै मन आई रहाओ। गुरमुख करनी कार कमावे, पाइस मन की सो जी पावे। मन में मत मैगल मितदारा, गुर अंकत मार जीवा लनहारा। मन असाध साधे जन कोई, अचर चरे ता निर्मल होई। गुरमुख

सुनाए कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ। हम मूरख मूरख मन माहे हौ मैं विच सब कार कमाहे गुर प्रसादी हौ मैं जाए आपे बख्शे ले मिलाए बिख्या का तन बहुत अभिमान।

अवर न कोई जिस सच लाए सोई लागे, नानक नाम सदा सुख आगे। राग तनासरी महला तीजा घर चौथा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। हम पीखक पेखारी तेरे तू निज पत है दाता, हो दयाल नाम देव मंगत जन कहो सदा रहो रंग राता। हों बलिहार जाऊं साचे तेरे नाम विटों, करण कारण

परम पटकूले गुरु प्रसादी जानिया साची लिव लागी है पीतर सतगुर से मन मानिया। तना श्री मैला चौथा कर पहला चौक दे।

हमारी, हम ऊपर कृपा कर स्वामी, रख संगत तुम जो प्यारी, हर गुण कहे ना सको बनवारी, हम पापी पाथर नीर डुबत, कर कृपा पाखण हम तारी। रहाओ जन्म जन्म के लागे बिख मोर्चा, लग संगत साध सवारी, जो कंचन बै संतर पायो, मल पापी कट के उतारी। हर हर जपन जपो दिन राती, जप हर हर हर उर्धारी, हर हर हर औषध जग पूरा, जप हर हर हो मैं मारी। हर हर अगम अगाध बोध, अपरंपर पुरख अपारी, जन को कृपा करो जग जीवन, जन नानक पै सवारी। तना श्री मैला चौथा, हर के संत जना हर जप्यो, तिनका दुख परम पौ पागी, अपनी सेवा आप कराई, गुरमत अंतर जागी, हर के नाम रता बैरागी, हर हर कथा सुनी मन पाई, गुरमत हर लिग लागी। रहाओ संत जना की जात हर स्वामी, तुम ठाकुर हम सांगी, जैसी मत देवो हर स्वामी, हम कैसे बुलग बुलागी, क्या हम किरम नान निक की रे, तुम वड पुरख।

नानक दासन दास करो प्रभु हम हर कथा कथा की तना श्री मेरा चौथा हर का संत सतगुर सतपुरखा जो बोले हर हर वाणी जो जो कहे सुने सो मुक्ता हम किसके सद कुर्बानी हर के संत सुनो जस्तानी हर हर कथा सुनो एक निमख पल सब के लिए पाप लह जानी रहाओ ऐसा संत साध जिन पाया ते वड पुरुष वडानी तिनकी तूर मंगे प्रभ स्वामी हम हर लोच लुचानी हर हर सफल्यो बिरत प्रभ स्वामी जिन जप्यो से तृप्तानी हर हर अमृत पी तृप्ता से सब लाथी पूख पुकानी जिनके वड्डे पाग वड ऊचे तिन हर जप्यो जपानी तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी जन नानक दास दसानी तना श्री मैला चौथा।